0: स्थान पर और क्यों किया था। अमृत मंथन के समय उच्च सवा घोड़ा किस प्रकार उत्पन्न हुआ। उग्र सवा महर्षि शौनक आदि का प्रश्न सुन के उनसे अमृत मंथन की कथा कहने लगे। देवता लोग इकट्ठे होकर अमृत प्राप्ति के लिए सलाह करने लगे। उनमें भगवान नारायण और ब्रह्मा जी भी थे। नारायण ने देवता से कहा, देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करें, इस मंथन के फलस्वरूप अमृत की प्राप्ति होगी। देवताओं ने भगवान नारायण के परामर्श से मंदराचल को उखाड़ने की चेष्टा की। वे पर्वत मेघों के समान ऊंची चोटियों से युक्त 11,000 योजन ऊंचा और उतने से ही नीचे धसा हुआ था। जब सर्वस्व देवता पूरी शक्ति लगाकर उसे नहीं उखाड़ सके, तब उन्होंने विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनते श्री नारायण और ब्रह्मा जी ने शेष नाग को मंदराचल उखाड़ने के लिए प्रेरित किया। महाबली शेषनाग ने वन और वनवासियों के साथ मंदराचल को उखाड़ लिया। अब मंदराचल के साथ देवगण समुद्र तट पर पहुंचे और समुद्र से कहा कि हम लोग अमृत के लिए तुम्हारा जल मथेंगे। समुद्र ने कहा, यदि आप लोग अमृत में मेरा भी हिस्सा रखे तो मैं मंदराचल को घुमाने से जो कष्ट होगा वह सह लूंगा। देवता और असुरों ने समुद्र की बात स्वीकार करके कच्छप राज से कहा, आप इस पर्वत के आधार बनिए। कच्छप राज ने कहा, ठीक है, कहकर मंदराचल को अपनी पीठ पर ले लिया। अब यंत्र के समान यंत्र के द्वारा मंदराचल को घुमाने लगे। इस प्रकार देवताओं और असुरों ने मंदराचल की मथानी वासुकी नाग की डोरी बनाकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया। वासुकी नाग के मुंह से मुंह की ओर असुर और पूंछ की ओर देवता लगे थे। बार बार खींचे जाने के कारण वासुकी नाग के मुख से धुएं और अग्नि ज्वाला के साथ सांस निकलने लगी। सांस थोड़ी देर में मेघ बन जाती और मेघ थके मांदे देवताओं पर जल बरसाने लगते। पर्वत के शिखर से पुष्पों की झड़ी लग गई। पहाड़ पर वृक्ष आपस में टकरा कर उनकी रगड़ से आग लग गई। इंद्र ने मेघों द्वारा जल बरसवा कर उसे शांत किया। वृक्षों के दूध और औषधियों के रस चू चू कर समुद्र में आने लगे। औषधियों के अमृत के समान प्रभावशाली रस और दूध सुवर्ण में मंदराचल की अनेक दिव्य प्रभावशाली मणियों को से चूने वाली जल के स्पर्श से ही देवता अमरत्व को प्राप्त होने लगे। उन उत्तम रसों के सम्मिश्रण से समुद्र का जल दूध बन गया और दूध से घी बनने लगा। देवताओं ने मत्ते मत्ते थक कर ब्रह्मा जी से कहा, भगवान नारायण के अतिरिक्त सभी देवता और असुर थक गए हैं। समुद्र मत्ते मत्ते इतना समय बीत गया परंतु अभी तक अमृत नहीं निकला। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान आप इन्हें बल दीजिए। विष्णु भगवान ने कहा, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं मैं उन्हें बल दे रहा हूँ। सब लोग पूरी शक्ति लगाकर मंदराचल को घुमाएं, समुद्र को शुद्ध कर दें। भगवान के इतना कहते ही देवता और असुरों का बल बढ़ गया। वे बड़े वेग से मचने लगे। सारा समुद्र शुद्ध हो गया। इसी समय समुद्र से अनगिनत किरणों वाला शीतल प्रकाश से युक्त श्वेत वर्ण का चंद्रमा प्रकट हुआ। चंद्रमा के बाद भगवती लक्ष्मी और सुरा देवी निकली। इसी समय श्वेत वर्ण का उच्च सवा घोड़ा भी पैदा हुआ। भगवान नारायण के वक्षस्थल पर सुशोभित होने वाली दिव्य किरणों से उज्ज्वल कौस्तुभ मणि कल्पवृक्ष कामधेनु भी उसी समय निकले। लक्ष्मी सुरा चंद्रमा उच्च सवा ये सब आकाश मार्ग के देवताओं के लोक में चले गए। के बाद दिव्य शरीरधारी धन्वंतरी देव प्रकट हुए। वे अपने हाथ में अमृत से भरा श्वेत कमंडल लिए हुए थे। ये अद्भुत चमत्कार देखकर दानवों ने ये मेरा है मेरा है ऐसा कोलाहल मच गया। तदनंतर चार श्वेत दांतों से युक्त विशाल इरावत हाथी निकला। उसे इंद्र ने ले लिया। तब समुद्र का मंथन किया गया। तब उसमें कालकूट विष निकला। उसकी गंध से ही लोगों की चेतना जाती गई। ब्रह्मा की प्रार्थना से भगवान शंकर नीले कंठ में धारण कर लिया। तभी से वे नीले कंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये सब देखकर दानवों की आशा टूट गई। अमृत और लक्ष्मी के लिए उन्होंने बड़ा बैर विरोध और फूट हो गया। इसी समय भगवान विष्णु मोहिनी श्री अवेश धारण करके दानवों के पास गए। मूर्खों ने उनकी माया न जानकर मोहिनी रूपधारी भगवान को अमृत का पात्र दे दिया। उस समय वे सभी मोहिनी के रूप पर लट्टू हो रहे थे। इस प्रकार विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके दैत्य और दानवों से अमृत छीन लिया और देवताओं ने उनके पास जाके उसे पी लिया। इसी समय राहु दानव भी देवताओं का रूप धारण करके अमृत पीने लगा। अभी अमृत उसके कंठ तक ही पहुंचा था कि चंद्रमा और सूर्य ने उसका भेद बतला दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत ही चक्र से उसका सिर काट डाला। और राहु का पर्वत शिखर के समान सिर आकाश में उड़कर गरजने लगा और उसका धड़ पृथ्वी पर गिरकर सबको कपाता हुआ तड़फड़ाने लगा। तभी से राहु के साथ चंद्रमा और सूर्य का पैर हो गया। कृष्ण भगवान ने अमृत लाने के बाद अपनी मोहिनी रूप त्याग दिया और तरह तरह के अस्त्र शस्त्र से असुरों को डराने लगे। खारे समुद्र के तट पर देवता और असुरों का भयंकर संग्राम छिड़ गया। देवासुर संग्राम कहा जाता है इसमें। भांति भांति के अस्त्र शस्त्र बरसने लगे। भगवान के चक्र से कट कट कर कोई कोई असुर खून उगलने लगा। कोई कोई देवताओं के खड़क शक्ति और गदा से घायल होकर धरती पर लौटने लगे। चारों ओर से यही आवाज सुनाई पड़ती, मारो काटो दौड़ो गिरा दो पीछा करो। इस प्रकार भयंकर युद्ध हो ही रहा था कि विष्णु भगवान ने दो रूप नर और नारायण युद्ध भूमि दिखाए। नर का दिव्य धनुष देखकर नारायण ने अपने चक्र का स्मरण किया। भगवान नारायण के चलाने पर चक्र शक्रु दल ने घूम घूम कर कालाग्नि के समान सहस सहस अस्त्रों का सहार करने लगे। देव शिरोमणि नर ने बाणों के द्वारा पर्वतों की चोटियां काट काट कर उन्हें आकाश मार्ग में बिछा दिया। सुदर्शन चक्र घास फूस की तरह दैत्यों को काटने लगे। इससे भयभीत होकर असुरगण पृथ्वी और समुद्र में छिप गए। देवताओं की जीत हुई। मंदराचल को सम्मान पूर्वक यथास्थान पहुंचा दिया गया।
1: जी तो श्रोताओं, बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहे हैं और समुद्र मंथन की कथा अभी रागलेखा दशी जी से हमने जानी कि किस तरह से देवताओं को अमृत मिला। और ये सारी कथाएं बहुत सुंदर जो है इस महाभारत के अंतर्गत हम जान रहे हैं। आगे और भी कथाएं प्रसंग हैं जो हम जानेंगे रागलेखा दासी जी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कथाएं प्रसंग जानते हैं। जी,
0: उच्च सवा घोड़े को देखकर कद्रु ने वनिता से कहा, बहन जल्दी से बताओ इस घोड़े का किस रंग का है। वनिता ने कहा, बहन ये अश्वराज श्वेत वर्ण का है, तुम इसे किस रंग का समझती हो। कद्रु ने कहा, अवश्य ही इस घोड़े का रंग सफेद है, परंतु पूंछ काली है। आओ हम दोनों इस विषय में बाजी लगाए। यदि तुम्हारी बात ठीक हो तो मैं तुम्हारी दासी रहूं और मेरी बात ठीक हो तो तुम मेरी दासी रहना। इस प्रकार दोनों बहनें आपस में बाजी लगाकर दूसरे दिन घोड़े देखने का निश्चय करके घर चली गई। कद्रु ने वनिता को धोखा देने के विचार से अपने हजार पुत्रों को आज्ञा दी, पुत्रों तुम लोग शीघ्र ही काले बाल बनकर उच्च सभा की पूछ ढक लो, इससे मुझे दासी ना बनना पड़े। जिन सर्पों ने उसकी आज्ञा न मानी उसने उन्हें श्राप दिया कि जाओ तुम लोग अग्नि जलने दे के सर्प अग्नि जल कर भस्म हो जाओगे। कद्रु अभिनेता ने दासी बनने की बाजी लगाकर बड़े रोष और आवेश में रात बिताई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही निकट से घोड़े को देखने के लिए दोनों चल पड़े। सर्पों ने परस्पर विचार करके निश्चय किया कि हमें माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, कि चलो हम लोग घोड़े की पूछ को काली कर दें। ऐसा निश्चय करके उच्च सभा की पूछ से बाल बनकर लिपट गए और जिसे काली जान पड़ने लगी। वे कद्रु और अनिता बाजी लगाकर आकाश मार्ग से समुद्र को देखते देखते दूसरे पार जाने लगे। दोनों ही दूसरे पार पहुँच कर नीचे उतर पड़े। उन्होंने देखा कि घोड़े का सारा शरीर तो चंद्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल है, परंतु पूछ काली है। ये देखकर अनिता उदास हो गई। कद्रु ने उसे अपनी दासी बना लिया। समय पूरा होने पर माँ तेजस्वी गरुड़ माता की सहायता के बिना ही अंडा फोड़े ही उससे से बाहर निकल आए। जनते ही आकाश में ऊपर उड़ने लगे। उस समय वैसे जान पड़ते थे माना दूसरा बड़वा नर ही हो। अग्नि के साथ जाकर देवता और ऋषियों ने गरुड़ की स्तुति की। ऋषियों की स्तुति सुनकर गरुड़ जी ने कहा, मेरे भयंकर शरीर को देखकर जो लोग घबरा गए थे अब वे भयभीत ना हो, मैं अपने शरीर को छोटा और तेज को कम कर लेता हूँ। सब लोग प्रसन्नता पूर्वक लौट गए। एक दिन विनीता ने अपने पुत्र को पास बिठाया और कद्रु ने उसे बुलाकर कहा, मुझे समुद्र के भीतर नागों का एक दर्शनीय स्थान देखना है, वहां तू मुझे ले चल। और वनिता ने कद्रु को और गरुड़ जी ने माता की आज्ञा से सर्पों को अपने कंधों पर बिठा लिया। उनके अभी स्थान को चले। तीक्ष्ण गर्मी के कारण सर्प बेहोश हो गए। कद्रु ने इंद्र की प्रार्थना करके सारे आकाश को मेघ मंडल से आच्छादित कर दिया। वर्षा हुई, सब सर्प सुखी हो गए। मनोहर व नादि उदर देखकर यथेष्ट उन्होंने विहार किया और खूब खेल कूद कर गरुड़ से कहा, तुमने तो आकाश में उड़ते उड़ते बहुत से सुंदर सुंदर द्वीप देखे होंगे, अब हमें किसी द्वीप में ले चलो। गरुड़ कुछ चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोच विचार कर अपनी माता से पूछा, माँ मुझे सर्पों की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए। विनीता ने कहा, बेटा इन सर्पों के छल से मैं बाजी हार गई, और दुर्भाग्यवश अपनी सौत कद्रू की दासी हो गई अपनी माता के दुख से गरुड़।

क्या? नीता ने कहा, बेटा समुद्र में निषादों की एक बस्ती है, उसे खाकर तुम अमृत ले आओ। स्मरण रखना, ब्राह्मण का वध कभी ना करना, वे सबके लिए अवध्य है। करुण जी माता की आज्ञा के अनुसार उस द्वीप के निषादों को खाकर आगे बढ़े। गलती से एक ब्राह्मण उनके मुंह में आ गया, जिससे उनका तालू जलने लगा। उसे छोड़कर वे कश्यप जी के पास गए। कश्यप जी ने पूछा, बेटा तुम लोग सकुशल तो हो, आवश्यकता अनुसार भोजन तो मिल जाता है ना? करुण जी ने कहा, मेरी माता सकुशल है, हम भी आनंद है। यथेष्ट भोजन न मिलने से कुछ दुख रहता है। मैं अपनी माता को दासीपन से छुड़ाने के लिए सरकों के कहने से अमृत लाने के लिए जा रहा हूँ। अब आप कोई ऐसी खाने की वस्तु बताइए जिसे खाकर मैं अमृत ला सकूं। कश्यप जी ने कहा, बेटा यहाँ पर थोड़ी दूर पर एक विश्व विख्यात सरोवर है, उसमें एक हाथी और कछुआ रहता है। वे दोनों पूर्व जन्म में भाई थे, परंतु एक दूसरे के शत्रु है। अब वे दोनों एक दूसरे से उलझे रहते हैं। अच्छा, उनके पूर्व जन्म की कथा सुनो। प्राचीन काल में विभावसु नामक एक बड़े क्रोधी ऋषि थे। उनका छोटा भाई था तपस्वी सुप्रतीक। सुप्रतीक अपनी धन को बड़े भाई के साथ नहीं रखना चाहता था, वह जितने बंटवारे के लिए कहा करता। विभावसु ने अपने छोटे भाई से कहा, सुप्रतीक, धन के मोह के कारण लोग उसका बंटवारा चाहते हैं, और बंटवारा हो जाने पर एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। शत्रु भी उनके अलग अलग मित्र बन जाते हैं और भाई भाई में भेद डाल देते हैं। तू भेदभाव के कारण धन अलग अलग करना चाहता है, तुझे हाथी की योनि प्राप्त होगी। सुप्रतीक ने कहा, मैं हाथी होऊंगा तो तुम कछुआ होगे। वरुण इस प्रकार दोनों भाई धन के लालच में एक दूसरे को श्राप देकर हाथी और कछुआ हो गए। तुम जाकर उन दोनों भयंकर जंतुओं को खा जाओ और अमृत ले आओ। कश्यप जी की आज्ञा प्राप्त कर करुण जी सरोवर पे गए। उन्होंने एक नख से हाथी को और दूसरे से कछुए को पकड़ लिया और आकाश में ऊंचे उड़कर अलम्ब तीर्थ पर जा पहुंचे। सुवन गिरी पर बहुत से देव वृक्ष लहलहा रहे थे। वरुण को देखते वो भय से कांपने लगे और कहीं उनके धक्के से हम टूट ना जाए। उनको भयभीत देखकर करुण जी दूसरी ओर निकल गए। उधर एक बड़ा सा वट वृक्ष था। वट वृक्ष ने गरुड़ जी को मन के वेग से उठते देखकर कहा, तुम मेरी 100 योजन लंबी शाखा पर बैठकर हाथी और कछुए को खा लो। जो ही गरुड़ जी ने उसकी शाखा पर बैठे तो ही वे चढ़ाकर टूट गई और गिरने लगी। गरुड़ जी ने गिरते गिरते शाखा को पकड़ लिया और बड़े आश्चर्य से देखा, उसमें नीचे की ओर सिर करके बालखिल्ले नामक ऋषिगण लटक रहे थे। गरुड़ जी ने सोचा, यदि शाखा गिर गई तो तपस्वी ब्रह्म ऋषि मर जाएंगे। अब उन्होंने झपट कर अपनी चोट से वृक्ष की शाखा पकड़ ली और हाथी और कछुए को पंजे में दबाया, आकाश में उड़ने लगे। कहीं भी बैठने का स्थान न पाकर वे आकाश में उड़ते ही रहे। इस समय उनके पंखों की हवा से पहाड़ भी कांप उठते थे। बालखिल्ले ऋषियों के ऊपर दया भाव होने के कारण वे कहीं बैठ ना सके। उड़ते उड़ते गंधमादन पर्वत पर गए। कश्यप जी ने उन्हें इस अवस्था में देखकर कहा, बेटा कहीं साहस का काम न करना, बैठना। सूर्य की किरण पीकर तपस्या करने वाले बालखिल्ले ऋषि ने क्रोध होकर कहीं तुम्हें भस्म न कर दे। पुत्र से इस प्रकार कहकर उन्होंने तप शुद्ध बालखिल्ले ऋषि से प्रार्थना की। तपोधनों, जरूर प्रजा के हित के लिए एक महान कार्य करना चाहते हैं, आप लोग इसे आज्ञा दीजिए। बालखिल्ले ऋषि ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर वट वृक्ष की शाखा छोड़ दी और तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। गरुड़ जी ने वह शाखा फेंक दिया, पर्वत की चोटी पर बैठकर हाथी और कछुए को खाया। गरुड़ जी खा पी कर उस पर्वत की चोटी से ही ऊपर की ओर उड़े। उस समय देवताओं ने देखा कि उनके यहाँ भयंकर उत्पात हो रहे हैं। देवराज इंद्र ने बृहस्पति से पूछा, भगवान एकाएक बहुत से उत्पात क्यों होने लगे? इंद्र, तुम्हारे अपराध और प्रमाद से महाप्रमाद के लिए ऋषियों के तपोबल से वनिता नंदन गरुड़ अमृत देने के लिए यहाँ आ रहे हैं। वे अपनी शक्ति से असाध्य कार्य को साध सकते हैं। इंद्र ने अमृत की रक्षा रक्षकों को सावधान करके कहा कि देखो, परम पराक्रमी बक्षीराज गरुड़ यहाँ से अमृत ले जाने के लिए आ रहे हैं, सचेत रहो, वे बलपूर्वक अमृत ना ले जाने पाओ। सभी देवताओं और स्वयं इंद्र अभी अमृत को घेर कर उसकी रक्षा के लिए डट गए। गरुड़ जी वहाँ पहुँचते ही पंखों की हवा से इतनी धूल उड़ाई कि देवता अंधे से हो गए और वे धूल से ढककर मूल से मन गए। सभी रक्षक की आंखें खराब होने के डर हो गए। वे एक क्षण तक गरुड़ को देख भी नहीं सके। सारा स्वर्ग शुद्ध हो गया। चोर पंखों की चोट से देवताओं के शरीर जर्जरित हो गए। इंद्र ने वायु को आज्ञा दी, तुम इस धूल का पर्दा फाड़ दो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। वायु ने वैसे ही किया, चारों ओर उजाला हो गया। देवता उन पर प्रहार करने लगे।
जमीन में उड़ते उड़ते गरज कर उनके हाथ

0: फैली और आकाश से भी ऊंचे पहुंच गए। वीरता उन्हें शस्त्रों के प्रहार से करूर तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनके आक्रमण को विफल देखकर गरुड़ की पंखों और चोंचों की चोट से देवताओं की चमड़ी उधर गई और शरीर खून से लथपथ हो गया। वे घबरा कर स्वयं ही तितर बितर हो गए। उसके बाद गरुड़ आगे बढ़े। उन्होंने देखा अमृत के चारों ओर आग की लाल लाल लपटें उठ रही हैं। अब गरुड़ ने अपने शरीर को 8,100 मुंह बनाए और बहुत सी नदियों का जल पीकर उसे दहकती हुई आग पर उड़ेल दिया। अग्नि शांत होने पर छोटा सा शरीर धारण करके वे आगे बढ़े। सूर्य की किरणों के समान उज्जवल और सुनहरा शरीर धारण करके गरुड़ ने बड़े वेग से अमृत के स्थान में प्रवेश किया। उन्होंने वहां देखा अमृत के पास एक लोहे का चक्र निरंतर घूम रहा है। उसकी धार तीखी है, उसमें सहस्त्रों अस्त्र लगे हुए हैं। वह भयंकर चक्र सूर्य और अग्नि के समान ध्यान पड़ता था। उसका काम ही था अमृत की रक्षा। गरुड़ी चक्र के भीतर घुसने का मार्ग देखते रहे। एक क्षण में ही उन्होंने अपने शरीर को संकुचित किया। चक्र के आरों के बीच में से भीतर घुस गए। अब उन्होंने देखा कि अमृत की रक्षा के लिए दो भयंकर सर नियुक्त है। उनकी दृष्टि से विष का संचार होता था। गरुड़ जी ने भूल झोंक कर उनकी आंखें बंद कर दी। चूचे और पंजे से मार मार कर उन्हें कुचल दिया। चक्र को तोड़ डाला और बड़े वेग से अमृत पात्र को लेकर वे उड़ चले। उन्होंने स्वयं अमृत नहीं पिया, बस आकाश में उड़कर सर्पों के पास चल दिए। आकाश में उन्हें विष्णु भगवान के दर्शन हुए। गरुड़ जी ने मन में अमृत पीने का लोभ नहीं है ये जानकर भगवान उन पर प्रसन्न हो गए और बोले, गरुड़ मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, मन चाहे वस्तु मांग लो। गरुड़ जी ने कहा, भगवान एक तो आप मुझे अपनी ध्वजा में रखिए, दूसरा मैं अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊँ। भगवान ने कहा, तथास्तु, मैं भी आपको वर देना चाहता हूँ। गरुड़ जी ने कहा, मुझसे कुछ मांग लीजिए। भगवान ने कहा, तुम मेरे वाहन बन जाओ। गरुड़ जी ने कहा, ऐसे ही होगा, और कहकर उनकी अनुमति से अमृत लेकर यात्रा की। अब तक इंद्र की आंखें खुल चुकी थी। उन्होंने गरुड़ को अमृत की जाते देखकर क्रोध में भरकर बजर चलाया। गरुड़ ने मजा हाथ होकर भी हंसते हुए कोमल वाणी से कहा, इंद्र इनकी हड्डी से ये बजर बना है, इनके सम्मान के लिए मैं अपना एक पंख छोड़ देता हूँ, तुम कभी अंत नहीं पा सकोगे, मुझे कभी भी पीड़ा नहीं हुई। गरुड़ ने अपना एक पंख गिरा दिया। उसे देखकर लोगों को बड़ा आनंद हुआ। सबने कहा, जिसका यह पंख है उस पक्षी का नाम सुकर्ण है। पक्षीराज, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें कितना बल है, साथ ही तुम्हारी मित्रता भी चाहता हूँ। गरुड़ ने कहा, देवराज आप अपनी इच्छा अनुसार हमारी मित्रता रहे, मैं मित्र के समान ही बतलाता हूँ। पर्वत, वन, समुद्र, जल सहित सारी पृथ्वी को और इसके ऊपर रहने वाले आप लोगों को आपने एक पंख पर उठाकर मैं बिना परिश्रम के उठ सकता हूँ। अब मेरी घनिष्ठ मित्रता स्वीकार कीजिए। यदि आपको अमृत की आवश्यकता ना हो तो मुझे दे दीजिए। आप ये ले जाकर जिन्हें देंगे वे हमें बहुत दुख देंगे। गरुड़ जी ने कहा, देवराज अमृत को ले जाने का एक कारण है, मैं इसे किसी को पिलाना नहीं चाहता हूँ। मैं इसे जहाँ रखूँ वहाँ से आप उठा ले जाइए। इंद्र ने संतुष्ट होकर कहा, गरुड़ उससे मुँह मांगा वर मांग लो। गरुड़ जी ने सर्पों की दुष्टता और उसके छल के कारण होने वाले माता के दुख का स्मरण हो आया। उन्होंने वर मांगा, ये बलवान सर्प भी मेरे भोजन की सामग्री हो। देवराज इंद्र ने कहा, तथास्तु। इंद्र से विदा लेने के बाद गरुड़ सर्पों के स्थान पर आए। वहीं उनकी माता भी थी। उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, सर्पों से कहा, ये लो मैं अमृत ले आया, परंतु पीने में जल्दी मत करो, मैं इसे कुशों पर रखता हूँ, स्नान करके पवित्र हो लो फिर इसे पीना, स्नान करके पवित्र हो लो फिर इसे पीना। अब तुम लोगों के कथा अनुसार मेरी माता दासीपन से छूट गई क्योंकि मैंने तुम्हारी बात पूरी कर दी है। सर्पों ने स्वीकार कर लिया। जब सर्पगण प्रसन्नता से भरकर स्नान करने गए तब इंद्र अमृत कलश को लेकर स्वर्ग में चले गए। मंगल कृत्यों से लौटकर सर्पों ने देखा अमृत उस पर नहीं था स्थान पर। उन्होंने समझ लिया कि हमारी विनीता को दासी बनाने के लिए जो कपट किया था उसी का फल है। फिर ये समझ कर अमृत रखा गया था इसलिए संभव है इसमें कुछ अंश लगा हो। सर्पों ने कुशों को चाटना शुरू कर दिया। ऐसे करते ही उनके जीभ के दो टुकड़े हो गए। अमृत का स्पर्श होने से कुछ पवित्र माना जाने लगा। अब गरुड़ कृत्य कृत्य होकर आनंद से अपनी माता के साथ रहने लगे। वे पक्षी राज हुए और उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई और माता सुखी हो गई।
1: जी श्रोताओं, बहुत ही सुंदर कथा हमने जानेंगे किस तरह से अपनी माता के लिए गरुड़ जो है अमृत का कलश लेने गए और उसमें वो सफल भी हुए और किस तरह से वो भगवान जी का वाहन बने ये भी हमने जाना और ये पूरी कथा जो है हमने जानी इस महाभारत काव्य के अंतर्गत। तो श्रोताओं, इसमें ऐसी बहुत सारी कथाएं प्रसंग हैं जो हम जानते रहेंगे रागिनी खदासी जी से, लेकिन अभी जो वक्त है आपसे इजाजत लेने का हो चुका है। तो रागिनी खदासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए।
0: जय कृष्ण
1: जी। तो श्रोताओं, आज के लिए कार्यक्रम आत्मदर्शन में बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी कथाएं प्रसंग हम जानेंगे, लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।
2: अभी न जाओ छोड़ कर,

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, मैं हूँ आपकी कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला और मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ शिव पुराण, जिससे कि आप सबका कल्याण हो सके। तो दोस्तों, शिव पुराण का सुनवाने के लिए हमने अपने स्टूडियो में लीना जी को आमंत्रित किया हुआ है। लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: दोस्तों, शिव का अर्थ ही है कल्याण स्वरूप और कल्याण प्रदाता। परम ब्रह्म के इस कल्याण रूप की उपासना उच्च कोटि के सिद्धों, आत्म कल्याण कामी साधकों एवं सर्वसाधारण आस्तिक जनों सभी के लिए मंगलमय एवं सर्व सिद्धिदायक हैं। तो श्रोताओं, हम भी क्यों ना इस तरह से अपने जीवन की सारी सिद्धियां प्राप्त करें। क्यों, कैसे कि शिव पुराण की व्याख्या सुनकर। तो लीना जी, आपने जो पिछली एपिसोड में जो आपने वर्णन सुनाया था हमारे श्रोताओं को, कि ब्रह्मा जी ने कहा कि हिमालय सब सुनकर अपने परिवार वालों से कहने लगे कि सुमेरों, और परिवार कौन था, सारे पर्वत, सुमेरों पर्वत राजों सुनो, मुझे क्या करना चाहिए। पर्वत राजों ने कहा, अब क्या विचार करना है, इसका जन्म तो कल्याण के लिए ही हुआ है, इसे शिव जी को दे दीजिए। फिर हिमालय ने निर्णय लिया कि मैं अपनी कन्या शिव जी को ही दूंगा, सब कुछ मैंने सोच लिया है। तो आप सारे के सारे जो मंगल पर्वत राज थे और ऋषि मुनि थे, सबने कहा आप दाता हो और शिव जी भिक्षु। अब बताइए, इससे बड़ा आपका सम्मान और क्या हो सकता है। सप्त ऋषियों ने जब ऐसा कहा और विश्वास दिलाया, तो गिरिराज और मैना ने अपनी कन्या भगवान शिव को देने की सोच ली। तो उसके बाद सबने मिलकर शिव जी के पास गए और उनको कहा कि आप सभी देवों को आमंत्रित कीजिए और हिमालय अपनी पुत्री आपको देने के लिए तैयार है। अब आगे लीला जी, कैसे ये कथा बढ़ती है, क्या होता है, तो जरा हमें बताइए।
1: बिल्कुल, एक रोचक कहानी हम लोग सुन रहे हैं।
0: हाँ।
1: और इस रोचक कहानी में पार्वती और शिव के विवाह प्रस्ताव की चर्चा है।
0: हाँ जी, हाँ।
1: अब शिव पुराण के रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 37वां अध्याय शुरू हो रहा है और इस 37वें अध्याय में देखिए क्या होता है।
0: जी।
1: नारद उवाच, तात प्राज्ञ वदेद इदानीं सप्तर्षिषु गतेषु च किम आकर्षीद धर्मगिरी तन्मे कृत्वा कृपां प्रभो। कहते हैं, हे प्राज्ञ, उन सात मुनियों के चले जाने पर हिमालय ने क्या किया। जो सप्तर्षि थे वो तो प्रस्ताव लेकर के गए थे हिमालय के पास, पार्वती के विवाह का प्रस्ताव लेकर के। तो अब वो लोग जब चले गए, तब हिमालय ने क्या किया, कृपा करके कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अब ब्रह्मा जी सुना रहे हैं उस बात को, कहते हैं, गतेषु तेषु मुनिषु सप्तसु अपि मुनीश्वर सारुन्धतीषु हिमवान यद आकर्षीद ब्रवीमि ते तत आमंत्रिय स्वभ्रातृन मेवार्दिन ससुत प्रिय महामना स मुमुदे हिमवान पर्वतेश्वर। कहते हैं ब्रह्मा जी की, हे मुनिवर, अरुंधति सहित उन सप्तर्षियों के चले जाने पर हिमालय ने जो किया वह मैं तुमसे कह रहा हूँ। उसके बाद पुत्रों सहित मेरु आदि अपने भाइयों को आमंत्रित कर वह पर्वतराज हिमालय प्रसन्न हुआ। उसने प्रसन्न होकर अपने पुरोहित गर्गाचार्य से लग्न पत्री लिखवा कर शिव जी के पास उसे भिजवा दिया। देखिए, उस समय लग्न पत्री भी चलती थी और लोग उसे मानते भी थे, आज भी चलती है लेकिन बहुत कम लोग उसे मानते हैं। लेकिन लग्न पत्री आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या होता है, ये वर और वधु जो भी बनने वाले हैं, भविष्य में उनके साथ क्या क्या हो सकता है, और अगर नहीं मिलान होता है तो वो हर समय दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं भोग सकते। इसलिए ये जो है लग्न पत्री आवश्यक होती है कि दाम्पत्य जीवन का वो सुख भोग पाए, ऐसे उचित वर या वधु से विवाह हो सके, इसलिए लग्न पत्री।
0: जैसे लीना जी, आजकल ये देखने को मिल रहा है कि ज्यादातर हमारे समाज में भी आधुनिक युग में कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, मंदिर में मैरिज कर रहे हैं। चलो, मंदिर में तो पंडित सारे जो श्लोक हैं, मंत्र हैं, उनसे ही करवाएगा, या कहीं भी विवाह कर लेते हैं, तो अग्नि को, कहीं भी अग्नि को साक्षी मान के कहीं भी निर्जन स्थान में कर लेते हैं। तो अब ये जो हमारी लग्न पत्रिका है, या पहले से उनके नक्षत्र लग्न सब दिखवाए जाते हैं, तो और वो जो सारा का सब पत्रिका, उनकी जन्म पत्रिकाएं मिलवाई जाती हैं, गुण मिलवाए जाते हैं, वो उनका महत्व फिर क्या, मतलब क्या रह जाता है उन सब के लिए?
1: बिल्कुल महत्व तो नहीं रह जाता है, चाहे माने या नहीं माने। हाँ। अगर हम शास्त्र वचन मानते हैं तो शास्त्र को नेत्र कहा गया है। अगर शास्त्र वचन नहीं मानते हैं तो समझिए हमारे, हम अपनी आंखें ही बंद किए हुए हैं। और आंखें बंद करके जब आप रास्ते पर चलेंगे तो कहाँ गड्ढा है, कहाँ खाई है, कहाँ पर्वत है, कहाँ नदियां है, हम नहीं जान पाएंगे। और हम कहीं भी गिर सकते हैं। इसलिए आज के युग में आप देखेंगे कि दाम्पत्य संबंधों में वह मधुरता नहीं रह गई है जो होनी चाहिए। हाँ। एक ही छत के नीचे पति पत्नी रहते हैं लेकिन वह प्रेम नहीं दिखता, वह संगीत मधुर नहीं दिखता जो दाम्पत्य संबंधों में होना चाहिए।
0: हाँ।
1: और जो कोर्ट मैरिज करें या कोई भी मैरिज करें, लेकिन वो मधुरता तभी होगी जब हम एक दूसरे का मिला के स्वभाव का मिलान करेंगे। वास्तव में तमोगुणी लड़की है और सतोगुणी लड़का है तो फिर मिलान नहीं होगा।
0: हाँ।
1: अगर सतोगुणी लड़की है तमोगुणी लड़का है तब भी मिलान नहीं होगा, क्योंकि तमोगुणी लड़का मांस मदिरा खाएगा, सतोगुणी मांस मदिरा से परहेज करेगी, दोनों में लड़ाई झगड़े होंगे। ठीक उसी तरह लड़के और लड़की दोनों में सेम बातें हैं। तो इसलिए जो लग्न पत्री होती है उसमें गुणों का मिलान होता है।
0: तो अब ये भी देखने को मिल रहा है लीना जी समाज में कि सारे गुण भी मिले, लग्न पत्रिका भी लिखवाई, उसके बाद भी एक साल बाद ही उनका डिवोर्स भी हो गया, उनका तलाक भी हो गया। उसमें ना वर ने सोचा कुछ आगे के बारे में, ना वधु ने सोचा, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने।
1: इसका भी कारण ये है कि विवेक का अभाव रहता है।
0: हाँ।
1: दंपति के बीच में विवेक बहुत आवश्यक है, एक दूसरे पर विश्वास भी आवश्यक है और एक दूसरे के हितों के विषय में सोचकर आगे बढ़ना भी आवश्यक है। आप देखिएगा अधिकांश घरों में क्या होता है, शादी तो हो जाती है, लड़की लड़के के ससुराल को, लड़के के परिवार वालों को स्वीकार भी कर लेती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन लड़की के परिवार वालों को स्वीकार नहीं जब ससुराल करता है तो लड़की पर क्या बीतती है ये कोई नहीं सोचता
0: नहीं।
1: तो लड़की भी चाहती है कि उसके परिवार वालों को भी वही आदर वही सम्मान मिले जो वह अपने ससुराल के में सबको देती है।
0: हाँ।
1: चाहे वो ससुर हो ननद हो, सभी जगह। हाँ। मैं ये नहीं कहूंगी कि सभी लड़कियां ऐसी होती हैं, सभी लड़के ऐसे ही होते हैं, ऐसा नहीं होता है। हाँ। लेकिन प्रायः आप देखिएगा कि बच्चियां जो भी होती हैं जिनकी भी शादी होती है वो स्वीकार कर लेती हैं और जैसे भी हो आदर करती हैं। लेकिन वहीं पर अगर बच्चियां चाहेंगी कि हम अपने मायके जाएं तो 10 बातें बताई जाती हैं कि अभी क्या करोगी, अभी तो आई थी, अभी तो ऐसा हुआ था। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए और ना ही लड़की की तरफ से होना चाहिए कि हर समय मायके मायके मायके करते रहें और मोबाइल फोन से चिपके रहें, तो ये भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमेशा विवेक से काम लेना होता है कि जितना आपको दिया जा रहा है उतना ही आप वापस भी दीजिए, तो दोनों के हृदय का मिलन होगा। हृदय से हृदय का जब तक मिलन नहीं होगा तब तक हृदय से हृदय का स्पंदन नहीं होगा और उसमें पुलकन नहीं उठेगी। जब पुलकन नहीं उठेगी, रोम रोम पुलकित ही नहीं होंगे तो घर में आनंद कैसे होगा। तो इसलिए विवेक आवश्यक है। ठीक है, प्रेम हृदय का, हृदय से प्रेम होना चाहिए। तो जब शिव और पार्वती की हम लोग बातें कर रहे हैं तो शिव और पार्वती में हृदय का हृदय से प्रेम है और ऐसा प्रेम अद्वितीय प्रेम है जो कि हमें कहीं देखने को नहीं मिलता। लेकिन ये ध्यान देना होगा कि पार्वती ही हम लोगों के हृदय में बसी हुई है, शिव ही हम लोगों के हृदय में बसे हुए हैं। तो शिव और पार्वती का जो प्रेम है वो आत्मा और परमात्मा का प्रेम है और ये एक उदाहरण है हम लोगों के लिए कि हम भी पार्वती बत प्रेम करें, हम भी शिव बत प्रेम करें। लेकिन जब प्रेम नहीं मिलता है एक दूसरे से तो फिर हम
0: संबंध नहीं बन पाते,
1: अच्छे संबंध नहीं बना पाते। अब देखिए यहाँ कहते हैं कि लग्न पत्री बना करके

0: शिव जी के पास उसे भिजवा दिया और प्रसन्न चित्त होकर अनेक प्रकार के फल पकवान तथा मिठाइयां भी भिजवाई तथा उन लोगों ने कैलाश में शिव जी के पास जाकर फल आदि सहित वह लग्न पत्रिका दी और शिव जी को तिलक किया। शिव जी ने भी उन सब का यथोचित सम्मान किया। उसके बाद वे हिमालय के पास लौट आए। अब कौन लौट आए? जो सप्त मुनि थे वो लौट आए। और दूसरी बात कि हिमालय ने अपने पुत्रों सहित मेरु आदि अपने भाइयों को आमंत्रित किया था और गर्गाचार्य से जनपत्री लिखवा कर उसे भिजवाया था अपने पुत्रों से, तो फिर वो सब दिए वहाँ जा करके और शिव जी ने उन्हें ग्रहण किया। अब देखिए क्या होता है कि अपने लोगों का शिव जी ने विशेष प्रकार से सम्मान किया, ये बड़ी बात है। यह जानकर हिमालय मन में प्रसन्न हुआ। तब उसने प्रसन्न होकर अनेक देशों में स्थित अपने बंधु जनों को सुखद निमंत्रण भेजा। तब उसने आदर से विवाहोचित अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री का संग्रह करवाया, क्योंकि शादी ब्याह में तो समय लगता ही है और बहुत सारी चीजें देनी होती है। तो उसने संग्रह करवाया, हिमालय ने चावल तथा चूड़ों के पहाड़ लगा दिए, उसी प्रकार गुड़ चीनी नमक के ढेर लगा दिए, दूध दही तथा घी की बावड़ियां बना डाली। देखिए बावड़ी बना डालना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शिव पार्वती का विवाह था तो पूरे संसार से लोग आने वाले थे, तो अब किसी को वो मना तो कर नहीं सकते थे, तो इसलिए उसने बावड़ी बना दी। जौ गेहूं के आटे का संग्रह करा दिया, लड्डुओं पूड़ियों स्वस्तिकों चीनी के ढेर लगा दिए, अमृत तथा ईख के रसों से बावरियां भर गईं, मक्खन आसव तथा अनेक प्रकार के पकवान तथा स्वादयुक्त रसों के ढेर लग गए। अनेक प्रकार के व्यंजन जो देवताओं तथा शिव जी के गणों के लिए बनाए गए थे, बहुमूल्य अनेक प्रकार के शुद्ध वस्त्र, अनेक प्रकार के मणि रत्न सोने चांदी से बने हुए आभूषण तथा पात्रों को विधि पूर्वक संग्रह करके शुभ मुहूर्त में हिमालय ने मंगलाचार आरंभ कर दिया और पर्वत की स्त्रियां पार्वती का श्रृंगार करने लगी। देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें की गई हैं और इसमें अतिशयोक्ति हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि युग पुरुष का युग स्त्री से विवाह हुआ था, काल पुरुष का काल स्त्री से विवाह हुआ था, तो होगा तो ऐसा ही। विवाह कोई साधारण मनुष्य का तो था नहीं, साधारण नर और नारी का था नहीं, ये प्रकृति का पुरुष के साथ संयोग था। और प्रकृति यानी संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण जगत, संपूर्ण माया के साथ, सौंदर्य के साथ विराजमान थी और उन माया के मायापति उनसे मिलन के लिए आ रहे थे। उनका विवाह होने वाला था, प्रकृति का पुरुष से परमेश्वर से विवाह होने वाला था, तो ऐसा अचंभा, ऐसा अद्वितीय तो होना ही था। कहते हैं कि मंगलम कर्तुम आरभे गिरिर्मंगल कृद्दिने संस्कारम कार्यामासु पार्वत्या पर्वत स्त्रियः तामंगलम मुदा चक्रुर्भूषिता भूषणैः स्वयं पुरद्विज स्त्रियो हृष्टा लोकाचारम प्रचक्रिरे सोत्सवम विविधम तत्र सुमंगलपुरः सरम हिमालयोऽपि हृष्टात्मा कृत्वाचारम सुमंगलम। कहते हैं मंगल ही मंगल था हर तरफ, क्योंकि मंगल पुरुष का मंगल स्त्री से विवाह हो रहा था, तो फिर मंगल ही मंगल क्यों नहीं होता। अब देखिए कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में हिमालय ने मंगलाचार आरंभ कर दिया और पर्वत की स्त्रियां पार्वती का श्रृंगार करने लगी। वे स्वयं अनेक आभूषणों से सुशोभित होकर मंगलाचार करने लगी और ब्राह्मणों की स्त्रियां भी उस लोकाचार में सम्मिलित हुई। वहां मंगलाचार के साथ हिमालय भी लोकाचार करने लगे। बंधुओं के आने से वह प्रसन्न हुआ। इसी बीच उसने दूसरे बंधु बांधवों को भी निमंत्रित किया। वे सब अपने स्त्री पुत्र नौकर चाकरों के साथ आए। हे देवर्षि, उन पहाड़ों के आने की चर्चा आदर से सुनो, मैं संक्षेप से शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कह रहा हूँ। देखिए अब पहाड़ों की चर्चा है। कवि जो है कौन है? लेखक इसके वेद व्यास है। वेद व्यास जो व्यास यानी कि व्यापक और व्यापक रूप से वो वर्णन कर रहे हैं। और पुराण का वर्णन कब किया गया है वेद व्यास के द्वारा? जब वो महाभारत लिख करके बहुत ज्यादा उद्विग्न हो गए थे, क्योंकि महाभारत में युद्ध की चर्चा थी और रक्तपात की चर्चा थी, हत्या मारकाट की चर्चा थी, तो वे बड़े उद्विग्न हो गए थे। तो उन उद्विग्न वेद व्यास को नारद जी ने कहा कि आप भक्ति की गंगा बहाइए तो आपको आनंद आएगा।
1: तो भक्ति की गंगा बहाने में भक्त को भी उतना ही आनंद आता है जितना कि पाठकों को श्रोताओं को आनंद आता है। जैसे कि हमको आपको आनंद आ रहा है भक्ति रस में अवगाहन करने पर, अब श्रोता गण सुनेंगे तो उनको भी आनंद आएगा। हम भाव विभोर होकर के इसे पढ़ रहे हैं, भाव विभोर होकर के इसे सुन भी रहे हैं और हमें लग रहा है कि वास्तव में शिव पुराण है तो क्या।
0: लीना जी, यह जो जिस प्रकार से यहाँ वर्णन किया जा रहा है पार्वती और शिव के विवाह का और तैयारियों का, तो ऐसा लग रहा है कि हम बैठे हैं और सामने ये सारा कुछ हो रहा है, सारा विवाह का वर्णन हो रहा है, विवाह की तैयारियाँ हो रही हैं और सारे सीन ऐसा लग रहा है कि हम लोग भी देख रहे हैं, हम भी शामिल हो रहे हैं। तो वो जो आनंद हम महसूस कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगी अपने श्रोताओं से कि हर व्यक्ति, हर श्रोता उस आनंद को महसूस करे, क्योंकि यह
1: अपूर्व दृश्य है,
0: अपूर्व दृश्य,
1: अभूतपूर्व दृश्य है, रोमांचक दृश्य है।
0: जी जी,
1: तो इस दृश्य का वर्णन वेदव्यास जी किस तरह से भाव विभोर होकर कर रहे हैं यह हमें सुनना चाहिए। अब देखिए पर्वतों के विषय में वो वर्णन कर रहे हैं। हम लोग कितने पर्वत का नाम जानते हैं, हिमालय है, अरावली है, सतपुरा है, सतपुरा के घने जंगल, अरावली के पर्वत है, सतपुरा के घने जंगल,
0: देखा तो सबने एक दो कोई
1: है, आल्प्स है,
0: नाम है,
1: तो बहुत सारे पर्वत
0: बहुत सारे
1: अगर हम नाम लेना चाहें तो बस गिन करके 10-15 पर्वत के नाम लेंगे। अब यहाँ वेदव्यास जी कितने पर्वतों का नाम ले रहे हैं और हर पर्वत एक से एक बढ़कर, जिनके नाम हम जानते भी नहीं है, लेकिन उस समय ये पर्वत तो अवश्य होंगे, तभी उन्होंने नाम लिया है। अब देखते हैं किन किन पर्वतों का इन्होंने नाम लिया है। वो कहते हैं वेदव्यास जी कि आजगमु स स्त्रियो हृष्टा स सुता स परिच्छदा तदेव शृणु देवर से गिरिया गमन आद्रिता वर्णयामी समासेन शिव प्रीति विवृधय देवालय गृढ़ ही दिव्य रूप धरो महान। अब वो देवालय पर्वत के विषय में बताते हैं। हिमालय तो है ही, अब देवालय पर्वत है। कहते हैं देवालय नाम के महान पर्वत दिव्य रूप धारण कर, अनेक रत्नों को धारण कर अपने समाज तथा परिवार के साथ आए। वे अपने साथ अनेक मणि तथा रत्न लेकर पहुंचे। अब देवालय पर्वत का वर्णन करने के बाद वो किसका वर्णन कर रहे हैं, मंदराचल, जिनका नाम हमने हमेशा सुना है मंदराचल। वो कहते हैं कि सुवेशा अलंकृता श्रीमान जगाम च हिमालयम नाना रत्न परिभ्राजत समाज सपरिच्छद नाना मणि महारत्न सारन आदाय यत्नत। सुवेशालंकृत श्रीमान जगाम च हिमालयम मंदर सर्वसौभाड्य स नारी तनयो गिरो। अब वो कहते हैं कि श्रीमान मंदराचल सुंदर वेश धारण कर अनेक रत्नों को धारण कर अपने समाज तथा परिवार के साथ आए। वे अपने साथ अनेक मणि तथा रत्न लेकर पहुंचे। श्रीमान मंदराचल सुंदर वेश धारण कर स्त्री पुरुष सहित हिमालय के घर पधारे। अब आम व्यक्ति में जिज्ञासा हो सकती है कि ये पर्वत थे तो आए कैसे, सुंदर वेश धारण कर कैसे आए, तो ये जिज्ञासा भी यही शांत हो जानी चाहिए कि वास्तव में ये पर्वत, ये नदियाँ, ये सभी आत्मावान थे, वो जो चाहे रूप धारण कर सकते थे। अब जैसे अगस्त मुनि की पत्नी है लोपा मुद्रा, आज वो नदी के रूप में है दक्षिण भारत में, तो नदी क्यों बनी, क्योंकि उस जगह पानी नहीं था, कहीं भी पानी नहीं था, और अगस्त मुनि बड़े परोपकारी थे, मुनि थे, ऋषि थे, बहुत परोपकारी थे, उन्होंने अपनी पत्नी को नदी बना दिया। गंगा नदी बन गई, यमुना नदी बन गई, कोशी नदी बन गई।
0: आज भी लीना जी इनको माता की गंगा माता, यमुना मैया, माँ कहकर ही पुकारते हैं इनको।
1: जी, जी।
0: तो और ये जब हमारा महाभारत हम देखते हैं तो भीष्म अपनी माँ गंगा को सामने ही जब प्रार्थना करते थे वो आती थी,
1: बिल्कुल,
0: तो साक्षात अभी भी अगर कोई बिल्कुल सात्विक मन से माँ गंगा को पुकारे, माँ यमुना को पुकारे, वो अपना उसी रूप में दर्शन देती हैं। तो यह सत्य ही है कि पर्वत राज भी उस समय अपने अपने रूप में सब पधारे होंगे,
1: पधारे
0: जी।
1: तो सबसे पहले उन्होंने देवालय का वर्णन किया, फिर मंदराचल का वर्णन किया। अब कहते हैं कि दिव्यात्मा तथा बुद्धि वाले, उदार बुद्धि वाले, अस्ताचल भी एक पर्वत है, देवालय मंदराचल, अस्ताचल अनेक प्रकार के उत्तम उपहारों को अपने साथ लेकर वहाँ गए। अत्यंत शोभा वाले उदयाचल, देखिए हमें नाम भी याद हो रहा है कि उदयाचल, अस्ताचल, देवालय, मंदराचल, तो प्रसन्नता पूर्वक उत्तम प्रकार के रत्नों तथा मणियों को लेकर वहाँ आए। महान सुखी उत्तम परिवार वाले मलय गिरिराज भी आदर पूर्वक आए। मलय पर्वत का तो नाम सभी जानते हैं, क्योंकि वहाँ से मलयालिन यानी कि मलय पर्वत से जो हवा, सुगंधित हवा बहती है, वो कहा जाता है कि मलय पर्वत से आई होगी। तो सुगंधित, क्योंकि वहाँ चंदन के वृक्ष हैं और चंदन के वृक्षों से टकरा करके जब हवा चलती है तो वो क्या होता है, सुगंधित हो जाता है। तो कहते हैं मलय पर्वत भी आए, भली भांति सज धज कर बहुत सी सेना को लेकर स्त्री सहित प्रसन्न चित दर्दुन नामक पर्वत शीघ्र वहाँ आए। मंदरा चलाए, अस्ता चलाए, उदया चलाए, देवालय आए, मलय पर्वत आए, दर्दुर आए। फिर हे तात, अनेक प्रकार से सुसज्जित प्रसन्नचित विशत पर्वत भी सपरिवार हिमालय के घर आए। भाग्यवान गंधमादन पर्वत भी स्त्री पुत्रों सहित प्रेम से हिमालय के घर आए। कहते हैं महेंद्र पर्वत श्रेष्ठ आजगाम हिमालयम सगण ससुत स्त्री को बहु शोभा समन्वित परियात्रो ही हृष्टात्मा मणि रत्ना करैर युतः सगण सपरिवार आययो हिम भूधरम। क्रौंच पर्वतराजो ही महाबल परिच्छद आजगाम गिरिश्रेष्ठ समुपायन आदृत। अब देखिए अनेक प्रकार की संपत्ति को लेकर करवीर पर्वत भी वहां पहुंचे और पर्वतराज महेंद्र भी हिमालय के घर निमंत्रण में पधारे। अपनी स्त्री पुत्र तथा सेवकों को तथा मणिरत्नों को साथ लेकर प्रसन्नचित पारयात्र भी आए। पर्वतराज क्रौंच भी अपने परिवार, सेवक तथा सेना के साथ हिमालय के घर पहुंचे। पुरुषोत्तम नामक शैल भी अनेक प्रकार के उपहारों को लेकर अपने समाज सहित आदर पूर्वक हिमालय के द्वार पर आए। नील पर्वत आनंद के साथ पुत्र, पुत्री, स्त्री तथा बहुत सा धन लेकर हिमालय के घर आए। त्रिकूट, चित्रकूट, वेंकट, श्रीगिरी, गोकामुख, गोकामुख कहा गया भारतवर्ष में स्थित ये एक विशेष पर्वत है, तो गोकामुख तथा नारद ये पर्वत भी हिमालय के घर पहुंच गए। पर्वतराज विंध्याचल भी स्त्री पुत्रों को साथ लेकर तथा अनेक प्रकार की उपहार की वस्तुओं को लेकर प्रसन्न होकर वहां आए। कालंजर नामक महापर्वत अत्यंत प्रसन्न होकर अपने अनेक गणों के साथ हिमालय के घर आए। गिरिराज कैलाश भी, कैलाश जहाँ शिव जी वास करते हैं, क्योंकि शिव जी तो उस समय हिमालय पर वास कर रहे थे, तो गिरिराज कैलाश भी अत्यंत प्रसन्न होकर सबके ऊपर कृपा करते हुए वहाँ आए। ये सभी उन पर्वतों के अधिष्ठात्री देवता थे। हे नारद, दूसरे द्वीपों में भी जो जो पर्वत थे और इनके अतिरिक्त जो भारतवर्ष में पर्वत थे, वे सभी हिमालय के घर आए। अभी तो पर्वतों का वर्णन चल रहा है और कितने पर्वतों का वर्णन उन्होंने कर दिया। ये सारे पर्वत आए और जिन पर्वतों का वर्णन नहीं किया है वो भी हिमालय के घर आए। कैसे? कहते हैं कि दूसरे द्वीपों में भी जो जो पर्वत थे और इनके अतिरिक्त जो भारतवर्ष में पर्वत थे, वे सभी हिमालय के घर आए। हे मुनि, हिमालय द्वारा निमंत्रित सभी पर्वत प्रसन्नता पूर्वक शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए वहाँ आए। अब यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगी कि एक बार मैं गई थी यहाँ केदारनाथ। केदारनाथ से लौटते हुए एक जगह पड़ी जहाँ पर शिव पार्वती का विवाह हुआ था। अच्छा। सतयुग में विवाह हुआ था उनका, लेकिन आज तक वहाँ अग्नि जल रही है, ऐसा उन लोगों का कहना है। अच्छा। और अग्नि जल रही थी, बहुत बड़ा यज्ञ कुंड था और उसमें जो भी जाते हैं एक लकड़ी डाल करके आते हैं, तो हम लोगों ने भी डाला एक एक लकड़ी और वो सच में अग्नि वहाँ जल ही रही है। क्या सच है नहीं है ये तो जो ज्योतिषी हैं वो सब बताएंगे, लेकिन चूंकि हम लोग भक्त भक्ति करते हैं,
2: देख रहे हैं वो
1: तो है। जो देख रहे हैं वही सत्य है। हम ऐसा सोचते हैं कि जो शंकराचार्य आदि ने वर्णन किया है वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि शंकराचार्य के विषय में कहा गया है कि जब सारे मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गए थे और पता भी नहीं था, और ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म का प्रभाव अपने देश में था और वैदिक धर्म बिल्कुल ही समाप्त प्राय सा हो गया था, तो उस समय शंकराचार्य ने सब कुछ पुनर्जीवित किया, पुनरोद्धार किया। उसी पुनरोद्धार प्रकरण में उन्होंने देखा जहाँ महिष मर्दिनी ने महिषासुर का वध किया था, वो जगह भी उन्होंने देखी अपने ज्ञान चक्षु से, और फिर उसका भी पुनरोद्धार किया। तो केदारनाथ से नीचे आने पर बहुत सारे ऐसे मंदिर आपको मिल जाएंगे जिनका शंकराचार्य जी ने उद्धार किया है, आदि गुरु शंकराचार्य ने। और उसी में ये मंदिर भी पड़ा था रास्ते में, जहाँ पर हम लोगों ने भी यज्ञ किया।
2: ये भी हमारे श्रोताओं को ज्ञान मिल गया। तो लीना जी, क्योंकि एपिसोड्स को समाप्त होने का समय हो चला है, तो दोस्तों हम सब अपनी तरफ से और आपकी तरफ से मैं लीना जी का धन्यवाद करती हूँ। तो लीना जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद,
1: धन्यवाद
2: कि आपने इतना अमूल्य रत्नों से, अमूल्य ज्ञान से हम सबको कृतार्थ किया। अब मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, क्योंकि अगले एपिसोड में पुनः हम लीना जी के साथ यहीं पर मिलेंगे, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइव।

Radio Mana Vishnu 107.8 FM पर ढेर सारी मस्ती, खूब सारा फन, क्योंकि ये है फरीदाबाद का रेडियो नंबर 1।

0: रेडियो मानव कृष्ण 107.8 FM पर। नमस्कार, मैं हूं प्रगा आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मबोध। और हर बार की तरह हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। चलिए इनसे इनका हाल चाल जानते हैं। गुड मॉर्निंग।
1: ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
2: ओम शांति। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे।
0: आप भी अपनी शुभकामनाओं के लिए हमें मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट करें। नंबर है 8010781078। हर हफ्ते हम चले आते हैं गीता के ज्ञान को लेकर के, जहां हम बहुत सारी बातें आप लोगों से करते हैं। गीता के ज्ञान में इतना सब कुछ है ना कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कई लोग जिन्हें हम देखते हैं वो ये कहते हैं कि गीता के ज्ञान ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो चलिए अब अपनी जिंदगी को बदलते हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, इतने बिजी हैं कि क्या बताएं। उनसे कुछ पूछो तो यही कि यार हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम कैसे कुछ नया करें। तो रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हमने शुरू किया गीता का ज्ञान प्रोग्राम है आत्मबोध, और इसमें आपको गीता के ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और इन सब के जानकारी के लिए हमारे साथ बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी होती हैं। दूसरे अध्याय पर हैं हम लोग, जिसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में काफी सारी डिटेल में बातें बताई बीके प्रिया जी और ज्योति जी ने, लेकिन इसमें एक और है लेसन जिसका नाम है आप आत्मा हैं। आत्मा के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम ज्योति जी और प्रिया जी से जानते हैं और बढ़ते हैं ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी, ये जो है इसमें लिखा है आप आत्मा है, ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह से, मतलब किस तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है, आप अपने तरीके से समझाएं सभी लिसनर्स को।
2: जैसा कि दूसरा अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, और अर्जुन क्योंकि विषाद में है तो सबसे पहले खुद का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को भूल जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है वो पूरा ही अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पर ही फोकस कर रहा है कि हम कौन है और हम क्या बन करके चल रहे हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा भी कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूये अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यामाने शरीरे। अर्थात है कि यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है, बल्कि यह अजन्मी नित्य सनातन और पुरातन है। मनुष्य शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अजर अमर अविनाशी है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है, और प्रथम अध्याय में भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। और उसका जो स्वधर्म है, उसका स्वधर्म क्या है, वो श्री कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात हम सब आत्माओं को बता रहे हैं कि किसी भी, अगर हम स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात आत्मिक धर्म में टिक जाएं, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। तो वहां उनको वो क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं आता। तो इसमें ये बताया गया कि स्वतंत्र आत्मा किसी भी तरह के बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो फ्री है, वो अपने डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि वो राजा है और ये शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं वो उसकी प्रजा है, उससे उसे कार्य करना है और उसके वशीभूत ना हो जाए। आज हम क्या हो गए हैं, बाहर की जगत की बात बाद में करें, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं।
0: बिल्कुल,
2: हमारी ही इंद्रियां, हमारी आंख जो चीज देखती है, जो चीज पसंद करती है, बस मन वही भाग रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो हमारे कान जिन बातों को सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कहीं प्रवचन होंगे, या कोई आपकी गली के अंदर भी आप देखें कि कोई कहीं कथा हो रही है, तो लोग पूछेंगे कि क्या वहां से इनविटेशन आया है, बुलाया गया है, तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते हैं। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे पहुंचे चले जाते
0: हैं
2: बिन बुलाए मेहमान, जबकि हर कोई चाहता नहीं है कि कोई वो चीजें सुने। तो माना कहीं ना कहीं हमारी कान की इंद्रियों को रस मिलने लगा है उस नेगेटिव बातों में। तो हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं और मन भी उसी में रमने लगा है। तो यहाँ पर इस अध्याय में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। आत्मा इस शरीर में राजा है और आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन के ये तीन तो शक्तियां हैं, लेकिन आत्मा अपने स्वधर्म कौन कौन से गुण हैं, उसके मूलभूत गुण अगर कहें, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे डे बाय डे में आत्मा तमोगुणी बन गई है। तो सतोगुणी क्यों कहा गया, क्योंकि आत्मा के सात गुण हैं। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में लें तो कहा जाता है KP² LHBP अर्थात के फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, पी फॉर प्योरिटी, जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर पी फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, पी फॉर पीस, एल फॉर लव, एच फॉर हैप्पीनेस, बी फॉर ब्लिस और लास्ट पी पावर। तो ये सात गुण आत्मा में निहित है। इन जब सातों गुणों को आत्मा महसूस करती है, उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा सतोगुणी कहलाती है। अब हम सब देखें अगर तो मनुष्य के मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्या, कहीं ना कहीं इसी धुरी में जाकर के टिक जाते हैं। आज इस ज्ञान की भी अज्ञानता हो गई है। ज्ञान को हम सब सोचते हैं शायद किताबी ज्ञान, लेकिन अपने प्रकृति का ज्ञान, खुद का ज्ञान होना, माना वही संपूर्ण ज्ञान है, खुद के बारे में जानना। आज हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता है,
3: खुद के मन में क्या है
2: वो नहीं पता है ना, उससे हम दूर हैं। तो मन की अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान। प्योरिटी अर्थात पवित्रता, जो पवित्रता हमारे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना ना आए, उसको कहा गया प्योरिटी। और शांति, शांति की अगर बात करते हैं तो शांति जो है वो क्या चीज है, शांति के लिए लोग सोचते हैं शायद चुप बैठ जाना, है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक राज्य के अंदर ऐलान किया गया कि चित्र बनाना है शांति के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें से दो चित्र डिसाइड किए गए, दो चित्र चुनाव करके आए। एक चित्र था जिसके अंदर बहुत सारी प्रकृति थी, ग्रीनरी थी, और एक चित्र था, अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं शांति के रूप में, अगर आपको कहा जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
3: मैं अगर बोलूं तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, यही होता है।
2: जी बिल्कुल, उन्होंने भी एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति, नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो फिर से कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं, क्या वो नेचर वाला या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
3: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है और वो शांति से अपने बच्चों को खिला।
2: तो यही चीज जो है वहाँ पे उसी चित्र को ही वहाँ पर भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया, और उस चित्र में से यही, तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियां आती है तब भी हम स्टेबल रहे, उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है, जबकि प्रेम कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, माना हर एक आत्मा से, हर एक प्रकृति की जीवों से, पंछियों से, हम पेड़ पौधों से समान भाव से प्यार करें, उसको कहा गया प्रेम। फिर आती है बात सुख की, तो जीवन में जब शांति आती है, प्रेम आता है, तो सुख की अनुभूति होने लग जाती है। और फिर लास्ट आनंद है, और आनंद का कोई विपरीत अर्थ शब्द नहीं है, आनंद अपने आप में ही बहुत परफेक्शन के साथ है, उसको ब्लिस कहा गया। और इसका कोई विलोम शब्द नहीं, क्योंकि पवित्रता का फिर भी अपवित्रता है, शांति का शांति है, प्रेम का क्रोध है, लेकिन आनंद माना जो परमानंद की अनुभूति कराए। और लास्ट है, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में परफेक्ट हो जाती है। और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं। ये मैं और मेरा, मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम अपनी परफेक्शन में आ जाएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे।
3: बिल्कुल। और ये जितनी भी सात चीजें आपने बताई हैं, इसको कहीं बाहर से कमाना नहीं है, ये किसी से अर्जित नहीं करना है, ये सारी अपने अंदर है, बस इसको जानना है, इसको समझना है, बाकी भगवान ने ये इन बिल्ड हमारे लिए रखी है। बिल्कुल सही कहा, हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। और वही आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर आप खुद को जान लेते हैं, बस वही एक आत्मा का पाठ है, वही जो है पूरा परफेक्ट है आप खुद में। बहुत सही बात बोली। गीता के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और अध्याय दो है, नाम है ज्ञान योग, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक आत्मा है के बारे में। ज्योति जी ने बहुत खूबसूरती से बताया, और अब हम प्रिया जी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में आगे क्या है। प्रिया जी बताइए।
4: आगे जैसा कि हम देखते हैं कि अर्जुन को वो बार बार याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा कि तुम्हें युद्ध करना ही है, जिसके लिए वो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्थात पार्थ, अर्थात जो उनका स्टूडेंट अर्थात अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम चाहे मरकर के स्वर्ग पहुंचो या फिर जीवित रहकर युद्ध करके इस पूरी सृष्टि पर जीत प्राप्त कर सुख को भोगो, तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट यही है कि तुम युद्ध करो। तो क्योंकि सिंपल कुछ किए बिना जाना और कुछ करके जाना, उसमें बहुत फर्क होता है। तो यहाँ उनको वो बार बार याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध करना है, और युद्ध करने में हम कॉन्शियस ये नहीं हुए कि कौन जीतेगा या हारेगा, हमें कॉन्शियस होना है कि हमारी फाइट अच्छे से हो। तो फिर बात यहाँ आती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि क्या हमें फिजिकल फाइट के लिए परमात्मा प्रेर रहा है, हमें वो गाइडलाइंस दे रहा है कि शुड वी गेट द वेपन्स, कि हमें हथियार उठाने हैं। पर यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे गुणों के हथियारों की बात करता है कि जहाँ मेरा मेंटल फाइट है, जहाँ द्वंद है, जहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, जहाँ डिलेमा स्टार्ट होते हैं, वहाँ मैं अपने फोकस करूं इंटरनल शक्तियों पर, जैसा कि ज्योति जी ने बताया कि ये सब चीजें मेरे पास, मुझे परमात्मा से आपने कहा इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो उस पर अगर मैं फोकस करता हूं तो मेरी ये फाइट मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है
3: जी।
4: और फाइट मुझे करनी ही है, बिना फाइट किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इसी योग को जो आपने कहा ज्ञान योग, अध्याय का नाम है, तो यहाँ पर परमात्मा हमको संपूर्ण ज्ञान का परिभाषा, डेफिनेशन, वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। मीन्स अगर मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, तो मैं अगर पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान भी अर्जित कर लेता हूँ तो भी मैं इनकम्प्लीट हूँ। और दैट्स वाई देखा ये गया है कि जब हम हायर लेवल पर किसी बुलंदी पर किसी को देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है। और वो क्या रह गया है कि खुद को जाना और खुद के बाद खुदा को पाना। ये चीज जो हमारी जिंदगी में रह जाती है, उसी के लिए हमारे को परमात्मा या कृष्ण रूप में हमारे को बता रहे हैं। उसके बाद वो हमारे को याद दिलाते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि संस्कार, जैसे कि ज्योति जी ने

0: कि उसी के बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहां हम सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान की बातें सोचते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, यानी वो व्यक्ति कितना ही टॉक्सिक थॉट्स में भरा हुआ होगा तो इसीलिए उसे टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आता है संस्कार। संस्कार एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है, जैसे कि प्लेन्स में भी एक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सब कुछ, उसी प्रकार से आत्मा में अपने आप एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे हैं सबका हिसाब करने पर, नहीं, ये इंटरनली ही हम सोल्स के साथ ही फीड है, बिल्ट है, कि जो हमारा बुद्धि है, अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है, वो धर्मराज का फॉर्म है, और जो हमारे संस्कार्स हैं, जो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट है, वो चित्रगुप्त है। और चित्रगुप्त को अगर हम उल्टा कर देते हैं दोनों शब्दों को तो वो बनता है गुप्त चित्र, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गुप्त रीति हर चीज सेकेंड बाय सेकेंड रिकॉर्ड हो रही है
1: जी।
0: और जब एंड ऑफ द डे यानी जब मृत्यु आती है तो व्यक्ति को ऊपर जाके नहीं, उस लास्ट मोमेंट्स में ही बुद्धि और संस्कार का, जो यहाँ पर धर्मराज और जो मैंने कहा चित्रगुप्त का फॉर्म है, वही वहाँ अंदर ही अंदर सब कुछ डिसाइड होता है और फिर उसको नेक्स्ट बर्थ जो है मिलता है। और कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति इसीलिए डेफ डम्ब और ब्लाइंड हो जाता है, उसको बाहर के दुनिया से कट जाता है। उसके बाद उन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे आप कर्म करते हो तो कर्म करना है तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करना है। और उन्होंने विशेष ये कहा कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संलुप्ते दुतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं तो उस ग्लास की समुद्र के आगे खड़े होने पर कोई वैल्यू नहीं रहती।
1: बिल्कुल।
0: तो उसी प्रकार से परमात्मा को अगर मैंने पा लिया है तो वो शास्त्रों का वहां पर वैल्यू उस ग्लास के लेवल पे ही होता है कि जब शास्त्रों का ज्ञाता सागर मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर परमात्मा अर्जुन को ये याद दिलाते हैं, जैसे कहा कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा क्योंकि क्षेत्र में आना, कुरुक्षेत्र जैसे बताया कि कर्म क्षेत्र, आप चाहे किचन में हैं या बेड पे सो रहे हैं, देन टू आप कुछ तो कर ही रहे हैं। अगर आप सिर्फ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो भले वो एक्शंस नहीं है, कर्म नहीं है, पर वही कर्म को कराने का एक हिस्सा जरूर है। तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं। तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है। इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्माते संगोऽस्त्व अकर्मणे, अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है, एफर्ट्स, वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि हम डर चुके होते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम फुल्ली उसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से भी, शेकिंग रहने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। और फिर लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कर्म जो करना है वो एकदम ऐसे, जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कहा कि ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को कहा कि कर्म कैसे, मतलब उन्होंने पूछा कि कर्म कैसे करें, तो उन्होंने कहा कल जब आना तो कटहल लाना, चाकू लाना और तेल लेके आना। व्यक्ति नहीं समझ पाया कि क्यों, तो फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचा तो बोला कि अब तुम कटहल को काटो। तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है, वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता, अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं कि कर्म हमको

0: अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोल दें, लगा लें, तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
1: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई समझाने के लिए, बहुत मजा भी आया और काफी कुछ हमें समझ में आया। और साथ ही हम तो प्रिया जी और ज्योति जी से जुड़े ही हैं, साथ ही आपसे भी जुड़े हैं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं ज्योति जी या प्रिया जी से, हमारा नंबर है 8010781078। गीता का ज्ञान चल रहा है, अध्याय 2 है जिसका नाम है ज्ञान योग। हम एक आत्मा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और काफी सारी नॉलेज, काफी अच्छी बातें हमें ज्योति जी और प्रिया जी से जानने को मिल रही है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस वक्त अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातें हैं, वो हम ज्योति जी से जानते हैं।
2: कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम तैव कवता मनीषिण जन्म बंध विनर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात इसका भावार्थ कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनके बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर, मना कर्मों से अतीत होकर, कर्म की चिंता ना करके निर्विकार ही परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ यह है कि कर्मों के फल की आसक्ति स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। इसमें दूसरा जो श्लोक कहा गया उसमें स्थित प्रगस्य का शब्द का यूज किया गया है। तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, परमात्मा से कहते हैं कि हे केशव ये बताओ कि स्थिर प्रग, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण है, किसको कहेंगे हम जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो एकरस स्थिति वाले हैं, जिनकी कर्मातीत अवस्था पहुंच गई है जिनकी, तो उनकी क्या क्या विचारधारा होगी। तो वहां श्री भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, सभी कामनाओं का त्याग कर, जो व्यक्ति त्याग कर देता है और आत्मा से माना आत्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञा है। तो वहां पे माना, क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं है, जहाँ कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं तो वहाँ ना तो, और मनुष्य जो स्थित प्रग होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी पदार्थ की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत, अर्थात मन में लगाएं आइस फैक्ट्री, मुख में लगाएं शुगर फैक्ट्री अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा, माना संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती हैं, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है उसका किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम शरीर से जुड़े हुए होते हैं तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है तो हमारी खुद की स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से ली, आपने पहनी भी, लेकिन वो आपको कंफर्ट नहीं हो रही है तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी है। इसी विधि से जब हम कोई चीज आकर्षण में तो आकर्षित हो जाते हैं, देखो देख रही है चीजें उसमें आकर्षित हो, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है, तो वो हमारे दुख का कारण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मन की स्थिति, एक बार एक व्यापारी थे और उनको, हीरो के व्यापारी थे, तो उनके एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप जो है एक बहुत अमूल्य हीरा खो गया है। तो बैठे थे अपने सभी, कई साथ में साथी बैठे थे, वो दो मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है। उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए, अगर शायद हम वहां हों प्रैक्टिकली सोच के देखें तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला देंगे, हम फटाफट किया अरे इतना अमूल्य हीरा खो गया कहाँ खो गया। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहां पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी, व्यापारी से भी जब पूछा तो वहां पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं हिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थिर प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं, वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है। आज कई चीजों का भय लोगों को सता रहा है, अंधकार का भय है, चीजों को खोने का भय है, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों से व्यक्ति भयभीत है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। और फिर क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी मन को स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो अपने आप में थोड़े समय के लिए आया हुआ कहा जाता है पागलपन है, जो बहुत कुछ विनाश कर देता है। तो यहाँ पर कहा भी गया, एक बार एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी थे और उनका एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र थे, उस शास्त्रार्थ के अंदर उनकी ही पत्नी निर्णायक के रूप में बैठी थी मंडन मिश्र की, और उस चीज में बहुत देर से शास्त्रार्थ चल रहा था और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि जीता कौन है। तो कुछ समय के लिए उनकी पत्नी को वहां से उठ के जाना पड़ा और उन्होंने उनके गले में, दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी, और फूलों की माला डाली तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक ये फूल, ये जो मालाएं हैं, ये मेरी जगह लेकर के कार्य करेंगे। तो जब वो आई काफी देर के बाद और पूरी शास्त्रार्थ कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज, फिर उन्होंने निर्णय भी दिया, उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य विजयी हैं। तो सबने पूछा उसकी, आपने तो इस बीच में आप थे भी नहीं, तो आपने कैसे ये निर्णय ले लिया? तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं उनको क्रोध आया है और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया, उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध कभी भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो उन्होंने जिस चीज की बात कही कि उन्होंने जैसा निर्णय दिया कि जो व्यक्ति कोई भी चीज का ज्ञान रखता है, मन की स्थिरता रखता है, तो उसके अंदर किसी भी राग भय या क्रोध से वो मुक्त होता है, उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे।
1: बिल्कुल,
2: इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे, जब मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा जिस कार्य को करना चाहूं उस समय ही मैं एक्टिव मोड में हूं, अदरवाइज मैं अपनी शांत स्थिति में, अपनी संपूर्ण स्थिति में अपने अंदर आनंद का अनुभव करें। और यही चीजें आप देखते जाएंगे, जो जो लोग ज्ञान को समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां देखी भी हैं लेकिन बहुत बखूबी उनको निभाया है, तो वो धीरे धीरे बहुत काम डाउन हो जाते हैं और उनकी स्थिति एकदम शांत हो जाती है। और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए और स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए, अर्थात अपने मन को स्थिर रखने के लिए, इन सारी चीजों से हमें पहले जरूरत है खुद खुद को रियलाइज करने की।
1: जी, और वही ना, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो उससे पहले जो आप हैं
2: जी,
1: आपको बदलना पड़ेगा
2: जी।
1: आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा, आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी आप उस आगे बढ़ते हुए ज्ञान को समझ पाएंगे, आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली है, और अध्याय दूसरा है ज्ञान योग है, इसमें बहुत सारे श्लोक और उसके जो भावार्थ प्रिया जी और ज्योति जी ने बताए हैं ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हम तक पहुंचाए। और ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, अब आप जल्दी से इसके आगे के बारे में बताएं।
2: जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि जब हम किसी एक चीज को बार बार फोकस्ड करते हैं तो उसी आधार पे हमारी बुद्धि वैसे ही चलने लगती है। तो अगला जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नावम इवाम भस्सी माना। अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नाव तैरती है और नाव के प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है अगर बहुत तेज वायु चल रही है, तो इसी प्रकार जब विचारशील मन व्यक्ति होता है तो उसकी इंद्रियों पर, मतलब जो इंद्रियां हैं, अगर वो किसी एक चीज पर फोकस्ड हो गई है, बार बार उसी चीज को देख रही है, वही इंद्री एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसको कहा जाएगा कि वो स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि यहाँ इस पूरे ही इसमें आत्मा का और स्थिति की ही बात की जा रही है। माना कहने का अभिप्राय अगर हम इसको देखें, सिंपल वे में देखें, तो जो राजा की पोजीशन है, वो राजा की पोजीशन एक है कि आपने पहन लिया, मुकुट पहन लिया, ड्रेस पहन ली और वो सारी चीजें आप रेडी होकर के सिंहासन पर बैठ गए, वो राजा नहीं है। राजा माना जिसके अंदर वो राजापन की क्वालिटीज हो, जो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वो पोशाक ही पहननी है, जरूरी नहीं है हमें सर पर ताज ही लेना है, लेकिन वो राजा वाली जो डिसीजन वाली क्वालिटीज है वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज वही राजा जो आत्मा इस शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी हैं, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली। इसीलिए आज हम जो राज्य जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं। और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस्ड करें। कहा जाता है, इसमें बहुत अच्छी एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज 3 बजे से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, पूरी रात वो जागते रहते हैं, 3 बजे से उनकी नींद का समय शुरू होता है। और जो ज्ञानी होगा, आत्म संयमी होगा, वो उसके जागने का समय है। यहाँ रात्रि की बात उस 3 बजे के समय से कही गई है, 3:30 के टाइम से कही गई, 4 बजे जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है। तो अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अपनी आत्मा, अपनी आत्म स्वरूप में टिकना है और अपनी स्थिति को भरपूर बनाना है, उसके लिए सबसे अच्छा समय दिया गया अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है और हम डिसीजन देख सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में, हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं, हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट होकर के उस पीस को फील कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम हम सोने में गंवा देते हैं। इसीलिए आज हम आत्म संयमी के बजाय हम कहीं ना कहीं दैहिक वृत्तियों में फंसते जा रहे हैं। और ये पूरा ही पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें अपने तन के, जो तन का भान है, उसको हमें भूलना है और आत्मिक स्थिति में आत्मा को राजा की सीट पर बैठाकर डिसीजंस लेने हैं। तो वो व्यक्ति ही अपने गुणों को जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा।
1: जी, बहुत खूब कहा ज्योति जी ने। और इसी के साथ अब जो हमारा अध्याय है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो सेकंड अध्याय है वो खत्म हो गया है और अब हम बढ़ेंगे 3rd अध्याय की तरफ, जिसका नाम है कर्म योग। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म के बारे में बात होगी और ये सारी हम बातें करने के लिए अगले हफ्ते आएंगे। तो अभी फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, हम जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बाकी प्रोग्राम्स को एंजॉय करें और बने रहिए रेडियो मानवृष 107.8 FM पर। नमस्कार।
3: ढेर सारी मस्ती, खूब सारा फन, क्योंकि ये है फरीदाबाद का रेडियो नंबर 1।

गुड मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, हफ्ते के 7 दिन। और बहुत सारी होती हैं बातें जी हाँ। फिलहाल अपना सेगमेंट आज का है हमारा बहुत ही ज्यादा खास, क्योंकि हर शनिवार वाले दिन आपके साथ शेयर करती हूँ रेसिपीज, यानी कि सेगमेंट का नाम है जायका जिंदगी का। जायका जिंदगी का ये जो हमारा सेगमेंट है, इसमें आपके साथ कुछ ऐसी रेसिपीज आपको बताती हूँ जिसे आप घर पर आसानी से बना लेती हैं, लेकिन बना तो सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि रेस्टोरेंट में खाने से ज्यादा पसंद है, तो रेस्टोरेंट से घर तक का ये जो सफर है, ये मैं थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि जब भी बच्चे या हम सभी सुनते हैं ना या जाते हैं खाने के लिए रेस्टोरेंट, तो हमें ये लगता है कि घर पर तो ये बन ही नहीं सकता है, लेकिन घर पर बनाना भी सब बहुत ही ज्यादा आसान है। बस आपको सिंपल से कुछ भाई आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, और उस पर मतलब जल्दी से आप घर पर ही कुछ कमाल की चीजें बना सकते हैं। आज जिस रेसिपी के बारे में आपको बताने वाली हूँ, बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन थोड़ी सी लंबी रेसिपी है, क्योंकि आज की हमारी रेसिपी है चाइनीज प्लैटर की, जो कि आपको स्ट्रीट फूड में मिल जाएगी या फिर आपको जो है बहुत सारे रेस्टोरेंट में मिल जाएगी। और ज़्यादातर हमें खानी पसंद होती है, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे इंडियन हमारी थाली होती है, तो अलग अलग थाली होती है, राजस्थानी थाली हो गई, या बंगाली थाली हो गई, गुजराती थाली हो गई, ऐसे ही एक थाली और वो है चाइनीज थाली, यानी कि चाइनीज प्लैटर। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो बताऊंगी कुछ ही देर में, फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में आज है शनिवार यानी कि सैटरडे का दिन, और शायद सैटरडे वाले दिन आपके साथ शेयर करती हूँ कमाल की रेसिपीज। आज की हमारी बड़ी खास रेसिपी है और वो है चाइनीज प्लेटर की। अब इस चाइनीज प्लेटर में आ जाता है वेज हाका नूडल्स, फ्राइड राइस, मंचूरियन, चिली पनीर या फिर चिली चिकन, स्प्रिंग रोल्स, शेजवान सॉस और साथ ही डेजर्ट में होते हैं हनी चिली पोटैटोज या फिर दरसान। ये होता है हमारा चाइनीज प्लेटर। अब चाइनीज प्लेटर की मैं बात करूँ तो ये इसमें बहुत ही ज़्यादा खास है। इसमें आपको चाइनीज़ का एक देसी तड़का, क्योंकि हम इंडियंस ना प्रॉपर वो चाइनीज़ वाला तो खाना नहीं बनाते हैं, लेकिन एक अपना एक देसी तड़का ज़रूर उसमें डालते हैं। तो अब कमाल के एक यहाँ पर चीज़ें आपको बता रही हूँ, इस प्लेटर के बारे में आपको बता रही हूँ। और ये प्लेटर सभी को पसंद आता है, स्कूल कैंटीन से लेकर शादी के बुफे तक में हर जगह चाइनीज़ फूड दिल में बसा हुआ है लोगों के। तो आज मैं आपको कुछ कमाल की रेसिपीज बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे हाका नूडल्स की, जो कि एक स्लोपी स्वैग आपको इसमें मिल जाता है। तो वो बताऊंगी इसमें क्या है खास, कैसे आप इसे बना सकते हैं। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रेस्टोरेंट 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। सैटरडे का आज है दिन, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहूंगी आपके साथ और हफ्ते के सातों दिन आप तो इसी टाइम पर आपके साथ रहती हूँ मैं, यानी कि 2 घंटे का हमारा सफर है। और आपको बता दूं मैं कि ये जो सफ़र है काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला है। रेसिपीज़ की बात करें क्योंकि सेगमेंट लेकर के आ जाती हूँ जायका ज़िंदगी का, जिसमें आज बात कर रही हूँ चाइनीज़ प्लैटर के बारे में। चाइनीज़ प्लैटर अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले हम बनाएंगे हाका नूडल्स, और हाका नूडल्स बनाने के लिए आपको बॉयल्ड हाका नूडल्स लेने हैं। इसके साथ सेसमे या फिर वेज ऑयल जो है वो आपको लेना है, गार्लिक, जिंजर, अनियन, कैप्सिकम, कैबेज, कैरेट्स, सोया सॉस, विनेगर, ग्रीन चिली सॉस और साथ ही ब्लैक पेपर, ये आपको लेना है। और बस ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो आपको इसी में जो है वो बनाने हैं अपने नूडल्स जो हैं, हाका नूडल्स जो हैं वो बनाने हैं। तो नूडल्स किस तरह से आप बना सकते हैं वो भी आपको बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। आज है सैटरडे का दिन, सैटरडे वाले दिन आपके साथ कमाल की रेसिपीज शेयर करती हूँ। रेसिपीज की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अभी आपको बता दूँ कि बहुत ही ज़्यादा ख़ास आपको प्लैटर आज आपको बता रही हूँ कैसे आप बना सकते हैं इस चाइनीज़ प्लैटर को बनाने के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, जल्दी जल्दी से मैं रेसिपी आपको बताऊँगी। आप सबसे पहले बनाइए हाका नूडल्स। हाका नूडल्स बनाने के लिए आपको वोक को सबसे पहले बहुत ज़्यादा गर्म कर लेना, ताकि वोक जो है अच्छे से उसमें जो नूडल्स है वो चिपके ना, तो इसीलिए आपको अच्छे से पहले गर्म कर लेना है। इसके बाद हाई फ्लेम पर आपको जो है गार्लिक और जिंजर को अच्छे से फ्राई कर लेना है। उसके बाद इसमें अनियंस और बाकी वेजीज आपको डालनी है। क्रंची होने तक आपको थोड़ा सा इसे जलाते रहना है। इसके बाद इसमें सॉसेस आपको डाल देने हैं और अच्छे से आपको टॉस करना है, जिसके बाद बॉयल्ड नूडल्स को आपको डालना है और बस टॉस टॉस टॉस और स्लप स्लप स्लप, और बन गई आपकी कमाल की हाका नूडल्स की रेसिपी जो है बिल्कुल तैयार है। बस आपको कमाल की रेसिपी जब बन जाएगी, और आपको ज़्यादा क्या चाहिए, बस नूडल्स हो गए आपका तैयार। इसके बाद तैयार करेंगे हम फ्राइड राइस को। जी हाँ, अब फ्राइड राइस जो है वो झट से रेस्टोरेंट वाला जो टेस्ट है वो तो आ ही जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लेने हैं। सबसे पहले आपको या तो आप राइस को जो है उबाल लीजिए, बॉयल कर लीजिए और उसे स्ट्रेन कर लीजिए। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको घर पर अगर लेफ्ट ओवर राइस हैं आपके पास वो भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, गार्लिक अनियन लेना है, कैरेट, बीन्स, कैप्सिकम, सोया सॉस, विनेगर, चिली सॉस और सॉल्ट और पेपर, ये सारे इंग्रेडिएंट्स लेने हैं और इन्हीं से हम बना लेंगे हमारी अगली डिश, और वो है फ्राइड राइस की प्लेटर के लिए। तो कमाल की डिश है, बताऊंगी आपको इसके बारे में। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रीचार्ज मॉर्निंग। और इस रीचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूं। फिलहाल आपको बता रही हूं कमाल की रेसिपी चाइनीज प्लेटर के लिए, और वो है फ्राइड राइस की रेसिपी। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए इसके बनाना वैसे चाइनीज प्लेटर अधूरा और वो

फ्राइड राइस की रेसिपी आपको क्या करना है, गार्लिक अनियन को अच्छे से पहले आपको हाई फ्लेम पर, आपको वोक में ही पहले वोक को अच्छे से गर्म कर लीजिए, उसके बाद हाई फ्लेम पर आपको जो है इसे अच्छे से थोड़ा फ्राई करना है, उसके बाद उसमें वेजीज डालने हैं और अच्छे से आपको सौते करना है, जब तक इसमें क्रंच ना आ जाए तब तक सौते कीजिए। इसके बाद आपको सॉसेस जो है वो डालनी है, राइस डालना है और उसके बाद अच्छे से टॉस करना है, अच्छे से, अच्छा मतलब बिल्कुल अच्छा। इसके बाद टॉस करने के बाद अब आपके ये जो टेस्टी से फ्राइड राइस है ये बिल्कुल तैयार है भाई। फ्रेश राइस के साथ आप जो है फ्राइड राइस जो है बना सकते हैं, तो फ्रेश अगर राइस होंगे आपके तो राइस जो है वो चिपकेंगे नहीं, ये टिप है आपके लिए। अगर कुछ लेफ्ट ओवर आपके राइस हैं तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, अगर बॉयल्ड राइस हो तो वो ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन अगर कुकर वाले जो चावल होते हैं ना, जो राइस होते हैं, वो आप ना लें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाते हैं, इसलिए आप उससे ना बनाएं। कोशिश कीजिए कि जितना बॉयल्ड राइस होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए अगली डिश के बारे में भी आपको बताऊंगी कौन सी है, क्योंकि प्लेटर की हम बात कर रहे हैं, तो कमाल की टेस्टी डिश के बारे में आपको बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। आज है सैटरडे का दिन और सुबह 7 से 9 बजे तक वैसे तो रोजाना आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे हफ्ते के 7 दिन, लेकिन आज सैटरडे है तो सैटरडे वाले दिन आपके साथ शेयर करती हूँ मैं कमाल की रेसिपीज, क्योंकि सेगमेंट लेकर के आ जाती हूँ। सेगमेंट का नाम है जायका जिंदगी का। अब इस सेगमेंट में मैं बात कर रही हूँ अगली रेसिपी की, क्योंकि प्लेटर की हम बात कर रहे हैं तो अगली रेसिपी है गोभी मंचूरियन की। गोभी मंचूरियन जो है काफ़ी टेस्टी होता है, इसके लिए आपको क्या करना है, कॉलीफ्लावर जो है वो लेना है, यानी कि एक फूल जो फूल गोभी है वो लेनी है। इसके बाद कॉर्नफ्लावर लेना है, मैदा और उसका बैटर लेना है, इसके साथ साथ सॉल्ट पेपर और फ्राई करने के लिए आपको जो है अच्छे से आपको ऑयल जो है वो लेना है। अब सॉसेस जो है वो आपको बिल्कुल रेडी रखनी है, इसके लिए गार्लिक, ग्रीन चिली, सोया सॉस और साथ ही कॉर्न स्टार्च स्लरी जो है इसकी ग्रेवी बिल्कुल इसके लिए तैयार होनी चाहिए। और टॉस करने के लिए आपको सॉस चाहिए और उसके बाद बस बूम, बिल्कुल रेडी है आपकी रेसिपी। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको जो है मैदा, क्योंकि आपने बैटर लिया है उसमें कॉर्नफ्लावर डाल के अच्छे से आपको गोभी को उसमें अच्छे से सेटल कर लेना है। उसके बाद गोभी को फ्राई करते जाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब फ्राइड गोभी हो जाएगी इसको बाहर निकाल लेना है और इसके बाद आपको वोक में प्याज आपको लेनी है थोड़ी सी, लेकिन उससे पहले आप पहले जो जिंजर गार्लिक है वो आपको छोटा छोटा कट कर लेना है, हाई फ्लेम पे उसे डाउस करना है उसमें तो आपको प्याज हल्की सी डालनी है, सारी सॉसेस आपको डालनी है, अच्छे से मिलाना है, चाहे तो आप कैप्सिकम भी डाल सकते हैं। उसके बाद गोभी को डाल के इसमें मिला के बस आपके गोभी मंचूरियन बिल्कुल तैयार है, क्रंची से बहुत टेस्टी से ये बिल्कुल तैयार है। ग्रीन अनियंस का ज़रूर उपयोग कीजिएगा, थोड़ी सी ऊपर आपको जो है अच्छे से डेकोरेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उसकी प्लेटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो काफी अच्छा वो दिखाई भी देगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा करता है। चलिए इसी के साथ ये तो बात रही गोभी मंचूरियन की, अगली डिश आपको बताती हूँ और वो है चिली पनीर की। आज इतनी सारी चीजें हैं क्योंकि प्लेटर चाइनीज की हम बात कर रहे हैं, चाइनीज प्लेटर में आ जाती हैं बहुत सारी चीजें, तो अब अगली हमारी जो डिश है रेसिपी जो है वो है चिली पनीर की। बताऊंगी कैसे बना सकते हैं, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ लेकर आई हूँ प्रोग्राम रिचार्ज मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग फरीदाबादवासियों, बहुत सारी बातों के साथ मैं आ जाती हूँ आपके पास. और आज है शनिवार यानी कि सैटरडे का दिन, और सैटरडे वाले दिन आपके साथ शेयर करती हूँ कमाल की रेसिपीज. आज की हमारी जो रेसिपी है वो है चाइनीज प्लेटर, जिसमें अभी तक मैं आपको गोभी मंचूरियन, फ्राइड राइस, हाका नूडल्स बता चुकी हूँ. बात करेंगे कैसे आप बना सकते हैं चिली पनीर. चिली पनीर बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लीजिए. सबसे पहले पनीर जो कि क्यूब्स, आपको पनीरी क्यूब्स लेनी है. कॉर्नफ्लावर लेना है, कॉर्नफ्लावर का बैटर ले लीजिए. लाइट कोटेड और शैलो फ्राइड करने के लिए अच्छा रहेगा. अनियन, कैप्सिकम, स्प्रिंग आपको अनियन लेनी है. साथ ही आपको सोया और आपको रेड चिली सॉसेस लेनी है. ससमे ऑयल और परफेक्ट फ्लेवर के लिए आपको ये लेना है. अब चिली पनीर या फिर चिली चिकन बनाने के लिए आप ये कुछ चीज़ें ले सकते हैं. साथ ही आपको जो है ध्यान रखना है कि ज़्यादा आप पनीर को फ्राई ना करें, इसका भी आपको ध्यान जो है वो रखना है, ताकि आपका जो चिली पनीर है या चिली चिकन है, भाई चिली चिकन के लिए भी सेम चीज़ है, बस पनीर की जगह वहाँ पर रिप्लेस हो जाता है चिकन से, और सब कुछ ज़्यादातर सेम ही रहता है, कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे चीज़ें नहीं होती हैं. तो चलिए अब बात करते हैं कि इसको बनाना कैसे है. सबसे पहले फ्राई कर लीजिए पनीर को, और इसको हटा दीजिए, वह साइड कर दीजिए अच्छे से फ्राई करने के बाद. इसके बाद वोक लेना है, वोक को अच्छे से गर्म करना है, उसमें अनियन, कैप्सिकम सौते करने हैं, सारी सॉसेस डालनी है, और पनीर डालने के बाद अच्छे से आपको मिक्स करना है, और उसके बाद स्प्रिंग अनियन से इसे आप गार्निश कर दीजिए, और बस तैयार है आपका ये टेस्टी सा चिली पनीर. और अगर आप चाहते हैं चिली जो है चिकन बनाना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले चिकन को अच्छे से पहले फ्राई कर लीजिए, उसको साइड रख लीजिए. वोक में आपको अनियन, कैप्सिकम सौते करने हैं, उसके बाद सॉसेस डाल के आपको जो फ्राइड चिकन है ये आपको डालना है. अच्छे से आपको जो है चलाना है, सौते करना है हाई फ्लेम पे, और उसके बाद निकाल लेना है. इसके बाद आप देखेंगे गार्निश करने के लिए स्प्रिंग अनियन का इस्तेमाल, जैसे कि हमने चिली पनीर में किया था, सेम हमने करना है चिली चिकन में भी. पनीर को बस ओवर कुक ना करें, या चिकन को बहुत ओवर कुक ना करें, क्योंकि ये जो है अगर ओवर कुक हो गया तो बहुत ज़्यादा च्यूई हो जाता है, जिसकी वजह से स्वाद तो चला जाता है, लेकिन जब आप खाएंगे ना तो आपके बहुत ज़्यादा फेशियल, मतलब पूरे मुंह में जो है वो दर्द होगा, आपके जो है चीक्स में भी दर्द होगा, आपके दांतों में दर्द होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसे च्यू करना पड़ेगा. तो बस ये प्रो टिप थी आपके लिए. अब आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

वेलकम बैक रेडियो हमारे रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन। आज है शनिवार यानी कि सैटरडे का दिन, और आपके साथ शेयर करती हूँ मैं रेसिपीज, क्योंकि सेगमेंट लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार को, और सेगमेंट का नाम है जायका जिंदगी का, जिसमें आपके साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ चाइनीज प्लेटर की रेसिपी, जिसमें बहुत सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी है, हाका नूडल्स, फ्राइड राइस, गोभी मंचूरियन, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया है यहाँ पर देखिए चिली या फिर चिकन, चिली चिकन की रेसिपी जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। और बहुत ही आसान सी रेसिपीज हैं, जल्दी जल्दी बन जाती है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और सच बात और अच्छी बात यह है कि जो भी बनता है ना फ्रेश बनता है। अगर आप रेस्टोरेंट जाते हैं, कहीं भी जाते हैं ना, तो जो सबसे ज्यादा फ्रेश होता है ना वो चाइनीज फूड होता है, क्योंकि ये सॉसेस से तैयार किया जाता है और जल्दी जल्दी आपको जो है वो तैयार करना है। बस इसमें नूडल्स जो हैं पहले से बॉईल करके रखे जाते हैं, या चावल जो है पहले से बॉईल करके रखे जाते हैं, और झटपट से ये जो रेसिपी है वो तैयार हो जाती है। तो अगर आपको भी तैयार करनी है जल्दी से झटपट से, तो चाइनीज प्लेटर आप बना सकते हैं, इसका ट्राई कर सकते हैं, तो ये जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है। अब बात करती हूँ चाइनीज प्लेटर में आने वाली अगली हमारी रेसिपी की, वो है स्प्रिंग रोल की। जी हाँ, स्प्रिंग रोल जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। फिलिंग के लिए आपको चाहिए इसमें कैबेज, कैरेट, कैप्सिकम, और अच्छे से आपको जो है स्टर फ्राई करना है। इसके बाद आपको जो है रैप रोल जो शीट्स होती हैं, रोल शीट्स जो होती हैं, ये आपको मार्केट में आजकल मिल जाती है आसानी से स्प्रिंग रोल के लिए, वो आपको लेनी है। और सील के लिए आपको क्या करना है, मैदे का पेस्ट बनाना है, और उसके बाद आपको इसमें सारी सब्जियां भर के रोल करके उसके बाद सील कर देना है आपको मैदे के पेस्ट से, और बस डीप फ्राई करना है। और आपके जो स्प्रिंग रोल है ये घर पर तैयार है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको चटनी बनानी है, टेस्टी सी जो चटनी है वो आप बनाइए, चिली की सॉसेस मिला के आप चटनी बना सकते हैं, बड़ी कमाल लगती है। और ये स्प्रिंग रोल बहुत ही ज़्यादा कमाल है, क्योंकि घर पर बनाए हैं, ज़्यादा मेहनत भी नहीं, और जल्दी से झटपट से बन भी गया है, बाज़ार से अच्छा है, क्वालिटी और क्वान्टिटी भी आपको मिलती है। चलिए इसी के साथ यहाँ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना, यानी कि मंडे टू संडे आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। फिलहाल आपको बता रही हूँ हमारे सेगमेंट जायका जिंदगी का, ये जो हमारा सेगमेंट है इसमें बात कर रही हूँ रेसिपीज की। आज लेकर के आई हूँ चाइनीज प्लेटर की रेसिपी। जी हाँ, चाइनीज प्लेटर में आप बात करते हैं हनी चिली पटेटो की, तो ये भी इसमें इंक्लूडेड होता है। आपको जो पटेटो फिंगर्स हैं वो फ्राइड और क्रिस्पी होने चाहिए और सॉस जो है इसमें हनी चिली फ्लेक्स, सोया सॉस और कॉर्नफ्लावर चाहिए। और बस अच्छे से आपको टॉस करके बस ये बड़ा टेस्टी से ये तैयार हो जाते हैं। ऊपर से हनी आप डालकर उसमें एक स्वाद जो है, एक मीठा और साथ ही इसमें तीखा स्वाद जो है वो रहता है और बड़ा ही ज़्यादा कमाल लगता है। इस प्लेटर को बनाना जो है फन है और सर्व करना और भी ज़्यादा मज़ेदार है। तो ट्राई करें इस वीकेंड पार्टी या कभी भी आपका बर्थडे हो या कोई भी ऐसा इवेंट हो, आप ज़रूर इस पॉटलक को आप ट्राई कर सकते हैं जो कि कमाल लगता है। तो चलिए इसी के साथ अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, जिसके बाद होंगी बातें और भी। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मैन रेस्टोरेंट 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ। जी हाँ, आज हमने ट्राई करी है इंडो चाइनीज तंदूरी वाइब्स के साथ चाइनीज प्लेटर, और कमाल की रेसिपी रही। इसी के साथ अगर ये एपिसोड आप मिस कर जाते हैं तो आप घबराने वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, बस हमारा ऐप जो है इंटरनेट ऐप डाउनलोड कर लें। अब आप शहर में कहीं पर भी हैं या शहर से बाहर जा रहे हैं या पूरी दुनिया में कहीं पर भी आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं, क्या करना है आपको, अब घबराने वाली बात नहीं है कि आप रेडियो मानव रेस्टोरेंट से दूर हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, अब आप हमसे और ज़्यादा करीब आ गए हैं, क्योंकि आपको क्या करना है, अपना एंड्रॉयड या iOS मोबाइल फ़ोन लेना है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर जाना है, आपको करना है डाउनलोड, यानी कि इंटरनेट ऐप को हमारी डाउनलोड करना है आपको, रेडियो मानव रचना की ऐप को। इसके बाद आप ढेर सारे पॉडकास्ट सुन सकते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, एक्सपर्ट एडवाइस आपको मिल सकती है, वो भी बस मिनटों में, चुटकियों में। तो अब आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने लेकर के मैं आ जाती हूँ आपके पास। फिलहाल अब बात कर रहे हैं एक अगले सेगमेंट की। सेगमेंट का नाम है हेल्थ का हंगामा, जिसमें आपके पास कुछ ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स लेकर के आ जाती हूँ जो कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ दुनिया के सबसे क्रेजीएस्ट फूड रिकॉर्ड्स की, जिनका जिक्र कहीं 100 बर्गर्स जिन्होंने खाए एक घंटे में, तो कहीं 2 सेकंड में पानी पूरी का रिकॉर्ड है। तो तैयार हो जाइए स्पाइसी, क्रिस्पी और मसालेदार इस जर्नी के लिए, क्योंकि आज का हमारा जो हेल्थ का हंगामा है, ये इसमें बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे फूड क्रेजीएस्ट फूड रिकॉर्ड्स के बारे में, जिन्हें सुन के आप भी कहेंगे क्या बात है। जी हाँ, और सबसे पहले क्या आप जानते हैं कि जॉय चेस्टनट ने सिर्फ 10 मिनट में 62 हॉट डॉग्स खा लिए थे। एक और आदमी ने दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा बनाया जितना बड़ा एक क्रिकेट ग्राउंड होता है। अब देखिए, ये सारी जानकारी अगर आपको इन डिटेल्स चाहिए तो आपको बस मेरे साथ जुड़े रहना है, क्योंकि अभी कुछ ही देर में ये सारी बातें करने वाली हूँ। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ। आज है सैटरडे का दिन और सैटरडे वाले दिन हम करते हैं बहुत सारी बातें। फिलहाल हमारा सेगमेंट चल रहा है हेल्थ का हंगामा और इसमें अब बात कर रही हूँ मैं एक ऐसे खास रिकॉर्ड की जिसे सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, सबसे पहले रिकॉर्ड की बात करें, दुनिया का सबसे भूखे इंसान का नाम है जॉय चेस्टनट, अमेरिका के ईटिंग चैंपियन इन्हें कहा जाता है। जी हाँ, इनका ये रिकॉर्ड है कि इन्होंने 62 हॉट डॉग्स 10 मिनट में भाई निपटारा कर दिया, बिल्कुल खा लिए। और ये रिकॉर्ड है भाई हमारे नाथन्स हॉट डॉग ईटिंग कॉन्टेस्ट में, और हर साल ये 4 जुलाई को होता है। इसमें सिर्फ स्पीड नहीं, टेक्निक भी चाहिए। बन को अपने आपको जो है क्या करना है, पानी में डुबो के इसे खाते हैं, तो इसको टेक्निक के साथ खाया जाता है। और इस कॉम्पिटिशन के बाद लोग ऑलमोस्ट 3 दिन तक सिर्फ रेस्ट करते हैं। डाइजेशन भी तो संभालना होता है ना, तो उसके लिए रेस्ट तो बनता ही है। तो अब मैं आपको बता दूं कि देखिए, हॉट डॉग तो खा लिया, लेकिन अगर आप इतना ज़्यादा, कभी भी आप इसे घर पे ट्राई ना करें, लेकिन अगर आप इतना ज़्यादा खाना खाते हैं, इनडाइजेशन और साथ ही फूड पॉइजनिंग ये खतरा भी बनता रहता है। लेकिन जॉय चेस्टनट जो कि अमेरिकी है एक, उन्होंने तो ये रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगी कि घर पर ट्राई बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि देखिए वैसे तो हम ट्राई करते भी हैं ना, तो ये हम हो नहीं पाए, क्योंकि कैपेसिटी जो है वो बहुत ही अलग होती है हर इंडिविजुअल के खाने की। हो सकता है कोई एक बर्गर खाता हो, कोई दो खाता हो, किसी का 4 या 5 तक में भी होता है, लेकिन 62 ये तो ओवर एंड अबव बहुत ज्यादा ही हो गया। लेकिन इस नाम जो है, ये रिकॉर्ड जो है वो नाम है जॉय चेस्टनट का। तो चलिए अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के सातों दिन, और बहुत सारी होती हैं बातें। फिलहाल बातें हमारी चल रही हैं, आपको बता रही हूँ बहुत ही खास वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में, क्योंकि हमारा सेगमेंट है, सेगमेंट का नाम है हेल्थ का हंगामा, जिसमें आपके साथ शेयर करती हूँ कमाल के ऐसे रिकॉर्ड्स जिन्हें सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, हमारे अगले रिकॉर्ड की बात करें तो वर्ल्ड्स बिगेस्ट पिज्ज़ा की हम बात करते हैं, इटली का इटालियन तड़का। जी हाँ, देखिए मैं बात कर रही हूँ एक बहुत ही बड़े एक पिज्ज़ा की, वर्ल्ड लार्जेस्ट पिज्ज़ा। ये बनाया गया था इटली में 2012 में, और इसका साइज था 13,580 स्क्वायर फिट का। इसका नाम जो था वो था ओटाविया, एक ट्रिब्यूट था हेल्दी लाइफस्टाइल को, और इसमें जो है वो 9,000 किलोग्राम फ्लोर जो है वो लगा था, 4,000 किलोग्राम चीज़, 5,000 लीटर टोमेटो सॉस, और इसके साथ ये पिज्ज़ा जो है बनाया गया। मैं आपको बता दूं, ये जो पिज़्ज़ा है ये ग्लूटन फ्री पिज़्ज़ा था। बोनस ये है कि ये रिकॉर्ड बनाने में 48 आवर्स लगे, और पूरे पिज़्ज़ा पब्लिक को फ्री में ये जो है बांटा गया था, और पिज़्ज़ा पब्लिक ने भी ये फ्री में ही जो है वो देखिए बनाया था, और इसे बनाने में काफ़ी टाइम तो लगा, लेकिन आपको बता दूं कि इसका जो मोटिव यही था कि हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करना, और ये जो पिज़्ज़ा था ये ग्लूटन फ्री था, और इतना बड़ा था जितना कि एक क्रिकेट ग्राउंड, बहुत बड़ा पिज़्ज़ा, 13,580 यानी कि कुछ 3,500 स्क्वायर फिट का ये जो पिज़्ज़ा था ये बनाया गया था, बहुत बड़े लेवल का। और आप देखिए इसकी जो फोटोज़ हैं आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, जो कि काफ़ी वायरल थी जब ये बनाया गया था 2012 से लेकर अभी तक इसका रिकॉर्ड टूटा नहीं है, बहुत कमाल का रिकॉर्ड है। चलिए इसी के साथ यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ। फिलहाल हमारा सेगमेंट चल रहा है, सेगमेंट का नाम है हेल्थ का हंगामा, जिसमें बातें कर रही हूँ कुछ ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में आपको बता रही हूँ जिन्हें सुन के आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ, देखिए मैं अब बात कर रही हूँ पानी पूरी ईटिंग क्वीन की, और ये जो रिकॉर्ड है ये हासिल किया है इंडिया की एक फीमेल के नाम पर एक ये है। जी हाँ, इनका नाम है अनीता देवी, ये बिहार से हैं, जिन्होंने एक मिनट में 51 यानी कि 51 गोलगप्पे खा गई है। हाँ हाँ, गोलगप्पे लवर्स अगर आप सुन रहे हैं तो आप हंस तो रही होंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, जब भी हम गोलगप्पे वाले भैया के स्टॉल पर जाते हैं ना तो हम बोलते हैं भैया जल्दी जल्दी खिला दो, और जैसे ही हम एक गोलगप्पा खाते हैं ना तो हमारा मुंह जो है वो भर जाता है। इतने में जो गोलगप्पे वाले भैया होते हैं ना वो दूसरा गोलगप्पा लेके बिल्कुल तैयार होते हैं कि अब आपकी प्लेट से वो ख़त्म हो तो आप दूसरा, वो भैया जो है दूसरा गोलगप्पा जो है वो डालते हैं, और ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। 4-5 बारी में गोलगप्पे ख़त्म हो जाते हैं एक प्लेट के बाद, हम बड़ी मुश्किल से दूसरी प्लेट में आते हैं और उसके बाद सोचते हैं बस अब नहीं खा सकते, अब तो पेट भर गया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है गोलगप्पे भी भाई, ऐसा नहीं। और इन्होंने तो, अनीता देवी जो बिहार की हैं, इन्होंने तो कुछ 51 गोलगप्पाज खा लिए। चलिए मैं आपको बता दूं कि ये जो पानीपुरी के फैंस हैं ना, अगर आप हर गली मोहल्ले में जा रहे हैं खा रहे हैं कुछ ना कुछ, लेकिन रिकॉर्ड बनाना ना थोड़ा अलग है, तो इस रिकॉर्ड को स्पीड के साथ साथ स्टेमिना भी इसमें चाहिए होता है, जो कि अनीता देवी ने बिल्कुल करके दिखा दिया। तो ये रिकॉर्ड आ गया इंडिया के नाम पर, बिल्कुल है इंडिया की अनीता देवी है, इनके नाम पर एक रिकॉर्ड बना हुआ है। गर्व है हमें हमारे इंडियन सिटीजन पे भी, जो कि ऐसे अटपटे रिकॉर्ड भी करते रहते हैं और अपना नाम रोशन करते रहते हैं। चलिए इसी के साथ यहाँ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ लेकर आई हूँ प्रोग्राम रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ. सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन. और बहुत सारी होती हैं बातें. फिलहाल आपको बता रही हूँ अपने सेगमेंट हेल्थ का हंगामा. ये जो हमारा सेगमेंट है उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स के बारे में बात करती हूँ. और अभी बता रही हूँ आपको स्पाइसीस्ट बर्गर रिकॉर्ड की. जी हाँ, फायर इन द बेली इस नाम का बर्गर. और ये जो है, मैं आपको बता दूँ आज इस बर्गर के बारे में अभी आपको बता रही हूँ. और एक डेयर डेविल फूडी जिनका पेट जो है वो फायर प्रूफ है, उन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया. देखिए, द डेथ बाय चिली चैलेंज जो है ये हुआ था. यूके का एक कंपटीशन है जो कि बर्गर में डाले जाते हैं कुछ ऐसे चिलीज और इसको खाया जाता है. और ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो चिली जो है इसमें डाली जाती है. और ये वर्ल्ड्स हॉटेस्ट चिली में आता है, यानी कि कैरोलिना रिपेयर ये जो है आता है, या घोस चिली हो गई. घोस चिली हमारे इंडिया की चिली है. इसके साथ स्कॉच बोनेट, ये सारी चिलीज जो है इससे बनाया जाता है एक बर्गर जिसे खाते हैं. तो ये जो विनर थे वो थे ग्रेग फॉस्टर रहे विनर. और साथ ही मैं आपको बता दूं, इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया 1 मिनट 42 सेकंड्स में. ये रिकॉर्ड ख़त्म कर दिया था बर्गर इन्होंने. फैक्ट ये है कि स्पाइसेस की अगर बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी बर्गर था. ये सब अंडर मेडिकल सुपरविजन हुआ था. तो आप घर पर बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा. बहुत सारे बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि घर पर ही ट्राई करना शुरू कर देते हैं. तो आप ऐसा भी कुछ भी ट्राई मत कीजिएगा जिससे आपकी हेल्थ पर बात आ जाए. तो इसीलिए ये सब बर्गर जो है, या ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चैलेंज जो है, ये मेडिकल कोई भी उनके पास जो सुपरविजन के अंडर ही होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं, ताकि पेशेंट को अगर कुछ भी हो जाए तो उसी टाइम इमिडिएट इलाज उसको दिया जाए. तो ये जो चैलेंज था, डेथ बाय चिली चैलेंज, ये यूके में हुआ था, जिसे जॉर्ज फॉस्टर ने जीत लिया. 1 मिनट 42 सेकंड में इन्होंने बर्गर खा लिया, जिस बर्गर में 3 तरह की चिलीज थी जो कि वर्ल्ड्स जो हॉटेस्ट चिलीज हैं उनमें आती हैं. वो चिली से जिसमें से एक चिली हमारी इंडिया की भी थी, घोस्ट चिली. चलिए इसी के साथ यहाँ ले दी हूँ एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद आपको बताऊंगी मैं वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट चॉकलेट बार के बारे में. तो बात करेंगे इस पे. फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ. सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन. और होती हैं बहुत सारी बातें. जी हाँ, बातें हमारी चल रही हैं. और अभी आपको बता दूँ, वर्ल्ड्स आपको लॉन्गेस्ट चॉकलेट बार के बारे में आपको बता रही हूँ, क्योंकि हमारा सेगमेंट है अभी चल रहा है. सेगमेंट का नाम है हेल्थ का हंगामा, जिसमें कुछ ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको बता दूँ जिन्हें सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि यार सच में ऐसा है. साक्षी क्या क्या चीज़ें लेकर के आ जाती है ना. तो साक्षी आपको कुछ खास जानकारी आज पहुँचा रही हूँ मैं आपके पास. और वर्ल्ड आपको लॉन्गेस्ट चॉकलेट बार के बारे में आपको बता दूं, ये जो चॉकलेट बार है ये बनाया गया था आर्मेनिया में 2012 में, जिसकी लेंथ रही 224 फीट, ऑलमोस्ट 2 क्रिकेट पिचेस के लंबाई जितनी इसकी रही थी, एक बार की लेंथ रही थी. इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्रांड है, ये ग्रैंड कैंडी का ब्रांड है. और जो वेट है इसका वो था 4,400 पाउंड्स का. इस चॉकलेट बार का मकसद था बच्चों को सरप्राइज देना और इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे मनाना. और इंडिया में भी चॉकलेट स्टैचू और जो लड्डू टावर है, ये जैसे रिकॉर्ड जो है वो भी बन चुके हैं. लेकिन ये जो रिकॉर्ड है, यानी कि ये जो चॉकलेट बार का रिकॉर्ड है, ये अभी तक नहीं टूटा है. 2012 से बना था, 224 फीट की ये जो चॉकलेट बार है ये बनकर तैयार हुई, जिसे देख कर बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए. भाई आम बच्चे नॉर्मली हम जब चॉकलेट देखते हैं तब खुशी का माहौल तो आ ही जाता है. और अगर इतनी बड़ी चॉकलेट तो हर कोई अपना सर पकड़ के बैठ जाएगा कि अब इसे खाएंगे कैसे और इसे कैसे हम जो है भाई ख़त्म कर पाएंगे. तो बता दूं मैं कि ये उसके बाद बांटी गई थी, वहाँ पर इसे कट किया गया, उसके बाद सारी भीड़ में ये चॉकलेट बटी. उसके बाद सबको मजा आया और सबने टेस्ट भी किया. चॉकलेट भी बड़ी कमाल की थी, बहुत टेस्टी भी थी. चलिए इसी के साथ यहाँ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद सारी होंगी बातें. जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन। अपना रेडियो।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूं आपके साथ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन। और आज है सैटरडे का दिन, और सैटरडे वाला दिन आपके साथ शेयर करती हूँ कमाल की रेसिपीज, क्योंकि अपना सेगमेंट लेकर के आती हूँ जायका ज़िंदगी का। और उसके बाद सेगमेंट में हम बात करते हैं बहुत सारी, क्योंकि सेगमेंट दूसरा जो है हमारा वो है हेल्थ का हंगामा, जिसमें आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिन्हें सुन के आप भी हैरान हो जाते हैं ना कि अच्छा ऐसा भी होता है। कुछ ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं जिन्हें सुन के हर कोई भाई भौचक्का रह जाता है कि सच में ऐसे रिकॉर्ड्स हैं। और इंडिया में नहीं, बाहर हर जगह पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिकॉर्ड जो है आज टूट ही रहा है या टूटते रहते हैं और बनते रहते हैं। तो चलिए इसी के साथ यहाँ पर अब वक्त जो है ये हो चला है यूं तो आपसे इजाजत लेने का, लेकिन जाने से पहले ये कहती जाऊंगी आपसे कि अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिव जो लोग हैं ना कहीं ऐसा होता है कि आपको परेशान बहुत ज़्यादा करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि खाना एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को करीब तो लेकर आ ही जाते हैं, जो लोग आपसे करीब नहीं हैं उनको खाने के थ्रू आप उनके करीब हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि खाने से ना ऐसा अगर आपको ज़्यादा लगे कि नहीं आपको करीब नहीं जाना है, आपको थोड़ा अकेले रहना है, खाना खाइए और सारी टेंशन भूल जाइए, क्योंकि स्ट्रेस जो है ये भी हटता है जब आप अच्छा खाना खाते हैं। तो हैप्पी हार्मोन जो है आपके इंक्रीज होते हैं, जिससे आपको अच्छा महसूस होता है, फील गुड वाले हार्मोन जो है ये बढ़ने लगते हैं और आप अच्छा महसूस करते हैं। तो जाइए अच्छी अच्छी जगह को एक्सप्लोर कीजिए, अच्छा अच्छा खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए और लाइफस्टाइल को अपनी बेहतर बनाइए। अब इसी के साथ वक्त हो गया इजाजत का, तो मुलाकात होगी आपसे कल, होंगी बहुत सारी बातें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमारे साथ इसी तरह यानी कि रेडियो मानव रचना के साथ जुड़ते ही रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ, बाय बाय, टेक केयर।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर। आ चुका हूं लेकर के बहुत ही खास शो रेडियो मानवृष्णा का, जो है आपकी बात आरएमआर के साथ, यानी कि रेडियो मानवृष्णा के साथ, जहां पर हम लोग कोशिश करते हैं कि भारत की जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, आर्ट फॉर्म्स हैं, या और कोई ऐसी चीज है जो हमारे देश की खूबसूरती है, उसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं, कोशिश करते हैं आपको बताने की हर बार एक नई आर्ट फॉर्म के बारे में, चाहे वो किसी कलाकार की आवाज हो, या फिर वो हमारी आवाज के जरिए हो रही है, या फिर कोई और एक्सपर्ट हो सकते हैं, उनके जरिए हो सकती है। उद्देश्य इतना होता है आपको हम जागरूक कर सके, आपको हम रूबरू करा सके। आज वापस से लेकर के आए हैं एक और हम ऐसा ही एपिसोड जो बहुत खास होने वाला है। आज हम बात करेंगे यक्षगाना। यक्षगाना आप में से कितने लोगों ने नाम सुना है इसका? एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है, जहां पर जब ये होता है तो स्टोरीज को जिंदा किया जाता है, उनको जिंदगी दी जाती है। जहां पर कुछ आर्ट फॉर्म ऐसे होते हैं जिनको मेयरली परफॉर्म किया जाता है, वहीं पर कुछ आर्ट फॉर्म्स ऐसे भी होते हैं जिनको जिया जाता है लाइव स्टेज पर। कलाकार अपना अपना जो है कला का प्रदर्शन वहां पर कर रहे होंगे यहां पर, लेकिन आप उसको महसूस कर पा रहे होंगे। अगर कलाकार वहां पर दुखी है तो यहां पर आप दुखी हो रहे होंगे। कलाकार को रोना आ रहा है तो आपकी आंखों से आंसू टपक रहे होंगे, और कलाकार के मन में अगर गुदगुदी हो रही है तो आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होगी। कुछ ऐसे आर्ट फॉर्म्स होते हैं, वैसे ही हमारा ये आर्ट फॉर्म है जिसका नाम है यक्षगाना। प्राइमरली कर्नाटका का एक बहुत ही फेमस आर्ट फॉर्म है, लेकिन और कुछ कुछ स्टेट्स में आपको इसकी जो है झलक देखने को मिलेगी, जैसे कि कुछ कुछ हिस्सों में केरला की भी इसको परफॉर्म किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे हमारे इस एक आर्ट फॉर्म की, यक्षगाना। फिलहाल उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आपको समझ पाए हैं कि हमारा शो किस विषय में होने वाला है, क्या बात हमारे आज के शो में होने वाली है। लेकिन अभी एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, बहुत छोटा सा, उसके बाद शो को कंटिन्यू करेंगे। बहुत सुंदर सा एक आर्ट फॉर्म है जिसको आज हम लेकर के आए हैं, मतलब भारत का एक ऐसा मोती है जिसके बारे में बहुत लोग शायद नॉर्थ इंडिया में तो शायद कम ही लोग जानते होंगे। बाकी अगर आपको पता है तो वापस से कहूंगा, मुझे बताइए 8010781078 पर। कर्नाटका के कोस्टल लैंड्स में जन्मी एक आर्ट फॉर्म है। प्राइमरीली इसको कुछ कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है आज भी, जिसमें प्राइमरीली आपको कर्नाटका के बहुत सारे इलाके नजर आएंगे, लेकिन उसके अलावा आपको केरला में भी नजर आएगा। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो कन्नड़ा स्पीकिंग जो लोग होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करते हैं। हर एक स्टेट की अपनी खूबसूरती होती है, ऐसे ही हमारी आज की ये जो आर्ट फॉर्म है यक्षगाना, इसकी एक खूबसूरती है अपने आप में जो बहुत खास इसको बनाती है। ठीक है, कन्नड़ एंड तुलु स्पीकिंग जो कम्युनिटीज होती हैं वहां पर थोड़ी ज्यादा ये फ्लरिश करती है आर्ट फॉर्म। अच्छा, यक्षगाना इसको समझते हैं थोड़ा सा। यक्ष का मतलब होता है डिवाइन स्पिरिट, और गाना का मतलब होता है सॉन्ग और म्यूजिकल एक्सप्रेशन। तो यहां पर आप इन दो शब्दों से जब मिलाकर के एक शब्द बन रहा है तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। तो कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ हम लोग जा रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहाँ पर हिंदी भाषा में बहुत सारी कथाओं का वर्णन होता है, या गुजराती में अलग अलग कथाएं हैं, मराठी में अलग अलग कथाएं हैं, पंजाबी में अलग अलग कथाएं हैं, हर जगह पर अपनी कुछ कथाएं होती है। ठीक है, हरियाणा में भी कुछ कुछ कथाएं हैं जिनका वर्णन किया जाता है, जैसे राजा हरिश्चंद्र की एक कथा है जहाँ पर वो बहुत ईमानदार का जो है एक किरदार आपको नजर आता है, ईमानदारी का एक सिंबल आपको मिलते हैं राजा हरिश्चंद्र। एक कथा है जो ट्रेडिशनल रही है कि वो हमेशा अपने काम को, अपने धर्म को, अपने कर्म को सबसे ऊपर रखते हैं, सर्वोपरि रखते हैं। ठीक है, ऐसी कथाएं बनाई गई थी पहले ताकि लोगों को चीजें जो है समझाई जा सके, मॉरल वैल्यूज जो है सिखाई जा सके, एथिक्स सिखाई जा सके, ताकि करप्शन ना हो समाज में, ताकि कुरीतियां ना फैले समाज में, ताकि प्रॉब्लम्स ना हो समाज में, ताकि लोग थोड़ा स्पिरिचुअल फील करें और जो कथाएं सुनाई जा रही हैं उनको दिल से लगाएं। ये उस समय के कलाकारों की, उस समय के राइटर्स या फिर जो भी सिंगर्स हुआ करते थे, या जो भी लोग उस पूरी स्टोरी में जो है अपना योगदान देते थे, उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता था। उनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से बहुत सारे इलाकों में आज तक वो कथाएं जो है वो प्रचलित हैं, वो बहुत ज़्यादा परफॉर्म की जाती हैं, प्रैक्टिस की जाती हैं, फॉलो की जाती हैं। सो यक्षगाना कोई ऐसा म्यूजिक या कोई ऐसा संगीत जो आपको डिवाइन स्पिरिट से मिलाता है, आपके अंदर कुछ ऐसा ट्रिगर करता है। और इसको ब्रेक डाउन करें तो बहुत सारे नुआंसेस हैं इसमें। ठीक है, ये कोई एक आर्ट फॉर्म नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजों का मिश्रण आपको मिलता है। जैसे मैंने पहले भी कहा, थिएटर भी होता है इसमें,
डांस भी होता है, पोएट्री भी होती है, परकशन भी होता है, डिवोशन भी होता है, फिलॉसफी भी होती है, कॉस्ट्यूम की आर्टिस्ट्री बहुत सुंदर होती है, आप गूगल करके देखिए, आपको देखने को मिलेगा यार कैसे बनाते थे लोग, पब्लिक डायलॉग होता है विद माइथोलॉजी, ठीक है। ये जनरली एक ट्रेडिशन ऐसा रहता था कि सनसेट के बाद जो है इसको स्टार्ट किया जाता था परफॉर्म करना, और सनराइज तक, अगली सुबह तक पूरा इसको परफॉर्म किया जाता था, और पूरा वो जो माहौल है वो इतना सेक्रेट हुआ करता था कि लोगों की आंखों से आंसू आते थे, उनको ऐसा लगता था कि वो साक्षात भगवान के ही दर्शन कर रहे हैं, ठीक है। पूरे गांवों में जो है ड्रम बजा करते थे, पूरे गांव की हवा जो है महकती थी, हर एक कान में वो डायलॉग, वो म्यूजिक, वो एक एक बीट जो है वो पड़ती थी। बच्चे बैठते थे एकदम वाइड आइज के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, क्यूरियोसिटी के साथ। परफॉर्मर्स वहां पर महज एक्टर्स नहीं हुआ करते थे, जबकि वो खुद उस चीज को फील किया करते थे, उनके कंधों पर एक जिम्मेदारी हुआ करती थी कि इस कहानी को अच्छे से लोगों तक पहुंचाना है। भगवान, वॉरियर, सेजेस या अलग अलग आर्ट फॉर्म में, अलग अलग कैरेक्टर्स में वो आते थे, समटाइम्स एज डीमंस वो आते थे, और लोगों तक मैसेज वो पहुंचाते थे। तो पूरी एक रात जाती थी जहां पर लोग बस देखकर विटनेस कर रहे हैं कि कुछ कहानी हो रही है। ये है यक्षगाना, कर्नाटका का एक आर्ट फॉर्म, और मुझे अभी यहां पर, मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूं ना, मुझे गूजबम्स आ रहे हैं। विल टॉक अबाउट इट मोर, बट फिलहाल एक और म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद शो में आगे बात होगी। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

उम्मीद पर दुनिया कायम है। मैं यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वाइब अच्छी लग रही है इन गानों की, ये जो आज हम शो लेकर के आए हैं, शो की क्यों स्टार्ट किया गया यक्षगाना को। सो लॉन्ग बिफोर टेलीविजन, सिनेमा, सोशल मीडिया, भारत में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन सिस्टम था। अभी तो आप देखते हैं कि कोई अगर टॉपिक है उसको लेकर के फिल्म बनाई जा सकती है, रील बनाई जा सकती है, पॉडकास्ट किया जा सकता है, गाना बनाया जा सकता है, डॉक्यूमेंट्री बनाई जा सकती है। सिमिलरली प्रीवियसली इंडिया में एक ऐसा ही कम्युनिकेशन सिस्टम था, ठीक है, जिसको अलग अलग नाम जो है दिया जाता था। थिएटर बोल सकते हैं आप उसको, सांग बोला जाता है हरियाणा में, यक्षगाना उसी का एक एग्जाम्पल आपको दिखाई देगा। तो ये 15वीं और 16वीं शताब्दी की बात है, ठीक है। टेम्पल ट्रेडिशन, जो मंदिर के ट्रेडिशंस हुआ करते थे, या भक्ति की जो मूवमेंट्स हुआ करती थी, या जो ओरल स्टोरी टेलिंग हुआ करती थी, या कम्युनिटी गैदरिंग या सोशलाइजिंग जो होती थी, वो एक चीज आपको एक मंच पर मिलती थी यक्षगाना के रूप में। भक्ति मूवमेंट ने भारत में स्पिरिचुअलिटी जो है उसकी एक परिभाषा दी नई, जहां पर इमोशनल कनेक्शन विद डिवाइन उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया। स्टोरी टेलर्स आए, सेंट्स आए, ठीक है, जिन्होंने अपनी सेक्रेट नॉलेज से जो है ऑर्डिनरी लोगों को एक ये आप कह सकते हैं कि हायर सेल्फ का एक मैसेज दिया, चाहे वो फार्मर्स हैं, फिशरमैन हैं, लेबरर्स हैं, विलेजर्स हैं, ठीक है, या स्कॉलर्स हैं, सबको मैसेज मिलता था। तो यहां पर ये जो अलग अलग आर्ट फॉर्म निकल के आई, इनमें अलग अलग स्टोरीज आई, ये किरदारों के माध्यम से, सीन के माध्यम से, डायलॉग्स, गाने, म्यूजिक, इवेंट्स के माध्यम से बहुत सारे मैसेज जो है, हिडन मीनिंग्स जो है, वो लोगों को दिया करते थे। पुरानिक स्टोरीज हुआ करती है, आपने, मैंने, हमने सुना है, प्राइमरली महाभारत को देखा है, रामायण को देखा है, या ऐसे और कुछ कुछ ऐसे स्क्रिप्चर्स हैं जिनके बारे में हमने सुना है, जिनको बाद में ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस के साथ कैमरे पर भी हम लोगों ने देखा है, ठीक है। सिमिलरली यक्षगाना वहां का आप कह सकते हैं एक स्टोरी टेलिंग का वे था। किरदार अलग होते थे, डायलॉग्स अलग होते थे, भाषा अलग होती थी, कॉस्ट्यूम अलग होता था, लेकिन जो कोर मैसेज है वो सेम होता था कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है, कि आपको अच्छाई का साथ देना चाहिए, बुराई का साथ आपको नहीं देना चाहिए। चोरी चकारी, झूठ बोलना, किसी का हक मारना, किसी को रुलाना, किसी को नुकसान पहुंचाना, ये सब गलत चीजें हैं, आज भी लागू होती हैं, आज भी एज इट इज ये मूल्य हमारे खरे हैं। तो यक्षगाना जो है वो एक ऐसा आर्ट फॉर्म था जो गांव के लिए पूरा एक क्लासरूम बना, मॉरल थिएटर बना, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी बन के आया वो सामने, और आप कह सकते हैं कि पूरे समाज को इकट्ठा करके, पूरे गांव को, पूरी सोसाइटी को इकट्ठा करके सेम अमाउंट ऑफ इमोशन कन्वे किया इस एक आर्ट फॉर्म ने, ठीक है। जो लोग संस्कृत के टेक्स्ट को रीड नहीं कर सकते थे, उन्हें धर्म, सेक्रीफाइस, लॉयल्टी, ग्रीड, ईगो, डिवोशन, ये तमाम चीजें सिखानी जरूरी थी, क्योंकि वो रीड नहीं कर सकते हैं, लेकिन अच्छी चीजें जानने का हक तो उनका भी है। इसीलिए ये जो आर्ट फॉर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये केवल एक एंटरटेनमेंट नहीं था, ये कल्चरल आप कह सकते हैं ट्रांसमिशन था, परफॉर्मेंसेस के थ्रू लोगों तक मैसेज कन्वे हुए। यक्षगाना आज की आर्ट फॉर्म है, कर्नाटका की एक बहुत फेमस आर्ट फॉर्म है जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो स्पिरिचुअलिटी का मैसेज देती है, जो लोगों को भगवान से कैसे बात करनी होती है, या भगवान किस चीज से खुश होते हैं, बेसिकली समाज को पीसफुल समाज बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो तमाम चीज़ें, वो तमाम इमोशन, वो तमाम मैसेज, वो तमाम जो आप कह सकते हैं हिडन मीनिंग्स हैं, वो पहुंचाने का काम ये आर्ट फॉर्म किया करती थी, आज भी करती है। यक्षगाना लाउड, कलरफुल और ड्रामेटिक सरफेस पे काम करता है, बट इसके बिनीत अगर आप देखेंगे बहुत सारी फिलोसफीज हैं जो छुपी हुई हैं, जो हर एक कहानी में आपको देखने को मिलती है, जैसे कि धर्म और अधर्म के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या सही है क्या गलत है, ईगो और विजडम में क्या फर्क होता है, डिजायर और ड्यूटी में क्या फर्क होता है, पावर और राइटनेस जो है वो कैसे आपको डिफाइन करना होता है। तो ये चीजें यहां पर इंटेंशनली जो है एग्जैजरेट करके बताई जाती थी। यहां पर जो राक्षस या असुर या डेमन्स जो हुआ करते थे, या ईविल जो होते थे, उन कैरेक्टर्स को जानबूझकर ऐसे बहुत बड़े बड़े क्राउन, बहुत ही अतरंगी से कलर्स, या शार्प फेशियल पैटर्न्स से जो है दिखाया जाता था, ताकि लोगों को याद रहे, ताकि जब भी कोई इंसान बुराई करे, या किसी का हक मारे, या किसी के साथ कुछ अन्याय करे, तो उनको वो याद आए, क्योंकि
इंडियन फिलॉसफी में इविल जो है वो कभी सटल नहीं रहा है, वो हमेशा एक्सपेंड हुआ है। तो ईगो को लार्जर देन लाइफ दिखाना एक मोटिव हुआ करता था, वो हर एक आर्ट फॉर्म में हुआ। जैसे कौरव 100 भाई थे, 100 भाई कौरव, ठीक है, और उसमें हा हा हा हा हा इस तरीके के साउंड इफेक्ट्स आपने देखे होंगे, तो बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड हुआ करती थी। कुंभकर्ण 6 महीने सोते थे, 6 महीने उठते थे, इस तरह की चीजें दी गई थी जानबूझकर, ताकि वो एग्जैजरेटेड लगे, ताकि वो आपको याद रहे, आपके साथ रहे, वो लार्जर देन लाइफ रहे। तो बुराई को इतना बड़ा जानबूझकर बनाया जाता था ताकि लोगों के बीच में उसका डर रहे। एंड दैट वाज सो ब्यूटीफुल, ठीक है। अब मेकअप भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता था, साइकोलॉजी बनता था यहाँ पर मेकअप, ठीक है, जहाँ पर रेड कलर को अग्रेशन जो है उसके कलर के तौर पर दिखाया जाता था, ब्लैक जो है मिस्ट्री या डिस्ट्रक्शन के रूप में दिखाया जाता था, येलो एंड गोल्ड जो है वो एनर्जी या भगवान का एक रूप उसके फॉर्म में इसको दिखाया जाता था, ठीक है। आपने देखा ना कि कौरवों को, या फिर जो रामायण में भी दिखाया गया है कि लंका में भी अमूमन क्या है कि लाल काला ऐसे कलर दिए जाते थे, वो जो इविल साइड है उसको, और भगवान की तरफ जो है प्राइमरीली आपको देखने को मिलेगा कि गोल्डन चीज़ें ज़्यादा हुआ करती थी, पीली चीज़ें ज़्यादा हुआ करती थी या सफ़ेद हुआ करती थी, सटल थोड़ा सा हुआ करता था। बहुत छोटे छोटे न्यूएंसेस होते हैं, बट दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है। हेड गियर जो है वो भी बहुत सिंबॉलिक हुआ करता था, ठीक है, यक्षगाना में भी सिमिलरली आपको देखने को मिलता है। अमूमन ऐसा होता है कि इंसान की एक फितरत होती है कि कॉन्स्टेंटली हम ना पावरफुल दिखने की कोशिश करते हैं इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड, तो ये एक चीज वहां पर बहुत अच्छे से पकड़ के ये दिखाई जाती थी। यहाँ पर लंबी लंबी परफॉर्मेंसेज हुआ करती थी, पूरी पूरी रात जो चलती थी, क्योंकि डार्कनेस जो है वो कन्फ्यूजन देती है, इग्नोरेंस देती है, इनर कॉन्फ्लिक्ट को जो है ट्रिगर करती है, एंड जो सुबह होती है वो रियलाइजेशन की होती है, अवेकनिंग होती है, रिस्टोरेशन होती है। तो यहाँ पर रात भर जो होता था, जब तक डार्क वो है, जब तक पूरी रात है, चंद्रमा है या नहीं है, बेसिकली ब्लैक ऑफ सनलाइट जो वो फेज हुआ करता था, वहाँ पर इग्नोरेंस, कन्फ्यूजन, ईविल शक्तियाँ वो थोड़ी ज़्यादा ट्रिगर होती थी। लेकिन जैसे सुबह सुबह होती थी या जैसे ही हम सनराइज की तरफ जाते थे, वैसे वैसे भगवान की जीत शुरू होती थी, वैसे वैसे पूरा डायनेमिक्स जो है शिफ्ट हो रहे हैं स्टोरी में। तो बहुत सुंदर, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल एक हुआ करता था। तो सनराइज होते होते धर्म की जीत होती थी, ये एक पॉइंट था, ठीक है। हर एक कैरेक्टर वहां पर अलग था। जैसे मैं बात करूं तो आपके और मेरे पर्सपेक्टिव से यहां पर बात करें, अर्जुन जो है डाउट और रिस्पॉन्सिबिलिटी दो चीजें साथ में लेकर के चल रहा है, कर्ण जो है वो वुंडेड प्राइड लेकर के चल रहा है, एक जख्मी गौरव की प्राइड है बट जख्मी है, रावण जो है वो ब्रिलियंट तो था बट उसकी ब्रिलियंस जो है ईगो ने कंज्यूम कर ली थी, कृष्ण जो है वो कॉन्शियसनेस और विजडम को रिप्रेजेंट करते थे। तो ऐसे करके हर एक कैरेक्टर, हर एक नाम अपने साथ कुछ चीजें, कुछ ट्रेट्स लेकर के आते थे, जो आज तक भी मैं कहूंगा हमारे साथ रहते हैं। सो दीज आर नॉट जस्ट माइथोलॉजीज, दीज आर ह्यूमन इमोशंस, दीज आर साइकोलॉजिकल थिंग्स जो हमें पता होनी चाहिए। आई होप यहां तक आपको शो पसंद आया। लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक, मेरा नाम सागर। शो यहाँ पर चल रहा है आपकी बात आरएमआर के साथ। आज का हमारा जो आर्ट फॉर्म है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो है यक्षगाना। यक्षगाना ने एक बहुत मैसिव रोल प्ले किया भारत की सिविलाइजेशनल जो कॉन्शियसनेस है उसको प्रिजर्व करने में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, हमें थोड़ा वाइजर बनाया, ज़्यादा बहुत सारी वैल्यूज़ हम लोगों तक कन्वे करी। उस टाइम की बात हो रही है जब ई लर्निंग कंपनीज नहीं होती थी, स्कूल नहीं थे, कॉलेज नहीं थे, बहुत ज़्यादा एजुकेशन के सोर्सेज नहीं हुआ करते थे, लेकिन वैल्यूज़ तब भी उतनी ही इंपॉर्टेंट थी जितनी आज हैं। तो यहाँ पर इसी एक थॉट को ध्यान में रखते हुए परफॉर्मेंसेज तैयार की जाती थी। अब वो महाभारत की भी होती थी, रामायण की भी होती थी, अलग अलग और ऐसी स्टोरीज थी जिनकी परफॉर्मेंसेज जो है वहां पर तैयार की जाती थी। एक कल्चरल आइडेंटिटी आपको देखने को मिलती थी, ठीक है। कोस्टल जो कर्नाटका है वहां पर खास तौर पर आपको ये एक आइडेंटिटी के तौर पर देखा जाता था, ठीक है। मॉरल एजुकेशन यहाँ पर मिलती थी, बच्चों को एथिक्स पता लगते थे, करेज, ह्यूमिलिटी, लॉयल्टी, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रीड, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर बताई जाती थी। कम्युनिटी बॉन्डिंग होती थी, पूरा पूरा गांव बैठा हुआ है, पूरी पूरी रात बैठकर एक साथ रो रहे हैं, एक साथ हंस रहे हैं, एक साथ ताली बजा रहे हैं, ये सब चीज़ें एक जगह पर हो रही है। सामने मंच पर कुछ कलाकार हैं जो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी और ऐसी चीज़ें थी जो वहाँ की कल्चरल चीज़ें थी, वहाँ की लोकल नेटिव चीज़ें थी, उनको भी वहाँ पर बढ़ावा दिया जाता था। उनकी कन्नड़ भाषा या तुलु जो ट्रेडिशंस हुआ करते थे उनको वहाँ पर हाईलाइट किया जाता था। रीजनल पोइट्रीज, डायलैक्ट्स, वो सब वहाँ पर दिखाए जाते थे। शेयर्ड स्टोरीज हुआ करती थी। हालांकि मैं ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिसके ऊपर मैं पूरा दिन पूरी रात बैठ के बात कर सकता हूँ, लेकिन अब क्योंकि समय हमारे पास बहुत सीमित है, बट आई थिंक मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये जो आर्ट फॉर्म्स हुआ करती थी ये मात्र एंटरटेनमेंट नहीं थी, ये आपको वैल्यूज देती थी, एथिक्स देती थी, ठीक है। यक्षगाना उसी का एक एग्जांपल हमने आज यहाँ पर जाना। कर्नाटका का प्राइमरली एक ऐसा आर्ट फॉर्म जो बहुत खूबसूरत है, जहाँ पर सब कुछ आपको मिलता था, संगीत, अभिनय, स्टोरी, कविताएँ, कॉस्ट्यूम, हर चीज़, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी, भगवान को समझना, साइकोलॉजी को समझना, सब कुछ आपको एक स्टोरी के फॉर्म में मिलता था। आज हम 2-3 घंटे लंबे फॉर्मेट्स देखते हैं, ठीक है। आज हमें टिकेटेड अर्बन शोज मिलते हैं, स्टेज लाइट, माइक्रोफोन, सिनेमेटिक इफेक्ट, सोशल मीडिया प्रमोशन, सब कुछ मिलता है, ठीक है।

गुड कि हमने यहाँ तक तरक्की करी है, लेकिन जब ये सब चीजें नहीं थी तब भी हमारे पास स्टोरीज पहुंचती थी, तब भी समाज में कुछ डिफरेंशिएटर्स थे। पॉजिटिव चेंज आए, बहुत सारे वाइडर रीच यहाँ पर मिली, यूथ का पार्टिसिपेशन देखने को मिला, तो ये सब चीजें हमने देखी यक्षगाना के केस में। बाकी आप बताइए आप में से कितने लोग जानते थे यक्षगाना के बारे में। फिलहाल मेरा वक्त है शो के यहाँ पर कंक्लूड करने का, आशा करता हूँ शो आपको पसंद आया होगा। अब इजाजत दीजिए, मैं हूँ आरजे सागर, और आपसे बात करके या आप लोगों तक ये स्टोरी पहुँचा करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैंने एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करी जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, कॉन्स्टेंटली मेरे चेहरे पर स्माइल रही और इतना कुछ मैंने रिसर्च किया। आपको अगर सेम फील हुआ है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो। तब तक अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए, और याद रखिएगा बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती है। नाउ दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूँ दीक्षा आपके साथ, और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा कार्यक्रम जो जुड़ा हुआ है हम सभी की जिंदगियों से। ईश्वर ने हमें जीवन दिया, लेकिन इस जीवन में कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं जब हमारे शरीर के कुछ अंग सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं, और तब हमें जरूरत पड़ती है उस ऐसे एक डोनर की जो हमारी मदद करता है स्वयं ईश्वरी रूप बन के। ऐसे ही खास कार्यक्रम को आपके बीच लेकर आता है ऑर्गन इंडिया और रेडियो मानव रचना 107.8, और इस कार्यक्रम का नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। आइए जानते हैं कुछ बहुमूल्य बातें अंग दान से जुड़ी हुई।

0: आप सभी सुनने वालों को ऑर्गन इंडिया की तरफ से नमस्कार। मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। आज हम आपका स्वागत करते हैं ऑर्गन इंडिया के इस बेहद खास कार्यक्रम में, जीवन एक अनमोल उपहार, जिसमें हम अंग दान के बारे में बात करेंगे। ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क यानी कि ऑर्गन इंडिया की पहल साल 2013 में पराशर फाउंडेशन ने की थी, जो कि दिल्ली की एक गैर सरकारी सामाजिक संस्था है। अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम अंगदान, देहदान और उत्तक दान के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम ऑर्गन फेलियर या अंगों के खराब होने की गंभीर समस्या से पीड़ित मरीजों को, जिनके पास ऑर्गन ट्रांसप्लांट या अंग प्रत्यारोपण के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, उन्हें ये सारी जानकारी देते हैं और वो अपने उत्तम इलाज के लिए क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, ये भी सारा कुछ हम बता रहे हैं। अगर आप में से किसी को भी अंग दान और देहदान के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जा सकते हैं। आपकी सहायता करके हमें बेहद खुशी होगी। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो लक्ष्य है वो आप सभी को अंग दान जो है ऑर्गन डोनेशन, देह दान जो है बॉडी डोनेशन और उत्तक दान जो है टिश्यू डोनेशन के बारे में जानकारी देना और समाज में इसके बारे में जागरूकता फैलाना है। इस प्रोग्राम में हम डॉक्टरों, अंगदान से जुड़े हुए लोगों से बात करेंगे और अंगदाताओं की कहानियाँ, ऑर्गन ट्रांसप्लांट या प्रत्यारोपण की जानकारी और आपको इन विषयों को क्यों जानना चाहिए, ये सारा कुछ बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज हमारे साथ है डॉक्टर गीतिका वशिष्ठ, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर ऑर्गन इंडिया की, और एक खास मेहमान उनके साथ है जो है डॉक्टर पी एन गुप्ता। डॉक्टर गुप्ता पारस हॉस्पिटल गुड़गांव में चीफ ऑफ नेफ्रोलॉजी के पद पर कार्यरत हैं तथा किडनी डिजीजेस और किडनी ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट है। आज के इस कार्यक्रम में हम डॉक्टर गुप्ता के साथ किडनी फंक्शंस, किडनी डिजीजेस, किडनी फेलियर और किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में बात करेंगे। ओवर टू यू डॉक्टर गीतिका।
1: डॉक्टर गुप्ता, हमारे सुनने वालों के लिए वक्त निकालने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी बीमारियाँ होती हैं जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है।
2: किडनी फेलियर मोटे तौर पर दो किस्म का होता है। एक जो एकदम आता है उसको हम एक्यूट रीनल फेलियर कहते हैं, और दूसरा किडनी फेलियर जो कि धीरे धीरे कर बढ़ता है, जिसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज बोलते हैं। जब किडनी का फंक्शन 15% या उससे कम हो जाता है और वो फंक्शन 3 महीने से ज़्यादा रहता है, तब हम मरीजों को सलाह देते हैं कि इस मरीज को अब किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है।

0: लक्षण जल्दी नहीं आते। आम तौर पर जो लक्षण होते हैं वो सुबह के टाइम पर उठकर आंखों पर सूजन या शाम तक वही सूजन शाम पैरों पर आना, रात को बार बार पेशाब के लिए उठना, भूख ना लगना, कमजोरी महसूस करना, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, अपने काम में पूरा ध्यान ना लगा पाना, हर वक्त थकावट महसूस करना, खून का बनना रुक जाना, ये सारे किडनी के लक्षण हैं। परंतु इन लक्षणों को आने में टाइम लगता है और जब ये लक्षण आ जाते हैं तब तक किडनी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी होती है। तो हम जो मरीजों को सलाह देते हैं वो आम तौर पर जिन मरीजों को किडनी की प्रॉब्लम आने की संभावना है उनको अपना साल में एक बार किडनी के टेस्ट जरूर कराने चाहिए। कौन से मरीज किडनी की समस्या के लिए ज़्यादा रिस्क पर हैं? वो मरीज जिनको कि शुगर की शिकायत है, वो मरीज जिनको कि हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, वो इंसान जो ज़्यादातर दर्द की दवाइयाँ खाते रहते हैं, ये ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं जिनको कि किडनी की प्रॉब्लम होने की संभावना है। तो हमें किडनी के लक्षणों का इंतज़ार नहीं करना चाहिए क्योंकि लक्षण बहुत लेट आते हैं। अर्ली डिटेक्शन मतलब जल्दी से किडनी की बीमारी को पकड़ने का तरीका सिर्फ रेगुलर स्क्रीनिंग है। उसके लिए हमको दो टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, एक होता है सीरम क्रिएटिनिन और एक पेशाब की जांच जिसको कि हम यूरिन रूटीन कहते हैं। इन दो जांचों से हम किडनी की बीमारी को जल्दी ही पकड़ सकते हैं।
1: इस ज़रूरी जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। ये बात हुई किडनी फेलियर किडनी डिजीजेस की, अब हम जानना चाहेंगे कि किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है।
0: किडनी ट्रांसप्लांट 20वीं सदी का एक अपने आप में चमत्कार है। इसमें ट्रांसप्लांट तब करा जाता है जब मरीज की किडनी का फंक्शन 15% से कम हो जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट में बहुत सारे मरीज की जांचें होती हैं जिसमें कि हम उसकी फिटनेस देखते हैं कि ये मरीज को ऑपरेशन करने से उसका कोई नुकसान तो नहीं होगा। इसी तरह से जो किडनी देता है जिसको हम डोनर कहते हैं उसके भी टेस्ट किए जाते हैं, उससे उसकी मेडिकल फिटनेस देखी जाती है कि उसकी हेल्थ को किडनी देने के बाद कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। अगर डोनर के टेस्टों में 19-20 का भी फर्क मिलता है और हमको ये लगता है कि इसका नुकसान हो सकता है किडनी डोनेशन के बाद, तो उस डोनर की हम लोग किडनी नहीं लेते। किडनी ट्रांसप्लांट में फैमिली में से कोई एक जना अपनी एक किडनी को डोनेट करता है और वो किडनी मरीज को पेट के अंदर लगा दी जाती है। उससे मरीज को अपना एक नॉर्मल जीवन व्यतीत करने का मौका मिलता है।
1: पूरा किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया है उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, अगर आप थोड़ा सा विस्तार से हमारे श्रोताओं को बता सके।
0: सबसे पहले हमको ये निश्चय करना होता है कि हाँ इस मरीज की जिसकी किडनी परमानेंटली फेल हो गई है इसको ट्रांसप्लांट करना है। उन टेस्टों को पूरा करने के बाद हमें फैमिली में से डोनर को ढूंढना होगा। डोनर आमतौर पर 18 से 65 साल का एक्सेप्ट किया जाता है, पर डोनर को डायबिटीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर डोनर को डायबिटीज़ है तो उसकी किडनी हम लोग नहीं लेते हैं। हल्का फुल्का ब्लड प्रेशर में वो किडनी दे सकता है, अगर उसका ब्लड प्रेशर एक आध गोली पर कंट्रोल्ड है तो यूजली दिक्कत नहीं आती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं ब्लड ग्रुप। जो मरीज का ब्लड ग्रुप है उसी से मिलता जुलता ब्लड ग्रुप डोनर का भी हो। जैसे अगर मरीज का ग्रुप ए है तो ए या ओ ग्रुप का डोनर उसको किडनी दे सकता है। जैसे बी डोनर का मरीज है, बी ग्रुप का मरीज है, तो बी ग्रुप या ओ ग्रुप का जना उसको किडनी दे सकता है। अच्छी बात यह है कि मेडिकल साइंस अब इतनी एडवांस कर गई है कि अगर कोई दूसरे ग्रुप का भी परिवार का सदस्य किडनी देना चाहता है तो मरीज का पहले ट्रीटमेंट करा जाता है और फिर हम किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जब मेडिकल फिटनेस पूरी हो जाती है कि देने वाले का नुकसान नहीं होगा और मरीज का इस ट्रांसप्लांट से भला होगा, तब फिर वो कागज़ हमको कमेटी में सबमिट करने होते हैं। उसके साथ ही कुछ लीगल पेपर वर्क होते हैं जो कि कमेटी मेंबर स्क्रीन करती है और उससे ये प्रूव करा जाता है कि ये दोनों जने आपस में जो कह रहे हैं संबंधित हैं। जैसे भाई भाई को दे रहा है तो कागज़ों के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि हाँ ये वाकई में भाई भाई है। जब कमेटी से क्लियरेंस आ जाती है तब फिर जाकर ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया आगे करी जाती है।
1: जैसा कि आपने कहा कि परिवार में से हम कोई एक जना किडनी अपनी डोनेट कर सकता है मरीज को, तो क्या आप बताएंगे कि परिवार में कौन कौन से मरीज आते हैं और यदि परिवार में से कोई नहीं है तो मरीज की कहां से किडनी की सुविधा हो सकती है?
0: देश में एक नियम है जिसको कि हम थोआ 2014 एक्ट के नाम से जानते हैं। इसमें एक कानून निर्धारित किया गया है कि कौन जना किसको किडनी दे सकता है। माँ बाप, भाई बहन, दादी दादा, ये सब नियर रिलेटिव में आते हैं।

0: और ये लोग आसानी से किसी भी मरीज को अपनी किडनी दे सकते हैं। दूर के रिश्तेदार जैसे चाचा, मामा, ताऊ, मौसी, मौसा, ये लोग भी किडनी दे सकते हैं, परंतु ये अदर देन नियर रिलेटिव की कैटेगरी में आते हैं। अगर परिवार जन में से कोई जना किडनी नहीं दे पा रहा है तो किडनी बाहर का कोई सदस्य नहीं दे सकता, ये गैर कानूनी है और नियम के खिलाफ है। जिन मरीजों के घर में डायबिटीज़ है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें आती है कि डोनर नहीं मिलता है। ऐसे मरीजों के लिए एक नेशनल रजिस्ट्री बनाई गई है जिसके नाम से नोटो नाम है, NOTTO, जिसमें कि उनको कैडेवर डोनेशन मिल सकता है। कोई ब्रेन डेड पेशेंट हुआ तो उसकी मार्किंग स्कीम है, उसके हिसाब से उस ब्रेन डेड पेशेंट की किडनी मरीज को मिल सकती है।
1: इस इंफॉर्मेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा अभी आपने बोला कि परिवार में से कोई किडनी दे सकता है और नाम बताए कौन कौन दे सकता है, तो ऑर्गन इंडिया की हेल्पलाइन जो हम रन करते हैं तो उसमें ये बहुत बार हमें कॉल आता है परिवार वालों का, वो बोलते हैं कि मैडम मैं किडनी देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बट मुझे ये नहीं पता कि उसके बाद मेरा जीवन कैसा होगा। यदि आप हमारे सुनने वालों को बताना चाहें कि किडनी डोनेट करने के बाद डोनर के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है।
0: किडनी डोनेशन का ऑपरेशन का लक्ष्य जो है मेडिकल साइंस में, वो ये है कि डोनर को कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते हैं फिटनेस देखने के लिए। जब डॉक्टरी तरीके से ये तय हो जाता है कि इस जने को अपनी किडनी देने के बाद कोई नुकसान नहीं होगा, तभी किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। जैसा मनुष्य दो किडनी के साथ है, वैसा ही डोनेशन के बाद भी होता है। कभी कभार कुदरत भी हमको एक ही किडनी के साथ भेजती है, तो ऐसा नहीं है कि उनको किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, वो लोग भी अपना नॉर्मल जीवन व्यतीत करते हैं। ये 50 साल से ज़्यादा लंबी स्टडीज हो चुकी हैं इस बात पर, जिसमें कि ये एंश्योर कर लिया गया है, ये पक्का कर लिया गया है कि किडनी डोनेशन के बाद डोनर की लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है।
1: और यदि हम बात करें किडनी रेसिपिएंट्स की, तो किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद मरीज के जीवन में क्या बदलाव आता है?
0: किडनी ट्रांसप्लांट अपने आप में एक चमत्कार आप कह सकते हो, क्योंकि डायलिसिस पर जो जीवन की स्पैन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद मरीज अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ और बिल्कुल नॉर्मल महसूस करता है। वो अपने सारे कार्य कर सकता है, अपने ऑफिस जा सकता है, अपनी बिजनेस कर सकता है। उसको ये नहीं महसूस होता कि वो बीमार है। अब वो अपने आप को बिल्कुल आपके और मेरे जैसा अपने आप को महसूस करने लगता है। हाँ, उसको दवाइयाँ ज़रूर जीवन भर के लिए खानी पड़ती हैं और वो दवाइयाँ उसकी कभी भी बंद नहीं होती।
1: ये देखा गया है कि पेशेंट को बता दिया जाता है कि उसे किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है, पर किसी कारणवश किडनी उपलब्ध नहीं हो पाती है, परिवार से कोई नहीं दे सकता, बाहर से भी नहीं हो पा रहा है, तो उस मरीज का जीवन कैसे व्यतीत होगा?
0: ऐसे मरीजों के लिए मेडिकल साइंस के पास दो तरह की विधियां उपलब्ध हैं, जिनको कि हम डायलिसिस के नाम से जानते हैं। डायलिसिस दो तरह से की जा सकती है, एक खून वाली डायलिसिस और दूसरी पानी वाली डायलिसिस या पेट वाली डायलिसिस, जैसा कि हमने काम तौर पर सुना है। खून वाली डायलिसिस में मरीज की बॉडी में से खून निकालकर एक स्पेशल फिल्टर होता है, उस पर उसको रन किया जाता है और ब्लड को क्लीन कर वही ब्लड पेशेंट को वापस चढ़ा दिया जाता है। अमूमन तौर पर मरीज हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या खून चेंज कर दिया जाता है, क्या हर डायलिसिस पर खून लगाना पड़ता है? ऐसा नहीं होता। जो मरीज के बॉडी में खून है उसी को ही हम क्लीन कर वापस मरीज को चढ़ा देते हैं। यह विधि जो डॉक्टरी सलाह रहती है मरीजों को, वो हफ्ते में 3 बार की रहती है और हर डायलिसिस करीब 4 घंटे की होनी चाहिए। परंतु कुछ मरीज जो बहुत दूर से ट्रेवल करना पड़ता है डायलिसिस कराने के लिए, प्लस अपने फाइनेंशियल रीजंस की वजह से, वो हफ्ते में 2 बार कराते हैं। आमतौर पर हमें कोशिश यही करनी चाहिए, अगर हम हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराते हैं तो हमारे को अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ और अच्छी क्वांटिटी ऑफ लाइफ मिलती है। दूसरी डायलिसिस की विधि, जो कि बहुत दूर पहाड़ों पर रहते हैं जिनके पास डायलिसिस की सुविधा नहीं है, वो पेट वाली डायलिसिस का ऑप्शन ले सकते हैं। उसमें पेट में एक ट्यूब लगा दी जाती है प्लास्टिक की, और उसके लिए पानी के बैग आते हैं 2-2 लीटर के। वो 2 लीटर के बैग पानी के पेट में भरे जाते हैं, करीब 3 से 4 घंटे वो पानी पेट में रखा जाता है और फिर उसको ड्रेन कर दिया जाता है। ऐसे प्रोसीजर को मरीज को घर पर दिन में 3 से 4 बार तक करना पड़ता है और पेट के अंदर ही डायलिसिस हो जाती है, खून की सफाई हो जाती है और मरीज अपने आप को नॉर्मल महसूस करता है।
1: इस जानकारी के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारे साथ अभी जुड़े हैं तो हम बात कर रहे हैं डॉक्टर पी एन गुप्ता से, जो पारस हॉस्पिटल्स गुड़गांव में चीफ ऑफ नेफ्रोलॉजी हैं और विशेषकर किडनी की बीमारियों तथा किडनी ट्रांसप्लांट पर काम करते हैं। डॉक्टर साहब ने आज हमें किडनी फंक्शंस, किडनी फेलियर और किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में बताया। अब हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से कि किडनी की बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। हमने किडनी डिजीज के बारे में सुना, किडनी फेलियर, किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में। अब अपनी किडनी को स्वस्थ रखने के लिए हमें रोजमर्रा के जिंदगी में क्या क्या नियम फॉलो करने चाहिए, अपनी डाइट, एक्सरसाइज, वो आप कृपया हमारे सुनने वालों को बताएं।
0: किडनी को स्वस्थ रखने के लिए सबसे जरूरी है कि हमको अपना वजन नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर हम मोटे हैं तो हमको रेगुलर एक्सरसाइज कर अपने वजन को कम करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर मरीज को डायबिटीज़ है तो वो किडनी फेलियर के लिए एक रिस्क फैक्टर है। ऐसे में उसको अपनी शुगर का कंट्रोल करना बहुत बहुत आवश्यक है। अगर वो शुगर को ठीक से कंट्रोल रखेगा तो किडनी की प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। दूसरा, अगर किसी मरीज को ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो उसको ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ नियमित रूप से खानी चाहिए और किडनी के टेस्ट साल में एक बार कराते रहने चाहिए। ब्लड प्रेशर अगर वो कंट्रोल रखेगा तो किडनी की प्रॉब्लम आने की संभावना कम हो जाएगी। हेल्दी फूड खाना चाहिए। बाय हेल्दी फूड से मेरा मतलब है स्वच्छ और ताज़ा पका हुआ खाना। जंक फूड जो आजकल की डेज में फैशन में आ गया है, बर्गर, पिज़्ज़ा, बच्चे लोग खाते हैं, मोटे होते जा रहे हैं, कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं, हमको रेगुलर व्यायाम करना चाहिए और एक गुड डाइट जिसको कहते हैं, जिसमें कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट बैलेंस्ड होता है, उस प्रकार की हमको डाइट लेनी चाहिए। साथ ही में हमको जो किडनी के लिए नुकसानदायक दवाइयां हैं जैसे कि दर्द की गोलियां, इनका सेवन कम से कम करना चाहिए। प्लस कुछ दवाइयां ऐसी भी हैं जिनमें कि हैवी मेटल्स होते हैं जैसे कि सोना चांदी, ये भी किडनी के लिए नुकसानदायक होते हैं। अगर हम इन दवाइयों का सेवन किसी और वजह से कर रहे हैं तो हमको अपनी किडनी पर ध्यान रखना चाहिए।
1: डॉक्टर गुप्ता, इन सभी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं कि आपने हमारे लिए समय निकाला और हमारे सुनने वालों को ये सब जानकारी दी। धन्यवाद। और इसी के साथ आज हमारे प्यारे श्रोताओं के लिए भजन सम्राट और हमारे संस्था के एक अहम मार्गदर्शक श्री अनूप जलोटा जी ने एक सुंदर सा मैसेज भेजा है। आइए सुनते हैं अनूप जी आप सबसे क्या कहना चाहते हैं।
2: हिंदुस्तान में हर साल करीब 5 लाख लोग इसलिए मर जाते हैं कि उनको वो ऑर्गन नहीं मिलते जिससे कि उनकी ज़िंदगी बच सकती है। आप ऑर्गन डोनेट करके हीरो बन सकते हैं। हीरो बनने के बहुत से तरीके हैं, ये भी एक तरीका है हीरो बनने का कि ज़िंदगी भर कोई आपकी बातें करेगा। एक व्यक्ति 8 लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। 8 लोगों को आप ऑर्गन डोनेट करते हैं केवल एक बॉडी से, और यदि आप ऐसा करते हैं तो वो सब लोगों के तो आप हीरो हो गए। तो कितना अच्छा होगा कि इस बात को समझें और लोगों को समझाएं। हमारा मकसद यही है कि ये खबर सब तक पहुंचाएं, सब इस बात को जानें कि एक आदमी 8 लोगों की जान बचा सकता है। उन 8 लोगों के आप हीरो बन जाएंगे। तो आज ही प्लेश करिए और हमारा साथ दीजिए।
3: थैंक यू डॉक्टर गीतिका, थैंक यू डॉक्टर गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप सभी जान गए हैं कि अंगदान एक बेहद खूबसूरत विरासत है जिसके जरिए हम मृत्यु में भी 8 लोगों की जिंदगी खुशनुमा बना सकते हैं। मैं आप सभी सुनने वालों को बता दूं कि अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org विजिट कर सकते हैं। आप अपने सवाल हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 9659952810, या फिर आप हमें info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। और कॉल करना चाहें तो इस नंबर पे कॉल कीजिए 0114183832। अगर आप अंगदान का संकल्प लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर एक फॉर्म भरकर अनेक जिंदगियों को आशा की किरण दिखा सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद अपने परिवार के लोगों को जरूर बताइएगा और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दीजिएगा। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और सर्टिफिकेट भेजा जाएगा जिसे आप सबको दिखा सकते हैं और दूसरों को प्रेरित भी कर सकते हैं। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपका दिन शुभ हो यही कामना करती हूँ। फिर मिलेंगे, धन्यवाद और नमस्कार।
4: तो आज के इस कार्यक्रम में हमने बहुत सी बातें जानी अंगदान से जुड़ी हुई, ऑर्गन इंडिया के सौजन्य से कार्यक्रम हम आपके बीच लाए। रेडियो मानव रचना 107.8 की इस कोशिश में अगर आप भी हमारा साथ देना चाहते हैं और अपनी राय और अपनी कुछ खास विचार हमारे समक्ष रखना चाहते हैं तो हमें मैसेज या कॉल करें 8010781078 या फिर हमारे इंटरनेट रेडियो रेडियो मानव रचना के माध्यम से आप ऐप डाउनलोड करके भी इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं और जिस भी व्यक्ति के साथ आप शेयर करना चाहें दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी शेयर कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जीवन एक अनमोल उपहार, इसकी अहमियत को समझिए और अपना ख्याल रखिए। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और एक बार फिर से आ गई हूँ आपके लिए लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम सक्सेस मंत्रा। जी हाँ, सक्सेस मंत्रा लेकर आ जाती हूँ हर हफ्ते आपके लिए कोई नई इंस्पायरिंग जर्नी जो हमें सिर्फ इंस्पायर ही नहीं कर रही होती है बल्कि हमें मोटिवेट भी करती है कि हम भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हर इंसान के लाइफ में ना एक ऐसा वक्त आता है जब उसे लगता है कि शायद सब कुछ खत्म हो रहा है। कभी स्टडीज का प्रेशर होता है उसके ऊपर, तो कभी करियर की टेंशन होती है, तो कभी फेलियर का डर होता है, तो कभी दूसरों से कंपैरिजन का डर होता है। लेकिन दोस्तों, जीत उसी की होती है जो मुश्किलों के सामने रुकता नहीं है बल्कि खुद को और ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। सक्सेस का नाम सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता बल्कि सक्सेस का असली मतलब होता है खुद पर भरोसा रखना और हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना। इसी सोच के साथ हम लेकर आए हैं एक ऐसा शो जो आपको मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा और जिंदगी को नए नजरिए से देखना सिखाएगा। आज के हमारे स्पेशल एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर और एंटरप्रेन्योर की जिन्होंने लाखों लोगों की लाइफ को इंस्पायर किया है। जी हाँ, एक ऐसा नाम जो यूथ के दिल से डायरेक्टली कनेक्ट करता है। हम बात कर रहे हैं संदीप महेश्वरी की। आज उनकी वीडियोस और सेमिनार दुनिया भर में देखते हैं लोग, लेकिन उनकी जर्नी इतनी इजी नहीं थी जितनी हमें दूर से देखकर लगती है। मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले संदीप महेश्वरी ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स को देखा है, फेलियर्स को फेस किया है और कई बार सिचुएशंस ने उन्हें तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। उनका मानना है कि अगर आप सीखना बंद नहीं करते तो आप कभी हार नहीं सकते। आज के इस खास एपिसोड में हम जानेंगे उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में, साथ ही उनकी सक्सेस स्टोरी और उनकी लाइफ से मिलने वाले इंपॉर्टेंट लेसन के बारे में। हम बात करेंगे कि कैसे एक सिंपल सा लड़का अपनी मेहनत और पॉजिटिव थिंकिंग से लोगों की इंस्पिरेशन बन गया। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में मोटिवेशन और पॉजिटिविटी चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। ये है सक्सेस मंत्रा सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ आपके लिए प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज के इस खास सक्सेस मंत्रा में हम बात कर रहे हैं संदीप महेश्वरी की इंस्पायरिंग लाइफ जर्नी के बारे में। हर सक्सेसफुल इंसान की कहानी में स्ट्रगल्स और चैलेंजेस जरूर होते हैं और संदीप महेश्वरी की लाइफ भी इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल ही माना जा सकता है। आज दुनिया उन्हें एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जानती है, लेकिन उनका सफर इतना इजी नहीं था। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं और हर डिफिकल्ट सिचुएशन से कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश भी की है। दोस्तों, संदीप महेश्वरी का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में दिल्ली में हुआ था। उनकी फैमिली का एल्यूमिनियम का बिजनेस था जो कुछ टाइम बाद लॉस में चला गया। घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक होने लगी थी और इसी वजह से उन्होंने बहुत छोटी ही एज में रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना भी शुरू कर दिया था। कॉलेज के टाइम पर ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उन्हें लाइफ में कुछ अलग करना है, लेकिन सक्सेस उन्हें डायरेक्टली नहीं मिली। उन्होंने कई डिफरेंट बिजनेस ट्राई किए लेकिन उसमें से बहुत सारे फेल हो गए। कभी मार्केटिंग का काम किया तो कभी मैन्युफैक्चरिंग का काम किया, लेकिन हर जगह डिफिकल्टीज सामने आ रही थी। इसी बीच उन्होंने मॉडलिंग इंडस्ट्री में भी काम किया। मॉडलिंग के दौरान उन्होंने देखा कि बहुत सारे यंग मॉडल्स एक्सप्लॉयटेशन और स्ट्रगल का सामना कर रहे हैं। ये चीज उन्हें अंदर से छू गई और उन्होंने डिसाइड किया कि वो कुछ ऐसा करेंगे जो दूसरों की हेल्प भी करें और उन्हें एक बेटर प्लेटफॉर्म भी दे। और बस यहीं से बदला उनका सफर। उनका इंटरेस्ट फोटोग्राफी में आ गया। धीरे धीरे उन्होंने फोटोग्राफी सीखी और इसी फील्ड में हार्ड वर्क करना शुरू किया। और दोस्तों, सबसे इंस्पायरिंग बात तो ये है कि कितने फेलियर्स के बाद भी संदीप महेश्वरी ने कभी गिव अप नहीं किया। वो हमेशा कहते हैं कि फेलियर से डरना नहीं चाहिए क्योंकि फेलियर ही सक्सेस की पहली स्टेप होती है। उन्होंने अपनी हर गलतियों से कुछ नया

सीखा और खुद को और ज्यादा मजबूत बनाया। आज उनकी स्टोरी हमें ये सिखाती है कि लाइफ में प्रॉब्लम सबके पास होती है, लेकिन जो इंसान पॉजिटिव सोच और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है और वही इंसान एक दिन सक्सेसफुल जरूर बनता है। तो दोस्तों, संदीप महेश्वरी की जर्नी हमें मैसेज देती है कि स्ट्रगल चाहे कितना भी क्यों ना हो, अगर डेडिकेशन और सेल्फ बिलीव स्ट्रांग हो आपका, तो सक्सेस जरूर मिलती है। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा में हम बात कर रहे हैं एक इंस्पायरिंग जर्नी की, जिनकी जर्नी के साथ आज हम चल रहे हैं। उनका नाम है संदीप महेश्वरी। जी हाँ, आज हम इनकी इंस्पायरिंग सक्सेस जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक हमने जाना कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स और फेलियर्स का सामना किया, लेकिन अब सवाल ये आता है कि इतनी डिफिकल्टीज के बाद आखिर उन्होंने सक्सेस को कैसे अचीव किया, कैसे एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़का लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गया। चलिए जानते हैं उनकी लाइफ में उस टर्निंग पॉइंट के बारे में जिसने उनकी पूरी जर्नी को ही बदल दिया। दोस्तों, फोटोग्राफी में इंटरेस्ट बढ़ने के बाद संदीप महेश्वरी ने इस फील्ड में सीरियसली काम करना शुरू किया। उन्होंने सिर्फ फोटोज ही क्लिक नहीं की बल्कि फोटोग्राफी को एक नए लेवल पर भी लेकर गए। साल 2003 में उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जहां पर उन्होंने बहुत कम टाइम में थाउजेंड्स फोटोग्राफ क्लिक की। ये अचीवमेंट उनके कॉन्फिडेंस को और भी ज्यादा मजबूत बनाने वाली थी। धीरे धीरे उन्होंने समझ लिया कि अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो सिर्फ हार्डवर्क ही नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क और पेशेंस रखना भी बहुत जरूरी है। इसी सोच के साथ उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था इमेज बाजार। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पर इंडियन मॉडल्स और इंडियन इमेजेस को प्रोफेशनली रिप्रेजेंट किया गया और उस वक्त मार्केट में इंडियन फेस की क्वालिटी इमेजेस बहुत कम अवेलेबल थी और संदीप महेश्वरी ने इसी प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बना दिया। शुरुआत में उन्हें बहुत से चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा। बिजनेस को ग्रो करना इजी नहीं होता और कभी क्लाइंट्स की प्रॉब्लम तो कभी फाइनेंशियल इश्यूज और कभी कंपटीशन का प्रेशर, लेकिन उन्होंने हर चैलेंज का सामना बहुत ही कामली और पॉजिटिव तरीके से किया। धीरे धीरे इमेज बाजार सक्सेसफुल होने लगा और आज वो दुनिया का सबसे बड़ा इंडियन इमेज कलेक्शन में से एक माना जाता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ बिजनेस सक्सेस ही उनकी पहचान नहीं बनी बल्कि रियल पॉपुलैरिटी उन्हें तब मिली जब उन्होंने फ्री मोटिवेशनल सेमिनार देने शुरू किए। जी हाँ, उन्होंने यूथ को सिंपल लैंग्वेज में लाइफ के इम्पोर्टेंट लेसन को समझाना शुरू किया। इसी वजह से लोग उनसे इंस्टेंटली कनेक्ट फील करने लगे। वो हमेशा कहते हैं कि अगर आपके पास क्लैरिटी है और आप खुद पर बिलीव करते हो तो दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम आपको रोक नहीं सकती। संदीप महेश्वरी की सक्सेस स्टोरी हमें सिखाती है कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती बल्कि उसके पीछे इयर्स ऑफ स्ट्रगल्स, पेशेंस और कॉन्फिडेंस होता है। अगर इंसान अपनी गलतियों से सीखता रहे और कभी गिव अप ना करे तो सक्सेस एक ना एक दिन उससे जरूर मिलती है। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर, और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। जी हाँ, सक्सेस मंत्रा में हम चलते हैं किसी इंस्पायरिंग जर्नी के साथ जो हमें इंस्पायर करती है अपनी लाइफ की जर्नी से, साथ ही मोटिवेट करती है कि हम भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमारे पास कुछ होगा तभी हम अपनी लाइफ में कुछ करेंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास कुछ ना होते हुए भी उन्होंने लाइफ में उस सक्सेस की ऊंचाइयों को हासिल किया है। साथ ही दोस्तों, आज के इस खास एपिसोड में हम चल रहे हैं आज संदीप महेश्वरी की लाइफ जर्नी के साथ। जी हाँ, उनकी लाइफ और उनकी इंस्पायरिंग थॉट के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं, लेकिन कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ अपनी सक्सेस की वजह से नहीं बल्कि अपनी सोच और पॉजिटिव इम्पैक्ट की वजह से लोगों के दिलों में जगह बना लेती है। संदीप महेश्वरी भी उन्हीं लोगों में से एक पर्सनालिटी है। आज लाखों यूथ उन्हें सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीकर ही नहीं मानते बल्कि एक गाइड और एक मेंटर की तरह भी देखते हैं। दोस्तों, संदीप महेश्वरी की सबसे खास बात यह है कि वो लाइफ की कॉम्प्लिकेटेड बातों को बहुत सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाते हैं। उनकी जो स्पीचेस होती है वो हैवी वर्ड्स या फिर आर्टिफिशियल मोटिवेशन नहीं होती है बल्कि वो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल होते हैं और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू लोगों को वो मोटिवेट करते हैं। इसी वजह से स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स और इवन पेरेंट्स भी उनकी बातों से कनेक्ट फील कर पाते हैं। आज के टाइम में जब बहुत सारे यंग पीपल स्ट्रेस, एंजाइटी और करियर कंफ्यूजन को फेस कर रहे हैं, तब संदीप महेश्वरी की वीडियो उनके लिए एक पॉजिटिव सपोर्ट की तरह काम करती है। उनकी ना एक फेमस लाइन है कि आसान है। दोस्तों, सिर्फ ये एक लाइन नहीं है बल्कि एक पावरफुल माइंडसेट है। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर इंसान अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखे और कॉन्फिडेंस के साथ काम करे तो मुश्किल चीजें भी पॉजिटिव बन सकती है। वो हमेशा कहते हैं कि सबसे बड़ा रिस्क होता है कुछ ना करना। अगर इंसान ट्राई ही नहीं करेगा तो वो कभी अपनी रियल पोटेंशियल को समझ ही नहीं पाएगा ना। संदीप महेश्वरी यूथ को ये भी समझाते हैं कि कंपैरिजन लाइफ का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है। हर इंसान अलग है, हर इंसान की जर्नी भी अलग होती है, इसलिए हमें दूसरों से कंपेयर करने की बजाय खुद को इम्प्रूव करने पर फोकस करना चाहिए। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और इनर हैप्पीनेस को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। उनका मानना है कि रियल सक्सेस वही होती है जहां पर इंसान अंदर से हैप्पी और सेटिस्फाइड हो। दोस्तों, उनकी लाइफ और थॉट हमें ये सिखाते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग और सेल्फ बिलीव लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। अगर इंसान खुद पर भरोसा रखे और खुद पर ट्रस्ट करना शुरू करे तो वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकता है। इसी वजह से संदीप महेश्वरी लाखों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सुनिए बहुत ही प्यार सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज की सक्सेस मंत्रा के स्पेशल एपिसोड डेडिकेटेड है संदीप महेश्वरी की इंस्पायरिंग लाइफ जर्नी को। दोस्तों, अब तक हमने उनके स्ट्रगल को जाना, उनकी सक्सेस को जाना, उनकी पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में भी जाना, लेकिन किसी भी सक्सेसफुल पर्सनैलिटी की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उनसे मिलने वाला लाइफ लेसन। क्योंकि असली इंस्पिरेशन तब मिलती है जब हम

किसी की जर्नी से कुछ सीखें और सीखकर अपनी लाइफ में उसे अप्लाई भी करें। और संदीप महेश्वरी की लाइफ हमें ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेसन देती है जो हर एज ग्रुप के लोगों के लिए काफी यूजफुल होते हैं। सबसे पहला लेसन जो हमें उनकी लाइफ से मिलता है वो है नेवर गिव अप। दोस्तों, संदीप महेश्वरी ने अपनी लाइफ में कई फेलियर्स को फेस किया है, बहुत सारे बिजनेस फेल हुए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आई और डिफिकल्ट सिचुएशन भी सामने आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी कभी। अगर वो फेलियर के बाद रुक जाते तो शायद आज दुनिया उन्हें जानती ही नहीं। ये लेसन हमें सिखाता है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत कम समय के लिए होते हैं, लेकिन अगर हम हिम्मत ना हारे तो सक्सेस हमें जरूर मिलती है। और दूसरा इम्पोर्टेंट लेसन है सेल्फ कॉन्फिडेंस। संदीप महेश्वरी हमेशा कहते हैं कि अगर आप खुद पर बिलीव करते हो ना तो दुनिया भी आप पर भरोसा जरूर करेगी। बहुत बार क्या होता है, लोग दूसरों की ओपिनियन की वजह से अपने सपनों को छोड़ देते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हर सक्सेसफुल पर्सन को कभी ना कभी क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ता है, इसलिए दूसरों की नेगेटिविटी से ज्यादा अपनी एबिलिटी पर फोकस करना ज्यादा जरूरी है। और जो तीसरा लेसन है वो है पॉजिटिविटी। दोस्तों, लाइफ में ना हर किसी के पास प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन एक पॉजिटिव माइंडसेट ही है जो हमें स्ट्रांग बनाता है। संदीप महेश्वरी का मानना है कि हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। अगर हम फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे तो हम इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग बनेंगे। उनकी स्पीचेस में इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है कि उसकी वजह से यूथ अपने आप ही मोटिवेट हो जाता है। और इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि कंपैरिजन से बचना। जी हाँ, आजकल सोशल मीडिया के टाइम में लोग खुद को दूसरों से कंपेयर करके अननेसेसरी स्ट्रेस ले लेते हैं, लेकिन संदीप महेश्वरी कहते हैं कि हर इंसान यूनिक होता है और हर किसी की जर्नी थोड़ी सी अलग है, इसलिए हमें अपनी ग्रोथ और अपनी गोल्स पर फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों, संदीप महेश्वरी की लाइफ हमें ये सिखाती है कि कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी और कंसिस्टेंसी के साथ कोई भी इंसान अपनी लाइफ को बेटर बना सकता है। सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन सकता है। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा में हम बात कर रहे हैं संदीप महेश्वरी की इंस्पायरिंग जर्नी की, जी हाँ, और उनके लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में। दोस्तों, किसी भी सक्सेसफुल इंसान की असली पहचान सिर्फ उसकी अचीवमेंट से नहीं होती है, बल्कि उस बात से होती है जो वो दूसरों की लाइफ में कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट को क्रिएट कर रहा है। और संदीप महेश्वरी ने अपने स्पीचेस के थ्रू लाखों लोगों की थिंकिंग को चेंज किया है। और आज उनकी वीडियोस सिर्फ मोटिवेशन ही नहीं देती है, बल्कि लाइफ को बेटर तरीके से समझने में भी हेल्प करती है। दोस्तों, आज के टाइम में बहुत सारे यंग पीपल स्ट्रेस, फियर और ओवर थिंकिंग का सामना करते हैं, करियर का प्रेशर हो या फिर फ्यूचर की टेंशन, और सोशल मीडिया कंपैरिजन की वजह से कई बार लोग मेंटली वीक फील करते हैं। तो बस ऐसे टाइम में संदीप महेश्वरी की सिंपल और प्रैक्टिकल बातें यूथ को कॉन्फिडेंस देती है। वो हमेशा कहते हैं कि लाइफ को डिफिकल्ट बनाना या इजी बनाना हमारी थिंकिंग पर डिपेंड करता है। अगर हम प्रॉब्लम को सिर्फ प्रॉब्लम की तरह देखेंगे तो हम स्ट्रेस में रहेंगे, लेकिन अगर हम उन्हें लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह समझेंगे तो वही प्रॉब्लम्स हमें स्ट्रांग बना देंगी। उनकी स्पीचेस की सबसे स्पेशल बात तो ये होती है कि वो डायरेक्टली दिल से कनेक्ट करती है। वो फैंसी वर्ड्स को यूज नहीं करते हैं, बल्कि रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और गलतियों के थ्रू लोगों को समझाते हैं कि फेलियर लाइफ का नॉर्मल पार्ट है। वो कहते हैं कि जितना बड़ा स्ट्रगल होगा उतनी ही बड़ी सक्सेस होगी। इसी वजह से स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स उनकी बातों से रिलेट कर पाते हैं। उन्होंने यूथ को ये समझाया है कि लाइफ में परफेक्शन से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। जी हाँ दोस्तों, संदीप महेश्वरी का एक और इम्पोर्टेंट मैसेज है कि हैप्पीनेस को फ्यूचर के साथ कनेक्ट मत करो। बहुत लोग सोचते हैं कि जब जॉब मिलेगी तब हैप्पी होंगे, जब सक्सेस मिलेगी तब खुश हो लेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि हैप्पीनेस को प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखना आना चाहिए इंसान को। जी हाँ, अगर इंसान छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीख ले तो लाइफ ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल लगने लगती है। आज लाखों लोग उन्हें सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीकर ही नहीं मानते हैं, बल्कि एक होप की तरह भी देखते हैं। उनकी जर्नी और थॉट्स हमें ये सिखाते हैं कि लाइफ में चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज क्यों ना आ जाए, अगर माइंडसेट पॉजिटिव होगा और सेल्फ बिलीफ आपका स्ट्रांग होगा तो हर चैलेंज को आप ओवरकम कर सकते हैं। और शायद इसी वजह से संदीप महेश्वरी आज यूथ के सबसे फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर में से एक माने जाते हैं। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज का हमारा सक्सेस मंत्रा इंस्पायरिंग एपिसोड डेडिकेटेड है संदीप महेश्वरी की लाइफ जर्नी को। दोस्तों, हम जब भी किसी सक्सेसफुल पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ उनकी अचीवमेंट्स को देखना इनफ नहीं होता, बल्कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उनकी जर्नी से मोटिवेशन लेना और उनकी बातों को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करना, ये बहुत ज़रूरी है। और संदीप महेश्वरी की लाइफ हमें एग्जैक्टली वही सिखाती है कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट से नहीं बल्कि माइंडसेट और कंसिस्टेंसी से मिलती है। दोस्तों, आज की फास्ट मूविंग वर्ल्ड में लोग बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, अगर कुछ चीजें उनके अकॉर्डिंग नहीं होती है तो वो डिसअपॉइंटेड फील करने लगते हैं। लेकिन संदीप महेश्वरी हमेशा पेशेंस और लर्निंग की इंपॉर्टेंस पर फोकस करते हैं।

करने से आता है। अगर इंसान अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस दोनों को समझ ले तो वो मेंटली स्ट्रांग बन जाता है। दोस्तों, संदीप महेश्वरी की जर्नी ये भी सिखाती है कि लाइफ में लर्निंग कभी स्टॉप नहीं होनी चाहिए। हर एक्सपीरियंस, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है। वो कहते हैं ना कि सक्सेसफुल वही होता है जो हर सिचुएशन से सीखकर आगे बढ़ता रहता है। इसी वजह से उनकी स्पीचेस सिर्फ मोटिवेशन ही नहीं देती है, बल्कि लोगों को लाइफ को प्रैक्टिकल वे में समझने में हेल्प करती है। आज के एपिसोड में हम एक सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज मिला है। अगर आपके अंदर सेल्फ बिलीफ है, पेशेंस है और पॉजिटिव थिंकिंग है, तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। फेलियर से डरने की बजाय उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि वही फेलियर्स हमें स्ट्रांग और मैच्योर बनाते हैं। तो दोस्तों, हमेशा खुद पर भरोसा रखिए, पॉजिटिव सोचिए और अपने सपनों के लिए कंटिन्यूसली हार्डवर्क करते रहिए। सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। सुनिए बहुत ही प्यार सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड।

आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज हमने सक्सेस मंत्रा में बात की संदीप महेश्वरी की इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। दोस्तों, उनकी स्टोरी सिर्फ एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या फिर मोटिवेशनल स्पीकर की स्टोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की जर्नी है जिन्होंने स्ट्रगल्स को, फेलियर्स को और डिफिकल्ट सिचुएशंस के बाद भी

खुद पर कभी भरोसा नहीं खोया और शायद इसी वजह से आज लाखों लोग उन्हें अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। आज के एपिसोड में हमने जाना कि कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले संदीप महेश्वरी ने अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो या फिर कोई फेल्ड बिजनेस, और अनसर्टेनिटी के बावजूद उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया। उन्होंने हर फेलियर से कुछ सीखा और खुद को और ज्यादा स्ट्रांग बनाया। ये बात हमें भी इंस्पायर करती है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो सक्सेस हमें जरूर मिलेगी। दोस्तों, उनकी स्पीचेस और थॉट्स यूथ के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी की तरह है। वो हमें ये समझाते हैं कि कंपैरिजन से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। दूसरों की सक्सेस देखकर डीमोटिवेटेड होने की बजाय हमें अपने गोल्स और अपने ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए। हर इंसान की जर्नी अलग होती है, हर किसी का सक्सेस टाइमिंग भी डिफरेंट होता है, इसलिए पेशेंस रखिए और कंसिस्टेंसी रखिए जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संदीप महेश्वरी का एक सिंपल सा मैसेज है कि लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, खुद पर बिलीव करो, मिस्टेक से ही सीखोगे और हर दिन बेटर बनने की कोशिश करो। दोस्तों, कई बार हम सिर्फ डर की वजह से ना अपने सपनों को ट्राई नहीं करते, लेकिन याद रखिए, फेलियर से बड़ा कोई टीचर नहीं होता। अगर हम ट्राई करते रहेंगे और सीखते रहेंगे तो एक ना एक दिन सक्सेस हमें जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज का एपिसोड यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है कि संदीप महेश्वरी की जर्नी और उनके थॉट्स ने आपको मोटिवेट जरूर किया होगा। हमेशा खुद पर भरोसा रखिए, पॉजिटिव रहिए और अपने सपनों को फॉलो करते रहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सक्सेस मंत्रा सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। वक्त हो गया है मेरा आप सभी से इजाजत लेने का। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और नई इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी के साथ, एक और नई मोटिवेशनल जर्नी के साथ। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, स्टे कॉन्फिडेंट एंड कीप ग्रोइंग, और जुड़े रहिए और सुनते रहिए अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन्ज मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी बातें होती हैं। हर शनिवार आपको ना अलग अलग जगहों पर घूमने के लिए लेकर के जाती हूँ और बहुत सारी बातें करते हैं, उस जगह के बारे में जानते हैं, उस जगह के देखिए हम ट्रेडिशंस के बारे में, वहाँ पर कल्चर के बारे में, लोगों के बारे में, वहाँ के खान पान के बारे में बात करते हैं। और अगर आप भी किसी ऐसी जगह घूमने के लिए गए हैं जो जगह आपको बड़ी पसंद है, या फिर कोई ऐसी जगह के बारे में जानना चाहते हैं जो जगह को आप जैसे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो ज़रूर हमें लिख करके भेज सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078। मुझे आपके मैसेजेस का रहेगा इंतज़ार और फिलहाल कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, इंजॉय कीजिए ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये प्रोग्राम लेकर के आती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी बातें होती हैं। आज अपने इस प्रोग्राम में ना आपको एक ऐसी जगह ले जाने वाली हूँ जहाँ हवाओं में पुराने वक्त की महक है और नज़ारों में सदियों पुराना सुकून। आज हम चल रहे हैं डलहौजी। इमेजिन कीजिए ऊंचे ऊंचे जो देखिए पेड़ हैं, बर्फीले पहाड़ हैं और वो पुराने जमाने के कॉटेजेस जो आपको 19th century की याद दिलाते हैं। मुझे याद है जब मैं पहली बार डलहौजी गई थी, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो ऐसा लगा था जैसे मतलब किसी इंग्लिश फिल्म का आप मतलब हिस्सा हो, इस तरह से आपको लगता है। वहाँ मतलब भीड़ में भी ना आपको सुकून, एक ठहराव महसूस होगा। आज के इस प्रोग्राम में आपको डलहौजी की उन ठंडी गलियों में ले जाऊंगी जहाँ देखिए अलग अलग वहाँ पर लोग जो हैं आपको मिलेंगे, वहाँ पर टेस्टी खाना है, वहाँ के बारे में आपको मैं ज़रूर बताऊंगी। वहाँ पर देखिए जो है एक मिनी स्विट्ज़रलैंड के पास भी एक रास्ता वहाँ से जाता है। अब मिनी स्विट्ज़रलैंड क्या है, क्यों कहा जाता है, ये सारी बातें हम करेंगे। साथ ही आज का जो सफ़र है ना वो बहुत ही प्यारा होने वाला है, बहुत ही कमाल होने वाला है, क्योंकि पहाड़ों की ठंडक जब रूह को छूती है तो शहर का सारा शोर एक पल में खामोश हो जाता है। आज डलहौजी आए हैं और बहुत सारी बातें करेंगे। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ। बहुत सारी होती हैं बातें। पुरानी इमारतें सिर्फ पत्थर नहीं होती हैं, वो उन लोगों की कहानियाँ होती हैं जो कभी वहाँ रहा करते थे। डलहौजी का नाम लॉर्ड डलहौजी के नाम पर रखा गया था, जो कि 1850s में यहाँ आए थे। उन्होंने ये जगह इतनी उनको पसंद आई कि उन्होंने इसे एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन बना दिया। जब आप यहाँ के जो मॉल रोड पे आप जाएंगे वहाँ चलते हैं तो आपको कई पुराने चर्चेस जो हैं वो दिखेंगे, दिखाई देंगे। और जैसे सेंट जॉन्स चर्च हो गया या सेंट फ्रांसिस चर्च हो गया, इनकी जो बनावट है, आर्किटेक्चर है, वो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वही पुरानी जो ईंट की दीवारें, जो स्टोन्स की दीवार होती है, और वुडन सीलिंग्स की बात करें तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। और यहाँ पर जो है इमारतें इतनी खूबसूरत हैं, बनावट बहुत सुंदर है यहाँ की। डलहौजी में याद हमें ये जगह दिलाती है कि कैसे वक्त बदल गया, पर ये जो पहाड़ी शहर है आज भी पुरानी शान को संभाले हुए है। और ये खासियत है इस जगह की, डलहौजी की। चलिए अब बात करेंगे मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया की, किसे कहा जाता है, बात करेंगे उस पर। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक, बात करती हूँ आपसे और बहुत सारी यहाँ पर ये प्रोग्राम लेकर के आती हूँ। और बातें हमारी चल रही हैं, आज मैं आपको बता रही हूँ डलहौजी के बारे में, द मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कुदरत ने जब ये मैदान बनाया होगा तो शायद वो खुद भी वहाँ थोड़ी देर रुका होगा, ऐसा कहा जाता है। डलहौजी सिर्फ एक घंटे की दूरी से यहाँ पर आप आ जाएंगे खज्जर, और इसे जो है मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। इमेजिन कीजिए एक बहुत बड़ा हरा भरा मैदान जिसे जिसके बीच में एक छोटी सी लेक है और चारों तरफ घने जो पेड़ है, देवदार के पेड़ हैं, वो आपको जंगल जो है इसका दिखाई देगा। और जब आप पहली दफ़ा जाएंगे खज्जर, जब आप जाएंगे, जब खज्जर को आप देखेंगे तो आपकी आंखें ना खुली की खुली रह जाएंगी। वहाँ की घास इतनी नरम है, आपका मन करेगा बस वहीं लेट जाए, बादलों को देखते रहे। और वहाँ लोग हॉर्स राइडिंग करते हैं, बच्चे जो है वो जो वहाँ के है वो जॉर्बिंग करते हैं। खज्जर सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये कुदरत के बनाया हुआ एक परफेक्ट वॉलपेपर है। अगर आप डलहौजी में हैं और खज्जर नहीं गए तो आपका सफ़र बिल्कुल अधूरा है, तो आप इस सफ़र को पूरा ज़रूर कीजिए और खज्जर ज़रूर जाइए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जिसके बाद आपको और भी बहुत सारी बातें आपसे करूँगी, फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे, बता दो उस वक्त मैं कहां था, बता दो उस वक्त तू कहां थी।

तुम्हारी लौ को पकड़ के जलने की आरजू में जब अपने ही आप से लिपट के सुलग रहा था, बता तो उस वक्त मैं कहां था, बता तो उस वक्त तू कहां थी।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ सफरनामा. सफरनामा ये खूबसूरत से प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ. बहुत सारी होती हैं बातें. अब लेकर के चल रही हूँ आपको अगली डेस्टिनेशन पे, और ये जगह है दैनकुंड पीक. जी हाँ, दैनकुंड पीक की बात करें, हवाओं का ना अपना एक संगीत होता है, बस सुनने के लिए शांति चाहिए. और जब आप डलहौजी के सबसे ऊंची चोटी पर यानी कि दैनकुंड पीक पर आते हैं, इस सिंगिंग हिल भी इसे कहा जाता है, क्योंकि जब हवा यहाँ के पेड़ों को देखिए इससे टकराती है, पेड़ों से टकराती है, तो संगीत जैसी आवाज आती है. आप जब वहाँ जाएंगे, ट्रैकिंग जब आप करेंगे, तो रास्ता इतना सुंदर है कि थकान ना आप भूल ही जाएंगे. ऊपर से आपको जो वहाँ पर बीज है या रावी है और चनाब के जो नदियाँ हैं, वो उसका जो व्यू है काफ़ी सुंदर मिलता है. वहाँ से छोटा सा आप फूलन देवी मंदिर है वहाँ पर, और वहाँ आप जा सकते हैं. जब टॉप पर आप खड़े होते हैं और बादल आपके आसपास से गुजरते हैं, तो आपको एहसास होगा कि दुनिया कितनी बड़ी और सुंदर है. दैनकुंड को देखिए उन लोगों के लिए है जो पहाड़ों की असली ऊंचाई को महसूस करना चाहते हैं. और अगर आप ट्रैकिंग पसंद करते हैं, ट्रैक करना पसंद करते हैं, तो आप ज़रूर जाइए. चलिए अगली डेस्टिनेशन पे लेकर के चलूंगी. वो क्या है, डलहौजी आए हैं तो अलग अलग जगह तो घूमेंगे ना यहीं के आसपास, तो चलिए घूमते हैं. फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम. फील गुड, फील लाइक.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। अब डलहौजी आज आपको लेकर के आई हूँ और यहाँ ना अलग अलग जगह आपको घूमने के लेकर के जा रही हूँ। वही डलहौजी आए हैं, पंचपुला ना जाए कैसे हो सकता है, द फाइव ब्रिजेस जैसे कहा जाता है। बहता हुआ पानी हमें सिखाता है कि रुकना जिंदगी नहीं, चलते रहना ही असली सफर है। डलहौजी के पास एक और पुरानी जगह है पंचपुला, और इसका मतलब होता है पांच पुल। यहाँ के छोटे छोटे जो झरने हैं, जो स्ट्रीम्स हैं, एक साथ मिलते हैं और ये जगह फ्रीडम फाइटर सरदार अजित सिंह की याद में बनाई गई है। और जब आप वहाँ जाएंगे वाटरफॉल के पास जब आप बैठते हैं तो गरम गरम आपको नूडल्स वहाँ पर मिल जाएंगे। तो बहुत सारी शॉप्स हैं वहाँ पर, आप मिल जाएंगे एक एक दो दो जो बैठते हैं लेकर, उनको आप उनको देख सकते हैं, वहाँ से मिल सकती है वो स्वाद। जब आप नॉर्मल घर पे नूडल्स बनाएंगे और एक जो वहाँ खाएंगे, दोनों में बहुत फ़र्क है। चाहे बनाने का तरीका सेम हो, आप चाहे कितना भी सीख लीजिए, लेकिन वो जो नज़ारे के साथ बैठ के खाना और उस टेस्ट, उस पानी, उस मतलब एनवायरमेंट के साथ, उस नेचर के साथ जुड़ा होना, वो वही हो सकता है। यहाँ आप जिप लाइनिंग जैसी छोटी एडवेंचरस जो चीज़ें हैं वो भी कर सकते हैं। साथ ही पंचकूला उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो थोड़ा वॉक करना चाहते हैं और पानी के शोर के बीच सुकून ढूंढना चाहते हैं, उनके लिए एक परफेक्ट स्पॉट है। जो एडवेंचर पसंद करता है उनके लिए भी बहुत अच्छी जगह है। चलिए इसी के साथ यहाँ के खाने के भी बारे में बात होगी, लेकिन फिलहाल अभी कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। डलहौजी आ जाए हम। डलहौजी का खाना ना बड़ा दिलचस्प है। यहाँ का जो मॉल रोड फूडी है, मतलब लोगों के लिए जो भी अगर आना चाहते हैं तो मॉल रोड एक बहुत ही कमाल जगह है, जन्नत में यहाँ पर कहूँगी उन लोगों के लिए। सुबह सुबह गरम गरम आलू के पराठे खाइए मक्खन मार के, उफ क्या बात है, बहुत टेस्ट लगता है। मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है। अगर आप यहाँ हैं तो कश्मीरी दम आलू या मोमो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पाते हैं तो यहाँ पर सिद्धू बहुत फेमस है। तो सिद्धू जो है ये एक हिमाचली डिश है, बहुत ही टेस्टी है, जो एक तरीके का स्टीम किया हुआ स्टफ्ड ब्रेड होता है और शाम को जब ठंड बढ़ जाए तो एक कप गरम हॉट चॉकलेट या जो चाय है उसको आप पीना बिल्कुल भी मत भूलेगा। डलहौजी का खाना आपके पेट को ही नहीं बल्कि आपकी रूह को भी गर्माहट देगा, बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर अगर आप शॉपिंग करते हैं तो देखिए डलहौजी में शॉपिंग का मतलब है गांधी चौक। यहाँ का जो मार्केट है यहाँ की बहुत ही वाइब्रेंट है। आपको यहाँ से बेहतरीन तिब्बतन कारपेट्स, पश्मीना शॉल्स और सबसे मशहूर हिमाचली कैप्स यहाँ से आपको मिल जाएंगी। और यहाँ से आप हैंडमेड पर्सेस भी आप खरीद सकते हैं जिस पर आप बहुत ही सुंदर सुंदर देखेंगे कि एम्ब्रॉयडरी की हुई है, बहुत ही खूबसूरत है, वो आप ले सकते हैं। यहाँ के लोकल हैंडीक्राफ्ट्स आपको वहाँ की कल्चर से जोड़ते हैं। शॉपिंग करते करते बीच में अगर मन किया तो जो चना भटूरा है उसे लीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। तो गांधी चौक डलहौजी का वो कोना है जहाँ हमेशा रौनक रहती है और जहाँ आप ढेर सारी यादें अपने साथ लेकर के जा सकते हैं, यानी कि शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप डलहौजी आए हैं तो गांधी चौक तो आपको जाना ही चाहिए क्योंकि इतनी खूबसूरत सी जगह है। और अगर आप यहाँ आए और गांधी चौक ना जाएं, ऐसे कैसे हो सकता है भाई। घर पर हम क्या करते हैं ना, बोल के आते हैं कि हम जा रहे हैं तो हमें पीछे से आवाज़ आती है कि जा रहे हैं कुछ लेके ज़रूर आइएगा। तो बस यादें जो हैं जो आपको लेकर के जानी है वो यही कि आपको हैंडमेड चीज़ें जो हैं यहाँ से लेकर के ज़रूर जानी है। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। अब इसी के साथ लेकर के आई हूँ आज आपको डलहौजी, और यहाँ पर डलहौजी की असली खूबसूरती की अगर बात करें तो सिर्फ उसके पहाड़ों में नहीं बल्कि यहाँ के लोगों और उनकी सदियों पुराने ट्रेडिशंस में छुपी है। यहाँ ज़्यादातर जो गद्दी ट्राइब है उनके जो लोग रहते हैं, और ये लोग मानते हैं कि पहाड़ उनके देवता हैं और हर पहाड़ की अपनी एक कहानी है। जब आप यहाँ से बात करेंगे, जो यहाँ पर लोग रहते हैं उनसे आप बात करेंगे तो वो बताएंगे आपको कि लोग जो है वो लोग सदियों से जो मौसम के हिसाब से अपना घर बदलते हैं। गर्मियों में उनका जो घर है ऊंचे पहाड़ों पर और सर्दियों में नीचे वादियों में अपना घर बनाते हैं। उनकी जो देखिए भेड़ बकरियां हैं उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती होती है और इतनी गहरी होती है कि वो उन्हीं की जो आवाज़ है वो समझते हैं। उनका पहनावा यानी कि उनकी लंबा जो चोला होता है, वुलन कोट की अगर बात करें, और कमर पर बंधी हुई काली जो एक डोरी होती है, डोरी होती है, ये सिर्फ कपड़े नहीं है, वो उनकी पहचान है। डलहौजी में आज भी शादियां और त्यौहार बिल्कुल पुराने तरीके से जो है वो मनाए जाते हैं। शादियां पुराने तरीके से होती हैं जहां पूरा गांव इकट्ठा होकर देखिए एक नाटी जो इनका ट्रेडिशन डांस है, नाटी जो डांस है वो करते हैं। जब वो ढोल और नगाड़े की आवाज़ पहाड़ों में गूंजती है तो ऐसा लगता है जैसे धरती जो है, ज़मीन जो है, खुद नाच रही हो। इन लोगों की जो सादगी है और उनका जो कुदरत के प्रति सम्मान है ये हमें सिखाता है कि हम देखिए असली अमीरी जो है ना वो ज़रूरी नहीं बैंक अकाउंट्स में हो, असली अमीरी होती है दिल से, और ये लोग दिल से बहुत अमीर हैं। तो चलिए इसी के साथ अब लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें इसी के साथ। देखिए, मैं अब बात कर रही हूँ डलहौजी के किचन की। डलहौजी के किचन का दरवाज़ा खोलते ही ना, यहाँ का खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि ठंड से लड़ने की ताकत देता है। सबसे पहले बात करते हैं सिद्धू की। ये एक तरह का लोकल ब्रेड है जो गेहूं यानी कि वीट से बनता है और इसके अंदर जो है वो खसखस या दाल की स्टफिंग जो है ये होती है और ये घी के साथ गरम गरम परोसा जाता है। जब आप इसे खाएंगे तो एक टुकड़ा घी में डुबोकर इसे आप खाइएगा तो ऐसा लगेगा जैसे पहाड़ों की सारी गर्माहट जो है वो आपके अंदर ही आ गई हो। इसके साथ साथ आता है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा मात्रा। ये एक चंबा की एक बहुत ही मशहूर डिश है जिसे दही और काले चने के साथ बनाया जाता है। इसमें ड्राई फ्रूट्स और बहुत सारे खड़े मसाले डलते हैं जिसकी खुशबू आपको रास्ते से ही दुकान तक खींच कर लेके आ जाएगी। और हाँ, ये मत भूलिएगा, देखिए पहाड़ों में जो है यहाँ पर एक और बड़ी टेस्टी चीज़ मिलती है और वो है कढ़ी चावल, राजमा चावल। इसका स्वाद बहुत अलग है, वो शहरों में बड़े बड़े होटल्स वाले जो है वो आपको नहीं मिलेंगे और यहाँ पर जो है आपको जो इसका फ्लेवर है थोड़ा सा अलग मिलेगा। यहाँ के लोग अक्सर अपना खाना जो है मिट्टी के चूल्हे पर बनाते हैं, इसीलिए इसमें खुशबू जो है थोड़ी अलग होती है और उसकी जो देखिए आँच होती है या मैं बोलूँ उसका जो स्मोकी फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा जो है डिश को और ज़्यादा कमाल बना देता है, टेस्टी बना देता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये मेहमान नवाजी का एक हिस्सा होती हैं जो डलहौजी के लोग बहुत अच्छे से करना जानते हैं। चलिए इसी के साथ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। देखिए, विश्वास की डोरी जब पहाड़ों से बनती है तो हर पत्थर में भगवान दिखाई देने लगते हैं। डलहौजी की हवाओं में सिर्फ ठंडक नहीं, एक गहरी आस्था भी है। यहाँ के लोग बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा त्यौहार है मिंजर फेयर, जो देखिए पास ही एक चंबा शहर में मनाया जाता है, पर इसका असर जो है वो डलहौजी में भी साफ दिखाई देता है। ये फेस्टिवल मकई यानी कि कॉर्न की खेती की खुशी में मनाया जाता है। लोग सिल्क के धागों से जो है बने मिंजर जो है उसको अपने कपड़ों पर बनाते हैं और रावी नदी में बहा देते हैं, ये प्रार्थना करते हुए कि साल भर खेत जो है वो हरे भरे रहें, अच्छे से खेती हो। और जब आप वहाँ जाएंगे तो लोग अपने देखेंगे कुल देवता को भी जो है ये पूछते हैं। जब कोई भी फेस्टिवल होता है तो देवताओं की पालकी जो है ये भी निकाली जाती है और लोग मिलकर भजन गाते हुए निकालते हैं। एक और बहुत ही जो है प्यारे ट्रेडिशन है यहाँ के जो बैसाखी मनाने का, जहाँ लोग नए कपड़े पहनते हैं और लोकल जो मेलों में यहाँ पर जो है जाते हैं, यहाँ के कुछ हर ट्रेडिशन में कुदरत का एक शुक्रिया अदा किया जाता है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि इन त्योहारों में ना घूमते हुए आपको एहसास होगा कि पहाड़ों में रहना सिर्फ एक एड्रेस नहीं है, ये एक जीने का तरीका है, जहाँ हर दिन कुदरत के ऊपर जो है देखिए जो अलग ही देखिए आप डिपेंडेंट तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ कुदरत आपको गिफ्ट भी देती है, उपहार जो है कुदरत को माना जाता है। तो ये भी मैं कहूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी में ठहराव चाहते हैं, जो लोग अपने काम में बहुत ज़्यादा मोनोटनस काम हो गया है, अब चाहते हैं कि बस थक गए हैं, अब कुछ और नहीं करना है, अब बस हमें फ्री होना है, या फिर हमें जो है और कोई काम नहीं करना है, अब इतनी थकावट हो गई है कि कहीं मन नहीं लग रहा है, फोकस पार नहीं बढ़ रहा है, तो डलहौजी आइए और वहाँ पर आप जो है शांत होके बस सोचिए खुद के बारे में और अपने काम के बारे में। अगर आप सोच रहे हैं तो वो आप हटा दीजिए, स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचिए, आपका क्या अच्छा हो सकता है वो आप सोचिए, पॉजिटिव रहिए। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ। बहुत सारी होती हैं बातें इसी के साथ। देखिए आज सफरनामा के इस प्रोग्राम में लेकर के आई आपके लिए बड़ी सारी बातें। आज आपको डलहौजी लेकर के गई और इसीलिए इसी के साथ अब वक्त जो है ये हो चला है आपसे इजाज़त लेने का, तो मुझे दीजिए इजाज़त। जी हाँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने आपके लेकर के आ जाता है रेडियो मानव रचना हमारी पूरी टीम। और इसी के साथ ये जो अब प्रोग्राम जो है अगर आप सुनना चाहते हैं दोबारा से ज़रूर सुन सकते हैं, इंटरनेट ऐप पे आप सुन सकते हैं। बस आपको क्या करना है, पॉडकास्ट सेक्शन में जाके आरजे साक्षी की फोटो को क्लिक करना है और वहाँ पर जाके आप सुन सकते हैं ये आज का खास प्रोग्राम। और अगर चाहते हैं कुछ और जानकारी प्राप्त करना तो बता सकते हैं। चलिए इसी के साथ अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत। कल होगी मुलाकात, होंगी बहुत सारी बातें। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। Feel good, feel life. Bye-bye. Take care.

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं प्रांका और लेकर के आ गई हूं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ। और ये मेरे लाइफ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये प्रोग्राम होता है 1 से 3 का बेहद खास प्रोग्राम जहां मैं आप लोगों के पास में होती हूं, आपसे ढेर सारी बातें करती हूं, गाने सुनाती हूं और मेरे साथ में एक्सपर्ट्स भी होते हैं। तो आज मेरे साथ में है एक बेहतरीन एक्सपर्ट जी, हाँ, जिनसे हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं। कुछ जिंदगी के चंद लम्हों से पर्दा हम हटाएंगे तो कुछ हकीकत से रूबरू होंगे, लेकिन ये सारी बातें ये हम करेंगे थोड़ी सी देर में क्योंकि प्रोग्राम अभी शुरू किया है। तो एक गाने से इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और साथ ही थोड़ी सी देर में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये कौन है, इनका नाम क्या है, किस क्षेत्र में ये क्या कर चुकी हैं। और सिर्फ इतना कहूंगी आपसे कि ये बहुत कुछ अपनी जिंदगी में अभी तक कर चुकी हैं। तो आपका कोई सवाल है, कोई मैसेज, कोई ऐसा ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहते हैं तो हमारा नंबर बहुत ही आसान है 8010781078। आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। तो आइए एंजॉय करते हैं गाना रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं प्रांका और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ।

0: मैं हूं प्रांका आपके साथ रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ। और चलिए अब जल्दी से बताती हूं कि आज स्टूडियो में हमारे साथ में कौन है। तो इनका नाम है नमिता राकेश जी। जी हाँ, तो आज हमारे साथ में है एक ऐसा नाम जो चार दशकों से हिंदी, उर्दू और पंजाबी साहित्य में लगातार अमिट योगदान दे रहा है। 35 साल भारत सरकार में उच्च पदों पर सेवाएं देने के बाद भी इनका सफर रुका नहीं है अभी तक, बल्कि और भी ज्यादा हम कह सकते हैं कि निखर रहा है। नमिता जी ने अब तक 3 दर्जन से ज्यादा किताबें, गजल और संग्रह, कविता संग्रह और भी बहुत कुछ जो इन्होंने किया है, और इनकी कई रचनाएं देश विदेश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में छप चुकी हैं, और CISF की स्वर्ण जयंती डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट भी इन्होंने ही लिखी है, जिन्हें आप सुनकर आपको हैरानी होगी कि महानायक अमिताभ बच्चन ने आवाज दी है। जी हाँ, उर्दू, हिंदी और पंजाबी तीनों भाषाओं में समान दक्षता, मंच संचालन, अभिनय, व्यक्तित्व, कला और साहित्यिक योगदान, इन्हें सचमुच मतलब मुझे लगता है कि हर तरीके से संपन्न बना रहा है। और ये अब तक भारत और विदेश दोनों जगहों से 200 से ज्यादा सम्मान, अनेक राज्य स्तरीय व अखिल भारतीय पुरस्कार तथा नेपाल, मॉरिशस, भूटान में अंतर्राष्ट्रीय सम्मान हासिल कर चुकी हैं। तो इतना सारा अनुभव, इतना सारा ज्ञान, इतना सारा टैलेंट, और ये तो अभी मैंने बहुत थोड़ा सा बताया इनके बारे में, यही सब नहीं बल्कि स्पोर्ट्स में भी ये काफी एक्टिव रही हैं। तो नमिता जी का बहुत बहुत स्वागत है। नमिता जी, इतना सारा, इतना बड़ा इंट्रोडक्शन, मतलब मुझे बोलते बोलते इतना अच्छा लग रहा है कि एक महिला जिसको ना बड़ा डर रहता है कि चार लोग क्या कहेंगे, घर में भी थोड़ा माहौल ऐसा रहता है कि चार लोगों को पता चलेगा कि भाई हमारी बेटी ऐसे, तो वो बड़ा ना एक ऐसा वाला माहौल हो जाता है जिससे बाहर निकल पाना कुछ ही महिलाएं ऐसा कर पाती हैं, जिनमें से नमिता जी एक हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आप क्या कहना चाहेंगी, जितने भी लिसनर्स आपको सुन रहे हैं आपका क्या कहना होगा?
1: सबसे पहले तो मैं प्रियंका आपको धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप के मार्फत आज मुझे आपके श्रोताओं से मिलने का अवसर मिल रहा है, और वास्तव में देखा जाए तो बहुत खुशी भी हो रही है मुझे यहाँ आकर। और रेडियो मनोरचना से मैं पहले भी जुड़ी रही हूँ, इधर काफी लंबे अंतराल के बाद आपके पास आई हूँ, तो बहुत एक खुशी का एहसास हो रहा है मुझे। आपने जो मेरा इंट्रोडक्शन अभी दिया, तो बहुत सी बातें और भी हैं जो अभी हम आपसे बात करेंगे, आप ऐसे ऐसे पूछेंगे। और ये जो सफर मैंने किया है अभी तक, वाकई मैं कहना चाहूंगी कि लोग कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो मैं कहूंगी कि मैंने कुछ खोया नहीं है अभी तक भगवान की दया से, और पाया ही पाया है। और मैंने कभी भी अपना ऑफिस, साहित्य की दुनिया, घर परिवार सबको साथ लेके चला है, और बहुत संतुष्ट हूँ मैं आज कि मैंने ऑफिस का काम भी पूरी ईमानदारी से किया, वहाँ भी मुझे बहुत से अवार्ड्स मिले, प्रशस्ति पत्र मिले मेरे काम के लिए। साहित्य की दुनिया में तो मुझे 1,500 से ऊपर मिल चुके हैं अवार्ड, बहुत ही प्रतिष्ठित अकेडमी अवार्ड भी मिले हैं। मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि हाल ही में मुझे मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी का अखिल भारतीय पुरस्कार मिला है मेरी गजल की किताब पर, जिसका नाम है 13 ख्यालों में। और उससे पहले मुझे हरियाणा हिंदी साहित्य अकेडमी का पंचकुला से अवार्ड मिला था पूरे हरियाणा में कि बेस्ट वुमेन राइटर, उसका अवार्ड मिला था। यूपी उर्दू एकेडमी से मुझे मेरी उर्दू की किताब पर भी अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा बहुत से इंटरव्यूज छपे हैं मेरे अखबारों में, मैगजीन्स में, देश विदेश में, और इतना लोगों का प्यार मिला है। मैं मंचों पे भी जाती हूँ, टीवी रेडियो में एंकर रही हूँ, मैं आकाशवाणी दिल्ली से बहुत सालों तक प्रोग्राम होस्ट करती रही हूँ, रेडियो में भी मैंने बहुत से प्रोग्रामों के संचालन किया है, और बड़े बड़े कवियों ने मेरे संचालन में पढ़ा है। कुछ मैंने छोटी फिल्में भी की, आपने पूछा कि कुछ और भी करती है, कुछ मैंने लघु फिल्में भी की हैं, कुछ मैंने नाटकों में काम किया है। और मैं अगर इसी में ये भी लपेट दूं कि मैं टेबल टेनिस की चैंपियन भी रही हूँ, अभी 1 साल पहले हमारी सोसाइटी में हुआ था, उसमें मैं विनर रही, ऑफिस में भी विनर रही। और इसके अलावा अभी कैरम बोर्ड का हमारा हुआ था टूर्नामेंट, उसमें मैं विनर साबित हुई थी। तो ये सब चाहूँ और जो मैंने अपने हाथ पैर फैलाए, तो सब में मुझे सफलता मिली। इसको मैं आप सब लोगों की शुभेच्छाओं का फल जानूं या ईश्वर का आशीर्वाद कहूं, सब कुछ मिला के और परिवार का सहयोग करूं, सब मिलाकर एक कंप्लीट मुझे एक बहुत ही संतुष्टि प्राप्त होती है।
0: पर बहुत इंटरेस्टिंग कि आप एक साहित्यकार वहां से एक्टर बन गए, स्पोर्ट्स में आ गए, मतलब टोटली डिफरेंट है, सारी फील्ड्स डिफरेंट है और फिर ऊपर से आप जॉब करते हैं, काम कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं।
1: जिम्मेदारी का जॉब था। और मैं आपको जॉब की बात आई तो बताऊं, मैं इलेक्शन कमीशन में रही हूं 7 से 8 साल, वहां पे आईएएस होते हैं। इनकम टैक्स में 10 साल रही हूं मैं असिस्टेंट डायरेक्टर, वहां पे आईआरएस होते हैं। उसके बाद लास्ट पोस्टिंग मेरी सीएसएफ में रही, वहां सब आईपीएस होते हैं। तो मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैंने आईएएस, आईआरएस और आईपीएस सबके साथ काम किया है और हर ऑफिस के प्रशस्ति पत्र मेरे पास दीवार पे लगे हुए हैं।
0: Nice. मतलब बहुत कुछ जानने सुनने सीखने को मिलने वाला है। आपका कोई सवाल है आप हमें मैसेज कर सकते हैं, नंबर बहुत आसान है 8010781078, याद भी हो गया होगा अब तक तो नंबर आपको, जल्दी से मैसेज कर दीजिए। मैं हूं प्रियंका और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और हमारे साथ इस वक्त हैं नमिता राकेश जी।

0: इस गाने को आपने सुना रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं प्रियंका, प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ, और हमारे साथ में है नमिता राकेश जी, जिन्होंने अपनी जिंदगी में और अभी तक भी बहुत सारा काम कर चुकी हैं। अच्छा, इतना सब कुछ आपने किया है और अभी भी आप लगातार अपनी जिंदगी में चीजें करते ही जा रहे हैं, एक बहुत ही ज्यादा ना इंस्पायरिंग होता है। जहां एक तरफ, और ये सवाल मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी पूछा और जवाब आपसे मैं लेना चाहूंगी कि एक महिला के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बजाय पुरुषों का बाहर निकलना, है ना, क्योंकि अगर समाज कहता है या घर के खुद परिवार वाले कहते हैं बेटा तुम ये कर लो, एक ऐसी महिला आप ही को हम देख रहे हैं जहां आप साहित्य भी उसमें भी हैं, फिर आप एक एक्टर भी हैं, फिर आप स्पोर्ट्स में भी हैं, फिर आप अभी भी एक्टिव हैं, इतना सब कुछ कर रही हैं, मतलब आपकी सीमाएं ही नहीं है, आप बिल्कुल उसके बियॉन्ड जाकर के काम कर रही हैं, ठीक है
1: जी।
0: तो आप क्या महिलाओं को मैसेज देना चाहेंगी, वो महिलाएं जो करना तो बहुत कुछ चाहती हैं लेकिन परिवार के दबाव में या खुद चार लोग क्या कहेंगे उसके एक प्रेशर में आकर के वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, बल्कि वो कुछ करना चाहती हैं, बनना चाहती हैं, आपका क्या मैसेज है?
1: देखिए, ऐसे लोगों के लिए मैसेज ये है कि जब करने पर आ जाए तो कोई काम नहीं मुश्किल, आओ चलो हथेली पे सरसों उगाएं। और मैंने कहीं ये भी लिखा है कि तेज हवाओं का रुख मोड़ने में मजा आता है, आंधियों के बीच चलने में मजा आता है, सीधी पगडंडी पर चले तो क्या चले, हमें कांटों के बीच गुलाब सा खिलने में मजा आता है।
0: वाह वाह।
1: तो ये उन बहनों के लिए है कि जो कुछ करना चाहती हैं और अगर करने पे आ जाएंगी तो वो करेंगी। मैं बहुत सी महिलाओं को जानती हूँ जो मुझे गाये बगाये रास्ते में मिली, घर से ऑफिस का रास्ता होता है, कुछ मिल जाती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर, तो कुछ एक महिलाएं मिली तो कहती थी शादी से पहले ही हमारा था लिखना पढ़ना जो था अब तो सब खत्म हो गया। मैं क्यों भाई, शादी को आप फुल स्टॉप क्यों मान रहे हो, मेरा तो शादी के बाद ही शुरू हुआ, तो मैं कैसे मानूं कि शादी एक बेड़ी है आपके लिए। तो होता है कई लोगों के साथ गृहस्थी में नहीं मिल पाता टाइम, लेकिन मैं ये सौभाग्यशाली रही कि मुझे परिवार का पूरा सहयोग मिला, हस्बैंड का सहयोग मिला, बच्चों का सहयोग मिला, और बराबर से मैंने सारी जिम्मेदारियां उठाई भी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा हाँ जाओ तुम जाओ और मैंने घर की जिम्मेदारी छोड़ दियो, उन्होंने कहा जाओ मैं गई लेकिन जिम्मेदारी पूरी करके गई। मुझे आज भी याद आता है, कहीं ना कहीं मुझे पिंच भी होता है कि एक बार मुझे एक फिल्म डायरेक्टर मिले थे दूरदर्शन केंद्र में, उन्होंने मुझे कुछ फिल्मों में देखा था, लघु फिल्मों में, तो उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि आपके साथ हम एक प्रोग्राम करना चाहते हैं, सीरियल बन रहा है तो आप उसमें फिट बैठ रही आप आ जाओ। तो मैं जॉब में थी, मैंने मना कर दिया, कहते नहीं हम आपके ना 15 दिन की शूटिंग कर लेंगे, आप बॉम्बे आ जाओ 15 दिन में हम आपको फ्री कर देंगे। लेकिन वो फरवरी मार्च का महीना था और मेरे बच्चे छोटे थे उस टाइम और उनको एग्जाम होने थे फाइनल, तो मैंने वो उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि घर परिवार प्रायोरिटी मेरी थी, फिर ऑफिस, फिर साहित्य, फिर कुछ और, क्योंकि वो कुछ और जो शौक था, शौक के लिए अपनी जिम्मेदारियां नहीं छोड़ सकती थी। ऐसे बहुत सी मौके आए कि मैंने अब तक जो अचीव किया है वो सबको साथ लेके किया है, और मैं ये भी दावे के साथ कह सकती हूँ कि मुझे आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कह रहे कि नमिता मेरा सहारा लेके आगे बढ़ी, मैं आगे बढ़ी तो अपने बलबूते पे बढ़ी। हाँ, उस जमाने में था कि बहुत से लोग आते हैं हाथ पकड़ने के लिए, और एक्सपीरियंस होते हैं ऐसे कि जो हाथ पकड़ने वाला है वो तो कहीं नाखून ना चुभा दे हथेली में, तो मैंने ऐसे हाथ सभी झटक दिए और अपने बलबूते पे आई हूँ, और फख्र के साथ कहती हूँ कि मैंने अचीव किया है अपने बलबूते पे, अपने हुनर के बदले किया है, और मैंने परिवार को, आज मेरे बच्चे सब सेटल्ड हैं, घर में ऐशो आराम की सारी चीजें हैं, ऑफिस में भी प्रेस्टीजियस जॉब में मैं रही, और दूसरी अपने जो चीजें थी वो भी मैंने पूरी तरह जी हैं, तो एक जिंदगी को भरपूर जिया है मैंने और अभी भी काम कर रही हूँ
0: जी। तो आपने अपनी जिंदगी को भरपूर जिया, लेकिन एक लाइन आपने इसमें कहा कि परिवार का और खास तौर पे हस्बैंड का सपोर्ट,
1: बिल्कुल,
0: तो हस्बैंड का केयरिंग होना, प्यार करने वाला होना, वो बहुत जरूरी है। तो परिवार से तो एक बार फिर भी उनको समझाया जा सकता है, लेकिन हस्बैंड का होना बहुत जरूरी है, अच्छा अगर वो हो तो। तो कहीं ना कहीं भाई बहुत सारी महिलाएं हैं जो ये सोच रही होंगी कि काश हम भी नमिता जी जैसे उस वक्त पे आगे बढ़े होते। तो देखिए, समय किसी के लिए भी नहीं रुकता, ये सच है, लेकिन समय हर किसी के लिए बूढ़ा नहीं होता, वो हमेशा जवान रहता है। आपकी उम्र चाहे जितनी हो, लेकिन कभी आप अपने आप को ओल्ड मत समझिए, ये मत समझिए कि अरे अब तो हमारा दौर गया, है ना, जब जागो तब सवेरा।
1: बिल्कुल, यहाँ एक बात जोड़ना चाहूंगी, कि देखिए आपको कुछ करना है तो पहला कदम तो आपको ही बढ़ाना है
0: जी।
1: रोकने वाले आएंगे वो तब रोकेंगे जब आपका कदम बढ़ा हुआ होगा। आप कदम ही नहीं बढ़ाएंगे तो रोकने वालों पे इल्जाम देना ठीक नहीं है। आप पहले कदम बढ़ाइए, अगर हुनर है तो उसको पहचानिए तब आगे बढ़िए। आपके हुनर को देखिए हो सकता है परिवार वाले भी मान जाए।
0: जी जी, तो बस ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए, अपने आप को कभी भी समय से पीछे मत समझिए, उसके साथ चलिए और एंजॉय कीजिए अगला गाना, और साथ ही बनी रहिए रेडियो मानव वैष्णव 107.8 एफएम पर। रेडियो से दूर हो गए हैं तो थोड़ा पास आ जाइए क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही है। नमिता जी हमारे साथ में है, एंजॉय करते हैं गाना रेडियो मानव वैष्णव 107.8 एफएम पर। मैं हूं प्रांका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ।

0: रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर मैं हूं प्रांका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। और हमारे साथ में है नमिता राकेश जी, जिन्होंने वो साहित्यकार हैं, साथ के साथ स्पोर्ट्स में भी रही हैं, साथ के साथ एक्टिंग फील्ड में भी रही हैं। तो इतना सब कुछ इन्होंने अभी तक किया है और ये जर्नी अभी यूं ही जारी है। तो मैं तो यही कहूँगी कि नमिता जी हमेशा खुश रहें, आगे बढ़ती रहें और सबके लिए प्रेरणा बनती रहें। लेकिन एक बहुत ज़रूरी है कि जब एक एक्सपर्ट आकर अपने जीवन से कुछ सिखा करके जाए तो एक यू नो चीज़ें समझ में भी आती है और उसके बाद जो नज़रिया होता है वो हमारा अपनी ज़िंदगी को लेकर के चेंज होता है। इसलिए आज हमारे साथ में है ताकि आप सबका भी अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को लेकर के जो नज़रिया है वो बदले और पॉजिटिव नज़रिया वो सामने आए। तो नमिता जी, आज का जो यूथ है उनके बारे में बात करें
1: जी,
0: तो काफी चीजें चेंज हो गई हैं।
1: बहुत
0: 80s का दौर एक अलग समय रहा है, फिर एक 90s आया, 90s का दौर फिर अलग रहा, लेकिन अब जो है, अब Gen Z का जमाना है, राइट? आप क्या कहना चाहेंगे, कितना डिफरेंस आया उस वक्त में, अगर मैं 80s की बात करूँ, तब में और अब में?
1: प्रियंका जी, आपने जो सवाल किया है कि यूथ के बारे में, ये 80 का दशक था, 90 का दशक था, अब का जो टाइम चल रहा है उसमें काफी अंतर आ गया है। हाँ, मैं मानती हूँ अंतर आ गया है। और हम लोगों के जो ये यंग जनरेशन है, आज की जनरेशन है, उसके ऊपर मैं ये तो कहूंगी कि उनकी बेचारगी है कि उनके पास समय ही नहीं है अपनी पढ़ाई से इतर कुछ करने का, अपनी जॉब से इतर करने का। क्योंकि मेरे अपने बच्चे हैं, मैं देखती हूँ सुबह 9:30 बजे से रात देर तक कॉल पे लगे रहते हैं, या ऑफिस जाते हैं, या आना जाना ट्रांसपोर्ट करते हैं एक शहर से दूसरे।

0: आपकी थाली में अगर साहित्य नहीं परोसा जा रहा है तो यूथ को कैसे पता होगा साहित्य क्या है। एक एग्जांपल देती हूँ मैं कि बहुत एक दौर था और अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा है, हास्य कवि सम्मेलन। जहाँ देखिए हास्य कवि सम्मेलन, कवि सम्मेलन तो छुप गया, हास्य कवि सम्मेलन। और हास्य कवि सम्मेलन में 6-7 जो होते हैं हास्य कवि, वो खड़े हो जाते हैं, एक का शुक्ला दूसरा सुना रहा है, दूसरे का तीसरा सुना रहा है, कविता के नाम पे 2 मिनट की कविता। तो लोगों ने ये समझ लिया था कि हास्य कवि सम्मेलन ही कविता है। मैंने 2004 में अखिल भारतीय कवित्री सम्मेलन किया, पूरे देश भर से कवित्रियां बुलाई। मेरी डीजी हैं सरोज बालाजी, जो IRS हैं, इनकम टैक्स से मेंबर CBDT बोर्ड रिटायर हुई हैं, वो उनको मैंने चीफ गेस्ट बनाया। उस समय मैं इनकम टैक्स में थी। 3 से 4 घंटे मेरा वो कवित्री सम्मेलन चला, एक चुटकुला भी किसी ने नहीं सुनाया और पूरी पब्लिक बैठी रही। तब उनके ये वर्ड्स थे कि नमिता कवि सम्मेलन ऐसा भी होता है, मुझे आज पता चला, वरना तो मैं समझती थी कि चुटकुले ही कविता सम्मेलन होते हैं। तो हम उसको जो परोसेंगे वो वही तो खाएगा। यूथ की गलती नहीं है, यूथ को हम दे क्या रहे हैं, यूथ के पास समय नहीं है। उस 2 मिनट के समय या तो वो रील देख रहा है, या वो सो रहा है, या वो गाने सुन रहा है। साहित्य के प्रति उनका झुकाव इसलिए नहीं है क्योंकि हम साहित्य परोसा नहीं जा रहा, किताबों से दूर हो चुके हैं, ऑनलाइन का जमाना है। YouTube देखा फिर आगे किसका दिया, फिर दूसरा YouTube देखा वो किसका दिया, किताबें पढ़ने का समय नहीं है। इसीलिए ये डाइवर्ट हुआ कि ई बुक्स आ रही हैं आजकल, ई मैगजीन की भरमार है, तो लोग जो हार्ड कॉपी वो पढ़ना भूल चुके हैं। लेकिन 5 से 10% लोग ऐसे हैं जो अभी भी पढ़ते हैं, मैंने देखा ऐसे लोगों को। तो हम टोटली नहीं कह सकते कि, लेकिन बात वही है कि हम उनको जब देंगे तभी तो वो जानेंगे है क्या।
1: परसेंटेज कम है,
0: परसेंटेज कम है
1: को लेकर।
0: तो बच्चा जब 9th-10th में आता है, इवन प्राइमरी में भी होता है, 1st-2nd-3rd में मैं देखती हूँ बच्चे जाते हैं बस्ता लेके आए 2:30-3 बजे, खाना खाया, ट्यूशन जा रहा हूँ, ट्यूशन से आया फिर होमवर्क कर रहा हूँ, फिर सो गए, खेलने के लिए आधा पौना घंटा, उसमें माँ बाप सुला देते हैं सो जाओ सुबह स्कूल जाना है। 9th-10th में बच्चा सुबह स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, आके फिर से जा रहा है, या उसमें जा रहा है, कोर्सेज में जा रहा है, फिर एग्जाम है, कब साहित्य पढ़ेगा। साहित्य है क्या तो जानता भी नहीं है।
1: एक बदलाव जो मैंने जो मैं महसूस करती हूँ, जो मैंने अपने पेरेंट्स को देखा और अब जो हमारी पीढ़ी है उसमें जो एक चेंज आया है कि जो पढ़ते थे ना लोग, उनको समझ के साथ साथ शब्द जो है, शब्द वो बहुत क्लियर होते थे, है ना, उनके सोचने की, समझने की, बात करने की क्षमता जो है बहुत स्ट्रांग होती थी। आज के टाइम पे हम पढ़ने से ज्यादा सुनने लगे हैं, तो सुन रहे हैं, तो सुनने से वो चीजें, वो कहते हैं ना कि थ्योरिटिकल कम करके प्रैक्टिकल अगर ज्यादा करें तो वो समझ में आती है चीजें। तो पहले के लोग जो थे वो प्रैक्टिकली उस चीज को पढ़कर समझते थे, आज के टाइम पर वो थ्योरिटिकल चीज हो गई है, इस करके वर्ड्स भी हमारे आज उतने क्लियर नहीं।
0: अच्छा, सुनने में भी क्या है, वो सुन क्या रहे, इसमें भी डिपेंड करता है।
1: यस,
0: एक जमाना था आकाशवाणी में जब समाचार होते थे, CV रमन एक होते थे समाचार वाचक, सलमा सुल्तान होती थी, प्रतिमा पूरी होती थी, उनका सुनकर हम लोग सीखते थे कि क्या सही भाषा है। आजकल टीवी रेडियो में भाषा ही सही नहीं परोसी जा रही, इंग्लिश हो रही है,
1: राइट,
0: इंग्लिश के वर्ड्स घुसे हुए बीच में, साहित्यिक जो है भाषा तो गायब हो गई है। अखबारों में भी आप देखिए हेडिंग अंग्रेजी हिंदी के मिले हुए होते हैं, साहित्यिक भाषा है ही नहीं। तो जो वो सुन रहे हैं वही तो बोलेंगे, उन्हें दिया ही नहीं जा रहा वो कुछ जो हम देना चाहते हैं। तो किसी ना किसी को तो बीड़ा उठाना पड़ेगा,
1: हिंदी जबान बोलना भूल गए,
0: हिंदी जबान भूल गए, हिंदी होती क्या है, हिंदी से मतलब वो एकदम मुंह चढ़ा के बोला रहे हिंदी कौन देखता है। तो हमें हिंदी जो प्रोफेशनलिज्म है उससे पास लाना पड़ेगा, प्रोफेशनलिज्म और हिंदी को साथ साथ चलना पड़ेगा और उनकी रुचि जगाना पड़ेगा यूथ की।
1: ये बहुत बहुत बड़ी बात आपने बोली, क्योंकि आज मुझे बड़ा अफसोस होता है जब कोई कहता है ना, आज का यूथ कहता है कि अरे हिंदी हमें नहीं आती, अपनी पकड़ नहीं,
0: और फखर से कहता है।
1: हाँ, तो मुझे बड़ा अफसोस लगता है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी हमारी भाषा है और हम बोल ही नहीं पा रहे,
0: समझ नहीं पा रहे।
1: हाँ, तो मुझे लगता है कि इस पर हम इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि आज एक बहुत बड़ा परसेंटेज है जो सिर्फ इंग्लिश में बात कर रहा है। देखिए, इंग्लिश बोलना गलत नहीं है,
0: कोई गलत,
1: लेकिन
0: नहीं है।
1: अगर आप हिंदी बोलने में आप हिचकिचा रहे हैं वो गलत है, उसको सुधारना।
0: बिल्कुल, यही पे एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि जैसे मैं इंस्पेक्शन करने जाती हूँ ऑफिस में, तो फाइलों पे जो नोटिंग रहती है, फाइलों में लिखा होता है जो, उसमें कितनी वर्ब की गलतियां होती हैं, टेंस की गलतियां होती है, लेकिन इंग्लिश में होता है। और फिर वो कहते हैं हिंदी में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें आती नहीं हिंदी। जब टूटी फूटी इंग्लिश लिख सकते हो तो टूटी फूटी हिंदी लिख लो, नंबर तो नहीं कट रहे, कुछ तो हिंदी में लिखो, अपनी भाषा से दूर नहीं जाना चाहिए। आप फ्रेंच सीखो, अंग्रेजी सीखो, लेकिन अपनी भाषा पे भी कायम रहो। मेरा

0: कहना है
1: जी। तो बहुत सारी बातें हम नमिता जी से कर रहे हैं, साथ ही चलिए अब वक्त हो गया है एक म्यूजिकल ब्रेक का। आपका कोई पसंदीदा गाना है, कोई सवाल आपको करना है, कोई संदेश भेजना है आपको नमिता जी को, तो आप मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8010781078। तो एंजॉय करते हैं गाना। मैं हूं प्रियंका, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ।

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और मैं हूं प्रांका आपके साथ। और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त हैं नमिता राकेश जी और इनसे हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं। नमिता जी,
1: जी
0: आपका बहुत सारा कंटेंट है जो मैं देख रही हूँ, इतनी सारी किताबें जिसमें कहानी भी है और कविताएं भी हैं, और आप एक कविता लेके बैठी हैं, बिल्कुल आप रेडी हैं बताने के लिए। लेकिन उससे पहला मेरा एक सवाल है
1: जी,
0: कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि बचपन से ही उनके बच्चों की जो बोली है वो क्लियर हो, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहते हैं। अब अगर आपको अपनी जुबान को, अपनी बोली को क्लियर रखना है तो उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। जितने वर्ड्स आप अपनी शब्दों को आप निकालोगे अपने मुंह से, उतना ही क्लियर और बहुत डिफाइन चीज निकल के आएगी। ठीक है, आप पेरेंट्स को और साथ में बच्चों को भी क्या टिप्स देना चाहेंगे?
1: देखिए, टिप्स तो आपके क्वेश्चन में छिपी हुई है। आपने कहा कि पढ़ते नहीं है बच्चे, है ना, तो पढ़ेंगे तभी तो सुधरेंगे, है ना, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। तो गाना आता था ना, पढ़ेंगे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तो इसलिए कहते थे कि आप पढ़ोगे लिखोगे तो अच्छे आदमी बनोगे, एक अच्छे नागरिक बनोगे। लेकिन अब पढ़ने का समय आज के यूथ के पास है ही नहीं, वो कोर्सेज की किताब पढ़ ले वही बहुत है। कुछ एक मैंने देखा है जो पढ़ते हैं, लेकिन हम कहते हैं ना 100% कोई निगेटिविटी नहीं है, कहीं ना कहीं परसेंटेज उसकी सकारात्मकता की भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि रुचि जगाने के लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। हम खाली ये नहीं कह सकते कि तुम नहीं पढ़ते हो, तुम ये नहीं करते हो, तुम नहीं करते हो। हम उन्हें क्या दे रहे हैं? एक एग्जाम्पल मेरे सामने आया था और काफी वो वायरल भी हुआ था कि कहीं कोई माँ और बेटा जा रहे थे और वो दोनों किताबें पढ़ रहे थे, फोन उनकी पॉकेट में रखा हुआ था। तो किसी ने पूछा भी बड़ी अजीब है, आज के जमाने में तो सब लोग मोबाइल लेके बैठते हैं, आप लोग किताबें पढ़ रहे हो, आपका बेटा भी किताब पढ़ रहा है। कहता उसको किताब पढ़ने का शौक तब हुआ जब मैंने भी पढ़ना शुरू किया। मतलब बच्चा तो अपने पेरेंट्स को देखेगा, पेरेंट्स लगे मोबाइल में और बच्चे को बोल रहे हैं तुम पढ़ो, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। हमें एग्जाम्पल खुद क्रिएट करना पड़ेगा, हमें उनकी रुचि जगाने के लिए उस रुचि से संबंधित कुछ अपना भी पढ़ना पड़ेगा। और हमें भी वो परिपक्वता आनी चाहिए हमारे अंदर कि हम बच्चों को जो देना चाह रहे हैं पहले खुद को तो दे।
0: जी जी।
1: हम बच्चों के सामने एग्जाम्पल रखेंगे तो खुद का एग्जाम्पल रखेंगे। बच्चा बाहर की दुनिया से बहुत कुछ सीखता है, आजकल इतनी दुनिया बड़ी हो गई है उसके लिए, ग्लोबल उसके फोन में सिमटा हुआ है, और वो सब चीजें तो हर बच्चा देख रहा है, हर यूथ देख रहा है उस ग्लोबलाइजेशन को अपने फोन के अंदर। हम दे सकते हैं एज ए पेरेंट जो हमारे पास है, जो हमारे पास है वो दुनिया में नहीं है, तो उस बच्चे को देने के लिए जो हमारे पास है, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारा जो एक हर एक घर का होता है एक सेट होता है कि ये हमारी परंपरा है, ये हमारे बिलोंगिंग्स हैं, ये हमारी परंपराएं हैं विभिन्न चीजों को लेकर। तो अगर हम वो बताएंगे नहीं बच्चे को, तो बच्चे को कैसे, वो तो बाहर की दुनिया से ही सीख के आएगा, उसे घर से कुछ नहीं मिल रहा। तो घर से मिलने के लिए हमें घर में वो वातावरण भी पैदा करना पड़ेगा, हमें खुद उसके लिए एक एग्जाम्पल खुद बनना पड़ेगा। हम तोहमत नहीं लगा सकते कि तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम हमें पहले वो करना पड़ेगा। मैंने कई बार पेरेंट्स को देखा है कि खुद मोबाइल में लगे हैं बच्चों, तुम पढ़ो, तुम कोर्स अपना करो, चलो चलो अपना होमवर्क करो, और खुद आप लगे हुए फोन में या बातें कर रहे हो। मेरी एक फ्रेंड थी, उसके जब बच्चों के एग्जाम होते थे वो सब कुछ छोड़ देती थी, उसको बिनाई का बहुत शौक था, नीटिंग करती थी, बिनाई नीटिंग सब कुछ जो उसके शौक थे एक तरफ हो जाते थे। जब बच्चा पढ़ रहा होता था वो ये नहीं कि वो अपना कुछ करती रहे, उस बच्चे के साथ बैठी होती थी। तो बच्चे को होता है एक सपोर्ट है, माँ बैठी है साथ में, या पिता साथ में बैठा है, बड़ा भाई साथ में बैठा है, वो मुझे देख रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, उसके पास मेरे से लेके अलावा और कोई काम नहीं है, वो मुझे ही देखना है। तो वो एक बिलोंगिंगनेस उस बच्चे में हमें देनी पड़ेगी, उस यूथ में देनी पड़ेगी कि हम ये नहीं उन्हें बड़ा कर दिया, चलो भाई कॉलेज जाओ, ट्यूशन जाओ, चलो भाई नौकरी करो, कमा के लाओ, लेकिन हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, हमने उसको छोड़ दिया। जैसे चिड़िया छोड़ देती है बच्चे को, जब बच्चा उड़ना सीखता है चिड़िया छोड़ देती है, जाओ अपनी दुनिया खुद देखो। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा बने, वैसा बने, तो वैसा सब कुछ हमें करना पड़ेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, उसकी तैयारी भी उसी हिसाब से होनी
1: चाहिए, घर से मिलनी चाहिए।
0: राइट राइट,
1: जो उसको घर से मिलेगा वो बाहर की दुनिया में नहीं मिलेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, सही बात आपने बोली है। अच्छा, एक सवाल जो मुझे लगता है आपके चेहरे पर बहुत बड़ी वाली मुस्कान लाने वाला है, कभी ऐसे वाव मोमेंट आपने सेलिब्रेट किया है? क्योंकि हमें पता होता है हम क्या कर रहे हैं, लेकिन जब कोई आके कुछ ऐसा बोल जाए कि मतलब लगे कि यार ये मेरी अचीवमेंट है, वो होता है वाओ मोमेंट. तो कोई ऐसा किस्सा शेयर.
1: मेरी जिंदगी में बहुत से वाओ मोमेंट आए. पहले मैं अपने घर से शुरू करती हूँ. एक बार एक लेडी मेरे घर आई और घर आई उसने घर आते मेरे पैर छू लिए. अच्छी खासी बड़ी लेडी थी, मेरी हम उम्र ही रही होगी. पैर छू लिए मेरे, तो मैं बड़ी अचरज में पैर क्यों छू रही है. उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे. तो मैंने कहा पूछो कहाँ से आई हो, क्या हो. तो उसने कहा कि दीदी बोला मुझे, दीदी मैं आपके ना खबरें पढ़ती रहती हूँ अखबार में. आप उस समय बहुत छपता रहता था, आजकल तो सब सोशल मीडिया है. तो आपका इंटरव्यू छपा था, उसमें आपने कुछ ऐसी बातें लिखी थी जो मेरे दिल को छू गई. और मैं आपका पता पूछते पूछते कि उसमें मेरी सोसाइटी का नाम छपा था इंटरव्यू में. तो सोसाइटी में आई, उसने मेरा नाम पूछा, दो एक गार्ड ने उसको भेजा क्योंकि सोसाइटी में लोग जानते हैं. तो मेरे घर तक आ गई. तो मैं क्या हुआ, रो क्यों रही हो, कहती मेरे लिए आप भगवान है. मैं कैसे, आपने जो कुछ लिखा है ना इसमें मेरे दिल को छू गया. मैं भी बहुत कुछ बदलना चाहती थी लेकिन घर परिवार ने मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया. उनका था कि मैं बस चूल्हा चौका करूं, बच्चों को संभालूं, खाना बनाऊं, यही मेरी दुनिया है. लेकिन मेरे अंदर भी जज्बा है लिखने का, मैं लिख नहीं पाई, मैं कर नहीं पाई. तो आपको देख के मुझे बड़ी प्रेरणा मिली. तो वो मेरे लिए बड़ा एक वाओ मोमेंट था कि ऐसे भी लोग हैं जो मुझसे प्रेरित हो सकते हैं. अब तक तो मैंने सोचा नहीं था. तो मैंने उसको काफी दिलासा दिया, अपनी कुछ किताबें भी उसको भेंट करी और मैंने कहा तुम लिखो, कुछ भी हो आना तिरछा तुम लिखो और लिख के मुझे सुनाओ, मुझे बताओ क्या लिखा है, इसको तुम मारो मत. ऐसी ही एक लेडी मुझे मिली, उसको भी घर परिवार का वो नहीं था और उसको लगता था बस यही दुनिया है मेरी. तो जब आपके अंदर हुनर है ना तो आपको उसको आगे बढ़ाना चाहिए.
0: राइट.
1: एक वाओ मोमेंट क्या था, अगर ऑफिस की बात करूं, जैसा आपने जिक्र किया कि हमारा CISF का गोल्डन जुबली पीरियड था 2018 में, तो मुझे कहा गया स्क्रिप्ट लिखिए आप. तो मेरा तो रोज का काम था वहां पे, कभी स्क्रिप्ट लिख रही हूँ, कभी स्पीचेस लिख रही हूँ, कभी ऑफिस का काम कर रही हूँ. तो मैं मेडिकल लीव पर थी उस समय, तो मैंने कहा मेडिकल लीव पर हूँ और मैं बाद में आकर लिखूंगी. तब उच्च अधिकारी का फोन आया तो उन्होंने कहा कि आप एक स्क्रिप्ट लिखिए. तो मैंने वही जवाब दिया, सर मेडिकल लीव पर हूँ. तो उनका देखो अभी आप जो लिखोगे ना उसको स्वर देने वाला है अमिताभ बच्चन. तो मैं एकदम से बड़ी खुश हो गई, अरे वाह अमिताभ बच्चन मेरे शब्दों को अपनी आवाज देंगे. तो मैंने परकाया प्रवेश किया, अमिताभ बच्चन कैसे बोलते हैं उनके हिसाब से मैंने स्क्रिप्ट तैयार किया और वो वन गो में ओके हो गई. मैंने अपना काम कर दिया ऑफिस का, मैं चुपचाप बैठ गई और अपना ऑफिस का जनरल काम करने लग गई. फिर बाद में हमारे DG मिले मुझे, उन्होंने कहा कि नमिता तुम्हारा तो बड़ी धूम हो रही है, बहुत अच्छा लिखा तुमने. वहां तक भी ठीक था, मैंने किसी को नहीं बताया कि मैंने लिखा क्योंकि कुछ ऑफिस के रूल होते हैं. फिर जब मुझे प्रशस्ति पत्र मिला अपने DG का,
0: जी जी,
1: तो उन्होंने उसमें साफ लिखा था कि अमिताभ बच्चन के लिए जो आपने आलेख लिखा उसके लिए आपको प्रशस्ति पत्र दिया जाता है. वो मेरे लिए वाओ मोमेंट था क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे ऐसा कुछ मिलेगा. मैं तो ऑफिस का काम समझ के किया था लेकिन उसको इतनी रिकॉग्निशन मिली ऊपर के लेवल से,
0: तब ऐसा लगा होगा ना हाय नमिता क्या कर दिया,
1: क्या कर दिया, क्या मिल गया. क्योंकि एक पैरामिलिट्री फोर्स में रहकर अगर कोई DG IPS आपको शाबाशी दे रहा है रिटर्न में तो बहुत बड़ी बात है. तो ऐसे बहुत से वाओ मोमेंट आए. अब मैं खेल की बात करूं, अगर टेबल टेनिस खेला तो मैं मना कर रही थी मैं नहीं खेलूंगी इस एज में, क्या खेलूंगी, पहले बहुत खेलती रही हूँ. तो सबने कहा नहीं नहीं आप खेलिए, कोई कैटेगरी नहीं बनाई उन्होंने सीनियर जूनियर की, सबके साथ मैंने खेला, मैं फर्स्ट आ गई. वो वाओ मोमेंट था. कैरम बोर्ड में नाना करते हुए मैंने नाम लिखा दिया टूर्नामेंट में, वहां मैं फर्स्ट आ गई. तो ऐसे मेरी जिंदगी के बहुत से वाओ मोमेंट है. एक बार मेरा बेटा बीमार पड़ गया, आजकल तो वो बाहर रहता है, तो बीमार पड़ा तो मैंने कहा बेटा एक दो महीने की छुट्टी है तुम्हारे पास, बीमार पड़े हो तो ऐसा करो क्यों ना ये तुम्हें समय मिलेगा नहीं, फिर खाली समय, खाली समय बहुत वैल्यूएबल होता है, आप इसे यूटिलाइज करो. तो उसका गाने का शौक था तो उसने 4 गाने लिखे, खुद डायरेक्ट किए, खुद अपनी आवाज दी, कोरियोग्राफ भी उसने किया, डायरेक्शन भी उसका था, एडिटिंग वर्क भी उसका था, कास्टिंग भी उसने करी. 4 गाने यूट्यूब पे आए और उस समय एक ही हफ्ते में 20,000 से ऊपर लाइक आ गए थे. तो वो एक मेरा वाओ मोमेंट था. जब बच्चे कुछ करते हैं बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे मेरे बच्चे जब भी कुछ अचीव करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है.
0: और ऐसी ना जाने कितनी महिलाएं जो इस वक्त हमें सुन रही होंगी और उनको भी अंदर से लग रहा होगा कि यार जब एक ऐसी महिला जो काम भी कर रही है, बच्चे भी देख रही है, पूरा परिवार हैंडल

0: कर रही हैं, और जब वो इतना सब कुछ कर सकती हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। दोबारा कहूंगी, एज जो है ना वो कभी किसी की जाति नहीं है। जितनी भी उम्र में हो आप शुरू करो। ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो वो चाह रही होंगी कुछ करना, है ना। तो आपका क्या मैसेज है, आप उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी जो कुछ करना चाहती हैं, आपके जैसा बनना चाहती हैं, तो वो अपनी जर्नी कैसे और कहां से शुरू करें?
1: देखिए, मैंने पहले ही कहा, अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो आप पहला पैर तो आप ही बढ़ाएंगी। कोई आपको हाथ पकड़ने नहीं आएगा कि आओ चलो वहां चले। पहला पैर आपको बढ़ाना है, अपना हुनर पहचानना है। अगर कोई पैर रोके तो आप उसे कुछ करके दिखाइए। पैर रोकने वाला आजकल वो जमाना नहीं है कोई पैर रोकता है, बहुत 1% 2% होता है। अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो पहला कदम आपको बढ़ाना होगा, पहल आपको करनी होगी। उसके बाद ऐसे दीवारें खुलती चली जाएंगी, दूरियां मिटती जाएंगी और आप अपनी मंजिल को पालोगे।
0: लिखने के लिए आप क्या कहेंगे?
1: लिखने के लिए मैं यही कह रही हूँ, लिखने के लिए भी यही कहूंगी कि जिसको कुछ लिखना आता है या लिखना चाहता है तो वो लिखे। धीरे धीरे ही परिपक्वता आती है, पुख्तगी धीरे धीरे ही आती है। अगर आप लिख रहे हो कि दीवार हरी है या हरा पेंट हो रहा है, फूल खिल रहे हैं, धूप खिली है, तो कौन पढ़ेगा। कुछ ऐसा लिखो जो अलग हटके हो। आज हमारे फरीदाबाद में ही बहुत से लेखक हैं, देश दुनिया में बहुत से लेखक हैं। चंद लोगों का ही नाम क्यों होता है, क्योंकि वो अलग हटके सोचते हैं, अलग हटके कुछ लिखते हैं, अलग हटके उनकी जो बातें हैं ना दूसरे तक पहुंचती हैं। कविता महज लिखने के लिए नहीं है कि आपने उठाए 5-6 शब्द जोड़े कविता बना दी। कविता जब तक दिल से नहीं निकलती तभी वो दूसरे के दिल में पहुंचेगी। आपने 5 लोगों की कविताएं पढ़ी, शब्द उठाए वहां से, कविताएं लाइनें उठाई और 4-5 कविताएं जोड़ के, लाइनें जोड़ के अपनी लिख दी, वो कहीं नहीं जाएगी, वो वहीं मर जाएगी।
2: ना इज्जत की चिंता ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, यही पहचान है भक्तजन।
3: गुरुदेव, यही बात यदि संगीत धारा में बहकर कहें तो आनंद आ जाए।
2: हाँ गुरुदेव, ना इज्जत की

बन के हम सन्यासी काम है चलते

हरे चिंता चरक चिलम और चेले साथ साथ में सारे टिकटे लेकर भी गाड़ी में खड़े शरीफ बेचारे और ये देखो भगवान के चमके पड़े हैं।

0: यहाँ तो नहीं आया बेटी, पुल पे होगा शायद।
1: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूं प्रांका आपके साथ। और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त हैं नमिता राकेश जी, और इनसे हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग जो शायद आपसे भी मिले होंगे, जो ये कहते हैं कि हम सोचते बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम लिखने बैठते हैं ना, तो वो वर्ड्स ना वो हमें समझ नहीं आते कि हम कैसे उस चीज को कंप्लीट करें और अच्छे वर्ड्स के साथ में। तो इसको समझना भी जरूरी है कि जब आप लेखनी करने जा रहे हैं तो किन दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। तो आप, मैं चाहती हूँ कि आप सबको मैसेज दें कि जो भी लिखना चाहता है वो कैसे अपनी अपनी जर्नी की शुरुआत करें।
2: देखिए, आपने अगर सीधी साधी कविता लिखनी है तो आप ऐसा कुछ लिखिए, जैसे मैंने अभी कहा, कुछ हटके हो, जो दिख रहा है उसके परोक्ष में कुछ हो, वो आप लिखिए। अब आप सीधा सीधा लिख देंगे, जैसे मैंने बताया पेड़ हिल रहे हैं, हवा चल रही है, तो कोई नहीं पढ़ेगा। उसके पीछे आप कोई संदेश दीजिए, हर कविता में एक संदेश होना चाहिए। और अगर अलग अलग विधा की मैं बात करूं, गजल लिखेंगे उसमें बहुत मेहनत पड़ती है, गजल यूं ही नहीं कोई कह सकता
1: जी।
2: आप दोहे लिखेंगे उसमें भी मात्रक छंद होते हैं, 13-11 13-11। हाइकू लिखेंगे उसमें भी मीटर होता है, तो मीटर में लिखें, शिल्प को पहचाने, स्टडी करें, और जो दिल से निकल रहा है उसको लिखें। लोगों का सुन के अपना मत लिखें, आपके अंदर से जो निकल रहा है वही लिखिए, उसको स्वर दीजिए, उसको शब्द दीजिए, 2-3 बार पढ़िए, और अगर शिल्प की कुछ है तो किसी से आप बात करके देखिए, सीखिए उनसे। तो ये सब धीरे धीरे आता है। और अगर आपके अंदर विचारों के सागर उमड़ रहे हैं, अगर आपके अंदर भावनाएं हैं, अगर आप अपनी आसपास की घटनाओं से उद्वेलित होती हैं या होते हैं, तो आपको उसको शब्द देने पड़ेंगे, अपने अंदर की चीज को पहचानना पड़ेगा, और कुछ अच्छे राइटर्स को पढ़ना होगा। फेसबुक को ना पढ़ के, आप पुराने हमारे इतने राइटर्स हैं, इतना खजाना है हमारे पास, उनको पढ़िए, उनके भाव को समझिए,
1: बाकी मेहनत जो है वो अच्छे एक्सपीरियंस देती है। राइट, तो अभी कविता सुननी है मैम की, वो हम जरूर सुनेंगे, लेकिन अभी बहुत सारी बातें हो गई, आपको गाना भी तो सुनाना है ना, तो चलिए एक ऐसा ही गाना आपको सुनाती हूँ जिसे सुनकर आपको और ज्यादा जोश आ जाएगा कि मुझे अब जिंदगी में कुछ करना है। तो एंजॉय करते हैं इसी गाने को, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रांका आपके साथ।

पुरस्कार चंदनगढ़। दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है, हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

0: मैं हूँ प्रांका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। भाई आज का प्रोग्राम मुझे वाकई बहुत मजा आ रहा है करने में। ऐसा नहीं है कि ये प्रियंका का प्रोग्राम है तो प्रियंका ऐसे कैसे बोल सकती हो भाई। अब कई बार होता है ना कि जब कोई ऐसा गेस्ट आता है तो मन करता है बात करने का, लेकिन अब पता है मैं यहाँ मुझे यहीं पर ब्रेक लगाना होगा क्योंकि वक्त भी अब हमारा जो है थोड़ा सा चलने का हो रहा है। लेकिन ऐसे ही तो हम नमिता जी को नहीं जाने देंगे क्योंकि कविताएं हैं भाई एक से एक इनके पास में। तो नमिता जी, आपकी इतने सारे संग्रहालय में से कोई एक या दो कविता आप हमें सुना दें।
1: ठीक है, देखिए बहुत सी कविताएं हैं जो मेरी जुबान पे चढ़ी हुई हैं। मुझे मुंह जुबानी करीब 80% अपनी कविताएं याद है
0: जी।
1: मैं अक्सर मंचों पे सुनाती रही हूँ, देश विदेश में जाती रही हूँ, सुनाती रही हूँ। क्योंकि यहाँ मैं आज बहुत अरसे के बाद आई हूँ तो मैं वो अपनी प्रतिनिधि कविताएं ही रखना चाहूंगी। और उसमें एक देखिएगा छोटी सी कविता है
0: जी।
1: आजकल का जो माहौल है या तो बहुत ही शोषक और शोषित इसको ऐसे ले ले तो उस माहौल में एक मेरी कविता की रचना होती है जो ये कहती है कि शीर्षक है मेमना और भेड़िया कि बहुत मुश्किल है बच पाना मेमने का भेड़ियों के देश में। उनके लंबे पंजों से खूनी निगाहों से उन्हीं के बीच रहकर खुद को बचा के चलना काबिले तारीफ है। लेकिन मेमना कब तक मेमना रह पाएगा रात दिन चुपते नश्तरों के बीच। जिंदगी की जद्दोजहद को झेलते झेलते बहुत मुमकिन है कि मेमना या तो हार जाएगा या खुद भेड़िया बन जाएगा।
0: नहीं,
1: बहुत छोटी सी कविता
0: बहुत,
1: है
0: बहुत बहुत प्यारी,
1: लेकिन सोचने पे मजबूर करती है।
0: बहुत बहुत प्यारी।
1: एक मैं गजल के चंद शेर पेश करना चाहती हूँ कि जैसे बात हो रही थी लेडीज की कि वो लोग आगे आना चाहती हैं, यूथ को हम क्या कहें, तो उन्हीं के लिए संदेश है मेरा
0: जी।
1: तकदीर को तू अपनी बदलने का हुनर सीख, तकदीर को तू अपनी बदलने का हुनर सीख, हालात की गर्मी से पिघलने का हुनर सीख। तू सीख गया सुबह निकलने का हुनर तो सूरज की तरह शाम को ढलने का हुनर सीख। और मैं चार पंक्तियां अपने परिचय के लिए दे दूं, हालांकि शुरू में देना चाहिए था लेकिन अब क्योंकि इतनी बात हो चुकी है एक संदेश भी जाएगा मेरा कि तितली की हंसी रंग में ढलना नहीं आया, गिरगिट की तरह रंग बदलना नहीं आया। काम सभी करती हूँ खामोशी से मैं अपने, काम सभी करती हूँ खामोशी से मैं अपने, मौजों की तरह सिर्फ उछलना नहीं आया। मतलब मौज करती क्या है, उछलती रहती है और लोगों को बहा के ले जाती है। तो सिर्फ मैं उछलती नहीं हूँ, मैं काम भी करती हूँ लेकिन खामोशी के साथ।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और आपने मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं बस आपको सुनती रहूं। इतना प्यारा, एक होता है लिखना और एक होता है खूबसूरती से लिखना
1: जी, जी।
0: तो वो खूबसूरती से आपने लिखा,
1: बहुत शुक्रिया,
0: बहुत बहुत मजेदार है।
1: एक कविता और मैं रखना चाहूंगी, शतरंज इसका नाम है। जैसे पीछे काफी घटनाएं हुई क्योंकि एक कवि हृदय है मेरा और जब मैं ऐसा कुछ देखती हूँ तो कलम चल पड़ती है मेरी, देखिएगा।
0: हाँ जी,
1: शतरंज नाम है। पीड़िता की चिता, यानी जिसका बलात्कार हुआ हो या रेप हुआ हो वो पीड़िता है। पीड़िता की चिता शतरंज की बिसात होती है, उनके लिए जिनकी जेबों में कौड़ियां होती हैं। शह और मात का सिलसिला रहता है जारी अगली चिता तक। इन लोगों की आंखों में जब शर्म का पानी ही नहीं है तो आंसू क्या होंगे, यह देखकर घड़ियाल भी शर्म से पानी पानी है। ये लोग पीड़िता के परिवार को ढंग से शोक भी नहीं मनाने देते, शतरंज की चालों में बांधकर प्रश्नों की बौछार से ऐसा बींधते हैं कि पीड़िता की आत्मा तक छलनी हो जाती है। उसकी चिता की लपटों में सेकते हैं रोटियां ये लोग और लपटों के ठंडी होते ही लौट जाते हैं अपने अपने खेमों में और करते हैं इंतजार अगली पीड़िता के पीड़ित होने का। और फिर से वही चिता, वही बिसात, वही कौड़ियां, वही चालें, वही मयान, वही तलवारें, वही प्रश्न, बदलता है तो सिर्फ पीड़िता का चेहरा।
0: सोचने पर मजबूर कर दिया आपके इस कविता ने।
1: यही मैं कहना चाहूंगी प्रियंका कि कविता वही कविता है जो सोचने में मजबूर करे। वो कविता नहीं होती जो सुनी, हंसे, झाड़ा, ताली बजाकर घर गए आप खाली। ये कविताएं आपके साथ जाती हैं और देर तक साथ रहती हैं। तो लिखो तो ऐसा लिखो जो देर तक आपके साथ रहे, आपके साथ जाए। तो ऐसे में उठा के कविता अगर सुनाने लग जाऊं तो हर कविता के पीछे आपको आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। कविता वो होती है।
0: इसलिए कहते हैं कि कभी किसी चीज को महसूस करना ना तो पढ़िए।
1: बिल्कुल,
0: आप अगर पढ़ेंगे तो समझ तो आएगी ही, भाषा भी अच्छी होगी, शब्द भी अच्छे होंगे, लेकिन वो सोच जो हमें लिखने के लिए चाहिए, वो समझ, वो आएगी। इसलिए जब भी खाली बैठें तो पढ़ें थोड़ा सा। आई नो ऑडियो बुक्स हैं काफ़ी, है ना, जिसे हम ऐसे पॉडकास्ट हैं जिन्हें हम सुनते हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें जिनको हम सुनना पसंद करते हैं, मना नहीं है, लेकिन एक्चुअल में आपको कहाँ से एक्सपीरियंस मिलेगा, कहाँ से आपको वो समझ मिलेगी, उसके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी बातें हमने नमिता जी से की, चलने का भी वक्त हो गया है, तो चलते चलते नमिता जी, एक तो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा, और चलते चलते सभी लिसनर्स आपको सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगी?
1: चलते चलते मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस थाली में आप खाना चाह रहे हैं वो थाली भरपूर हो, हर तरह का व्यंजन हो, उसमें हास्य भी हो, व्यंग भी हो, कविता भी हो, और अच्छे लेखकों को आप पढ़ें। आजकल जो परोसा जा रहा है वो अच्छा खाना नहीं है, अच्छा खाना अभी भी किताबों में बंद है, और बहुत से हमारे जो पुराने लेखक हैं बहुत कुछ कह के गए हैं, उनको पढ़िए, गूगल पे सब मौजूद है, और अच्छा खाना खाइए तभी अच्छी नींद आएगी। आप अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा लिखेंगे, अच्छी सोच होगी आपकी, आप अधकचरे लोगों को पढ़कर सुनकर अपनी बातें भी अधकचरी ही कहेंगे। तो पुख्तगी, सोच में गंभीरता, सोच में गहराई, लिखने के प्रति लगन, और एक नई सोच जिसे सब लोग देख रहे हैं, उससे हटकर अगर आप कुछ देख लेते हैं वही सच्चाई है। क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो सब देख रहे हैं, उसके पीछे के कारण जाइए, परोक्ष में क्या है उसकी गहराई में जाइए, तब कुछ लिखिए, तब कुछ कहिए। यूं तो कहने को सब जमाना कह रहा है, ये है वो है, लेकिन आप कुछ अलग हटके कहेंगे तभी आपकी एक अलग पहचान होगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो इस बात को आप याद रखिएगा, और प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें आप बताना। नंबर है हमारा 8010781078। तो चलिए मुझे भी दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।

0: क्या
1: फिर कोई बावर।

0: ए सुन रुबिया, प्यार हो गया
1: सच,
0: प्यार हो गया क्या करें।
1: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से

हेलो एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी लिसनर्स का, और मैं आ गई हूँ इस शो की होस्ट और आप सबकी दोस्त लेकर एक बढ़िया सा प्रोग्राम। आज का एपिसोड बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि मैं आज जिनके बारे में बात करने वाली हूँ वो एक मशहूर संगीत निर्देशक, निर्माता रहे और गायक भी रहे, सुंदर सी आवाज़ के मालिक। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मशहूर सिंगर म्यूजिक डायरेक्टर हेमंत दा की। हेमंत कुमार जी एक नया नाम नहीं आपके और मेरे लिए, कई दशकों तक ये हमारे फिल्मी संगीत जगत पे छाए रहे और बहुत ही सुंदर सुंदर गाने इन्होंने हमको दिए। केवल हिंदी ही नहीं, बंगाली, गुजराती, असमिया, तमिल, पंजाबी, बहुत सारे लैंग्वेजेस में इन्होंने गाने बनाए भी और गाए भी, और बहुत सारे सिंगर्स के साथ काम किया। ये खुद भी बहुत अच्छे सिंगर थे और बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम करते रहे। दो दो राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिले। तो दोस्तों आज का ये सफ़र संगीतकार और सिंगर हेमंत दा के नाम पर। तो यहाँ मैं ले रही छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, ब्रेक के बाद मैं तुरंत वापस आऊँगी। आप भी कहीं मत जाइए, क्योंकि मैं आपको देने वाली हूँ हेमंत कुमार जी के बारे में ढेर सारी जानकारियाँ। जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM फील गुड फील लाइफ।
1: जरा नजरों से कह दो जी,

वेलकम बैक रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम पे दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपसे बात कर रही हूँ हेमंत कुमार जी के बारे में। दोस्तों, हेमंत कुमार जी गायक, संगीत निर्देशक, निर्माता रहे। 26 सितंबर 1989 जो है ये हमारे बीच चले गए, लेकिन इनका जो पैदाइश है वो 16 जून 1920 की है। बनारस जो कि बहुत ही एक कल्चरली बहुत ही एक एनरिच्ड स्टेट है, वो इनका जन्म स्थान है। और इनका पूरा नाम था हेमंत मुखोपाध्याय, और पेशेवर रूप से इनको हेमंत मुखर्जी कहा गया, और उसके बाद हेमंत कुमार के नाम से ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए। इन्होंने मुख्य रूप से बंगाली और हिंदी में गाया, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारी भाषाओं में इन्होंने गाया, चाहे वो साउथ इंडिया की हो, चाहे ईस्ट की साइड की हो, या फिर हमारे नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस हो, शायद इन्होंने कोई भी लैंग्वेज नहीं छोड़ी। और साथ ही रविंद्र संगीत पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार इनको बहुत बार मिला, और नेशनल अवार्ड इनको 2 बार मिले। और ऐसा भी कहा जाता है कि इनको ईश्वर की आवाज़ का रूप जो है इनको माना गया। तो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक थे हेमंत कुमार जी। बिलीव में, जब भी हम इनके गाने सुनते हैं ना, तो पता नहीं फील होता है कि आवाज़ जो है ये किसी के कंठ से, किसी के थ्रोट से इतनी डिवाइन आवाज़ कैसे निकल सकती है। तो बहुत ही रूहानियत भरी इनकी आवाज़ थी, डिवाइन आवाज़ से ये ब्लेस थे। तो जब इनकी आवाज़ की बात मैं कर ही रही हूँ, तो चलिए सुनते हैं इनके गाए हुए कुछ और गाने। ले रही हूँ यहाँ पे छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, तुरंत वापस आऊंगी। स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम पर। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम पे दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम है कैफे क्लासिक्स और आज हम बात कर रहे हैं आपसे मशहूर संगीतकार सिंगर हेमंत कुमार जी के बारे में। दोस्तों, हेमंत जी का जन्म वाराणसी में अपने नाना के घर पे हुआ जो कि डॉक्टर थे। इनका पैतृक परिवार जयनगर मंजिलापुर शहर से आया था और 1900 के दशक में शुरुआत में ये लोग कलकत्ता शिफ्ट हो गए। हेमंत वहीं पले बढ़े और वहीं के स्कूलों में इन्होंने अपनी पढ़ाई करी। बाद में ये भवानीपुर इलाके में मित्रा इंस्टीट्यूशन में चले गए, जहां इनकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त सुभाष मुखोपाध्याय से हुई जो कि एक प्रसिद्ध बंगाली कवि बन चुके थे। अपनी पढ़ाई के दौरान उन्होंने प्रसिद्ध लेखक संतोष कुमार घोष से भी दोस्ती इन्होंने कर ली। दोस्तों, हेमंत जी ने जब इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने के लिए जब ये जादवपुर विश्वविद्यालय में आए और उसके बाद इन्होंने स्वास्थ्य समस्याओं के कारण पढ़ाई तो ये कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन अपने पिताजी की बहुत सारी आपत्तियों के बावजूद, क्योंकि इनके पिताजी नहीं चाहते थे कि ये संगीत के क्षेत्र में आए, फिर भी इन्होंने म्यूज़िक को अपना करियर बनाया। देखिए दोस्तों, आजकल लाइव प्लेटफॉर्म्स बहुत है, सोशल मीडिया है, किसी को भी संगीत में अपना करियर बनाना आज मुश्किल नहीं है, क्योंकि आजकल कोई किसी ब्रेक की वेट नहीं करता कि अब मुझे कोई बड़ा संगीतकार या कोई सी फिल्म में ब्रेक मिलेगा। आजकल सब म्यूजिशियंस हैं, अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, वो अपना गाना बना के सोशल मीडिया पर डाल देते हैं और रातों रात मशहूर हो जाते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था और एक आर्टिस्ट को अपने को एस्टेब्लिश करने के लिए एक्चुअली रिस्क लेना पड़ता था और यही रिस्क लिया हेमंत कुमार जी ने। फैमिली ने विरोध भी किया, लेकिन फिर भी ये अपने विचारों पर, अपने निश्चय पर अटल रहे, संगीत को इन्होंने अपना करियर बनाया। तो छोटा सा यहाँ पे म्यूजिकल ब्रेक ले रही हूँ, सुनते हैं इनके गाए हुए कुछ गाने और फिर मैं वापस आऊँगी और बात करेंगे इनके प्रारंभिक संगीत करियर के बारे में। सो आप कहीं मत जाइए, मैं तो यहीं बैठी हूँ, ले रही हूँ एक चाय की चुस्की। आप भी ब्रेक लीजिए, गाने सुनते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम पे दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उस शो की होस्ट और आपकी दोस्त चांदना, और आज मैं बात कर रही हूँ इस शो में मशहूर सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर हेमंत कुमार जी के बारे में। दोस्तों, हेमंत कुमार जी ने जो म्यूजिक करियर चुना वो उनका खुद का डिसीजन था। हालांकि परिवार ने बिल्कुल भी शुरुआती दिनों में उनको सपोर्ट नहीं किया, फादर ने सपोर्ट नहीं करा, फिर भी उन्होंने इसी लाइन को चूज़ किया और उनका पहला फिल्मी गाना 1940 में रिलीज़ हुआ। जी हाँ, एक बंगाली फिल्म आई और उसमें उन्होंने गीत गाया। उसके बाद में 1941 में एक और मूवी आई जिसका संगीत दिया हरिप्रसन्न दास ने। ये फिल्म थी निमाई संन्यास हुआ, इसमें इन्होंने गाना गाया। दोस्तों, हेमंत कुमार जी का पहला हिंदी फिल्मी गाना आया 1942 में और मूवी का नाम था मीनाक्षी। उसके बाद में 1944 में इन्होंने इरादा मूवी में गाना गाया और उसके बाद ये गाते चले गए। हेमंत जी को रविंद्र संगीत का अग्रणी प्रतिपादक माना जाता था। बहुत ही खूबसूरत तरीके से रविंद्र संगीत को गाते थे। रविंद्र संगीत के बारे में यहाँ मैं आपसे कुछ बातें ज़रूर करना चाहूँगी कि रविंद्र संगीत जो है वो अपने में ही पूरा एक कम्प्लीट म्यूज़िक का स्कूल है। रविंद्र संगीत में घुसना एक बहुत महान चीज़ जैसे मैं मानती हूँ, और रविंद्र संगीत पर अपनी पकड़ बना लेना ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है। तो यही संगीत जो है इन्होंने अपने अंदर उतार लिया और बहुत सारी मूवीज़, चाहे वो बंगाली थी चाहे वो हिंदी की थी, उसमें ये गाते चले गए और कहीं ना कहीं ये अपना जो है थोड़ा थोड़ा ये अपने आप को एस्टैब्लिश करते चले गए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं दोबारा ले रही म्यूजिकल ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर वापस आऊँगी और बात करेंगे इनके फैमिली बैकग्राउंड की, क्योंकि परिवार के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी हमेशा इसलिए देती हूँ क्योंकि इससे हमको सीख मिलती है कि किसके परिवार में कैसे था, किसने कितनी प्रॉब्लम्स को झेला, किसको कहाँ सपोर्ट मिला, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को चलाने के लिए मोटिवेशन मिलती है और हम सब जानते हैं कि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है। तो आइए लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, ब्रेक के बाद मैं तुरंत वापस आती हूँ और बात करेंगे हेमंत कुमार जी के फैमिली बैकग्राउंड की। स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ।
1: जाने वो कैसे

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स और इस शो में आज मैं बात कर रही हूँ मशहूर संगीतकार और गायक हेमंत कुमार जी की। दोस्तों हेमंत कुमार जी के परिवार की तरफ हम थोड़ा सा बढ़ रहे हैं। हेमंत कुमार जी तीन भाई थे और इनकी एक बहन थी जिनका नाम था नीलिमा। इनके छोटे भाई एक बंगाली स्टोरी राइटर थे और इनके सबसे छोटे भाई जो अमन हैं वो संगीत में रचनाएं करते थे और उन्होंने कुछ बंगाली फिल्में भी गाने गाए हैं। कहा जा सकता है कि देखिए पूरा फैमिली ही आर्टिस्टिक बैकग्राउंड की थी, लेकिन फिर भी जब इन्होंने म्यूज़िक की लाइन पकड़ी तो इनके फादर ने इनको अपोज किया। अमल जी ने 1960 के दशक में हेमंत कुमार के संगीत निर्देशक के साथ कुछ गाने इन्होंने रिकॉर्ड करे, जिसमें सबसे उल्लेखनीय गीत जो है वो एक बंगाली गीत था जीवनेर अनेका पथ एकलई। और 1945 में हेमंत जी ने विवाह किया एक गायिका थी बंगाली बेला मुखर्जी के साथ। और हालांकि उन्होंने काशीनाथ जी के साथ आगे बहुत सारे लोकप्रिय गीत भी गाए, लेकिन शादी के बाद उन्होंने अपने करियर को बहुत एक्टिव रूप से नहीं बढ़ाया। उनके दो बच्चे थे, बेटे का नाम था जयंत और बेटी का नाम था रानू। और रानू ने भी 1960 के दशक के अंत तक और 1970 के दशक के शुरुआत तक बहुत हद तक उन्होंने भी थोड़ा सा संगीत में अपना हाथ आजमाया। और जयंत जी का विवाह जो हम सब जानते हैं, उनका बंगाली फिल्म अभिनेत्री मौसमी चटर्जी जी के साथ उनका विवाह हुआ और तब मौसमी जी भी बहुत छोटी उम्र की थी जब हेमंत कुमार जी ने उनको अपनी पुत्र वधू के रूप में उनको स्वीकार किया। बहुत लकी मानती हूँ मैं मौसमी चटर्जी को कि इतने कल्चरली रिच परिवार में उनका शादी हुई। और वो एक्टिंग भी करते रहे, देखिए मतलब एक्टिंग में उन्होंने एकदम स्टॉप नहीं लगाया, काफ़ी सालों तक भी वो आगे एक्टिंग करते रहे। तो ये थी इनकी थोड़ी सी परिवार की इनका बैकग्राउंड। अब हम बात करेंगे इनके मुंबई शिफ्ट होने का और इनके करियर के बारे में, लेकिन लेकिन लेकिन सुनेंगे कुछ इनके गाने और ले रही हूँ यहाँ पे छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स और मैं हूँ इस शो की होस्ट और आप सबकी दोस्त, और लेके आई हूँ ये प्रोग्राम। और आज के इस प्रोग्राम में हम आपसे बात कर रहे हैं मशहूर संगीतकार और गायक हेमंत कुमार जी के बारे में। दोस्तों, कहा जाता है हेमंत कुमार जी एक वो शख्सियत थे जिनकी आवाज़ जो थी वो रूहानियत से भरी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत आवाज़। और 1940 के दशकों में इन्होंने गाना शुरू करा, 1950 के दशक तक आते आते इन्होंने अपनी स्थिति जो है वो काफ़ी मजबूत कर ली थी। और इन्होंने बहुत सारे संगीत जो है इन्होंने प्रोग्राम्स भी दिए और बहुत सारे सिंगर्स के साथ भी इन्होंने गाया, जिसमें मुख्य जो मैं उल्लेख करना चाहूँगी वो है लता दीदी के साथ इन्होंने बहुत सारे हिट गाने गाए। और जो सलिल चौधरी जी का जो संगीत था उस पर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और वो सभी गाने बहुत ज़्यादा हिट रहे। और उसके बाद में अगर मैं बात करूँ 1960 के दशक की, तब इन्होंने बहुत सारे मूवीज़ के साथ साथ बहुत सारे नाटक जैसे वाल्मीकि प्रतिभा, श्यामा, सबमोचन, चित्रांगदा, चंडालिका और ऐसी बहुत सारी जो इन्होंने थिएटर में काम किया जिसमें जो पुरुष आवाज़ थी उसका इन्होंने जो है बीड़ा उठाया और अपनी आवाज़ इन्होंने वहाँ प्रदान करी। और 1970 के दशक में हिंदी फिल्मों में हेमंत का जो योगदान था वो बहुत कम हो गया था। हालाँकि ये काम करते रहे लेकिन थोड़ा सा जो करियर का ग्राफ है वो नीचे की तरफ आया, लेकिन तब तक ये अपना बहुत अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुके थे और बहुत सारे इनको सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार भी इनको मिले, चाहे वो नागिन मूवी के लिए मिला या निमंत्रण के लिए, 20 साल बाद, पलटक, मुनिहार, बालिका वधू, इन सभी के लिए इन्होंने पुरस्कार जो है वो जीते। 1970 में इनको पद्मश्री अवार्ड के लिए इनको इनका नामांकन हुआ लेकिन वो इन्होंने अस्वीकार कर दिया। उसके बाद भी इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले। 1987 में एक बार फिर पद्म भूषण के लिए इनका नाम जो है वो भेजा गया लेकिन एक बार फिर उन्होंने उस अवार्ड को अस्वीकार कर दिया। रीज़न क्या रहा ये बात कुछ ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी झोली में

अपनी रूहानियत भरी आवाज़ से आज भी इनके जो गाने हैं वो हमारे अंदर गूंज रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं लेती हूँ अपनी आवाज़ को विराम करती हूँ। हेमंत जी का जो उनका जो पूरा लाइफ हिस्ट्री मैंने आपको सुनाने की बहुत छोटे से मैं कोशिश करी, तो यही सीख मिलती है इनके लाइफ टाइम से हमको कि एक ऐसा करियर जिसको उन्होंने खुद चुना, एक ऐसी आवाज़ जो इनको भगवान ने दी, और एक ऐसा करियर जिसमें बहुत लोगों ने इनको फिर आगे सपोर्ट किया, बहुत से म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ इन्होंने काम किया और इनकी जो ज़िंदगी जो है वो सफलता के चरम सीमा पर पहुंची। रेडियो मानवरचना के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से मैं उनको शत शत नमन करती हूँ, श्रद्धांजलि देती हूँ। और घड़ी की जो टिक टिक है वो मुझे कह रही है कि जाने का समय हो गया है, तो मैं यहाँ कर रही हूँ साइन आउट। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सायोनारा। आप कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

0: अरे अरे अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है क्या?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में।
2: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।

0: वेल हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो सत्यमेव जयते, जय हिंद, जय भारत। आप लोग जुड़े हुए इस टाइम रेडियो मानवश्रष्टा 107.8 एफएम के साथ। शो हमारा बहुत खास है क्योंकि यहां पर हर बार एक नया टॉपिक हम लेकर के आते हैं, उस टॉपिक के इर्द गिर्द हम बात करते हैं, लेकिन जो बातें होती हैं वो ना तो साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, ना फिलोसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, सिंपल यहाँ पर लीगल फ्रेमवर्क की हम लोग बात करते हैं। हमारे साथ आज यहाँ पर जो आज की मेहमान है वो है मिस गरिमा पाहवा। गरिमा मैम से हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट जेंडर न्यूट्रल लॉज। ये टर्म आपने शायद सुनी होगी या शायद आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे इसके बारे में। आज यहाँ पर विस्तार से बात करेंगे एग्जैक्टली होता क्या है, क्यों इस टॉपिक के ऊपर बात करने की जरूरत है, कानून क्या बोलता है जेंडर न्यूट्रलिटी को लेकर। बहुत मजा आने वाला है, लेकिन सबसे पहले स्वागत करेंगे गरिमा मैम का। तो मैम स्वागत है आपका।
1: थैंक यू सर।
0: सबसे पहला मेरा बेसिक क्वेश्चन रहेगा अबाउट जेंडर न्यूट्रलिटी। प्लीज हमें बताइए जेंडर न्यूट्रलिटी होता क्या है।
1: हम अक्सर देखते हैं कि जो हमारे कुछ कानून हैं वो या तो फीमेल्स के लिए बने हुए हैं, वेमेन सेंट्रिक हैं, या फिर उनमें नॉर्मल बात हुई हुई है, कोई मेन सेंट्रिक लॉज भी नहीं है। तो जब हम बात कर रहे हैं कुछ कानूनों की जिसमें हम इक्वालिटी की बात करते हैं, हम लोग कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पर सारे जो लॉज हैं वो सारे जेंडर्स के लिए, चाहे मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर्स हो या अदर किसी भी जेंडर्स में आते हो, तो उनको सबको बराबर देखा जाए, उसको हम जेंडर न्यूट्रल लॉज कहते हैं।
0: ओके, क्यों इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आज बात ज्यादा होती है, क्यों इसके डिस्कशन की हमें जरूरत है?
1: जो हमारी 21st सेंचुरी है तो न्यू लॉज आए हैं, कुछ पुराने लॉज हैं उनको हमने रिमूव किया है। अभी 2024 में भारतीय न्याय संहिता आया है जिसमें कई सारे ऐसे पहले प्रोविजंस थे जो सिर्फ वुमेन सेंट्रिक थे, अब जो है वो जेंडर न्यूट्रल है। तो आजकल की नीड है, जहाँ हम इक्वालिटी को सर्च कर रहे हैं, मेल फीमेल सबको बराबर मान रहे हैं, ट्रांसजेंडर्स अदर जेंडर्स को गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रही है, तो इसीलिए ये लॉज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको हम बात ज़्यादा करते हैं।
0: ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या जो हमारे इंडिया में लॉज हैं करंटली वो दोनों जेंडर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, यहाँ पर मैन एंड वुमेन, क्या दोनों के लिए इक्वल है हर सिचुएशन में?
1: नहीं सर, कई जगहें हैं, कई हमारे लॉज हैं जो कि सिर्फ वुमेन सेंट्रिक है आज भी, जैसे कि हमारा रेप लॉज है, पॉश लॉज है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, या फिर हमारा जो IPC में था पहले 498 इक्वालिटी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स, ये ऐसे काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं, लॉज हैं जो सिर्फ अभी भी वुमेन सेंट्रिक है। अब हम जैसे बात करते हैं मेंटेनेंस लॉज की, आजकल बहुत अच्छे अच्छे जजमेंट्स हमारे सुप्रीम कोर्ट दे रहे हैं जो कि हमारे नॉर्मल लॉज से थोड़ा सा डिफरेंट है, न्यू परसेप्शंस हैं कि जिन जिन वुमेन्स को अब ज़रूरत नहीं है सपोर्ट की, या वो अर्निंग है, या वो अपने इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकती हैं, वहाँ पे अलमनाए या मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, या मेन के ऊपर इतना बर्डन नहीं होना चाहिए कि वो और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो पूरी कर रहा हो। तो इस तरीके के परसेप्शंस भी आ रहे हैं, बट अभी भी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर जेंडर न्यूट्रलिटी की ज़रूरत है, और अब खाली वुमेन नहीं मेन की वो भी इक्वल रिकोगनाइज करने की ज़रूरत है। एज़ वेल एज़ हम हमेशा जेंडर को जब बात करते हैं तो आम लोगों के दिमाग में यही आता है मेन वुमेन, बट हम कभी भी ट्रांसजेंडर्स या अदर जेंडर्स जिनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, पूरा LGBTQ कम्युनिटी जो है उनको भी हम लोगों को रिकॉग्नाइज करने के साथ साथ उनको वैल्यू भी उतनी ही देनी चाहिए।
0: ऑलराइट, सो अमेजिंग। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मेरे जहन में आ रही है कि इक्वालिटी में और जेंडर न्यूट्रलिटी में क्या ये दोनों टर्म्स सेम हैं? अगर नहीं तो इनमें क्या फ़र्क है?
1: इनको हम सेम नहीं बोल सकते। इक्वालिटी का मतलब होता है बराबर, सबको बराबर लेके चलना, और जेंडर न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि जहाँ पे हम किसी एक स्पेसिफिक जेंडर को मतलब रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, हम न्यूट्रल रख रहे हैं बातों को, कि अगर किसी ने गलत किया है तो उसमें सारे लोग आने चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर। हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो वो खाली जेंडर के ऊपर नहीं होता, इक्वालिटी की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, कास्ट, कल्चर, क्रीड, बट हम जब जेंडर न्यूट्रलिटी की बात करते हैं तो हम नैरो डाउन कर देते हैं कि किसी भी जेंडर के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना हो।
0: सो अमेजिंग। अभी तक हमने बात करी है बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, यहाँ पर न्यूट्रलिटी को हमने समझने की कोशिश करी है, आगे हम लॉज की बात करेंगे, लेकिन कहीं जाइएगा मत क्योंकि अभी वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। वी आर टेकिंग अ हॉल्ट, सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड एंजॉय द म्यूजिकल वाइब। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक मैरिज सागर शो यहाँ पर चल रहा है सत्यमेव जयते। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मालवा 107.8 FM के साथ। आज की हमारी मेहमान है यहाँ पर मिस गरिमा पाहवा। हमारा टॉपिक है जेंडर न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी को हम लोग समझ चुके हैं, इक्वालिटी और न्यूट्रलिटी में फर्क भी जान चुके हैं, और जेंडर बेसिस पर क्यों इन सब चीज़ों की जरूरत है हमें उसके बारे में बात कर चुके हैं। चलिए, क्योंकि शो हमारा लीगल फ्रेमवर्क को थोड़ा ज्यादा तवज्जो देता है, तो यहाँ पर लीगल पर्सपेक्टिव को जानने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा मैम अबाउट सम बेसिक लीगल राइट्स जो हर एक सिटीजन को पता होने चाहिए रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। क्या है बेसिक लीगल राइट्स?
1: इसके लिए हम सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे। हमारे मेजरली 3 आर्टिकल हैं जो इक्वालिटी की बात करते हैं या डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट बात करते हैं, दैट इज़ आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 21। आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15 टॉक्स अबाउट राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ। इन तीनों आर्टिकल्स के अंदर ही हम जेंडर न्यूट्रलिटी और उनमें जो प्रिवेसी है या उनके लिए रिकॉग्नाइजेशन है उसकी हम बात करते हैं। हमारे ऐसे बहुत सारे कानून हैं जिनके अंदर जेंडर न्यूट्रलिटी मेंटेन की गई है। सबसे अच्छा एग्जांपल जो इंडिया का सबसे बेस्ट लॉ जो उसमें है वो है पॉस्को एक्ट 2012 का।

0: प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेज एक्ट, जहाँ पे कहीं भी गर्ल बॉय मेल फीमेल मेंशन नहीं किया हुआ है, सिर्फ चाइल्ड मेंशन किया हुआ है. एनी चाइल्ड विच इज़ लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, तो चाहे वो लड़का हो लड़की हो, कोई भी ट्रांसजेंडर बच्चा हो, तो सबको उन्होंने बराबर नज़रिए से देखा हुआ है. इसके बाद हमारे पास आता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट. इसके अंदर अभी एक बहुत रिसेंट केस लॉ हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि खाली पहले ये था कि अग्रीव्ड वुमेन ही है जो अपने लिए केस फाइल कर सकती है या उसके रिलेटिव्स कर सकते हैं, या फिर उसके बाद हस्बैंड या रिलेटिव्स से ही जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है वही हो सकता है. बट अब यहाँ पे उन्होंने ओपन कर दिया है, इसमें खाली हम मेन और वुमेन नहीं कर रहे हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं कि मेन के अलावा कोई भी अगर फीमेल भी है और उनके साथ वो डोमेस्टिक वायलेंस कर रही है किसी फीमेल के साथ, तो वहाँ पर भी जेंडर न्यूट्रलिटी लेकर आ गए हैं. इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता 2024 में जो ये न्यू लॉ आया उसके अंदर स्टॉकिंग, वॉयरिज्म एंड सेक्सुअल हरेसमेंट, ये तीन ऐसी जगहें थी खाली जहाँ पे बात हुई थी कि वुमेन को प्रोटेक्ट करने की. अब यहाँ पे वुमेन वर्ड रिमूव करके ऑल पर्संस कर दिया है. यहाँ पे जो पहले स्पेसिफिकली वुमेन ओरिएंटेड था उसको रिमूव करके जेंडर न्यूट्रल कर दिया है. इसके साथ साथ और भी हैं जो जेंडर न्यूट्रल लॉज हैं, जैसे इसी के अंदर लाइक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं, साइबर ऑफेंसेस हैं, या ट्रैफिकिंग प्रोविजंस हैं जहाँ पे जैसे बच्चे उठा ले जाते हैं या फिर बेगिंग कराते हैं, प्रोस्टिट्यूशन होता है, तो इन सारे केसेस सारे लॉज में भी प्रोविजंस में भी जेंडर न्यूट्रलिटी लेकर आ चुके हैं. इसके साथ हमारा एक न्यू जो लॉ है 2019 का ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019, जिसके अंदर ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज किया नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 के केस के बाद. इसके में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड राइट टू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये क्या है, नया आइडेंटिटी ऑफ ट्रांसजेंडर्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए बनाया गया था. तो ये हमारे लॉज हैं जो स्पेसिफिकली जेंडर न्यूट्रलिटी पे बात करते हैं.
1: ओके, क्या भारत में ऐसे कुछ कानून हैं जहां पर केवल महिलाओं को लीगली रिकॉग्नाइज किया जाता है एज विक्टिम्स, क्या कुछ ऐसे कानून हैं?
0: बहुत बड़ा एक इसमें जो फ्लॉ है और आज की रिक्वायरमेंट है वो है रेप लॉज. हमने जब न्यू बीएनएस लेकर आए, न्यू क्रिमिनल लॉज लेकर आए, तो उसके अंदर जब हम लोगों ने सेम सेक्स रिलेशनशिप को अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं रखा है, वी हैव रिकॉग्नाइज दैट. जब हमने ट्रांसजेंडर्स को रिकॉग्नाइजेशन दी है एज थर्ड जेंडर, जब हमने LGBTQ कम्युनिटी को भी लीगल रिकॉग्नाइजेशन दी है, भले ही मैरिजेस या गार्जियनशिप या अडॉप्शन में नहीं दी है अभी तक, बट उसके अलावा हमने फिर भी रिकॉग्नाइज कर लिया है सेम सेक्स को. तो इन केसेस में हम लोग कैसे कह सकते हैं कि रेप जैसे ऑफेंसेस में वहाँ पे सिर्फ वुमेन ही है जो विक्टिम हो सकती है, कोई मैन या ट्रांसजेंडर नहीं हो सकता. तो मेरे अकॉर्डिंग अभी जो सबसे ज़्यादा नीड ऑफ द आर है, जहाँ जेंडर न्यूट्रलिटी की ज़रूरत है, वो रेप लॉज में है कि हमारे जो भारतीय न्याय संहिता है इसमें थोड़ा सा बदलाव आए और वुमेन की जगह वहाँ पे ऑल पर्सन्स को रिकॉग्नाइज किया जाए इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी अटेम्प्ट या रेप हुआ जाता है तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाए जस्ट वुमेन को अलाव के अलावा. इसके अलावा पॉश बहुत प्रेविलेंट हो गया है, बहुत सारी ट्रेनिंग्स और कॉर्पोरेट बॉडीज़ हैं उसको रिकॉग्नाइज करके लोगों को ट्रेनिंग दे रही हैं अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को. दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, एज द लॉ सेज ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस. बट अब वुमेन ही खाली सेक्सुअली हरेस नहीं हो सकती हैं, मेन भी हो सकते हैं. जैसा मैंने बोला कि हम सेम सेक्स रिलेशनशिप्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो पॉश जो है वो भी जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए. पॉश के अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल हाई लेवल ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट हो. बेसिक अनकम्फर्टेबल फील होना, या गलत तरह से कोई फेवरेबल कमेंट कर देना, या कोई भी कलरेबल रिमार्क कर देना वुमेन के ऊपर, हम उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. बट आई थिंक कि मेन के साथ भी सिमिलर नेचर ऑफ एक्ट्स हो सकते हैं. तो पॉश लॉ जो है उसके लिए भी मुझे लगता है इट्स नीड ऑफ आर कि हम लोग जेंडर न्यूट्रलिटी लेकर आए और वहाँ पे भी मेन एंड वुमेन या ट्रांसजेंडर्स सबको इक्वल मान के उनके लिए भी इस लॉ को लेके आया जाए.
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. बात आपके काम की हो रही है, अभी तक हमने यहाँ पर बात करी है एग्जैक्टली लॉ क्या बोलता है, और यहाँ पर मोटा मोटा हमने फिर भी एक ब्रॉडर टर्म में इसके ऊपर बात करी है. स्पेसिफिक मेल्स के ऊपर मैं बात जरूर करना चाहूँगा कि जो मेन हैं उनके सामने क्या चैलेंजेस हैं, क्या उनके साथ भी सिमिलर चीज़ें हो सकती हैं जो फीमेल्स के साथ होती हैं, और अगर होती हैं तो फिर कानून क्या बोलता है उसको लेकर. ये सब बातें होंगी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद. स्टे ट्यून्ड, वी विल फील गुड, फील लाइफ.

0: वंस अगेन वेलकम बैक। आई जस्ट होप आपको मजा आ रहा है, ये शो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे पा रहा है और साथ साथ आपको म्यूजिकल वाइब पसंद आ रही है। शो को अपने आगे लेकर के चलेंगे। मैं हूँ आरजे सागर। शो यहाँ पर चल रहा है सत्यमेव जयते। मिस गरिमा पाहवा हमारी आज की गेस्ट है। अगला प्रश्न मेरा आपसे रहेगा अबाउट मैन। हमारे देश में डोमेस्टिक वायलेंस, इमोशनल अब्यूज, हैरेसमेंट, ये सारी चीजें होती हैं महिलाओं के साथ। अधिकांश हमने इनके केसेस सुने हैं। क्या पुरुषों के साथ भी सेम हो सकता है? कानून की किताब क्या बोलती है?
1: पुरुषों के साथ अब ये बहुत हो रहा है। अभी हमने बहुत ही रिसेंटली कुछ केसेस देखे हैं, जो एक हमारा बेंगलोर का केस है अतुल कुमार वाला, उसके अंदर भी हमने देखा है कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया एंड ही वाज सक्सेसफुल इन दैट। जिसमें उन्होंने पूरी एक वीडियो रिलीज करी, सोशल मीडिया पे वायरल हुए कि कैसे वुमेन ने झूठा केस करके और उनको मेंटली हरेस किया है। या इसके साथ अभी हम देख रहे हैं, अभी वो ब्लू ड्रम वाला जो केस हुआ है जहाँ पे राजकुमार को मार दिया गया, या ऐसे कई सारे केसेस हो रहे हैं जहाँ पे वुमेन जो है वो अपने हस्बैंड्स को या अपने मेल पार्टनर्स को मेंटली भी हरेस कर रहे हैं, क्रुएलिटी भी हो रही है, और विक्टिम्स जो हैं अब खाली सिर्फ एक जेंडर को देख के नहीं रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो ऐसे केस में, ऐसे सिचुएशंस में मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ नीड ऑफ आर कि हम अपने लॉज को अब जेंडर न्यूट्रल करें एंड

0: मेन को भी इक्वल राइट्स एंड प्रोटेक्शन दे जैसे कि वुमेन को दिया जाता है. वी शुड टॉक अबाउट, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, तो वी शुड टॉक अबाउट इक्वालिटी इन लॉज ऑल्सो. हमारे पास सिर्फ कुछ ही, जैसे मैंने भी आपको बताया कि पॉस्को है या फिर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है या भारतीय न्याय संहिता में कुछ लीगल प्रोविजन्स हैं जो कि सिर्फ जेंडर न्यूट्रल की बात करता है. बट उसमें भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वेमेन ही ज़्यादा अभी तक जितने भी केसेस हुए हैं हम उनको ही रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. सो अगर हम कानूनी किताब की बात करें तो वहाँ पे अभी भी मेन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सिविल एंड क्रिमिनल दोनों तरह के केसेस में. अब सिविल नेचर के केसेस में हम देखते हैं कि एलमनाई के मैटर्स हैं या मेंटेनेंस के मैटर्स हैं, वेमेन आर यूजिंग इट एज अ वेपन ऑल्सो. मैं ये नहीं कहती कि वेमेन अब बिल्कुल प्रोटेक्टेड है. हमारे बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज हैं जहाँ पे अवेयरनेस भी नहीं है और बहुत सारी हमारी महिलाएं हैं जो कि इससे भी ग्रस्त ही हैं. हम ये नहीं कह रहे कि वो कानून उनके लिए हट जाना चाहिए या बंद हो जाना चाहिए, पर मैं मेरा मानना ये है कि अब बराबरी का कानून सबके लिए बन जाना चाहिए. अगर एक महिला पढ़ी लिखी है, अपना कमा सकती है, अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार सकती है, तो जस्ट बिकॉज हमारा लॉ ये कहता है कि मेन को अलमनाई पे करनी है या मेंटेनेंस पे करना है, तो उसके ऊपर भी ओवरबर्डन नहीं होना चाहिए और वहाँ पर इक्वालिटी लेके आने चाहिए. एंड इसमें सिल्वर लाइनिंग ये है कि हमारे कोर्ट्स इसको रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं, वो डायरेक्ट ऐसी जजमेंट्स भी दे रहे हैं या अपना ओबिटा डिक्टा भी दे रहे हैं कि अगर वुमेन इज इंडिपेंडेंट एंड कैन अर्न तो देयर इज नथिंग ऑन मेन कि वो एज अ वेपन यूज कर सकती हैं.
1: अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मोस्ट कॉमनली फीमेल्स को अपने बारे में पता है कि क्या राइट्स हैं उनके पास, कानून उनको क्या सहायता दे सकता है, बट मेन को नहीं पता है कि क्या राइट्स हैं उनके लिए, कानून उनके लिए क्या बोलता है. तो कुछ ऐसी चीज़ें मैं जानना चाहूँगा ज़रूर आपसे जो इस टाइम पर पुरुष हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं, उनको पता लगे कि कानून आपको भी ये राइट देता है.
0: जैसे अभी बात करें हम कानून मेंस के लिए, तो स्पेसिफिकली सिर्फ एक मेन को प्रोटेक्शन के लिए ऐसे हमारे लॉज नहीं है. हम अभी भी खाली मेन के राइट के लिए नहीं, हम दोनों के राइट्स की बात कर रहे हैं. तो वुमेन को अवेयर किया जाता है, बट अब मेन को फिलहाल हम ये अवेयर कर सकते हैं कि अपने कुछ चीज़ों पे जब वो शादी कर रहे हैं या फिर वो क्रिमिनल काइंड ऑफ केसेस में भी हैं जहाँ पर क्रुएलिटी या ऐसा कुछ आता है कि वो क्रुएलिटी को फेस कर रहे हैं या फिर उनके ऊपर उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है या वो वुमेन के साथ गलत नहीं कर रहे हैं बट एज ए डाउरी के केसेस होते हैं या फिर क्रुएलिटी के केसेस होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं जहाँ पर उनको सेंट्रिक बनाया जाता है एज ए विलन ओनली, एज एन एक्यूज ओनली, तो वहाँ पर उनको उनके राइट्स के बारे में पता होना चाहिए कि दे कैन स्पीक अबाउट इट, दे कैन कम बिफोर द कोर्ट और वो अपनी चीज़ों को लेकर आ सकते हैं. बट हम जब लीगल प्रोविजन्स की बात करते हैं तो एज सच स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हम नहीं है जो कि उनको प्रोवाइड करती है, बस उनके फंडामेंटल राइट्स हैं और कैसे वो चीज़ों को अपने साथ प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिकॉशियस हो सकते हैं और ये सारी चीज़ें हैं. बट एक स्पेसिफिक लॉ की बात करें तो मैं कोई उसमें राइट्स ऐसा नहीं है.
1: ओके, ऑलराइट, आई एम डन विद माय क्वेश्चंस. कोई भी ऐसी चीज़ है जो मैंने पूछ पाया और आप कहना चाहते हो प्लीज़ फील फ्री.
0: मेरा कहना ये है कि अब जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और हम सारे जेंडर्स को इक्वालिटी की बात करते हैं, वुमेन को भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं और मेन को भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो दिस इज़ अ नीड ऑफ आर कि हम लोग मेन प्रोटेक्शन के लिए भी राइट्स लेकर आएँ, जैसे कि हम एडर्ली ओल्डर पीपल के लिए लेकर आए हैं, वुमेन के लिए लेकर आए हैं, ऐसे ही मेन के प्रोटेक्शन के लिए भी राइट्स लेकर आएँ और ऐसे पेनल्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसे लीगल प्रोविजंस लेकर आए जाएं जिसमें कि अगर कोई भी वुमेन फॉल्स केस फाइल करती है या अपने किसी रिवेंज के लिए या किसी भी तरह से मेन को गलत केसेस में फंसाती है कि उसको पूरा करियर स्पॉइल हो जाए या क्रिमिनल चार्जेस उस पर लगाती है, देन देयर शुड बी अ हैवी पेनल्टी ऑन द वुमेन एज वेल. तभी हम लोग जो है यहाँ पे मेन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. एंड अब जो जितने भी हमारे न्यू लॉज बन रहे हैं उसको हमें जेंडर न्यूट्रल की नज़र से ही देखना पड़ेगा. अगर हम उसको नहीं देखेंगे तो एक जेंडर को अपलिफ्ट करने के चक्कर में जो दूसरा जेंडर है जो हमारा सप्रेस हो रहा है वो सप्रेस होता चला जाएगा और फिर हमें उसके राइट के लिए लड़ना पड़ेगा. तो माई जस्ट लास्ट थिंग इज़ कि जैसे हम लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज के अंदर बेटर कर रहे हैं ऐसे ही हमारे जो और लॉज हैं, जैसे भारतीय न्याय संहिता सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है जिसके अंदर हम जेंडर न्यूट्रलिटी ले आए, तो बाकी के जितने भी सब्सिडरी लॉज हैं उनके अंदर भी ये चेंजेस आ जाएंगे. तो यही बस है कि द गवर्नमेंट शुड लुक इनटू इट कि हम लोग वुमेन को प्रोटेक्ट करते करते मेन को भी प्रोटेक्ट करें और उसके साथ जितने भी और जेंडर्स इनको हमने रिकॉग्नाइज किया है थ्रू केसेस, थ्रू न्यू लॉज, उनको भी हम इक्वली प्रोटेक्ट करें.
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. ऑलराइट दोस्तों, अभी हमने यहाँ पर आज गरिमा मैम से बात करी है, जेंडर न्यूट्रलिटी हमारा टॉपिक था, और इसमें हमने लीगल फ्रेमवर्क को कवर करने की कोशिश करी है और साथ साथ समझने की कोशिश करी है सामाजिक धारणा क्या है, या ये जो चीज़ है जेंडर न्यूट्रलिटी क्या है एग्जैक्टली टर्म, और इसकी ज़रूरत क्यों है इसके ऊपर बात करने की। उम्मीद कर रहा हूँ आज का शो आपको पसंद आया होगा। अब इसी नोट पर इजाजत दीजिए, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैम आपका, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।
0: थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। आई होप कि सबको बराबर माना जाए और सबको राइट्स भी मिले।
1: डेफिनेटली, अगर आपके पास कोई फीडबैक है मेरे लिए मैम के लिए तो 8010781078 इस नंबर तक अपनी बात जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल चलता हूँ अपने शो को यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ। नाउ दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

0: मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है।
1: तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के संग लेक वादा,
0: अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे।

0: फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में मैं आपको महिलाओं से मिलवाती हूं जो सशक्त हैं और जो महिलाओं में सशक्तिकरण फैला रही हैं। लेकिन आज मैं जिनसे आपकी मुलाकात करवाने वाली हूं वो एक बड़े ही खास दिन के कारण है। जी हाँ, मदर्स डे। आप सभी को पता है कि कल मदर्स डे है और पूरा विश्व इस दिन को मनाएगा। और जहाँ हर बच्चा अपनी माँ के लिए कुछ खास करने की कोशिश करेगा, वहीं बहुत सारी माएं अपने बच्चों को ना सिर्फ ढेर सारा प्यार देंगी लेकिन इस दिन को बहुत ही खूबसूरती से मनाएंगी। इस कड़ी में आज मैं एक ऐसी माँ से बात करने वाली हूँ जिन्होंने अतुलनीय काम किया है। वैसे देखिए, हर माँ के लिए उनके बच्चे सर्वोपरि होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं की मैं अगर बात करूँ तो महिलाओं पर चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं। और इन सारे चैलेंजेस से जूझते हुए माँ जब एक महिला बनती है तो उस माँ बनने के बाद उसकी शायद पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ उसके बच्चे हो जाते हैं। सो आज एक ऐसी माँ लेकिन साथ के साथ एक सोशल एक्टिविस्ट से मिलवाने वाली हूँ, और ये हैं जया शर्मा जी। जया जी, आपका स्वागत करूंगी रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में।
1: धन्यवाद भावना जी।
0: दोस्तों, आज हम जया जी से बात करने वाले हैं। जया जी वैसे तो एक लंबी पारी जिंदगी की खेल चुकी हैं और इन्होंने बहुत सारे अलग अलग किस्म के काम किए हैं। अब ये बहुत सारे अलग अलग किस्म के काम करने में लोगों के अपलिफ्टमेंट से लेके उनके दुख दर्द दूर करने के काम तो ये करती रही हैं, लेकिन अपने जीवन को भी संवारने की इन्होंने बहुत ही अथक कोशिश की है। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जो काम किया है, जिसके कारण मुझे ऐसा लगा कि इनकी आवाज आप सभी तक पहुंचनी चाहिए और शायद ये अपने आप में एक मिसाल है, वो है इनका माँ होने का फर्ज। सो भाई, इनके बच्चे हैं जिनके बारे में ये खुद बताएंगी, लेकिन उससे पहले जया जी, इस कार्यक्रम का नाम है महिला सशक्तिकरण और ये सवाल मैं हर महिला से पूछती हूँ कि उनके नजरिए में महिला सशक्तिकरण क्या है। और इस कार्यक्रम का, पिछले 17 सालों से ये कार्यक्रम चल रहा है हमारे रेडियो पर, और इस कार्यक्रम का पहला सवाल हमेशा से रहता है। सो आपसे जानना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण के क्या मायने हैं आपके जीवन में।
1: भावना जी, मेरे लिए महिला सशक्तिकरण का एक बहुत गहरा और व्यक्तिगत अनुभव है। महिला सशक्तिकरण सिर्फ बराबरी या अधिकार की बात नहीं है, बल्कि उस आत्मविश्वास की बात है जहां एक महिला बिना किसी से डरे, बिना किसी अपराध बोध या समाज के दबाव के अपने फैसले ले सके। सशक्तिकरण तब महसूस होता है जब एक महिला खुद को कमतर नहीं समझती, अपनी आवाज को दबाती नहीं है और अपने जीवन की दिशा को खुद तय करती है। यह सिर्फ बाहरी बदलाव से पहले एक अंदरूनी बदलाव है, सोच का, आत्मसम्मान का और अपने अस्तित्व को स्वीकार करने का।
0: वाकई जया जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और महिलाओं के सशक्तिकरण में मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जब तक महिला अपने लिए आवाज नहीं उठाती है, समाज भी उसकी, कहना चाहिए, साथ में नहीं आता है। लेकिन परेशानी है कि महिलाएं अपने आप को कई बार कमजोर समझने लगती हैं, और यही कारण है कि आज भी हमारे देश में या विश्व की मैं बात करूं तो पूर्ण रूप से हम महिलाओं में सशक्तिकरण नहीं देख पा रहे हैं। दोस्तों, वक्त एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की खूबसूरत सी कड़ी। और आज तो मैं आपको एक ऐसी महिला से मिलवा रही हूँ जो महिला से पहले मुझे लगता है कि एक बहुत प्यारी माँ है और अपने दोनों बच्चों के ऊपर वाकई जान छिड़कती हैं। जया जी, अगर मैं चैलेंजेस की बात करूँ तो महिलाओं को तो अलग अलग किस्म के चैलेंजेस या फिर कहना चाहिए चुनौतियाँ फेस करनी पड़ती है, लेकिन आपने तो जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ देखी हैं, तो मुझे बताइए किस प्रकार की चुनौती फेस कर रही हैं जीवन में अभी आप?
1: चुनौतियाँ मैं सिर्फ अपनी ही नहीं, सारी महिलाओं की बात करूं तो ये सिर्फ एक बाहरी चुनौती नहीं बल्कि अंदर की भी है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि वो हर एक क्षेत्र में आगे बढ़े, लेकिन साथ ही परंपराओं और जिम्मेवारियों के बोझ को भी पूरा करें। इस दोहरे दबाव में कई बार, चाहे वो मैं हूँ या मेरी जैसे अनेकों बहनें, अपने लिए खड़ा होना, ना कहना और ये स्वीकार करना कि उसकी अपनी इच्छाएं और जरूरतों को उतना ही महत्व मिले, कई बार सोच तक ही सीमित रह जाती है। तो मैं तो यही कहूंगी, एक महिला के अनेकों रूप होते हैं, उन सब रूपों को निभाते हुए भी, चाहे वो माँ का हो, बहन का हो, एक बीवी का हो, सबसे पहले खुद को सशक्त बनाना और अपने आप को प्राथमिकता देना, क्योंकि जब तक हम खुद को प्राथमिकता नहीं देंगे हम ना तो किसी चुनौती को ना ही किसी जिम्मेवारी को पूरा कर पाएंगे।
0: वाकई जय जी, लेकिन जिस तरीके से आपने जीवन में चुनौतियों का सामना किया है और अगर मैं देखूं जिस तरीके से आपने हर रोल को निभाने की कोशिश की है, बट मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सारे जो रिश्ते हैं, चाहे फिर वो एक बेटी का है या फिर एक बहन का है या पत्नी का है या माँ का है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे जरूरी और सबसे वाइटल आपके लिए तब था जब आपके बच्चों को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो वो मुझे लगता है काफी बड़ा चैलेंज आपके जीवन में रहा। सो किस प्रकार से आपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और आज आप अपने बच्चों को एक बहुत ही बेहतरीन सी परवरिश देने की कोशिश कर रही हैं, इसके बारे में करेंगे बात। जुड़े रहिएगा दोस्तों रेडियो वाला प्रश्न 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: बम्बक बम्बक बम्बक बम्बक
1: तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग

0: बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। हर बार मैं आपको ऐसी महिलाओं से मिलवाती हूं जो सशक्त हैं, साथ के साथ ऐसी महिलाओं से मिलवाती हूं जो अपने आप में एक मिसाल है। आज मैं आपको एक ऐसी महिला से मिलवाने वाली हूं जो माँ के रूप में तो वाकई एक मिसाल है। जीवन के जिस पड़ाव में कहना चाहिए, बहुत सारी महिलाएं घबरा जाती हैं। जया जी बिल्कुल भी नहीं घबराई और उन्होंने अपने बच्चों का हाथ थामा और उन्होंने कहा कि इन्हें एक अच्छा भविष्य में जरूर दूंगी। जया जी, हम बात कर रहे हैं आपके ऊपर बहुत सारी परेशानी आई और आपने अपने बच्चों के लिए एक अच्छी परवरिश और एक अच्छा भविष्य चुना। सो किस प्रकार से परेशानियां आई और आपने आज यहाँ तक आने तक अपने बच्चों के लिए किस प्रकार से ये सारे की सारी चुनौतियां आपने ली हैं, मैं चाहूंगी कि आप हमारे लिसनर्स को बताएं।
1: भावना जी, ये बात सन 2009 की है जब मैं अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी में थी
0: जी।
1: मेरा बेटा है ना, उसी दौरान अपने हस्बैंड से सेपरेट हुई मैं
0: जी।
1: तो आप समझ सकती हैं, गोद में एक दो साल की बच्ची है और एक दो ढाई महीने का बच्चा पेट में, सफर की शुरुआत कैसी रही होगी मेरी।
0: वाकई
1: सफर आसान नहीं था एक रूप में। बच्चों के भविष्य के लिए भी मैंने कई बार अपने सपनों को पीछे रखा, अपनी जरूरतों को नजरअंदाज किया। ऐसे दिन भी आए जब हालात बहुत कठिन थे, आर्थिक संघर्ष, मानसिक थकान और कभी कभी अकेलापन। लेकिन हर बार मन में यही ख्याल आता था कि अगर मैं हार मान जाऊंगी या टूट जाऊंगी तो इससे मेरे बच्चों का हौसला भी टूट जाएगा, उनका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। इसलिए मैंने हर मुश्किल को एक चैलेंज और जिम्मेदारी की तरह लिया, धीरे धीरे आगे बढ़ती रही, कई अनेकों नौकरियां भी की, छोटी बड़ी हर तरीके की, और अपने बच्चों को ना सिर्फ सुविधाएं बल्कि मूल्य, हिम्मत और आत्मनिर्भरता भी देने की कोशिश की ताकि वो जिंदगी में किसी भी परिस्थिति का सामना निडर होकर कर सके।
0: जय जी, जब इस तरीके की परेशानी आती है तो दरअसल इंसान के आगे दो रास्ते आते हैं। एक वो कि हार मान ले कि भाई अब अगर मेरे साथ कहना चाहिए पति नहीं है, उतनी साउंड इनकम नहीं होगी या उतना पैसा नहीं मिलेगा, बच्चों की परवरिश कैसे होगी, उन्हें एक अच्छा भविष्य कैसे मिलेगा, और दूसरी तरफ कि हौसले से बच्चों को एक अच्छा भविष्य देना। अगर मैं आपके बच्चों की बात करूं तो आपके दोनों ही बच्चे, चाहे मैं आपकी बिटिया की बात करूं या आपके पुत्र की बात करूं, दोनों ही मेरिटोरियस बच्चे हैं और वो ऐसे बच्चे हैं जो मुझे लगता है बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। सो किस तरीके से आपने इन्हें हौसला दिया, क्योंकि जब आपके बुरा समय था या मैं मुझे कहना चाहिए चैलेंजेस का समय था तो ऐसे में अक्सर माओं के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी होती है। वो ये सोचती हैं कि भाई ना तो मैं अपना निर्वाह कर पा रही हूँ, इन बच्चों को अच्छा भविष्य कैसे दिया जाए, वो भी आजकल के कॉम्पिटिटिव जमाने में जहाँ सब कुछ इतना महंगा है।
1: एक जिद थी मेरे मन में कि जो तकलीफें मैंने अपने जीवन में देखी है वो तकलीफों में अपने बच्चों के आसपास भी नहीं होने दूंगी
0: जी।
1: बच्चों ने भी मेरे साथ बहुत संघर्ष किया, तकलीफें देखी कि किस तरीके से उनकी माँ पाल रही है
0: जी।
1: ऑफिसेज में साफ सफाई से लेके सेल्स के जॉब, जैसा मैंने बताया अनेकों काम किए मैंने ताकि मैं अपने बच्चों की जरूरतों को, और सबसे पहली चीज जो बच्चों को मेरे आत्मनिर्भर बना पाएगी वो थी शिक्षा, उस पर ध्यान दो। तकलीफें बहुत आई है ना, जैसा मैंने कहा हिम्मत भी बहुत टूटी, लेकिन एक वो जिद थी, एक सनक थी मन में कि नहीं, मुझे ये करना है, सिर्फ खुद के लिए नहीं अपने बच्चों के लिए भी। तो सारी तकलीफों को नजरअंदाज करते हुए, उनके थ्रू निकलते हुए, बच्चों के लिए बस एक ही वो थी कि अच्छी से अच्छी शिक्षा दे। कहते हैं बिना रोटी के एक दिन इंसान रह सकता है, एक समय बिना खाए भी रह सकता है, लेकिन बिना शिक्षा के इस धरती पे एक दिन भी गुजारना बहुत मुश्किल है। शिक्षा ऐसा हथियार होता है, कहते हैं ना कि अगर आपने शिक्षा ग्रहण की है तो उससे आप दुनिया की कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं, अपने लिए सम्मान, पावर, पोजीशन, हर चीज, और अपने आसपास के समाज को भी बदल सकते हैं। तो मेरी तो जिद बस यही थी कि मैं अपने बच्चों को वही चीज दूं, शिक्षा, भले ही और किसी चीज में अभाव रह जाए लेकिन शिक्षा की कमी कभी होनी नहीं चाहिए। इसी को नजर में रखते हुए मैं आगे बढ़ती गई और आज जैसा आप लोगों ने कहा, आप लोगों के आशीर्वाद से मेरी बिटिया ऑल इंडिया टॉपर भी रही है क्लैट में, 87 रैंक आया, और मेरा बेटा भी स्कॉलरशिप स्टूडेंट है SOS हमन माइनर से, और साथ में NDA की तैयारी भी कर रहा है।
0: क्या बात है, वाकई काबिले तारीफ आपकी ये जो खूबसूरत सी कहानी है, रादर कहना चाहिए हौसले की कहानी है, आपने इसे बहुत ही खूबसूरती से निभाया है। और जो बात आपने कही है मुझे लगता है एक बहुत बड़ी सीख है कि इंसान एक दिन बिना खाने के रह सकता है, लेकिन अगर भविष्य के लिए शिक्षा नहीं होगी तो उनका जीवन भी अंधकार में चला जाएगा। लेकिन जया जी, जब आप ये कह रही हैं कि मेरे पास पैसे का अभाव था, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना मुश्किल था, कभी आपके कदम डगमगाए, कभी ऐसा लगा बच्चों को ही काम पे लगा दूं या बच्चे अर्ली एज में ही नौकरी करके कहीं छोटे मोटे काम करके कमा सकें, या हमेशा ऐसा लगा कि मुझे कोई भी परेशानी आए लेकिन बच्चों का भविष्य आड़े नहीं आना चाहिए?
1: मेरे मन में बस यही था कि मैं खुद को चाहे आग में झोंक दूं या कुछ भी करूं
0: जी,
1: चाहे मुझे दिन में कितने भी घरों में काम करना पड़े, कितनी भी मजदूरी करनी पड़े, कितनी भी हार्ड लेबर करनी पड़े, लेकिन अपने बच्चों के ऊपर, उनके शिक्षा के ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगी। बच्चों को बार बार मैं यही कहती रही कि बेटा सारी चीजों के लिए मैं बैठी हूँ, लेकिन आप लोगों का लक्ष्य बस ये होना चाहिए कि हम इतने पढ़े लिखे और इतने कामयाब बने कि एक दिन दुनिया कहे कि हाँ जी ये शगुन की मम्मी है, ये शुभम की मम्मी है। और आज भी उसी दिन का इंतजार है। कहते हैं बच्चे माँ बाप के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन मेरा सपना, मेरा संघर्ष उस दिन पूरा होगा जब ये दुनिया मेरे को मेरे बच्चों के नाम से पुकारेगी।
0: वाकई आपका यह सपना मुझे तो पूरा होता नजर आ रहा है, जिस तरीके से आपने अपने बच्चों की परवरिश की है और जिस संघर्ष के साथ आप उन्हें उनका भविष्य बनाने की कोशिश कर रही हैं, वाकई ये सपना आपका बहुत ही जल्द पूरा होता नजर आ रहा है। जो आपके बच्चे न सिर्फ आपकी मेहनत को रियलाइज कर रहे हैं लेकिन उनकी जिंदगी में भी कठिन परिस्थितियां आती हैं और आ रही हैं, उसके बावजूद भी अगर आप उनके हौसले की बात करें तो वो भी बड़े हौसले से और बहुत ही फोकस से अपनी पढ़ाई और कहना चाहिए अपने करियर में मन लगा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है बहुत सारी महिलाओं के लिए। सो आज भी हम महिला सशक्तिकरण में कई बार देखते हैं महिलाएं कमजोर हो जाती हैं, ये सोचती है हम क्या कर सकते हैं, या बहुत सारी महिलाएं ये सोचने लग जाती हैं परिस्थितियां ऐसी थी। लेकिन देखिए जया जी एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, आप अगर अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे पाएंगी तो आप अपने लिए एक नई जिंदगी जी पाएंगी। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ, वक्त एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण के इस खूबसूरत से कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं जया जी से। जया शर्मा जी वैसे तो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, लेकिन असल देखा जाए तो जिंदगी में इन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया है, लेकिन उन सारे चैलेंजेस के बाद विक्टोरियस होकर उन्होंने अपने बच्चों की जिस तरीके से परवरिश की है और जिस तरीके से उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है, वाकई जया जी मैं तो चाहती हूं कि मैं अगला इंटरव्यू आपका तब लूं जब आपकी बच्ची एक बहुत बड़े ओहदे पे पहुंच जाए, और फिर मैं ये कहूं कि आज हम शगुन की मम्मी का इंटरव्यू ले रहे हैं। अगला सवाल मेरा आपसे होगा कि महिलाओं के हिस्से में ना जिम्मेदारियां बहुत सारी आती हैं। अगर आप देखें और कभी भी तोलने की कोशिश करें तो महिलाएं हमेशा ये देखती हैं कि वो उनका जो दामन है वो जिम्मेदारियों से भरा होता है, और इन जिम्मेदारियों को पूरा करते करते कहीं महिला खुद कई बार अपना अस्तित्व तक गंवा बैठ। So, मुझे बताइए कि इन सारी चीजों को किस तरीके से बैलेंस किया जा सकता है, आप इन्हें किस नजरिए से देखती हैं?
1: ये सच है कि महिलाओं ने बहुत तरक्की की है, बहुत प्रगति की है, लेकिन जिम्मेदारियों का संतुलन अभी भी बराबर नहीं है एक महिला और एक पुरुष के बीच में।
0: वाकई।
1: और महिलाओं का योगदान सिर्फ कर्तव्य ही नहीं बल्कि सम्मान के रूप में भी देखा जाएगा।
0: देखिए, अगर मैं बात करूं सम्मान की, तो महिलाएं आजकल उस मुकाम पर जरूर पहुंच रही हैं जहां उन्हें ना सिर्फ सम्मान मिल रहा है लेकिन वो सम्मान की अधिकारी भी हैं। लेकिन परेशानी ये है कि हमारे समाज में आज भी महिला और पुरुष के लिए, या दोनों कहना चाहिए, इन जेंडर्स के लिए इक्वालिटी नहीं आई है। सो आज भी महिलाएं अपने सशक्तिकरण के लिए एक लड़ाई लड़ रही हैं, और ये कार्यक्रम शायद उसी की एक कड़ी है जहां पर कि हम महिलाओं को ये कहते हैं कि आप खुद मिसाल बनिए। जया जी एक मिसाल बनी, इन्होंने जिंदगी में जो परेशानी झेली, आई एम श्योर अगर किसी और के ऊपर या किसी और के जीवन में इस तरीके की परेशानी आती तो कई बार महिलाएं सोचने लग जाती हैं, भाई एक बच्चे का या इन दो बच्चों का लालन पालन सिर्फ एक माँ ही क्यों करे, एक पिता उन्हें छोड़कर जा सकता है जबकि बच्चे उनके भी हैं, लेकिन एक माँ की जिम्मेदारी ये बन जाती है कि वो अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे, उनके जीवन को खराब ना होने दे। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि महिलाओं के हिस्से जिम्मेदारियां हमेशा ज्यादा होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाएं ज्यादा शक्तिवान और ज्यादा सशक्त होती हैं, और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ महिलाएं अतुलनीय हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वीमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। और आज हम बात कर रहे हैं जया शर्मा जी से। जया जी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, वैसे सिर्फ एक सोशल एक्टिविस्ट नहीं, मुझे लगता है इनके तो बहुत सारे हैट्स हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सारे तरीके के काम किए हैं। लेकिन इन सारे कामों के पीछे इनका ध्येय हमेशा एक रहा, इनके बच्चों का एक अच्छा भविष्य। जया जी, ढेर सारी महिलाएं सुन रही है इस कार्यक्रम के जरिए आपको, एंड आई एम श्योर बहुत सारी महिलाओं के लिए आप अपने आप में एक मिसाल है। देखिए, महिलाएं हैं, कभी कमजोर भी होंगी और कभी कठोर भी होंगी, लेकिन उन्हें भी इस तरीके का हौसला चाहिए कि जीवन में कठिनाई आए, कोई ना कोई दामन थाम के आपको जिंदगी में या आपकी जिंदगी की डोर को कोई ना कोई सही मायने पर ले ही आएगा। सो क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी उन्हें, और अपने जीवन के इन अनुभवों से क्या खास सीख आप उन्हें देकर जाना चाहेंगी?
1: मैं अपनी तमाम बहनों को यही कहना चाहूंगी कि बदलाव सिर्फ नीतियों से नहीं आती है, बल्कि हमारे व्यवहार और हमारे सोच से भी आता है। हमें अपनी बेटियों को सिर्फ मजबूत बनाना ही नहीं, बल्कि अपने बेटों को भी संवेदनशील और सम्मान देना सिखाना चाहिए। और हर महिला से खुद को कभी कम मत समझिए। आपकी पहचान सिर्फ किसी रिश्ते से नहीं, बल्कि आपके अपने अस्तित्व से है। अपने सपनों को जीने का हक आपको भी है, और उस हक को पाने के लिए आवाज उठाना बिल्कुल सही है। रास्ते में कई रुकावटें आती हैं, चाहे वो सामाजिक हो या किसी और तरीके की, लेकिन हम उन रुकावटों को नजरअंदाज करके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए और अपने आवाज बुलंदी से उठाना भी चाहिए।
0: वाकई दोस्तों, आवाज तो उठाइए, लेकिन साथ के साथ ये हौसला जरूर रखिए कि अगर आपने आवाज उठाई है तो ये आवाज वहां तक पहुंचेगी जहां ये सुनी जानी चाहिए, यानी हमारे समाज में। बहुत अच्छा लगा जया जी आपसे बात करके। वाकई आज मदर्स डे स्पेशल इस खास कार्यक्रम वेमेन एम्पावरमेंट में मुझे ऐसा लगा कि मैं एक ऐसी माँ से बात कर रही हूँ जो खुद सशक्त तो है ही, लेकिन वो अपने बच्चों को और भी ज्यादा सशक्त बनाने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी।
1: धन्यवाद भावना जी।
0: दोस्तों, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले, आप जुड़े रहने वाले हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

जो देश अपनी धरती को नष्ट करता है वो खुद बा खुद नष्ट हो जाता है। जंगल हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये जंगल हवा को शुद्ध और ताजा बनाकर हम लोगों को नई शक्ति देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा।

रेडियो मानव रचना के सभी श्रोताओं को संदीप सिंघल का नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में, जिसे हम लेकर आते हैं हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे। जैसा कि आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम में हमारा जो उद्देश्य रहता है वो होता है कि किसी एक विषय पर, ऐसे मुद्दे पर हम बात करें जो जुड़ा होता है हमारे आपके जीवन से, और उस मुद्दे पर हम नई सोच के साथ तलाशें नई दिशाएं जो हमें लेकर के जाएं एक बेहतर भविष्य की ओर। और रेडियो मानव रचना का हमेशा से एक प्रयास रहता है कि हम अपने श्रोताओं के जीवन में क्या नया बदलाव ला सकते हैं, हम उनकी जिंदगी को और कैसे ज़्यादा खुशनुमा बना सकते हैं, कैसे ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो उसी का एक छोटा सा प्रयास रहता है नई सोच नई दिशाएं के अंतर्गत एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करना जिस पर जरूरत है एक नई सोच के साथ नई दिशा तलाशने की। तो आखिर ऐसे मुद्दे होते क्या हैं? वो मुद्दे होते हैं जो हमारे आसपास ही होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनको नज़रअंदाज कर जाते हैं या उनके बारे में चर्चा करना हमारे स्वभाव में नहीं रहता। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम आपका ध्यान आकर्षित करें उन्हीं विषयों के बारे में। तो दोस्तों, आज का जो मुद्दा है वो विषय है हमारे जीवन में जुड़ी हुई एक बहुत, जो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, वो है सोशल मीडिया। और उसी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है आज का मुद्दा कि सोशल मीडिया की जो खबरें हैं, खबरें बनाम गलत जानकारी, यानी कि जो खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास आती हैं और हम उन्हें बड़ी स्पीड से बहुत जल्दबाजी में अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते हैं, लेकिन कभी कभी वो सूचनाएं वो जानकारी होती है गलत, जो कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव डालती है हमारे समाज में हमारे लोगों के ऊपर। तो आज हम जानेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जो हम रोज चीजें मोबाइल पर देखते हैं वो वास्तव में सच हैं या सिर्फ एक भ्रम है। क्या हर वायरल वीडियो सच होता है? क्या हर फॉरवर्ड की गई खबर पर भरोसा किया जा सकता है, या फिर हम धीरे धीरे गलत जानकारी के जाल में फंसते जा रहे हैं? तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों, जो सोशल मीडिया है आज की डेट में वो केवल और केवल एक एंटरटेनमेंट का साधन नहीं रहा, यानी केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं होता। उसमें बहुत सारी जो जानकारी है वो हमें समाचारों के रूप में, मतलब न्यूज के रूप में मिलती है, जो हमारे लिए एक नया, एक तरह का सोर्स डेवलप हो गया है न्यूज का। जितने लोग अखबार या टीवी पर न्यूज देखते हैं उससे कहीं ज्यादा, मतलब अगर मैं बात करूं तो शायद 10-20 गुना ज्यादा लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से खबरों को देखते हैं। और एक जो एक एस्टिमेट एक लगाया गया है कि भारत में बड़ी संख्या में युवा अपनी खबरों के लिए सोशल मीडिया पर निर्भर हैं, यानी यदि उनको किसी खबर के बारे में वर्बली कुछ बात पता भी चलती है तो वो सबसे पहले अपना व्हाट्सएप चेक करते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल चेक करते हैं या फिर फेसबुक पर कि क्या इस मुद्दे पर कहीं कुछ आया हुआ है, या यूट्यूब पर। तो वो एक बड़ा बदलाव हमारे जीवन में आया। हम टीवी पे न्यूज चैनल को देखने की बजाय उससे ज्यादा रिलायबल समझते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, क्योंकि ये तेज है, आसान है और हर समय उपलब्ध है। ये एक आम धारणा है हमारे देश के युवा वर्गों की, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि इसकी जो ये सबसे बड़ी ताकत है, ये तेज आसान और हर समय उपलब्ध होने की जो ताकत है, ये इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है या बन जाती है जब इस पर कोई गलत जानकारी दी जाती है, और वो गलत जानकारी भी उतनी ही तेजी से हमारे बीच में फैलती है, हमारे लोगों तक पहुंचती है, जितनी तेजी से अन्य बातें हम लोग आपस में साझा करते हैं। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा को जारी रखेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फरीदाबाद का पहला आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और मैं हूं संदीप सिंगल और आज हम चर्चा कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से मिलने वाली खबरों के बारे में कि वो खबरें कितनी सही हैं और कितनी गलत हैं, यानी सोशल मीडिया जो खबरों का एक नया प्लेटफॉर्म बन गया है उस पर आने वाली खबरों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारे देश के युवा हैं वो किसी भी अन्य समाचार के माध्यम के कंपैरिजन में अगर हम उसकी अपेक्षा की हम बात करें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं, क्योंकि वो सबसे आसान है और सबसे तेज है। और सबसे बड़ी बात है कि हर समय उपलब्ध है, यानी आप कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, तो मोबाइल आमतौर पर सभी के पास होता है। तो वो किसी भी खबर के बारे में जो तुरंत जानकारी प्राप्त करने का जो उनके लिए माध्यम है वो सबसे बड़ा तेज और आसान माध्यम है उनका मोबाइल फ़ोन, जो जुड़ा होता है सीधे सीधे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ। लेकिन दोस्तों, बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये सुविधा है ये अपने आप में कितनी खतरनाक स्थिति ले लेती है जब उतनी ही तेजी से कोई गलत जानकारी भी इसके माध्यम से फैलाई जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा, अभी हाल ही में हमारे बॉलीवुड के एक बहुत बड़े सितारे, उनकी जो खबर थी डेथ की वो कई दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से इधर उधर भेज दी गई और एक पूरे देश में एक अलग तरह का वातावरण बन गया। और कहीं ना कहीं उनके स्वयं के परिवार के सदस्यों को आकर के ये जानकारी देनी पड़ी कि वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक हैं, हालांकि उनकी स्थिति थोड़ी बेहतर नहीं चल रही है। लेकिन यदि आप किसी भी व्यक्ति के बारे में इस प्रकार की खबरें कहीं शेयर करते हैं और वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जब सब लोगों तक पहुँच जाती हैं और वो उस तरह के शोक संदेश उस पर डालने लगते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि उस अमुक जो पर्टिकुलर परिवार है उसके सदस्यों पर क्या बीत रही होगी। तो उसी कड़ी में अगर हम बात करते हैं तो इस प्रकार की जो जानकारी के जो माध्यम हैं जहां वो एक फायदेमंद सिद्ध होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार की गलत जानकारी देने से वो एक बहुत बड़े नुकसान का कारण भी बन जाते हैं, यानी एक परेशानी का सबब भी बन जाते हैं। तो जो ये फेक न्यूज़ है, यानी गलत या भ्रामक जानकारी जो है, वो आज के समय की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। कई बार पुराना कोई वीडियो एक नई घटना के नाम पर वायरल हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जिस प्रकार का वातावरण देश में या हमारे समाज में चल रहा होता है तो कुछ लोग बहुत पुरानी या किसी एक अन्य जगह की किसी घटना को ये कह करके डाल देते हैं कि ये फलां घटना अभी हाल ही में किसी अमुक शहर में हुई है। तो उससे कई बार जो सांप्रदायिक स्थिति है वो डिस्टर्ब हो जाती है, दंगे होने के चांसेज हो जाते हैं और उसमें दिखाई गई बातों को भी गलत तरह से प्रेजेंट किया जाता है। और हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम बिना उस तथ्य की जानकारी लिए, उसकी जो एक सोर्स है उसको देखे बिना हम उसको आगे शेयर कर देते हैं और इस प्रकार से ये जो जाल है वो पूरा फैलता चला जाता है और वो भ्रामक जो जानकारी है, वो जो गलत न्यूज़ है, जो एक पुराना वीडियो और वो बिल्कुल एक लेटेस्ट घटना के तरह से प्रेजेंट कर दिया जाता है, वो कहीं ना कहीं लोगों को सच करने लगता है लगने लगता है। और कभी कभी किसी फोटो को एडिट करके कोई नई कहानी बना देते हैं। आजकल आपने देखा होगा AI के माध्यम से हम फोटो में बहुत ज़्यादा चेंजेस करके कुछ भी उसको दिखा दिया जाता है। लोग अक्सर आपने देखा होगा कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी इस तरह का इस्तेमाल करती हैं या उनके समर्थक भी इस प्रकार की चीज़ों को अंजाम देते हैं और जो एक गलत पिक्चर सोसाइटी के अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से फैलती है। और साथ ही साथ कभी कभी पूरी की पूरी खबर झूठी होती है, लेकिन उसको जो पेश करने का तरीका है वो ऐसा दिखाया जाता है, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की आप बात करें, पिक्चर्स की बात करें या वीडियो की बात करें, या उसमें जो कैरेक्टर्स दिखाए गए होते हैं उनका जो हाव भाव है वो इस प्रकार से दर्शाया जाता है कि जैसे पूरी घटना सच है। और उसमें जो लैंग्वेज है वो कई बार वो इस प्रकार की लैंग्वेज स्पीड अप करके ये वीडियो बिल्कुल अभी का है, लेटेस्ट है, या सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, और वो इस प्रकार की जानकारी को प्रेजेंट करते हैं कि जैसे एक बहुत ही बड़ी घटना घटित हो गई है, तो लोग उस जानकारी को उसी तरह से लेने लगते हैं जबकि वो उसके सोर्सेज के बारे में सोचने का उनको समय ही नहीं मिलता। यानी उन्हें लगता है कि जैसे ही किसी, अब आप एक अभी हाल ही में जो विश्व युद्ध की जो स्थिति एकदम उत्पन्न हो गई थी कि ईरान और अमेरिका वाला जो युद्ध चल रहा था, उस दौरान आपने भी महसूस किया होगा कि कभी कभी चाहे YouTube पे हमने देखा कि बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं या लोकल न्यूज़ चैनल्स हैं या किसी ने अपने न्यूज़ अकाउंट्स बनाए हुए हैं, उन्होंने उस पर एक टाइटल दे रखे थे कि फलां देश ने उस पर हमला करने की तैयारी कर ली है या भारत ने इस तरह से किया। तो वो चूँकि वैश्विक स्थिति ऐसी बनी हुई थी तो हम मजबूर हो जाते हैं ऐसे वक्तव्यों को देख करके सुन करके
उन पर यकीन करने के लिए। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक सपोर्ट का काम करती हैं कि हम जो मनोदशा हमारी चल रही है उसी से रिलेटेड बातें हमें टीवी पर ना देखने की बजाय जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर दिखने लगती हैं और हमें लगने लगता है कि वास्तव में स्थिति इतनी भयानक होने वाली है या भयावह स्थिति उत्पन्न होने वाली है। तो वो सब चीज़ें हमारी जो सामाजिक स्थिति है उसको बेहद खराब

कर देती हैं, और कहीं ना कहीं इसी प्रकार का वातावरण हमने देखा था कोरोना की त्रासदी के अंदर। जब आपने देखा कोरोना महामारी पूरे विश्व में अपना प्रकोप फैला रही थी, तो वहीं बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत भ्रामक जानकारी भी दी जाती थी कोरोना से होने वाली डेथ्स के बारे में या उसके दौरान होने वाली घटनाएं, कि कहीं डॉक्टर्स पे हमला हो गया या फलां जगह पर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया कोरोना का, इस वजह से कभी किसी को दोष दे देना। तो ऐसी जानकारी भी बहुत शेयर हुई। और सबसे बड़ा दुखद पहलू ये है कि जब ये समस्या हमारे बीच में से समाप्त भी होगी, तब भी उसके बाद कई महीनों तक, इवन कुछ महीनों पहले तक भी कभी भी इस तरह की कोई ना कोई एक जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ जाती है कि कोरोना फिर से आ गया है, या किसी अन्य बीमारी का नाम लेकर के कि वो फैल रही है। तो चाहे तथ्य कुछ भी हो, लेकिन जो मानसिक अवस्था है एक व्यक्ति की, वो इन सब खबरों को देख करके एक परेशानी पाल लेते हैं, वो एक तरह का मानसिक दबाव में की स्थिति में आ जाते हैं, और वो किसी भी रूप से हमारे समाज के लिए एक बेहतर स्थिति नहीं होती है। तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि जब तक किसी भी घटना का जो सोर्स है, किसी भी जानकारी का जो उद्गम है, जहाँ से भी वो आ रही है, जब तक हमारी पूरी रिलायबिलिटी उसके बारे में ना हो, तब तक हम उस चीज़ को किसी से शेयर ना करें। ये एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमारा भी कर्तव्य बनता है। तो दोस्तों, अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और इस चर्चा को जारी रखेंगे कार्यक्रम के अगले हिस्से में। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील।

0: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर एक लंबे समय से मैं आपको लेकर जाती हूं और आप लोगों को ह्यूमैनिटी के बारे में याद दिलाती हूं, उन सभी अनसंग हीरोज से मिलवाती हूं जो आज भी मानवता के ढेर सारे काम कर रहे हैं, और उन सभी लोगों की मानवता की इन गाथाओं को और इन किस्सों को आप तक पहुंचाती हूं। दरअसल इस प्रोग्राम का जो ध्येय है या कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इतना सा है कि हम सब इंसान हैं और हम अपनी इंसानियत या ह्यूमैनिटी को ना भूलें, और इसीलिए मानवता की राह पर हर रोज हम चल सकते हैं कोई एक नेक कार्य के साथ। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस नेक कार्य को डेली कर रहे हैं और उन्होंने इसे अपना पैशन बना लिया है। आज की इस कड़ी में हम जिनसे बात करने वाले हैं वो एक एडवोकेट हैं, एडवोकेट रितु कपूर शर्मा, एक फाउंडर और डायरेक्टर हैं रीत फाउंडेशन की। रीत फाउंडेशन की शुरुआत कैसे हुई और रीत फाउंडेशन दरअसल क्या कर रही है, महिलाओं के सशक्तिकरण से लेके उनके अधिकारों तक की सारी कहानी आज हमें बताने वाली हैं एडवोकेट रितु कपूर, और उसके लिए करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी, पहले तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए आज, और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। जैसे कि आपने बताया कि हमें कुछ ना कुछ मानवता की तरफ कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, और ये बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई है आपने, जिसकी वजह से लोगों में भी एक जागरूकता आएगी और उन्हें लगेगा कि हाँ, हमें भी कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए करते रहना चाहिए।
0: देखिए, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, मानवता करने के लिए आपको कोई भी सोचे समझे प्लान की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपको लगे कि हाँ आपके पास समय है, अपने आसपास देखिए, और अगर आपको लगता है कोई भी इंसान, उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है और क्या आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं, और अगर आप उसकी पूर्ति नहीं कर सकते हैं तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। सो इसीलिए ये खास कार्यक्रम, क्योंकि मैं आपको ऐसे लोगों से रूबरू करवाती हूँ जो लोगों के लिए सही मदद पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। रितु जी, रीत फाउंडेशन, आप पेशे से एक एडवोकेट हैं, और दरअसल देखा जाए तो एडवोकेट्स इतने बिजी होते हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और अपने काम से उन्हें शायद किसी के भले करने का समय नहीं होता, बट आप एक बहुत ही खूबसूरत सी फाउंडेशन चलाती हैं। सो इसके पीछे की कहानी, इसे आपने स्टार्ट कैसे किया और आज रीत फाउंडेशन कहाँ है?
1: ज़रूर, मैं रीत फाउंडेशन के बारे में ये आपसे शेयर करना चाहूँगी कि किस तरह से हमने इसकी शुरुआत की। जैसे कि सब अपने अपने लिसनर्स को आपने बताया ही कि पेशे से मैं वकालत करती हूँ, एडवोकेट हूँ, और उसमें हम जब मैं शुरुआती अपने काम में लोगों से मिलने लगी, जो महिलाएं बहुत ही वेल एजुकेटेड, यहाँ तक कि जब मैं आपको अगर बताऊँ तो मैंने केसेस देखे हैं आईएफएस ऑफिसर्स जो बहुत अच्छे इंटरनेशनली भी अपॉइंटेड रही हैं अपने उस ड्यूरिंग देयर टेन्योर, और आईबी स्कूल्स की सीनियर टीचर्स, इंटरनेशनल स्कूल के सीनियर टीचर्स, एंड एमएनसीज में डायरेक्टर लेवल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पे काम करने वाली जो महिलाएं हैं, जब मैं उन जैसी महिलाओं से मिली इस दौरान, इस पेशे के दौरान, और जब मुझे लगा, मुझे समझ में आया कि इतनी वेल एजुकेटेड लेडीज़ जो हैं और इतने अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं फाइनेंशियली, बट स्टिल उनके पास लीगल राइट्स की नॉलेज नहीं थी, इसलिए वो इतने सालों से ये घरेलू हिंसा सहती रही। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिनके पास अगर घरेलू हिंसा नहीं तो बहुत अलग तरीके की इमोशनल और मेंटल हरासमेंट से वो गुजर रही थी, लेकिन क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं थी, उन्हें ये पता नहीं था उनके पास लीगल राइट्स कौन कौन से हैं, उनके कुछ एप्रिहेंशंस थी, उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस उठते थे। सबसे पहला तो जो हमारे समाज में एक ये चीज़ चली आ रही है कि लोग क्या कहेंगे, सबसे पहला। दूसरा एप्रिहेंशन उनका ये होता था कि मैं घर में रहकर अपने ही लोगों से कैसे झगड़ा कर सकती हूँ, कैसे केस डाल सकती हूँ। तीसरा, मैं फाइनेंशियली क्या करूंगी। जो लेडीज़ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, उनको ये लगता है कि अगर मैंने आवाज़ उठाई तो ये सारे जो फाइनेंशियली मुझे हेल्प मिल रही है, आर्थिक सहायता जो कही जाती है हिंदी में, कि मेरे जो पति या मेरे जो घर के लोग हैं, ससुराल के लोग हैं, ये मुझे घर से निकाल देंगे और मेरे पति ये सारी चीज़ें रोक देंगे, जो मेरे बच्चों की फ़ीस है, तो उस इन सब वजहों की वजह से वो अपने ना तो आवाज़ उठाती हैं और ना ही उन्हें लीगल राइट्स ये पता है। तो जब मुझे ये उन सब लेडीज से मेरा मिलना हुआ और मैंने उन्हें सब राइट्स उनके बताए, तो बहुत सारी महिलाओं की हमेशा ही यही एक उन्होंने हम मुझसे शेयर किया कि हमें पता ही नहीं था कि हम घर में रहते हुए भी राइट टू रेजिडेंस क्लेम कर सकते हैं, हम मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं विदाउट टेकिंग डिवोर्स. क्योंकि क्या हो रहा है भावना जी, हमारे समाज में जैसे पिक्चरों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है लोगों के ऊपर, तो उसके वजह से लोगों को सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी पता है, डिवोर्स, तलाक. अगर मेरे पास कोई भी महिला आती थी तो वो यही बोलते थे, मैम मुझे अपने हस्बैंड से डिवोर्स चाहिए, मैम बहुत झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, और अदरवाइज नहीं तो ये हरासमेंट बहुत सालों से चल रहा है, तो मुझे आपसे मिलना है और मुझे डिवोर्स चाहिए. तो मैं हमेशा आज की डेट में भी मैं हमेशा हर महिला को ये बोलती हूँ कि ठीक है, क्योंकि आपको अभी तक एक ही टर्म पता है, आपको बाकी लीगल राइट्स अपने पता नहीं है, तो आप एक बार मेरे

0: पास आए, कंसल्टेशन करें, और उसके दौरान मैं आपको आपके सारे लीगल राइट्स बताऊंगी। मैं बताऊंगी कि आप इस शादी में रहकर भी सेफ रह सकती हैं। जरूरी नहीं है कि आपको डिवोर्स ही डालना है, तलाक ही डालना है। तो जब उन लेडीज का रिस्पॉन्स मुझे मिला और ये लगा कि हाँ, ये बहुत एक मददगार एक चीज हो रही है लोगों के लिए, और उनको नहीं पता उनके लीगल राइट्स, इसलिए वो आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, तो उस समय मैंने 2021 में ये श्रीत फाउंडेशन के बारे में सोचा और इससे हमने स्टार्ट किया। और रीत फाउंडेशन में हमने बहुत सारी महिलाओं को उनके कानूनी अधिकार बताए, जिससे वो जितने भी हम मदद कर पाए और जितने भी हम उनको सशक्त कर पाए हैं। आज की डेट में 15,000 से 20,000 हमने गुरुग्राम में महिलाओं के साथ काम किया है और उन्हें उनके कानूनी अधिकार बताए हैं। इसमें जब मैंने ये रीत फाउंडेशन स्टार्ट की, तो एक हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था, शक्ति प्रोजेक्ट
1: जी।
0: शक्ति प्रोजेक्ट का लॉन्च किया गया था, हमारे IPS ऑफिसर हैं मैम राजश्री मैम, ऑनरेबल राजश्री मैम जी ने हमारा जब गुरुग्राम में ही ये लॉन्च हुआ, और उस दौरान भी हमने ये सेशंस किए, तो महिलाओं को उनके सारे कानूनी अधिकार बताए गए, और ऐसे ही हमने 5 से 10 सेशंस लगातार इसमें किए। और उसके बाद हमने लॉन्च किया दुर्गा प्रोजेक्ट। दुर्गा प्रोजेक्ट में भी हमने ऐसे सेशंस किए, जहाँ जहाँ बहुत सारे, मैं DLSA के साथ भी जुड़ी हुई हूँ, DLSA होता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, वहाँ से भी हमें बोला जाता है, इधर कहीं गांव में कहीं कहीं हमें कहा जाता है कि मैम वहाँ पर भी एक सेशन ले लीजिए, एक महिलाओं को जाकर एक जागरूकता का एक वो चला सेशन आप ले आए तो अच्छा है, महिलाओं को थोड़ा पता चलेगा। तो हमें रीत फाउंडेशन के अंतर्गत हमने जितने हम कवर कर सकते थे हमने वो कवर किया है। और अभी रिसेंटली जो हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं गुरुग्राम के, श्री विकास अरोड़ा जी, उन्होंने गुरुग्राम पुलिस के साथ, हमने रीत फाउंडेशन के साथ मिलकर एक डिजिटल सहेली, ये गुरुग्राम पुलिस का ही इनिशिएटिव है, उन्होंने ही किया, रीत फाउंडेशन ने उनके साथ उनकी मदद की इसमें लॉन्च में। और ये डिजिटल सहेली बहुत ही अच्छा है, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में ज़रूर बताऊंगी
1: जी,
0: और बताना चाहूंगी, क्योंकि बहुत ही मददगार होगा ये सब महिलाओं के लिए, जितने भी लिसनर्स हैं आपके। और उसके बाद एक और हमारा प्रोग्राम हम इसी में ही शुरू कर रहे हैं रीत फाउंडेशन में, सामूहिक कन्यादान। तो उसमें जितने भी अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स हैं, जिनके साथ उनकी पेरेंट्स को मुश्किल आ रही है उनकी शादी करने के लिए, तो वहाँ पर भी हमने ये एक अपना एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो इस तरह से हमारी कोशिश पूरी है कि हम रीत फाउंडेशन के थ्रू और महिलाओं को, जितनी भी महिलाओं को हम मदद कर सकते हैं कानूनी तौर पे और वैसे भी, तो हम अपनी तरफ से एक कोशिश है।
2: देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमेशा कहता है टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, बट मैं रीत फाउंडेशन के लिए कह सकती हूँ महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा, और शायद महिलाओं से। ये एक बहुत खूबसूरत सी फाउंडेशन है जो महिलाओं के लिए बहुत खूबसूरत काम कर रही है। अब ये किस तरीके के इनिशिएटिव्स हैं, आप इनका लाभ कैसे उठा सकते हैं, इसके बारे में और कैसे जान सकते हैं, बस एक प्यारे से गाने का इंतजार। छोटा सा गाना सुना रही हूँ, जुड़े रहिएगा अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ। Feel good, feel light.

0: बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। और ये जो कदम है आज बढ़ा रहे हैं हम रीत फाउंडेशन के साथ, और मानवता की जो कदम है ना ये महिलाओं के लिए उठाए जा रहे हैं, क्योंकि रीत फाउंडेशन स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए बहुत सारे काम कर रही है। रितु जी, आपने कहा कि हम महिलाओं के लिए ढेर सारे काम करते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स, चाहे दुर्गा प्रोजेक्ट है या फिर डिजिटल सहेली वाला प्रोजेक्ट है, या फिर कहना चाहिए कि उनके डोमेस्टिक वायलेंस के लिए वो किस तरीके से अपने अधिकारों के, अपने राइट्स को वो प्रैक्टिस कर सकती हैं, ये आप सिखाते हैं। सो किस तरीके से ये इनिशिएटिव्स लेते हैं आप?
1: इसकी शुरुआत, जो आपका ये क्वेश्चन है, इसके आंसर से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक केस के बारे में बताना चाहूंगी। एज अ एडवोकेट मैंने एक महीने की शादी से लेकर मैंने 36 साल की शादी तक के केसेस हैंडल किए हैं।
0: जी।
1: तो जहाँ एक महीने की शादी थी, उस जो बिटियाँ थी जब मेरे से मिली और पेरेंट्स के साथ आई वो, तो उनके पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा, मैं आई वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड, मैं बहुत खुश हुई उनसे मिलकर कि एक महीने के बाद कोई पेरेंट्स अपनी बिटिया को ये स्टैंड ले रहे हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं कि हम, क्योंकि ये इस दौर से, इस डोमेस्टिक वायलेंस से, और बहुत सारी हरासमेंट्स थी उनकी उसमें मैरिटल स्टेटस में, तो जब उन्होंने उनका साथ दिया पेरेंट्स ने, तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी कि नहीं तो हमारे समाज में ये होता है कि नहीं अभी तो ये शुरुआत है, अरे ऐसे तो हर लड़की के साथ होता है। बहुत सारी मेरी ही क्लाइंट्स आकर हमें ये बोलती हैं कि मैम मेरी तो मम्मी ही मेरा साथ नहीं देते हैं, या मेरी बड़ी बहन मेरा साथ नहीं देती है, मेरी मम्मी मुझे बोलती हैं कि अरे ये तो हर महिला के साथ होता है, हर औरत को इससे गुजरना पड़ता है, मुझे भी तुम्हारे पापा ने एक दो बार हाथ उठाया है तो क्या हो गया, और बड़ी बहन के ऊपर भी हाथ उठाया है, सब लड़कियों का ऐसे ही घर बनता है, देखना कुछ सालों के बाद सारी की सारी बागडोर तुम्हारे हाथ में होगी, ऐसा बोलकर इन सारी महिलाओं को, उसके दौरान उनके बच्चे हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं डिपेंड हो जाती हैं, और वो जिंदगी इसी तरह से गुजरती जाती है। ऐसे ही जो मैं अपने केस के बारे में बता रही हूँ, जो एक महीने की शादी के बाद जो लड़की आ गई वापस और उसने ये कहा कि नहीं मैं नहीं जा सकती बिकॉज ऑफ यू रीजंस, सर्टेन रीजंस, और पेरेंट्स ने जब साथ दिया, तो जो उनके परिवार के लोग थे, और जैसे कि मामा, चाचा, ताया, बहुत सारे और रिश्तेदार, वो खड़े हो जाते हैं ये कहकर कि आप ये बहुत गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, ये आज आपकी लड़की वापस आ गई है और आप ये कर रहे हो, हमारी भी बेटियां वापस आ जाएंगी, आप इसको वापस भेजो। तो बहुत ही मेरे लिए एक प्राउड की बात थी कि मदर ने आकर ये मुझे बताया कि मैम जब मेरे खुद के सगे भाइयों ने मुझे ऐसा कहा, जो कि मामा थे लड़की के, कि तुम इनको वापस भेजो हमें नहीं पता, तो मैंने उन्हें बोला कि आपने रिश्ता मुझसे तोड़ना है तो तोड़ सकते हो, आप मुझसे बात करनी बंद करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मैं अपनी बेटी को जीते जी वहां मरने के लिए नहीं भेजूंगी।
0: एग्जैक्टली,
1: मैं नहीं भेजूंगी, मैं इसके साथ खड़ी हूँ, आप लोगों को जो करना होगा करना। तो मेरे लिए एक बहुत, मैं हमेशा उस फैमिली को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया सोसाइटी में ये, और आज वो मेरी, वही मेरी क्लाइंट जो है वो सेकेंड टाइम शी इज मैरिड, एंड मैरिड टू अ नॉन मैरिड गाय। ही वॉज अनमैरिड एट दैट टाइम व्हेन ही गॉट मैरिड, तो इसकी सेकेंड मैरिज थी और उसकी फर्स्ट मैरिज थी, तो ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था, और yes. मुझे बहुत अच्छा लगा ये भी सुनकर कि चलो सोसाइटी थोड़ी चेंज हो रही है, एक्सेप्टेंस आ रही है सोसाइटी में। तो यही इसी के साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि हमने जब ये सारे एग्जाम्पल्स, कुछ अच्छे कुछ बुरे, कुछ हम देखते थे बहुत अलग अलग तरीके के, कि कुछ में बहुत हिम्मत है और कुछ बिल्कुल ही हिम्मत नहीं कर रहे हैं, कुछ माँ बाप साथ छोड़ देते थे और उनकी बेटियों को बोलते थे कि नहीं अगर तुमने ये स्टेप उठाया या तुम एडवोकेट के पास गई तो हम तुमसे बात करनी छोड़ देंगे, वापस जाओ, और कई लड़कियां जो हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी, तो उनको ये था कि अगर पेरेंट्स आएंगे वो केस के लिए फीस देंगे तभी मैं फीस दे पाऊंगी और मैं केस कर पाऊंगी। तो वहां पर भी हमारी रीत फाउंडेशन ने उनको बहुत साथ दिया। एक महिला थी जिनकी छोटी सी बिटिया बहुत ही छोटी फीडिंग मदर थी वो, और बहुत ही छोटी 6-7 महीने की बेटी को फादर जबरदस्ती छीन के ले गया था। वो फाइनेंशियली भी बहुत इंडिपेंडेंट नहीं थी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से थे वो कपल, और उन्होंने मेरे पास आए, भेजा किसी की रेफरेंस से आए कि मैम ऐसे ऐसे इनके साथ हो गया है, प्लीज़ इनकी बिटिया को वापस दिलवाया जाए। तो हमने बहुत जल्दी 2-3 दिन में ही डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला। मैं उसके बारे में आप बहुत डिटेल में बताऊंगी डोमेस्टिक वायलेंस के अभी इस एग्जांपल के बाद। और उनका जब हमने केस डाला तो हमने जैसे आपके सामने ये बात रखी कि छोटी सी बच्ची है और ये फीडिंग मदर हैं, और तो अगले ही दिन बिटिया को मतलब नोटिस, उनको जो दूसरी पार्टी थी नोटिस करवाया गया, बिटिया को बुलवाया गया और माँ को बिटिया हैंड ओवर की गई। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे जहाँ पर भी हम किसी की मदद कर पाए और जहाँ पर भी हमें लगा कि हाँ रीत फाउंडेशन के थ्रू हम ये वाली मदद किसी की कर सकते हैं, जहाँ वो फाइनेंशियली अपनी आर्थिक स्थिति में इस तरह से नहीं है कि वो किसी लॉयर को अफोर्ड कर सके, हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत प्रावधान हैं, ऐसे पैनल एडवोकेट्स हैं हमारे DLSA में, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में, वो वहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन हमने अपनी तरफ से कोशिश की हुई है रीत फाउंडेशन के थ्रू, जहाँ पर हम इस तरह की महिलाओं को हम मदद दे सके।
0: तो दोस्तों एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, किस प्रकार के इनिशिएटिव्स और किस प्रकार की महिलाओं की मदद की जाती है रीत फाउंडेशन में, ये तो आपने जान लिया। अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जो चलाए जाते हैं, और अगर कोई भी ऐसी महिला है जो आती है और रीत फाउंडेशन को वो अगर कोशिश करती है एड्रेस करने की कि भाई मुझे मेरी मदद कर दीजिए, तो ऐसे में ये फाउंडेशन सबसे पहले आगे आती है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं एडवोकेट ऋतु कपूर शर्मा जी के साथ, जो कि फाउंडर और डायरेक्टर हैं रीत फाउंडेशन की। वैसे तो अगर मैं इनके नाम के आगे जितनी भी उपलब्धियां इनके पास है वो गिनाने लगूंगी तो ये जो एक घंटा है यूं ही खत्म हो जाएगा। बट मैं ये कहना चाहूंगी, ये एक ऐसी महिला है जो सशक्तिकरण फैलाने की कोशिश कर रही है। ऋतु जी, अब बात करते हैं महिलाओं के सशक्तिकरण की, और उसमें एक बहुत अभिन्न हिस्सा निभाता है ये डोमेस्टिक वायलेंस। हर महिला कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इस डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है। जिन महिलाओं की शादी हो गई है उन्हें शायद ये पता भी नहीं है कि घर में जो डेली बेसिस पर उन्हें ताने दिए जा रहे हैं ये भी डोमेस्टिक वायलेंस का एक हिस्सा होते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि शायद वी आर बॉर्न विद दिस। अच्छा, ताना वो इट्स ओके, ये तो हर महिला को शादी हुई है तो उसके साथ प्लस वन आपको दो चार ताने तो मिलेंगे ही। आज खाने में नमक अच्छा नहीं है तो

0: भी मेरी क्लाइंट्स, मेरे सेशंस, मैं हमेशा इसमें ये उनको जागरूक करना चाहती हूँ। और मैं हर आपके सब लिसनर्स को भी ये बात कहूँगी कि ज़रूर इस एक्ट के बारे में पढ़ें, क्योंकि इतना कॉम्पैक्ट और इतना स्ट्रॉन्ग एक्ट है ये महिलाओं के लिए। क्योंकि और चीज़ें हैं, पहले से आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि पहले प्रावधान नहीं थे, प्रावधान पहले भी थे, मेंटेनेंस के हैं, इंटरिम रिलीफ के हैं, कस्टडी के हैं, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसा कॉम्पैक्ट एक्ट है और ऐसा वो है जहां आपको सबसे पहला सेक्शन 17 जो है, सेक्शन 17 को मैं थोड़ी देर के बाद बताती हूँ क्योंकि वो रेजिडेंस से करता है, मैं 18 के बारे में बताती हूँ। सेक्शन 18 जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, वो बात करता है प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन बहुत अलग अलग तरीके की होती है। प्रोटेक्शन ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई गनमैन घूमना शुरू हो जाएगा, कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं अच्छा एक प्रोटेक्शन कोर्ट से मिल रही है हमें, तो कोर्ट की प्रोटेक्शन तो यही होती है कि हाँ कोई पुलिसमैन हमारे साथ आ जाएगा और हमारे घर के बाहर बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है। आजकल की डेट में बहुत अलग अलग तरीके की, जैसे वो मेरे वर्क प्लेस पे आ जाता है, मेरा हस्बैंड आकर वहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट करता है, सो आई वॉन्ट योर ऑनर टू प्लीज रिस्ट्रेन हिम टू डू दैट, उसे रोका जाए इस चीज से। और मुझे ये प्रोटेक्शन चाहिए कि वो घर में बहुत ज्यादा घरेलू हिंसा में मेरे साथ, यही जो आपने कहा तानेबाजी, गाली गलौज, इस तरह की जो चीजें हो रही हैं वो मेरे साथ ना की जाए। पहली ये प्रोटेक्शन, दूसरी मेरे वर्क प्लेस में ना करें, तीसरा कि मेरे जो बहुत सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स उनमें आकर बहुत ज़्यादा ये मैसेजेस कन्वे किया जा रहा है कि मैं इस तरह की महिला हूँ, ये देखो ये ऐसे करती है, या किसी वजह से हम आज की डेट में सेपरेट रह रहे हैं, मैं अपने मायके में आके रह रही हूँ क्योंकि घर में बहुत घरेलू हिंसा थी, तो इसको ये रिस्ट्रेन किया जाए, इसे रोका जाए कि ये मेरे सारे फ्रेंड सर्कल, मेरे वर्क प्लेस, मेरे रिलेटिव्स, इनमें ऐसी कोई भी मेरे बारे में बात ना करें जहां पर मेरी इंसल्ट हो, जहां पर मेरा कहीं पर भी कुछ भी गलत हो मेरे साथ। अब ये हो गई प्रोटेक्शन की बात। उसके बाद आते हैं कि जो महिलाओं को रेजिडेंस का बहुत डर होता है, जितनी भी महिलाएं हैं उनको सबसे ज्यादा डर ये होता है कि मैम अगर हमने ये केस डाला तो मैं रहूंगी कहां, मुझे तो घर छोड़ना पड़ेगा। तो मैं उनको बोलती हूँ नहीं, आपको घर छोड़ना नहीं पड़ेगा। ऐसे कैसे मैम, मैं इसी घर में रह के, सास ससुर हैं मेरे और मेरे हस्बैंड हैं, यहाँ पर मेरे साथ ऐसे बदतमीजी हो रही है तो मैं कैसे इस घर में फिर रह सकती हूँ, और मैं उनके ही अंगेंस्ट केस भी डाल दूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। तो तब मैं उन्हें बताती हूँ कि सेक्शन 17 पढ़ो। तो जितने भी आपके लिसनर्स भी हैं उनको मैं प्लीज़ ये बोलूँगी, सेक्शन 17 डील्स विद शेयर हाउस होल्ड। शेयर हाउस होल्ड होता है जिसमें आप शादी करके आए हैं, उसी घर में आप रह रहे हैं, सालों से रह रहे हैं, आपके बच्चे उसी घर में हुए हैं, आप अपने ज़िंदगी बिता चुके हैं, तो आपको कोई भी उस घर से बाहर नहीं निकाल सकता। तो हम ये एक सबसे पहला जाकर एक इंटरिम रिलीफ लेते हैं कोर्ट से कि नॉट टू डिस्पोजेस हर फ्रॉम दिस हाउस, शी हैज फुल राइट टू स्टे इन दिस हाउस, वहाँ पर उसको पूरा हक है इस घर में रहने का, बिकॉज ये इसी घर में शादी करके आई है, इसके पास और कोई घर नहीं है, पति यहीं रहते हैं, तो इनको क्यों निकाला जाएगा जस्ट बिकॉज क्योंकि इन्होंने आवाज उठा ली। तो शेयर हाउस होल्ड के साथ साथ एक और प्रावधान इसमें दिया है, कई बार कई महिलाओं के पास शेयर हाउस होल्ड नहीं है, वो रेंटेड अकोमोडेशन में रह रही हैं, हस्बैंड नौकरी कर रहे हैं, वाइफ नौकरी कर रही हैं, या वाइफ नहीं भी कर रही हैं तो वो एक रेंट दे रहे हैं। और अब कोई झगड़ा हो गया है, अब झगड़ा हो गया है तो हस्बैंड जो है घर छोड़ के चले गए हैं और अब वो टेंशन में है कि अब बच्चों की फीस का क्या होगा, रेंट का क्या होगा, मैं कैसे गुजारा करूंगी अपना
1: जी।
0: तो सेक्शन 19 जो है वो डील करता है राइट टू रेजिडेंस से। राइट टू रेजिडेंस है कि जहां पर ये कहा जाता है कि अगर आप ने कुछ छोड़ के चले भी गए हो तो भी रेंट आप ही दोगे। आप इस महिला को ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकते कि आप इनको घर से बाहर निकालने की सलाह कर लो, कॉन्स्पिरेसी कर लो या कुछ ऐसा कर लो। तो सेक्शन 17 और 19 रेजिडेंस से डील करता है, 18 प्रोटेक्शन से डील करता है, 20 जो है वो मॉनिटरी रिलीफ से डील करता है, जैसे कि हर रोज दिन डे टू डे के जो एक्सपेंसेस होते हैं तो वो वाले उनको बहुत टेंशन होती है कि मैम ये ग्रॉसरी का खर्चा नहीं देगा, मैम जैसे ही मैंने केस डाला तो ये बच्चों की फीस रोक देगा, पेट्रोल का खर्चा नहीं देगा, मैं कहाँ

0: कहाँ से ये इलेक्ट्रिसिटी का नहीं देगा तो मैं कैसे ये चीज़ें चलाऊंगी। तो वो हम सारा का सारा कोर्ट से सेक्शन 20 में मॉनेटरी रिलीफ ये लिख सकते हैं कि ही इज़ अर्निंग दिस मच और ये करता आ रहा है सारे ये खर्चे, पूरे परिवार का खर्चा ये चला रहे हैं। अगर महिला भी काम करती है तो डेफिनेटली कोर्ट वो भी कंसिडर करते हैं। ऐसा नहीं है कि महिला काम कर रही हैं और पुरुष जो है वो कमा कर उनको देना ही देना है, तो कोर्ट बहुत अच्छे से दोनों का इनकम एंड एसेट एफिडेविट मंगवा कर और जितना उन्हें समझ आता है कंसिडर करके एंड देन दे डिसाइड द मॉनेटरी रिलीफ। सेक्शन 21 जो है वो कस्टडी से डील करता है
1: जी।
0: कोई भी माँ जो 5 साल से तो पहले उसे बच्चे से अलग किया ही नहीं जा सकता और अगर वो अलग करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर भी ये प्रावधान दिया हुआ है कि वो कस्टडी अपनी वो क्लेम कर सकती हैं उसमें। 23 बहुत स्ट्रॉन्ग है
1: जी।
0: जो लास्ट में आप बताना चाहूँगी, सेक्शन 23 घरेलू हिंसा का, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, हर महिला को ये बहुत ज़्यादा एक एप्रीहेंशन है केस डालने के टाइम पर कि मैम अगर मैंने ये केस डाला ये 2-3 साल चलेगा केस, ये लंबा चलता है, मैंने बहुत सुना हुआ है, मैं कोर्ट नहीं आना चाहती, लोग बोलते हैं कोर्ट में आप धक्के खाते रहोगे, ऐसा होता है कि इतनी देर देर तक ऑर्डर्स ही नहीं आते। तो मैं हमेशा उन्हें एक बात समझाती हूँ कि सेक्शन 23 जो है वो इंटरीम रिलीफ से डील करता है। तो इंटरीम रिलीफ होता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी, जितनी भी देर केस चलेगा। तो हम जब जज साहब के पास जाते हैं या कोर्ट में हम केस डालते हैं तो हम यही बोलते हैं कि केस तो चलता रहेगा, तो उसके दौरान अभी इस टाइम पे जो मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है प्रोटेक्शन की, वो है नॉट टू डिस्पोजेस की, मुझे घर से निकाला ना जाए, वो है मेरी मॉनेटरी रिलीफ की
1: जी।
0: मेरे बच्चों की फीस ना रोकी जाए, ये बच्चों ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल ना देना रोक दे, ये रेंट ना देना रोक दे, तो वो विद इन 6 months कोर्ट आपको रिलीफ दे देती है। विद इन 6 months होता है, नहीं तो मैक्सिमम ये 8-9 months तक स्ट्रेच होगा
1: जी,
0: डिपेंड करता है बहुत सारे और सर्कमस्टांसेस पे भी। तो ये एक बहुत बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग प्रावधान है जो मैं जब भी अपने रीथ फाउंडेशन के भी मैं सेशंस लेती हूँ तो मैं इसके बारे में ज़रूर बताती हूँ सब महिलाओं को कि प्लीज़ घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में ज़रूर पढ़ें। और जितनी भी महिलाएं जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रही हैं,
1: ये
0: जो डेफिनेशन है घरेलू हिंसा की, डोमेस्टिक वायलेंस की, वो यही है कि जो भी महिला, चाहे वो बहन हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप पार्टनर क्यों ना हो, तो वो इस केस को डाल सकते हैं और अपने राइट क्लेम कर सकते हैं।
1: बड़ा ज़रूरी है दोस्तों, महिलाओं के साथ अगर मैं बात करूँ ना तो वो सैक्रिफाइस तो उन्हें पता है, उन्हें ये पता है हमारी ड्यूटीज क्या हैं, बट उनके राइट्स क्या हैं ये उन्हें नहीं पता है। और ये नेक काम रीथ फाउंडेशन कर रही है, ना सिर्फ उनके साथ हैंड होल्डिंग करके उनकी मदद कर रही है लेकिन उन तक ये सारी की सारी जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रही है, जिससे कि महिलाएं किसी भी प्रकार से किसी भी कंडीशन में वो ना तो किसी का शिकार हो और ना ही ऐसी हिंसा को बर्दाश्त करें। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। आज मानवता की राह पर हम चल रहे हैं रीत फाउंडेशन के साथ। एडवोकेट ऋतु कपूर शर्मा हमारे साथ बैठी हैं, जो कि फाउंडर डायरेक्टर हैं। ऋतु जी, अब मैं ये जानना चाहूंगी, ढेर सारे लोग आपको सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना के जरिए, और सारी महिलाओं को अब लगने लगा है कि वो तो इतने सालों से डोमेस्टिक वायलेंस बर्दाश्त कर रही थी और उन्हें पता ही नहीं था उनके लिए इतनी सारी चीजें हैं, इतना प्रावधान भी है। अगर कोई रीत फाउंडेशन के साथ एसोसिएट होना चाहता है, वॉलंटियर करना चाहता है, या आपसे किसी भी प्रकार की कोई कानूनी सलाह चाहता है, या इस फाउंडेशन के जरिए किसी भी प्रकार की कोई रिलीफ चाहता है, सो वो आपके साथ कैसे एसोसिएट हो सकते हैं, किन नंबर्स पर वो जा सकते हैं, और अगर उन्हें अपनी ही राइट्स के बारे में जानना है तो वो आपसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं?
1: रीत फाउंडेशन इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है और फेसबुक पे भी अवेलेबल है, एंड नहीं तो डायरेक्ट वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना फ़ोन नंबर बता सकती हूँ, 7042615753, सो दे कैन डायरेक्टली गेट इन टच विद मी। और अगर उन्हें लगता है कि वो किसी भी तरीके से अगर वॉलंटियरली जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो उसके लिए भी, और अगर किसी भी प्रकार की उन्हें मदद चाहिए तो कभी भी वो हमें फ्री, दे आर फ्री टू कॉल अस एनीटाइम।
0: सो भाई, अगर महिलाओं को ये लग रहा है कि उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय, अत्याचार हो रहा है, अब जरूरी नहीं है कि हर चीज आपकी डिवोर्स पर जाकर ही रुके। कई बार सिर्फ एक छोटी सी सलाह से भी आपका जीवन सुधर सकता है। सो इन सारी चीजों के लिए आपके पास है रीत फाउंडेशन, जो ना सिर्फ आपको ये सारी सलाह देंगी, लेकिन साथ के साथ आपके लिए मदद का हाथ भी बढ़ाने वाली है। तो भाई, रीत फाउंडेशन अलग अलग किस्म के काम करती हैं। डिजिटल सहेली के बारे में मैं जरूर जानना चाहूंगी। जिस प्रकार आपने कहा कि गुरुग्राम ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और पुलिस के साथ मिलकर अब वो डिजिटल सहेली लॉन्च किया गया है, जिससे कि अगर किसी भी प्रकार के साइबर फ्रॉड्स महिलाओं के खिलाफ किए जा रहे हैं तो उनको रिपोर्ट किया जा सकता है, तो उसके लिए क्या नंबर है और क्या है ये डिजिटल सहेली?
1: जरूर, उसके बारे में मैं भी जरूर बताना चाहूंगी। रिसेंटली हमारे कमिश्नर साहब श्री विकास अरोड़ा जी ने इसका लॉन्च किया है, डिजिटल सहेली। सो वुमेन्स डे पे उन्होंने एक तरह से सब महिलाओं को, गुरुग्राम की महिलाओं को उन्होंने ये अपनी तरफ से गिफ्ट दिया है। लेकिन ये जानकर आपको खुशी होगी कि सिर्फ गुरुग्राम ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया से इसमें रिस्पांस आना शुरू हो गया है। ये डिजिटल सहेली एक ऐसी चैट बॉट है, ये चैट बॉट है व्हाट्सएप पे, एक नंबर है जिस नंबर को मैं बताना चाहूंगी, 5x9 81002। इस नंबर को कोई भी अगर महिला सेव करती हैं और उन्हें ऐसा लगता है किसी भी प्रकार के उनके साथ कोई भी साइबर हरासमेंट हो रही है, जैसे कि कोई मॉफ्ड पिक्चर्स हैं उनकी, कोई उन्हें गलत पिक्चर्स उनकी बनाकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है, कुछ बच्चे हैं जो आजकल के यंग जनरेशन के बच्चे, कई बार वो ऐसे रिलेशनशिप में आ जाते हैं कि मिसगाइड हो जाते हैं और अपनी ऐसी पर्सनल पिक्चर्स शेयर कर देते हैं अपने पार्टनर के साथ और बाद में जाकर वो ब्लैकमेल होते हैं, तो उनके लिए भी अगर उन्हें कहीं पर भी लगता है, तो उन्हें समझ नहीं आता कि हम अपने पेरेंट्स के पास जाएं, हम पुलिस के पास जाएं, हम किसको बताएं, तो वो डायरेक्टली इस नंबर को अपने व्हाट्सएप पे सेव करके और वो रीच आउट कर सकते हैं, मैसेज लिख सकते हैं, उन्हें बताना होगा कि ये ऐसे में मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है और ये मेरी गलत पिक्चर्स वहाँ पर डाल दी गई हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी आई हैं जिन्होंने ये बोला है कि हमारी पिक्चर्स डालकर गलत साइट्स पे और हमारे नंबर्स डाल दिए जाते हैं, आउट ऑफ रिवेंज भी ऐसा लोग करते हैं। तो अगर ऐसा भी उनके साथ हो रहा है तो गुरुग्राम पुलिस ने ये फैसिलिटी उनको दी है, और मल्टीपल अकाउंट्स खोल लेते हैं, गलत अकाउंट्स खोल के उनकी तरफ से चैट करते हैं और जानबूझ के उनके उनको डिमीन करने का एक तरीका है उनका लिए। तो अगर ऐसा उनके साथ कुछ हो रहा है तो वो वहाँ पर इस चैटबॉट में जैसे ही इन्फॉर्म करेंगी तो विद इन 24 आवर्स वो मटीरियल डिलीट कर दिया जाएगा, विद इन 24 आवर्स। ये प्रॉमिस है गुरुग्राम पुलिस की तरफ से, और उसका रिस्पांस इतना अच्छा आ रहा है कि सब तरफ से, ऑल ओवर इंडिया से कॉल्स भी आ रही हैं और बाहर से भी एक दो इंटरनेशनल लोगों ने भी कांटेक्ट करने की कोशिश की कि उनके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा होगा जिसके वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा। तो ये बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई है, तो आई रियली वॉन्ट कि सब लिसनर्स इसको ध्यान से सुने, ये नंबर सेव करें 5 times 9 8 1 0 0 2। और अगर कुछ किसी भी महिला के साथ, उनके सर्कल में किसी के साथ ऐसा हो रहा है, तो ज़रूर उन्हें बताएं और ये मदद करें।
0: सो भाई देखिए, बहुत ज़रूरी है महिलाओं को, कि हम हमेशा ये कहते हैं, अगर आप अपनी सोशल मीडिया पर कोई भी पिक्चर डालते हैं, संभल कर डालिए, उसकी प्राइवेसी सेटिंग्स पर जाइए, उसे लॉक करिए, क्योंकि कहीं कोई इसका मिसयूज़ ना करे। सो अगर उसके मिसयूज़ से बचना चाहते हैं, तो आपके पास डिजिटल सहेली है, खुदा ना खास्ता कोई कॉन्शियसली आपकी पिक्चर्स को चुरा लेता है, उन्हें मॉर्फ करता है, उन्हें किसी साइट पर डाल देता है या अदरवाइज कहीं इस्तेमाल करता है, तो ये सारी चीज़ें रिपोर्ट की जा सकती हैं और डिजिटल सहेली की सहायता से आप इसे पुलिस तक पहुंचा सकते हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हमने एक लंबी सी डगर तक गए हैं रीत फाउंडेशन के साथ। रीत फाउंडेशन महिलाओं के लिए ढेर सारे काम कर रही है, ना सिर्फ उन्हें उनके राइट्स के बारे में बता रही है, लेकिन साथ के साथ देखा जाए तो रीत फाउंडेशन ढेर सारा काम कर रही है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। रितु जी आज हमारे साथ हैं, एडवोकेट रितु कपूर शर्मा, जो कि फाउंडर और डायरेक्टर हैं रीत फाउंडेशन की। चलिए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ढेर सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष, बहुत सारे बच्चे आपको सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना के जरिए। मुझे बताइए, जाते जाते आप उन सभी को क्या खास मैसेज देना चाहेंगे?
1: मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि लव इज नथिंग व्हेन गिवन टू अ रॉन्ग पर्सन, एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्ट ऑफ लव इज समटाइम इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एक्ट to walk away.
0: Yes.
1: So if you feel that you are being harassed and you are not being respected over there, so then immediately leave that place. Or agar hame aisa lagta hai ki hum kisi ki asliyat samne aane ke bawajood bhi usko nahi chhod pa rahe hain aur hame aisa lagta hai ki hum use pyar karte hain, to aisa nahi hai, wo pyar nahi hai. Aur उस दौरान, इस पूरी जर्नी में हम उस इंसान को नहीं खो रहे, हम अपने आप को खो रहे हैं। तो प्लीज़ ये इस गलत फहमी में ना रहें, जो बच्चे या जो भी महिलाएं हैं, कि ये शायद प्यार है, मैं प्यार करती हूँ, ऐसा नहीं है। और इस उसमें से निकलें और अपनी ज़िंदगी को एक पॉजिटिव उसमें रहें, एक पीसफुल लाइफ जिएं, आवाज़ उठाएं और जिसकी भी मदद कर सकें मदद करें।
0: बिल्कुल, देखिए महिलाओं के लिए मैं हमेशा कहना चाहती हूँ, उन्होंने ना अपना सरनेम बना लिया है सैक्रिफाइस, और उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जीवन सिर्फ सैक्रिफाइस के लिए बना है, बट आइडली आपका जीवन जीने के लिए बना है। आपको भी जिंदगी के उतने ही साल मिले हैं जितने पुरुषों को मिले हैं, सो जरूरी नहीं है कि सारा सैक्रिफाइस आप ही करें। आप अपने जीवन को खुशी से जिए, हंसिए, मुस्कुराइए, और जो अधिकार आपके लिए न सिर्फ समाज ने, सरकार ने बनाए हैं, कानून ने बनाए हैं, उन्हें भी प्रैक्टिस करिए। अगर आपका जीवन खूबसूरती से गुजर रहा है, बहुत अच्छी बात, लेकिन कहीं कोई उतार चढ़ाव आ रहा है और लग रहा है कि कहीं कोई परेशानी है, तो आपके पास बहुत सारे हाथ ऐसे हैं जो आगे बढ़कर आपको थामने के लिए तैयार हैं। एक सॉलिड ऐसा हाथ है रीत फाउंडेशन, जिसके बारे में आज हमने ढेर सारी बातें सुनी, लेकिन समय की थोड़ी सी किल्लत है भाई। एक ही घंटे का समय होता है और उसमें आपको गाने सुनाते हुए ये पूरी रीत फाउंडेशन की कहानी सुनानी थी। सो अगर आप रीत फाउंडेशन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, सो जाइए सोशल मीडिया के, इतने सारे हैंडल्स हैं, कॉन्टैक्ट करिए, जाइए, जानिए वो किस प्रकार के काम करते हैं और जुड़ जाइए एडवोकेट रितु कपूर शर्मा के साथ। तहे दिल से धन्यवाद रितु जी, आज आप स्टूडियो में आए, कीमती समय निकाला, लेकिन इतनी बेहतरीन जानकारी आपने हमारे सभी लिसनर्स को दी है। आई एम श्योर जितनी भी महिलाएं, पुरुष, बच्चे आज भी को आपको सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना के जरिए, उन्हें समझ में आ रहा होगा कि उनका जीवन कितना वैल्यूएबल है।
1: थैंक यू सो मच भावना जी यहाँ हमें बुलाने के लिए, और आई होप कि इस प्रोग्राम के जरिए हम और बहुत सारी महिलाओं को सशक्त कर पाएंगे आज। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सो दोस्तों, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, और आपसे इजाजत लेते हुए वादा कर देती हूँ अगले हफ्ते मैं होंगी आपके साथ, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे यानी आरजे भावना को दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजी भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। सैटरडे को 5 बजते ही आरजे भावना आपके पास आ जाती है और आपके पास लेकर आती है सशक्तिकरण की एक खूबसूरत सी कहानी। और आज की कहानी है मोनिका मनचंदा जी की। देखिए भाई, आपको पता है एक लंबे समय से मैं इस कार्यक्रम को लेकर आ रही हूँ। सशक्तिकरण की मैं अगर बात करूँ और खास तौर पर महिलाओं की, तो वो मेरे दिल के बड़ी करीब है। और आज मोनिका मनचंदा जी से हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं उनके जीवन के बारे में। मोनिका मनचंदा जी जो कि एक हेल्थ और वेलनेस कोच हैं, एक रेकी हीलर हैं, एक बॉडी फैसिलिटेटर हैं, इसी के साथ साथ साउंड हीलर हैं, टेरो कार्ड रीडर हैं, बॉडी साइकोलॉजिस्ट भी हैं, इसके साथ साथ आइस बाथ गाइड भी हैं। आइस बाथ गाइड आजकल आपको पता है बहुत ही ज़्यादा नई चीज़ है, बट मैंने नोटिस किया है कि इससे भी आप अपने न्यूरो सिस्टम को रिचार्ज कर सकते हैं। सो आइस में जब आप अंदर जाते हैं और ठंडे ठंडे पानी से आपकी पूरी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है। कैसे एक्टिवेट होता है ये बताएंगे, लेकिन इसके लिए करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में।
1: थैंक यू भावना जी।
0: मोनिका जी, पहला सवाल, इस कार्यक्रम का पहला सवाल हमेशा एक स्टैंडर्ड सवाल रहा है, बिकॉज व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज कि वुमेन एम्पावरमेंट में जो एम्पावरमेंट की डेफिनेशन है ना, ये हर महिला के लिए अलग होती है। सो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, हाउ डू यू परसीव एम्पावरमेंट, आपको क्या लगता है व्हाट इज एम्पावरमेंट?
1: देखिए, मेरे लिए एम्पावरमेंट वो है जहाँ पर वुमेन अपने बारे में ऐसी डिसीजंस ले सकती हैं जहाँ पे उन्हें खुद को सेटिस्फेक्शन मिलती है, अपने लिए कुछ करती हैं। अपने लिए थोड़ा सा ही, चाहे छोटी से छोटी डिसीजन हो, चाहे घर पे अपनी पसंद की चीज बनाना हो या अपने लिए कोई ऐसा डिसीजन लेना हो जो उन्हें लगता है कि यस, ये सिर्फ मेरा डिसीजन है और इसको कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, और ये मेरे लिए वुमेन एम्पावरमेंट।
0: वाकई मतलब अगर हम देखें तो महिलाओं के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि वो अपने जीवन को एक बार अपने तरीके से जीने का मौका तो पाएं। क्योंकि होता क्या है कि आइडियली जब एक महिला पैदा होती है, महिला तो नहीं, एक बच्ची पैदा होती है, और उसके महिला बनने तक या फिर उसके मरने तक उसके पूरे जीवन के डिसीजंस हैं ना, वो कहीं कोई और ले रहा होता है। कभी उनके पापा ले रहे होते हैं, कभी उसके भाई ले रहा होता है, कभी उसके पति ले रहे होते हैं, कभी उसके ससुर ले रहे होते हैं। सो उन, और फिर एक जिंदगी का पड़ाव तब आता है जब शायद कोई उनका बेटा या बेटी उनके जिंदगी के डिसीजन ले रहे होते हैं। बट वेन इज द टाइम ऑफ वुमेन गेट्स एन अपॉर्चुनिटी कि वो अपने जिंदगी के डिसीजन ले। सो एम्पावरमेंट वहीं शुरू हो जाती है जहां महिला अपने डिसीजंस खुद ले पाए। सो जरूरी ये है कि महिलाओं को मौका मिले कि वो अपने जीवन को अपने नजरिए से जी जरूर पाए। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट। आज हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं मोनिका मनचंदा जी से। आज के एपिसोड में मोनिका जी हमारे साथ हैं, जो एक हेल्थ और वेलनेस कोच हैं, एक रेकी हीलर हैं, एक आइस बाथ गाइड हैं, एक साउंड हीलर हैं, एक टैरो कार्ड रीडर हैं, बॉडी साइकोलॉजिस्ट हैं, ब्रेथवर्क फैसिलिटेटर हैं। भाई इतनी सारी चीज़ें इन्होंने की हुई हैं, बट मुझे ये कहना चाहिए कि इन ऑल ये एक सशक्त महिला हैं। मोनिका जी, चैलेंजेस की बात करते हैं। महिला, और मैं हमेशा ये कहती हूँ, उनका सरनेम है चैलेंज। उसके बाद जो ओरिजिनल आपको सरनेम मिलता है ना, वो थर्ड लेवल पर आता है, बट पहले लेवल पर चैलेंज आते हैं। सो बचपन से पैदा होने से एक चैलेंज है। पहले तो कन्या भ्रूण हत्या इतनी होती थी कि पैदा होना चैलेंज था, फिर धीरे धीरे अलग अलग चैलेंजेस। सो सदी बदली, इरा बदले और चैलेंजेस भी बदले। अगर मैं आज के जमाने की बात करूँ, सो क्या लगता है किस प्रकार के चैलेंजेस महिलाएं फेस कर रही हैं?
1: देखिए, आज की बात करूँ ना, तो आज भी बहुत इम्प्रूवमेंट है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे पैटर्न्स चलते आ रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात अगर हम कर रहे हैं ना, तो आज भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि अपने बारे में सोच ही नहीं रही हैं।
0: एक्चुअली
1: आज भी उनके लिए उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनके आसपास के लोग ज़्यादा मैटर करते हैं। इम्प्रूवमेंट है, जैसे जैसे सदी बदल रही है महिलाएं भी और एम्पावर्ड हो रही हैं, बट अगर मैं बात करूं 80% अभी भी महिलाएं वही हैं जो कि अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देती हैं, चाहे वो अपनी हेल्थ को लेकर हो, चाहे अपनी इमोशनल हेल्थ को लेकर हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। बट अगर मैं अगर हम बात करते हैं ना कि आज ये डिसीजन मुझे अपने लिए लेना है, तो आपके माइंड में 10 चीज़ें और आ जाती है कि मेरा ये कौन सोचेगा, मेरे हस्बैंड कैसे सोचेंगे, या बच्चों के लिए क्या कैसे करेंगे, लेकिन मैं क्या सोचती हूँ वो सबसे एंड का क्वेश्चन आता हूँ।
0: यस,
1: तो इसके लिए आज भी महिलाएं अपने बारे में कम और आसपास अपने लोगों के बारे में ज्यादा सोच रही हैं।
0: वाकई सो अगर मैं बात करूं चैलेंज की, तो ये एक बड़ा चैलेंज है। उसके पीछे देखिए बहुत सारी चीजें छुपी हैं। अगर आप देखें कि आज आपने एक डिसीजन लिया अपने लिए, अपने बारे में सोचते हुए कि मुझे एक्स वाई जेड करना है, बट आप वो एक्स वाई जेड करने के लिए सबसे पहले उसकी में ज़रूरत होगी पैसों की। वो पैसे कहाँ से आएंगे? सो आपने उन पैसों को कहाँ से कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी इच्छा के लिए लगाया, और फिर आपने ये जो फीलिंग आपके साथ आ जाती है कि अगर मैं ये पैसा, ये समय या फिर ये फैसिलिटी अपने लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, और उसके एवेज में कोई और है जिसको ये फैसिलिटी नहीं मिल रही है, जो मेरे ही परिवार का सदस्य है, या मेरा ही बच्चा है, या मेरे ही पति हैं, या मेरे ही भाई बहन हैं, तो ये जो गिल्ट है ना, ये महिलाओं को बहुत ज़्यादा सताता है। मान लीजिए कि एक महिला है जो कि घर से कहीं जाना चाहती है, और अगर उसके पास एक्सेस टू कार है या एक्सेस टू व्हीकल है, तो कैन यू बिलीव कि सबसे पहले वो ये सोचेगी कि आज अगर मैं अपने लिए इसे इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ऐसा तो नहीं कि इसकी ज़रूरत पीछे घर वालों को होगी। सो शी वुड बी द लास्ट पर्सन टू थिंक कि कोई भी फैसिलिटी को मैं सबसे पहले अवेल करूँ देन माई फैमिली मेम्बर्स। ये भी एक चैलेंज है कि महिलाएं अपने आप को कब तक यूं ही प्रायोरिटी लिस्ट में कम रखती रहेंगी। सो कब आएगा वो समय जब महिलाएं अपने आप को प्रायोरिटाइज करेंगी? बताइएगा मुझे, जरूर बताइएगा मैसेज करके 8010781078 पर।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट। आज की इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं खूबसूरत सी मोनिका मनचंदा जी से। मोनिका जी, अब एक सवाल आपके जीवन से। आप एक सशक्त महिला हैं, बट आप सशक्त तब हैं जब आपने कुछ सशक्तिकरण के डिसीजंस लिए थे। अगर मैं आपके जीवन के कुछ ऐसे डिसीजंस के बारे में जानना चाहूं जो आपने लिए और आज आप रिग्रेट नहीं करती हैं, एंड टुडे यू लुक बैक एंड यू सी एंड यू फील व्हाट एन एम्पावरिंग डिसीजन, अच्छा हुआ मैंने ये डिसीजन लिया, अदरवाइज आज मैं रिग्रेट कर रही होती।
1: भावना जी, आज अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में देखूं तो मुझे सबसे बढ़िया डिसीजन अपना लगता है कि मेरी शादी के बाद, डॉटर होने के बाद, मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे आगे पढ़ाई करनी है।
0: वाओ,
1: अपने लिए कुछ करना है, क्योंकि पढ़ाई का हमेशा से शौक था, लर्न करने का शौक था। बट शादी होने के बाद कई बार होता है ना कि अब क्या करना है। बट जब मेरी डॉटर पैदा हुई, उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं रुकना है, मुझे आगे और पढ़ना है। और मैंने अपना कॉलेज दोबारा किया, अपनी पढ़ाई दोबारा की, अपना प्रोफेशन को और बेटर बनाया। और जो आज मैं देखती हूँ, अपनी लाइफ को देखती हूँ और अपने बच्चे को देखती हूँ, जब मेरी डॉटर मुझे कहती है मम्मा आई एम प्राउड ऑफ यू, उस टाइम पे मुझे लगता है कि मेरा ये डिसीजन बिल्कुल ठीक था। एंड आई रियली फील प्राउड ऑफ मी, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे ये डिसीजन को लेके मेरी डॉटर में भी वही हिम्मत आएगी कि वो भी रुकेगी नहीं। वो किसी भी एज में, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं होती जब आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए सबसे एम्पावरिंग डिसीजन था, जहाँ पे मैंने अपने साथ साथ अपनी डॉटर को या मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं उनको भी एम्पावर किया है कि आप कभी भी किसी भी मोड़ पे, किसी भी पड़ाव में अपनी लाइफ के स्टार्ट कर सकते हैं।
0: ओह स्वीट। मोनिका जी, पर एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी कि जब आपने ये डिसीजन लिया कि बेटी होने के बावजूद घर पर छोटा बच्चा है, आप अपनी एजुकेशन पूरी करेंगे, आप वापस कॉलेज ज्वाइन करेंगी, क्या इस डिसीजन में आपको किसी ने सपोर्ट किया?
1: देखिए, इस चीज में मैं जरूर ये चीज बोलूंगी कि कुछ चैलेंजेस थे, क्योंकि डॉटर बहुत छोटी थी और उस टाइम पे ऐसा था कि मेरे को ये देखना था कि मैं घर पे किस तरीके से ये बात भी लेकर आऊं कि मेरी डॉटर हुई है और मुझे कॉलेज करना है।
0: yes.
1: तो बहुत पेशेंस के, बहुत सोचने के बाद मैंने जब ये एक यू नो ऑफर, एक प्रपोजल रखा अपनी फैमिली के आगे, तो मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। और अगर मैं बात करूं, हम महिलाओं की बात करते हैं ना, कि हम एक दूसरे को अगर सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, क्योंकि वो चाहती थी कि, उन्हें मालूम था कि मुझे पढ़ने का शौक है। एंड शी वॉज द वन जो उन्होंने बोला कि आप जाओ और पढ़ो। और डॉटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उनके सपोर्ट से ही मैं आगे कर पाई। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर महिलाएं भी एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं तो भी आप में बहुत हिम्मत आ जाती है और आप लाइफ में कुछ कर पाते हैं।
0: देखिए, ये सवाल ना अक्सर मैं महिलाओं से पूछती हूँ, क्योंकि जब तक महिलाएं एक दूसरे के साथ नहीं खड़ी होंगी, बहुत सारी बची हुई महिलाएं अपने जीवन के सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगी। वी का मतलब ही यही है, जब महिलाएं एक साथ आए और एक दूसरे को सपोर्ट करें तो हम सही मायने में सशक्तिकरण को पाएंगे। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

नमस्कार, मैं हूँ राकेश ओम प्रकाश मेहरा और आप सुन रहे हैं 107.8 मानव रचना।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की खूबसूरत सी कड़ी। और आज हम बात कर रहे हैं मोनिका मनचंदा जी से। मोनिका मनचंदा जी जो कि एक हेल्थ और वेलनेस कोच हैं, एक रेकी हीलर हैं, एक आइस बाथ गाइड हैं, एक बॉडी साइकोलॉजिस्ट हैं, ब्रेथवर्क फैसिलिटेटर हैं, साउंड हीलर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं और एक बहुत ही टैलेंटेड महिला हैं। चलिए अब हम बात करते हैं महिलाओं की और साथ के साथ उनकी एक आदत की, क्योंकि ये एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, एक वेलनेस कोच हैं। तो मोनिका जी से हम ये जानना चाहते हैं कि महिलाएं अक्सर इस सशक्तिकरण की जर्नी में अपनी अच्छी हेल्थ को नेग्लेक्ट करती हैं। सो उस अच्छी हेल्थ के लिए किस प्रकार से वो अपने आप को तैयार कर सकती हैं और कैसे इम्बाइब कर सकती हैं एक अच्छी सेहत को।
1: देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है कि हम हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ में सिर्फ हमारा खाना ही नहीं आता है, हेल्थ में हमारे इमोशंस भी आते हैं। अगर हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, आपको सबसे पहले महिलाओं को ये देखना चाहिए कि वो कुछ टाइम, चाहे आधा घंटा ही अपने लिए रोज की मरा में निकाल रहे हैं, जहाँ पे वो जो भी वो चाहती हैं, चाहे वो खाना हो, चाहे वो डांस हो, चाहे कुछ भी जो उनका खुद का मन करे, वो उन्हें ज़रूर अपनाना चाहिए ताकि उनकी इमोशनल हेल्थ जो रहती है, फिजिकल हेल्थ तो देखिए हमारी हम खाने के साथ ठीक कर सकते हैं, बट इमोशनल हेल्थ जो होती है उसको भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को और बाकी लोगों को भी खुश नहीं कर पाते हैं।
0: वाकई ये वाकई अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। महिलाओं को अच्छी सेहत के लिए हमेशा एडवाइस किया जाता है और उसका एकमात्र कारण है कि अगर महिला खुश होगी तो वो अपने पूरे परिवार को खुश रख सकती है। अब नॉट दैट कि एक पुरुष खुश नहीं होगा तो वो अपने पूरे परिवार को बिना खुश हुए भी खुश रख सकता है, बट परेशानी ये है कि महिला केयर ज्यादा करती है, महिला के पास जिम्मेदारियां ज्यादा है और इसीलिए एक महिला का गुड हेल्थ या फिर कहना चाहिए वेलबींग जो है वो शायद उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और जहां मैं बात कर रही हूँ प्रायोरिटी की, तो यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि महिलाओं की प्रायोरिटी उनकी अच्छी सेहत कभी भी नहीं होती है। सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी होती है कि घर का जो काम है ना वो सुचारू रूप से हो जाए, उसके बाद हम अपने बारे में सोच लेंगे। अगर आप भी ऐसा सोचती हैं तो एक यस लिखकर भेज दीजिए मुझे 8010781078 पर। और इसे आप कैसे बदल सकते हैं, इसके टिप्स बस कुछ ही पलों में लेकर आ रही हूँ। मोनिका जी बताने वाली है कि आप अपने आप को अपनी प्रायोरिटी कैसे बना सकती हैं। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम। और हम बात कर रहे हैं मोनिका मनचंदा जी से, जो एक हेल्थ और वेलनेस कोच हैं, एक साउंड हीलर हैं, एक टैरो कार्ड रीडर हैं, एक बॉडी साइकोलॉजिस्ट हैं, साथ के साथ ब्रेथ वर्क फैसिलिटेटर हैं, आइस बाथ गाइड भी हैं। सो आजकल अलग अलग पद्धतियों से आप अपने लिए एक अच्छी सेहत और वेलबींग क्रिएट कर सकते हैं। मोनिका जी, अगर मैं बात करूँ महिलाओं के लिए कुछ टिप्स की, सो क्या कहना चाहेंगी, व्हाट शुड दे डू इन देयर लाइफ? क्योंकि ना एक बड़ा मुझे लगता है एक सबसे अहम सवाल जो है, लोग आजकल न्यूट्रिशनिस्ट के पास नहीं जाते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम उनके पास जाएंगे या किसी हीलर के पास जाएंगे तो पता नहीं वो हमें क्या एडवाइस करेंगे जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हम कर नहीं पाएंगे। सो क्या कुछ टिप्स हैं जो आप यहाँ आज इस प्रोग्राम में देना चाहेंगे?
1: देखिए भावना जी, सबसे पहले तो मैं ये टिप देना चाहूंगी कि आपको डरने की जरूरत नहीं होती है। न्यूट्रिशनिस्ट भी आपको घर का खाना, नॉर्मल खाना दे सकते हैं, आपके प्लान को, आपके खाने पीने को आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, जिसमें आपको अपने लिए, जैसे महिलाओं के माइंड में होता है ना, जैसे आपने बोला कि सबसे पहले इम्पोर्टेंस अपने घर वालों को देती है, तो वहाँ पे ही जब आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, आप खाने की बात करते हैं, आप हेल्थ की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारा ये काम रहता है कि आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग ही आपका खाना पीना बने, जहाँ पे आप पे भी वो प्रेशर ना आए और वो आपके इमोशंस भी खराब ना कर दे कि आप खाना बना रहे हो और आपको ये हो रहा है ओहो मैं अपने लिए क्यों बना रही हूँ। तो ये जो गिल्ट आता है ना, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि न्यूट्रिशनिस्ट के पास जब आप जाते हैं, आप उनसे डिस्कस करते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग ही प्लान बनाते हैं। ऐसा नहीं रहता है कि आपको ऐसी कोई चीज़ दे दें जो कि आप कर ही ना पाएं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं, आप अपने हीलर्स के पास जाएं। कई बार इमोशनली हम ईटिंग करना शुरू कर देते हैं, कई बार हमारे इमोशंस और हमारा खान पान बहुत कनेक्टेड होता है। कहते हैं ना कि हम लोग कभी खुश होते हैं तो हम खाना खाते हैं, हम उदास होते हैं तो भी हम खाना खाते हैं। तो जब हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं तो हमारा खाना, हमारी बॉडी, हमारा माइंड सब कुछ ही अच्छा हो जाता है। तो अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, अपने लिए बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहीं पर जाएंगे, आप किसी हीलर पर जाएंगे या आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट पर जाएंगे तो आपको सब कुछ बंद कर दिया जाएगा और आपकी चीज़ें जो भी आप रेगुलर लाइफ में कर रहे हैं उस पर और एक एड ऑन हो जाएगा। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, बट आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा और वहाँ पे ही आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और आपकी फैमिली की हेल्थ भी और बेहतर होने लग जाएगी।
0: मैं पर्सनली सभी को एडवाइस करूँगी कि एक बार जिंदगी में अपनी डाइट बनवाने के लिए किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास ज़रूर जाइए। एक सबसे अच्छी चीज़ ज़रूर होगी और वो महिलाओं के लिए मैं कह रही हूँ कि आपके रोज़मर्रा का मेन्यू जो है ना काफ़ी आसान हो जाएगा। आपको एटलीस्ट ये तो रहेगा कि इतनी सारी चीज़ों में से आपको चूज़ क्या करना है, नहीं तो भाई अगर देखा जाए तो इतनी सब्जियां, इतनी दालें, इतने सारे तरीके के खाने, और आजकल के ज़माने में तो हम कॉस्मोपॉलिटन लाइफ जी रहे हैं जहां हमारे पास हर राज्य का खाना है। तो जब इतना इलेबोरेट कुकिंग होती है ना तो महिलाओं पर बड़ा प्रेशर होता है, आज इडली बना लीजिए तो कल आपने पोहा बनाना है, परसों आप सोच रहे हैं कि आप राजमा चावल बनाएं तो कल आप कढ़ी चावल बनाएंगे। सो एटलीस्ट न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाने से आपकी कुछ लिस्ट तो कम हो जाएगी और आपको ये पता लगेगा जो आप चूज कर रहे हैं वो कितना हेल्दी है, कितना न्यूट्रिशियस है, और फिर आप बड़े अच्छे से अपनी आने वाली जनरेशन को, अपने परिवार के सदस्यों को हेल्दी और न्यूट्रिशियस खाना खिला पाएंगे। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के इस खूबसूरत से कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातें की मोनिका जी से। इनफैक्ट बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट बहुत सारे चैलेंजेस ये खुद भी फेस करती हैं। मतलब अगर हमें ऐसा लगता है ना कि जो न्यूट्रिशनिस्ट होती हैं उनकी जिंदगी तो बहुत ही आसान हो जाती होगी, सो ऐसा नहीं है। पर लाइफ के इन उतार चढ़ाव से निकलकर इन्होंने जीवन में एम्पावरमेंट को हमेशा चुना। मोनिका जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे स्टूडियो में आई, लेकिन जाने से पहले हमारे सभी लिसनर्स को क्या मैसेज देकर जाना चाहेंगे आप?
1: थैंक यू सो मच भावना जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और शायद कुछ बातें ऐसी करें जिससे इंस्पायर होके बाकी महिलाएं भी थोड़ी एम्पावर्ड रहें। तो मेरी सिर्फ टिप यही है कि अपने लिए कुछ टाइम निकालें पूरे दिन में, चाहे आप 10 मिनट ही निकाल रहे हैं अपने लिए, बट अपने लिए ज़रूर निकालें। और अपनी हेल्थ का, अपनी इमोशनल हेल्थ का भी ध्यान रखें, जिसकी वजह से आप खुश रहेंगे तो आप बाकी सबको भी खुश रख सकते हैं।
0: सो इमेजिन करिए कि पूरे दिन में amongst all the 24 hours that you get, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ना अपने लिए देने के लिए पर्सनल 10 मिनट भी नहीं होते हैं। अब ये मत कहिएगा कि आप खाना खा रहे हैं तो वो आपका पर्सनल टाइम है, बट ऑफकोर्स आप सो रहे हैं तो पर्सनल टाइम है, या आप अपने ऑफिस में हैं तो वो आपका पर्सनल टाइम है। ये सारा समय डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो समय जब आप कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, वो समय जब आपको पता है कि इस समय में मुझे कुछ नहीं करना है और वो आप अपने लिए फोकस करते हुए दे रहे हैं, उस समय को हम रियल मी टाइम कहते हैं। और उस मी टाइम में मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि महिलाओं को ना अपने इमोशंस को चूज करना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन में ना बहुत सारे इमोशनल उतार चढ़ाव से गुजरते हैं। अ गुड डे, अ बैड डे, अ गुड हेयर डे, अ गुड बैड हेयर डे, प्रॉबेबली अ गुड ड्रेस डे और अ बैड ड्रेस डे, सो मेनी थिंग्स। और कई कई बार तो बहुत ही बुरा खाना बनता है, सो उसकी भी आपको बहुत सारी चीजें करनी होती हैं। सो आप देखिए, जब आप एक परफेक्ट जीवन जीना चाहती हैं औरों के लिए, अपने लिए, और वो पॉसिबल नहीं होता है, सो ऐसे में अगर आपके पास समय मिलता है अपने लिए, सो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। और उन 10, 15, 20 या आधे घंटे में असेस करिए कि आप अगले दिन को और भी खूबसूरत कैसे बना सकती हैं। वक्त है आपसे इजाजत लेने का, कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। एक गाना सुनाते हुए आपसे इजाजत ले रही हूँ, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते मैं आने वाली हूँ आपके पास लेकर एक और खूबसूरत सी सशक्तिकरण की कहानी। लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लव।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, इन दिनों बात हो रही है सरहपा के बारे में, जो कि एक प्रसिद्ध लेखक थे, लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार सरहपा ने संस्कृत और अपभ्रंश में कई रचनाएं की। राहुल सांकृत्यायन ने उनकी 7 संस्कृत रचनाओं की सूची दोहाकोश की भूमिका में दी है। इसके अलावा सरहपा की अनुवादित 16 अपभ्रंश की रचनाओं का उल्लेख भी राहुल जी ने किया है। तभी सरहपात की मूल रचना उपलब्ध नहीं है, उसके तिब्बती अनुवाद से ही राहुल जी ने उन पर विचार किया है। लेकिन दोस्तों, राहुल जी का एक मत भी है। अब वो उनका मत क्या है, उसके बारे में भी बात होगी, सरहपा के बारे में भी बात होगी, उनके जीवन के बारे में बात होगी, उनकी रचनाओं का जिक्र होगा। लेकिन फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है सरहापा की, लेकिन सरहापा के बारे में राहुल सान कृत्यायन का अपना एक मत है कि आज की भाषा में एबनॉर्मल प्रतिभा के धनी थे। मूड आने पर वो कुछ गुनगुनाने लगते थे। शायद उन्होंने स्वयं इन पदों को लेखबद्ध नहीं किया, ये काम उनके साथ रहने वाले सरह के भक्तों ने किया। यही कारण है जो दोहा कोश के छंदों के क्रम और संख्या में इतना अंतर मिलता है। सरह जैसे पुरुष से ये आशा नहीं रखनी चाहिए कि वो अपनी धर्म की दुकान चलाएगा, पर आगे वो चली और खूब चली, इसे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, हमारे देश भारत में 84 सिद्ध प्रसिद्ध हुए हैं, उन्हीं 84 सिद्धों में सरहापा का नाम भी शामिल है। तो करेंगे सरहापा के बारे में बहुत सारी दिलचस्प बातें हैं आपके साथ साझा करूंगा। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: देखिए दोस्तों, भारत में 84 सिद्ध प्रसिद्ध हैं। सरहपा उन्हीं में से एक हैं। कुछ विद्वानों का विचार है कि सरहपा आदि सिद्ध थे। सिद्धों का समय 800 से 1100 ईस्वी के बीच माना जाता है। धर्मवीर भारती के अनुसार साधना में निष्णांत अलौकिक शक्तियों से संपन्न चमत्कार पूर्ण अति प्राकृतिक शक्तियों से युक्त व्यक्ति सिद्ध कहलाता था। ये अजर अमर माने जाते थे। जरा और मरण का इन्हें बिल्कुल भी भय नहीं था। ये देवों यक्षों डंकिनियों के स्वामी होते थे। अधिकांश सिद्ध पूर्व भारत में हुए। विद्वानों ने इस पर भी विचार किया है कि सिद्ध 84 ही क्यों थे, 85 या 83 क्यों नहीं थे, या बाद में सिद्ध क्यों नहीं हुए। इस पर कोई तर्क संगत उत्तर नहीं मिलता। कुछ विद्वानों ने अनुमान लगाया कि 12 राशियों और 7 नक्षत्रों का गुणनफल 84 होता है। सिद्ध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा में हुए थे। हालांकि नाथ पंथ में भी 84 सिद्धों का उल्लेख मिलता है, परंतु सामान्य मान्यता है कि बौद्ध धर्म की सहज यानी शाखा के अनुयायी सिद्ध और शैव संप्रदाय अनुयायी के नाथ कहलाते हैं। इसलिए 9 नाथ और 84 सिद्ध प्रसिद्ध हुए। कौन कब पैदा हुआ, इनका कालक्रम क्या था, इसकी कोई भी प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन दोस्तों, सरहपा के बारे में और अधिक चर्चा करने से पहले बौद्ध धर्म और सिद्धों के बारे में कुछ प्रारंभिक तथ्य जान लेना बहुत जरूरी है, वो भी आपको बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, सराहपा के बारे में बात हो रही है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सराहपा के बारे में और अधिक चर्चा करने से पहले बौद्ध धर्म और सिद्धों के बारे में कुछ प्रारंभिक तथ्य जान लेना चाहिए। बुद्ध के निर्वाण के पश्चात बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको समझाते हुए कहा है, महायान अर्थात बड़ी गाड़ी के आरोहियों का दावा है कि वो ऊंचे नीचे छोटे बड़े सबको अपनी विशाल गाड़ी में बैठाकर निर्वाण तक पहुंचा सकते हैं। जहां हीनयान या संकरी गाड़ी भी कह सकते हैं, इसमें केवल सन्यासियों और विरक्तों को आश्रय दे सकते हैं। बाद में फिर महायान के भी कई टुकड़े हो गए। इनमें सबसे अंतिम टुकड़े हैं वज्रयान और सहजयान। लेकिन इसी तरह महायान की भी दो शाखाएं हैं, उन शाखाओं का भी जिक्र होगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था बौद्ध धर्म के बारे में कि बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको समझाते कहा है कि महायान अर्थात बड़ी गाड़ी के आरोहियों का दावा है कि वो ऊंचे नीचे छोटे बड़े सबको अपनी विशाल गाड़ी में बैठाकर निर्वाण तक पहुंचा सकते हैं, जहां हीनयान

असत हैं, पर चित्त के निकट सभी सत हैं। एक को शून्यवाद कहते हैं और दूसरी को विज्ञानवाद। इतने सारे मतभेदों के बीच ये हम कह सकते हैं कि सर्हापा का संबंध इसी सहज ज्ञान से है और सिद्ध इसी परंपरा में आते हैं। नागरी प्रचारणी सभा के शब्दकोश के अनुसार सिद्ध वो होता है जिसने योग या तप द्वारा अलौकिक लाभ या सिद्धि प्राप्त की हो। सिद्धों का निवास स्थान भुवलोक कहा गया है। वायु पुराण के अनुसार उनकी संख्या 88,000 है और वो सूर्य के उत्तर और सप्तश्री के दक्षिण अंतरिक्ष में वास करते हैं। वो अमर कहे गए हैं, पर केवल एक कल्प भर तक के लिए। कहीं कहीं सिद्धों का निवास गंधर्व, किन्नर आदि के समान हिमालय पर्वत भी कहा गया है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ कहा गया है, वो सारी बातें आपको बताता रहूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फहीम के साथ यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। जैसा कि दोस्तों आपसे मैं बात कर रहा था सिद्धों के बारे में, देखिए अलौकिक शक्तियों से युक्त व्यक्ति को सिद्ध माना जाता है। इन सिद्धों को सिद्धियां प्राप्त थीं। विचारकों ने इस पर भी विचार किया है कि सिद्धियां क्या होती हैं और कितनी होती हैं। भारतीय चिंतकों ने अनेक सिद्धियों का वर्णन किया है। ब्रह्म वैवर्त में 34 सिद्धियां बताई गई हैं और कुछ विचारकों ने 18 और कुछ ने 24 सिद्धियों का जिक्र किया है। लेकिन हठ योग साधना में 8 प्रमुख सिद्धियां मानी जाती थीं, अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्या, ईशित्व, वशित्व और काम वशायित्व। शैव परंपरा में 8 दूसरी सिद्धियां गिनाई गई हैं। कालांतर में 8 सिद्धियां प्रसिद्ध हो गईं। जो सिद्ध पुरुष इन सिद्धियों को प्राप्त कर ले वो अजर अमर और अपराजय हो जाता है। 84 सिद्ध इन्हीं सिद्धियों के चमत्कार के लिए प्रसिद्ध थे। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, मैंने आपसे पीछे कुछ सिद्धियों का जिक्र किया था और उन सिद्ध पुरुषों का भी जिक्र किया था जिनके पास सिद्धियां प्राप्त थीं। इन सिद्धियों के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जैसे वर्षा की नदी की सभी दिशाएं उसकी एक ही दिशा कर दी जाए तो उसमें अपरिचित बल आ जाता है, एक अद्भुत शक्ति आ जाती है। उसी प्रकार सभी ओर से चित्त वृत्तियों का निरोध करने से साधक में अदम्य शक्ति आ जाती है। इन लौकिक सिद्धियों के अलावा कुछ लोकोत्तर सिद्धियां भी होती हैं, जिन्हें अनुत्तर सिद्धि, महामुद्रा सिद्धियां, महासुख सिद्धि कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो कि हमारे देश भारत की एक तरह से संस्कृति है और बात बड़ी पुरानी है लेकिन सच्ची है। अब इसी सच्ची बात के साथ आपका दोस्त फहीम आपसे इजाज़त चाहता है। अगले एपिसोड में आपसे और भी बातें करूँगा सरहपा के बारे में। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूँ, फिर मुलाकात करूँगा। अपना ख्याल रखना, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

जर्रे जर्रे में उसी का नूर है, झांक खुद में वो न तुझसे दूर है। इश्क है उससे तो सबसे इश्क कर, इश्क है उससे तो सबसे इश्क कर। इस

बुद्धिमान वही है जो पूरे संकल्प से काम को निपटाना जानता है। दोस्तों, बुल्ले शाह अपने मुर्शिद को शौह, सजन, यार, हादी, साईं, आरिफ, राजा यानी कि इन तमाम नामों से पुकारते हैं और याद करते हैं। बुल्ले शाह कहते हैं, राजा जोगी ते मैं जुगियानी, उस दी खातर भरसा पानी। कहने का मतलब है उनका कि मैं उसकी जोगिन हूँ, वो जो कहेगा मैं वैसा ही करूँगी। अगर मुझे उसके लिए पानी भी भरना पड़े तो मैं पानी भरकर लाऊंगी, उसकी पीन हारन बन जाऊंगी।

परामर्श तो अनेक प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उससे लाभ उठाना बुद्धिमानों को ही आता है। देखिए दोस्तों, सूफी मरने से कभी नहीं डरते, बल्कि मरना ही उन्हें भाता है। सूफी के लिए शरीर का मरना कोई मायने नहीं रखता, वो शरीर के अंदर रहने वाली खुदी यानी अहम के मरने को ज्यादा महत्व देते हैं। सूफी कहते हैं, शरीर से मरना तो बड़ा सरल है, आम जिंदगी में एक आम इंसान की एक बार में एक झटके में मौत हो जाती है, लेकिन खुदा की चाहत में खुद को तिल तिल करके मारना सूफी को कई मौत देता है। शरीर की मौत होने से पहले एक सूफी कई बार मरता है, इसलिए उसे उस मौत का ना दुख होता है ना कोई खौफ। सूफी तो बस फना होना जानता है, मिटना जानता है, और इस तरह फना होने में वो आनंद पाता है। सूफी खोकर भी पाता है, सूफी मर कर भी जीता है।

हमेशा सतर्क रहो, प्रकाश की कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि तुम्हारे जीवन में अंधेरा आने ही ना पाए। दोस्तों, सूफी मौत को भी सकारात्मक ढंग से लेता है, उसे मरना भी उद्देश्य पूर्ण लगता है। मृत्यु उसके लिए माध्यम है अपने परमात्मा में समा जाने का। हजरत जलालुद्दीन रूमी ने अपनी मौत को अपना और खुदा का मिलाप कहा है। वो कहते हैं, इस जिस्म की कैद से आजाद, अब मेरी रूह जो करेगी प्रवास और होगी एक अपने खाविंद के साथ। Thank you.

संसार में सबसे बड़ा अधिकार सेवा और त्याग से प्राप्त होता है। दोस्तों, कहते हैं किसी सूफी को रोता देखकर किसी ने सूफी से पूछा कि तू रोता क्यों है, तो सूफी ने जवाब दिया, मैं रोता हूं इसलिए क्योंकि रोने में सुख है, रोता हूं इसलिए क्योंकि रोने से मेरे इस मन के मैल को धोने के उपाय हो जाते हैं, आंखों से आंसू झरते हैं, गाल पर ढलकते हैं, गाल से वो मेरे सीने पर गिरते हैं, तो हर वो आंसू जो मेरी आंखों से बह के गाल से लुढ़क के सीने पर गिरता है, वो मेरे दिल के मैल को दूर कर देता है। रोने से हम और इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए हम ऐसे कि बस पाक हो गए।

0: शिक्षा का उद्देश्य है मन को संयम में लाना, सजाना नहीं, उसको अपनी शक्तियों का योग करना सिखाना, दूसरे के विचारों को इकट्ठा करना नहीं।
1: दोस्तों, कबीर दास जी ने कहा था, मरिए तो मर जाइए, छूटी परे जंजार, ऐसा मरना को मरे दिन सौ सौ बार। दोस्तों, कबीर दास जी अपने इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि असली मरना यानी सूफी का मरना क्या है। इस बारे में बाबा फरीद कहते हैं कि जिस्म का मरना मरना नहीं होता, जिंदा रहते खुदी का, अहम का, मैं का मरना ही असली मरना होता है। ऐसी अवस्था को उपलब्ध हो जाना जब प्रेमी के पास उसका अपना कुछ भी ना बचे, यहाँ तक कि उसके शरीर को काटने पर भी लहू ना निकले, यानी जिसने अपने शरीर के खून की एक एक बूंद को साधना में लगा दिया हो। इसीलिए तो फरीद कहते हैं कि अगर खुदा के आशिक का शरीर भी चीरा जाए तो उसमें खून की एक बूंद तक नहीं मिलेगी। जो खुदा से प्रेम करते हैं उनके शरीर में लहू नहीं होता, वो सब खुदा की साधना में समर्पित हो चुका होता है। इश्क एक ऐसा रोग है जिसे लग जाए फिर वो चाह कर भी बच नहीं सकता। यही सच्चे इश्क की निशानी है कि प्रेमी को भी प्रेम में पड़ने के बाद अपने बचने की उम्मीद नहीं रहती, और जब उसे अपने बचने की उम्मीद नहीं रहती तो कह उठता है, मैनू इश्क दा लगियां रोग, मेरे बचने दी नैया उम्मीद।
2: प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी,

पुस्तक आज के लिए और हमेशा के लिए सबसे अच्छा और बड़ा मित्र है। दोस्तों, सूफी संत रूमी कहते हैं कि मैं खुदा से सीधा संबंध स्थापित करना चाहता हूँ। मैं बीच में कोई बाधा, कोई रुकावट नहीं चाहता, इसलिए मैं कलमे के जरिए पैदा हुए शब्द, आवाज और बोली तीनों रुकावटों को मिटा देना चाहता हूँ। और इसी बात को समझाते हुए रूमी के मुर्शिद यानी शम्स तबरेज रूमी से कहते हैं, अक्षर और बोली की हद से बाहर निकला और उस शब्द को जान ले जो बोला नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे थे प्यार मोहब्बत अमन की महफिल, सूफी महफिल। लेकिन अब आपकी रात का हम सफर फहीम चाहता है आपसे इजाजत। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आरजे सागर, आ चुका हूं लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग इस टाइम सुन रहे हैं रेडियो 107.8 एफएम, फील गुड फील लाइव। आज हम वापस से लेकर के आए हैं एक और केस स्टडी आपके लिए, बताएंगे आपको कौन सी वो कंपनी है, कौन सी वो इंडस्ट्री है, क्या क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगेन एक केस स्टडी है, आपको एजुकेट करेगा, आपको अवेयर करेगा, बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला है। लेकिन फिलहाल मैं आ चुका हूं, इतना आपसे कहना है, मेरा सलाम कबूल कर लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड फील लाइव।

दे कि आपके गाने पसंद आए ना। विद दिस नोट शो को आगे लेकर चलेंगे दोस्तों। मैं हूं आरजे सागर, शो का नाम है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और इस टाइम आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम के साथ। तो आज जो कंपनी हम आपके लिए लेकर आए हैं, उसके पहले हम उस कंपनी जिस इंडस्ट्री में डील करती है उस इंडस्ट्री को अच्छे से समझेंगे यहाँ पर। सो इंडस्ट्री है मेडटेक, मेडिकल टेक्नोलॉजी। जरूरत बहुत है इस इंडस्ट्री को समझने की, और अपने आप में बहुत क्रूशियल ये इंडस्ट्री, क्योंकि जितनी अनसर्टेनिटीज हमारे आसपास आज की डेट में है, चाहे वो हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हो, या फिर वो नेचुरल डिजास्टर से जुड़ी हुई हो, या फिर कोई भी किसी तरह की महामारी अगर दुनिया में आती है, तो ये इंडस्ट्री हमारी हेल्प करती है उससे कोप अप करने में। सो दैट्स हाउ ये बहुत क्रूशियल है, क्योंकि हमारे जीवन से जुड़ी हुई है सीधे तौर पर। अब इसको थोड़ा सा हम डिकोड करके टेक्निकल टर्म्स में समझेंगे। मेडिकल टेक्नोलॉजी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको हम रेफर करेंगे जो डेवलप करती है, मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है तमाम तरह की चीजें, जैसे डिवाइसेज हो गए, टूल्स हो गए, सॉफ्टवेयर्स हो गए, टेक्नोलॉजीज हो गई। कुल मिलाकर मोटिव ये होता है कि डायग्नोस कर पाए, डायग्नोस करना, ट्रीट करना, मॉनिटर करना मेडिकल कंडीशंस को, ताकि लोग ठीक रहे, ओवरऑल वेलबींग हमारी काफी अच्छी रहे। यहाँ पर आपको बहुत बड़ी एक रेंज मिल जाती है, लिटरली वाइड रेंज मिल जाती है, चाहे आप बात करें किसी पर्टिकुलर इक्विपमेंट की, चाहे आप बात करें किसी सॉफ्टवेयर की, या फिर जो आज की डेट में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं टेलीमेडिसिन के, कि अपने घर पर बैठकर हम डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है। चाहे हम अपने घर बैठ के दवाइयां ऑर्डर कर रहे हैं, तो दवाइयां हमारे डोर स्टेप तक जो पहुंच रही हैं, वो भी आप मेडटेक में ही कंसीडर करेंगे। इसके अलावा जो भी चीज टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग है इस इंडस्ट्री में, वो हम सब कुछ मेडटेक में कंसीडर करेंगे। अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वैसे तो टेक्निकली बहुत सारी चीजें हैं, लाइक कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजों को एक सरल वे में लेकर आना। अगर किसी इंसानों की प्रॉब्लम है तो अच्छे से उसको डायग्नोस करना, अगर किसी चीज की स्टार्टिंग बॉडी में हो गई है, जो आमतौर पर होता है कि पहले ऐसा हुआ करता था, इनिशियल स्टेजेस में हम आइडेंटिफाई कर नहीं पाते थे प्रॉब्लम्स क्या हैं, लेकिन अभी क्योंकि इतनी ज्यादा एडवांसमेंट हमारे पास आ गई है कि हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं पूरी बॉडी का चेकअप करके कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो क्या प्रॉब्लम है। और इसके अलावा कुछ और मेजर चीजें हैं, जैसे कि सर्जिकल रोबोट्स आ गए हैं, सर्जिकल रोबोट्स जो काफी एक्यूरेसी के साथ, काफी प्रिसीजन के साथ जो है सर्जरी करते हैं, जिससे रिकवरी भी जल्दी हो जाती है, डैमेज भी कम से कम होता है, और जो सक्सेसफुल ऑपरेशन होने के चांसेस हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना एंड एमआरआई मशीन्स, जो अपने आप में बहुत ही बड़ा एक आप कह सकते हो अचीवमेंट या फिर माइलस्टोन है हमारे लिए, कि बॉडी में अंदर क्या चल रहा है उसके एक एक सेल को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाना, अच्छे से रीड कर पाना। तो इस तरह की जो ये चीजें हैं, ये हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती हैं, और ये सब कुछ हमें दिया है मेडटेक इंडस्ट्री ने, यानी कि मेडिकल टेक्नोलॉजी। आज की जो हमारी कंपनी है वो इसी इंडस्ट्री में डील करती है। कंपनी के बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल इंडस्ट्री को अच्छे से समझेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त है एक म्यूजिकल ब्रेक का। अब इसी के साथ आप मजा लीजिए इन गानों का। स्टे ट्यून, फील गुड, फील

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ आपके गाने पसंद आए। अब इसी के साथ अपने शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और आपका होस्ट आरजे सागर। शो का नाम है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। दोस्तों, इंडस्ट्री के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजी, शॉर्ट टर्म में बोले तो मेडटेक। अब समझते हैं मेडटेक इंडिया में क्या है एग्जैक्टली। देखिए, मेडटेक इंडस्ट्री इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। उसके पीछे बहुत सारी चीजों का हाथ है, मतलब लिटरली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। अब इसमें एक तो पॉपुलेशन जो बढ़ रही है वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है उतनी ही ज्यादा जो है वो डिमांड बढ़ेगी और उसके हिसाब से इंडस्ट्री आगे बढ़ती रहेगी। देन इसके बाद क्रोनिक डिजीज या फिर कहीं हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। ये हमने आम तौर पे बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि 12 साल के बच्चे को कार्डियक अरेस्ट हुआ, या 14 साल की उम्र में एक बच्चे को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई, या 16 साल की उम्र में एक बच्चे को थायराइड हो गया। मल्टीपल चीज़ें, स्ट्रेस बहुत बड़ा एक एलिमेंट हो गया है हमारी लाइफ में जिससे कोप अप करने के लिए हमें ज़रूरत होती है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो इस एक इंडस्ट्री को इतना तेज़ी से ग्रो करा रही हैं, और ये बहुत इनडायरेक्ट वे में हो रहा है। अगर दूसरे वे में इसको देखा जाए तो हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री जितनी ज्यादा एडवांसमेंट यहाँ पर होती जा रही है हमारी प्रॉब्लम्स को ठीक करती आ रही है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत काम किया जा रहा है, प्लस सरकार की तरफ से भी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जो काफी सपोर्ट करती हैं इस इंडस्ट्री को। आप ये कह सकते हो कि इंडिया एक ऐसा इमर्जिंग मार्केट है जो मेडटेक हब बनाता जा रहा है इस इंडस्ट्री को पूरे एशिया में। मतलब पूरे एशिया में अगर आप उसको फिगर आउट करेंगे तो इंडिया में सबसे ज्यादा तेजी से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। एशिया क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा एक मार्केट है हेल्थ केयर का, लेकिन इंडिया उसमें बहुत स्किल्ड कंसीडर किया जाता है। मतलब हमारे यहाँ पर लिटरली एक स्ट्रांग बेस है स्किल्ड प्रोफेशनल्स का, साथ साथ स्टार्टअप्स बहुत सारे हैं इंडिया में। अभी लिटरली बहुत अच्छा लगता है देख के कि अलग अलग प्रॉब्लम्स को एक स्टार्टअप लेकर चल रहा है और वो उसको फिक्स कर रहा है, और ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने मल्टीपल प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया है, उनके सॉल्यूशंस ढूंढ के निकाले हैं। ऐसी मल्टीपल इनोवेशंस हमने देखी है इस हेल्थ केयर सेगमेंट में जिन्होंने लिटरली लोगों की हेल्प करी और हमारी ओवरऑल वेलबींग काफी अच्छी की है। सो दिस इज मेडटेक इंडस्ट्री इन इंडिया जो बहुत तेजी से, आप कह सकते हो बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है। आज हम इस इंडस्ट्री को डिकोड करेंगे यहाँ पर। अभी एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद की सेगमेंट्स की हम लोग बात करेंगे। बट इन द मीन टाइम स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

मैं आरजे सागर, शो का नाम आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और इस टाइम आप लोग सुन रहे रेडियो मानवरचना 107.8 FM। दोस्तों, आज हम अपने शो में जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, वो कंपनी डील करती है मेडटेक इंडस्ट्री में। और अभी तक हमने मेडटेक इंडस्ट्री को समझ लिया है, अब थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स की तरफ आएंगे, जो आप कह सकते हो कि सब पॉइंटर्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं और अच्छे से इंडस्ट्री का एक इनसाइट लेने में। अब हम बात करेंगे की सेगमेंट्स की। मेडटेक इंडस्ट्री के की सेगमेंट्स कौन कौन से हैं, मतलब उन वर्टिकल्स को मोटे मोटे तौर पे हम देखेंगे कि जहां पर कोई स्कोप है या जहां पर ऑलरेडी काम किया जा रहा है, या फिर कह सकते हैं कि जिन सेगमेंट्स में हम इस इंडस्ट्री को बाइफर्केट कर सकते हैं। पहला आता है डायग्नोस्टिक्स एंड इमेजिंग। इसमें हम कंसिडर करेंगे MRI, CT स्कैन्स, एक्सरेज और जितने भी डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं जो अर्ली डिटेक्शन में हेल्प करते हैं और एक ट्रीटमेंट को प्लान करने में हमारी काफी मदद करते हैं। जो मैंने कहा कि इनिशियल स्टेज में अब पॉसिबल है कि हम उसको एनालाइज कर पाएं और फिगर आउट कर पाएं कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम होने वाली है या स्टार्ट हो चुकी है बॉडी में, उसके लिए बहुत सारी एडवांसमेंट हमने कर ली। देन सेकंड वर्टिकल जो है वो है मेडिकल डिवाइसेस। इस सेगमेंट में आपको तमाम रेंज देखने को मिलेगी उन डिवाइसेस की जो हमारी हेल्प करते हैं, लाइक जो हमारे क्रूशियल मूवमेंट्स होते हैं, बहुत क्रिटिकल जो मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि वेंटिलेटर्स की जब जरूरत होती है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, या स्टैंड्स जो आमतौर पे देखा जाता है जब बाईपास सर्जरी की जाती है, जब किसी के हार्ट में ब्लॉकेज आती है तो स्टैंड डाले जाते हैं, सो दैट कि ब्लड जो है वो बहुत गाढ़ा ना हो और जो ब्लॉकेज है वो भी ना हो और इजीली जो है लोग वहां से कोप अप कर पाए उस एक पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ जो उनके सामने आई है। देन पेसमेकर्स जो इसी एक वर्टिकल में फॉल करते हैं। उसके बाद थर्ड जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है अपने आप में, वो वर्टिकल है वियरेबल टेक्नोलॉजी। अब ये बहुत आम हो चुका है, फिटनेस ट्रैकर, स्मार्ट वॉचेस, इसके अलावा भी ऐसे हमारे पास वियरेबल हेल्थ मॉनिटरिंग टूल्स हैं जिनसे हम बहुत सारी चीजों को खुद से एनालाइज कर सकते हैं। और ये लिटरली बहुत प्राउड वाली बात है और बहुत अमेजिंग बात है कि यार अभी बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में आ गई है। जैसे मल्टीपल टाइम्स हमने आपको अपने शोज में ये बात बताई है कि कोई इंसान गया माउंटेन ट्रैकिंग पे या माउंटेन क्लाइंबिंग पे और वहां पर जाकर उसको अचानक से कुछ फील हुआ, कोई पैनिक वाली सिचुएशन, या अचानक से उसके या जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत शूट अप कर गया, या ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो गया बहुत ज्यादा। तो ऐसा बहुत जगह से मल्टीपल टाइम्स अपडेट आए हैं कि स्मार्ट वॉच जो उसने पहनी हुई थी, उसने नियर बाय रेस्क्यू टीम को एक मैसेज भेजा, एक SOS का मैसेज गया और इंस्टेंटली रेस्क्यू टीम वहां पर आई, उसकी लोकेशन को डिटेक्ट कर लिया और उस बंदे ने, मतलब अपनी कॉन्शियसनेस वो खो चुका था, उस बंदे ने कोई मैसेज इंटेंशनली नहीं भेजा था, जस्ट बिकॉज कि वो जो स्मार्ट वॉच पहनी हुई थी उसने वो सब कुछ आइडेंटिफाई किया, सिग्नल गया, रेस्क्यू टीम आई, उनको वहां से रेस्क्यू कर लिया गया और समय रहते उन्हें बचा लिया गया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, यकीन मानिएगा। सो ये वियरेबल टेक्नोलॉजी हमारी बहुत सारी चीजों में हेल्प करती है, लाइक ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर करने में एंड ब्लड ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करने में, इसी के साथ हार्ट रेट हमारा अगर इरेगुलर हो रहा है तो उसको मॉनिटर करने में। देन इसके बाद फोर्थ वर्टिकल आता है टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन यानी कि आप समझ सकते हो कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो रिमोट डायग्नोसिस को इनेबल करती है। जैसे COVID-19 के बाद से स्पेशली हमने देखा है कि वर्चुअल कॉल्स या थ्रू जो है वर्चुअल डिवाइसेस हम डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, मतलब रिमोटली कंसल्टेशन हो सकता है और ट्रीटमेंट भी हो सकता है, जिससे बहुत सारे लोग जिनके पास टाइम नहीं हुआ करता था वीकेंड का वेट किया करते थे और इतने में बीमारी बढ़ती रहती थी, या किसी पर्टिकुलर डे का वेट किया करते थे तब तक बीमारी को वो झेला करते थे, तो उनके लिए काफी सुविधा हो गई है। आधा घंटा एक घंटा निकाल के डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और दवाइयां ऑर्डर कर सकते हैं, घर पे दवाइयां भी आ जाएंगी, बहुत सिंपल है। तो इस एक चीज ने लिटरली बहुत अपलिफ्ट किया है इस एक मार्केट को। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है हेल्थ IT एंड AI। इस एक पर्टिकुलर वर्टिकल में हम इस चीज को देख सकते हैं कि पेशेंट्स को मैनेज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं एंड इसी के साथ प्रिडिक्ट किया जा सकता है पास्ट हिस्ट्री के बेसिस पर कि क्या क्या प्रॉब्लम्स रही थी पास्ट में और अभी जो बॉडी साइन दे रही है वो क्या साइन दे रही है या किस एक दिशा की तरफ जो है हमें वो लेकर जा रही है। इससे पेशेंट को टाइमली ट्रीट किया जा सकता है और बीमारी की रूट कॉज तक पहुंचा जा सकता है। सो ऑल दीज आर दी की सेगमेंट्स जो मेडटेक इंडस्ट्री में फॉल करते हैं। फर्स्ट हमने आपको बताया डायग्नोस्टिक्स एंड इमेजिंग, सेकंड हमने आपको बताया मेडिकल डिवाइसेस, थर्ड बताया वियरेबल टेक्नोलॉजी, फोर्थ बताया टेलीमेडिसिन एंड फिफ्थ बताया हेल्थ IT एंड AI। अब देखिए, इनमें से किसी को भी आप ये नहीं कह सकते हो कि ये कम महत्वपूर्ण है और ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक वर्टिकल, हर एक सेगमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है, बशर्ते हम उन चीजों की जो वैल्यू है उसको अच्छे से समझ पाए।
तो फिलहाल लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आगे बात करेंगे। अभी मेडटेक इंडस्ट्री को और अच्छे से एक्सप्लोर करना है हमें, पर फिलहाल अब मजा लीजिए इन गानों का। एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील।

का पुरस्कार चंदन का। दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है, हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको एक गाने पसंद आए ना। वो दिस नोट शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूँ आपका दोस्त आरजे सागर। शो का नाम है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आज जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं वो कंपनी डील करती है मेडटेक इंडस्ट्री में। अभी तक हमने इंडस्ट्री को समझा ओवरऑल, हमने फिर इंडस्ट्री को समझा कि इंडिया में इसका स्टैंड क्या है अभी, फिर हमने समझा की सेगमेंट्स को, उन वर्टिकल्स को जिनमें ये इंडस्ट्री डील करती है या फिर जिनमें आप इसको बायफर्केट कर सकते हो। अब बात करेंगे हम की ड्राइवर्स की। की ड्राइवर्स यानी कि जो इस इंडस्ट्री को ड्राइव करते हैं, जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री इतना तेजी से ग्रो कर पा रही है। तो पहला की ड्राइवर आता है राइजिंग हेल्थ केयर नीड्स। अब देखिए, जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, जैसे जो आबादी है वो बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है, या फिर आप कह सकते हो नीड्स हमारी बढ़ती जा रही है, उसके हिसाब से सप्लाई प्रोवाइड करना। मोरओवर जिस तरीके से हमारे सामने नए नए चैलेंजेस हर रोज आते हैं, नई प्रॉब्लम्स हमारे सामने आए दिन खड़ी होती हैं, कुछ ना कुछ नया डिटेक्ट किया जाता है, तो उस एक पर्टिकुलर चीज के साथ या उस एक पर्टिकुलर बीमारी के साथ कोप अप करना, इसके लिए हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की सच में जरूरत होती है और ये बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ऐसे में जो राइजिंग हेल्थ केयर नीड्स हैं वो लिटरली हमारी काफी हेल्प कर रही हैं इस एक इंडस्ट्री को आगे भी ले जाने में और साथ साथ नई चीजों की तरफ हमें पुश करने में, मतलब नई टेक्नोलॉजीज, नई एडवांसमेंट या नई इंप्रूवमेंट या कुछ नया इनोवेटिव हम लेकर आए। जैसे आमतौर पर भी देखने को मिलता है कि डायबिटीज, हार्ट डिजीज, रेस्पिरेटरी कंडीशंस, ये बहुत ही आम चीजें हो गई है, आमतौर पर देखने को मिल जाती है, पहले रेयरली हुआ करता था और एक सर्टेन एज ग्रुप को टारगेट किया जाता था कि इस एज में हो सकता है। लेकिन आज ये बोल पाना बहुत गलत होगा कि इस एज ग्रुप में हो सकता है, क्योंकि हमने 10 साल के बच्चे को भी देखा है जिसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, हमने 14 साल के बच्चे को भी देखा है जिसको ब्लड प्रेशर बहुत इरेगुलर है, हमने 16 साल के बच्चे को देखा है जिसको थायराइड है। ऐसे आप किसी एज ग्रुप में डाल सकते हैं, बिकॉज ओवरऑल लाइफस्टाइल प्लस पॉल्यूशन प्लस स्ट्रेस प्लस ये कॉम्पिटिटिव मार्केट जो हमारी होती जा रही है, इन सब की वजह से ये मल्टीपल कंडीशंस अर्ली स्टेजेस में बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है। लकीली हम उनको डिटेक्ट कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सेकेंड आता है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो आप कह सकते हो कि एक

रही है और लोगों के पास एक्सेस है हेल्थ केयर का। पहले हुआ करता था कि बहुत लिमिटेड लोगों के पास लिमिटेड रिसोर्सेज का एक्सेस था, लेकिन जब से हम लोग डिजिटल हो गए हैं, जब से हम लोग टेलीमेडिसिन जैसी चीजों का इस्तेमाल करने लगे, तब से रिमोट एरियाज में भी बैठकर लोग दिल्ली या मुंबई या कहीं पर भी किसी भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर पाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट की ड्राइवर आता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। AI बहुत ही अब कॉमन चीज हो गई है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि नई है हमारे लिए, हालांकि इतनी पुरानी नहीं हुई है, बट स्टिल हमने बहुत तरक्की कर ली है इस एक फील्ड में। मशीन लर्निंग, IoT, इन्होंने मेडटेक इंडस्ट्री को लिटरली बहुत एक नया, आप कह सकते हो, मुकाम दिया है, क्योंकि नई एडवांसमेंट, नई चीजें लेकर आना, अर्ली स्टेज में चीजों को डिटेक्ट कर पाना, प्लस उसको काफी पर्सनलाइज्ड वे में देखना कि किसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जेनेटिक्स क्या बोलते हैं, ये सब कुछ हो पाया है टेक्नोलॉजी की वजह से। देन उसके बाद इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, ये तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों की तरफ से इंडिया में मेडटेक जो स्टार्टअप्स हैं उनको इन्वेस्टमेंट मिल रही है, इन्वेस्टर्स को काफी लुभा रही है ये एक इंडस्ट्री, जिसकी वजह से ये इतना आगे बढ़ पा रही है। देन उसके बाद लास्ट जो आप की ड्राइवर कहेंगे इस एक इंडस्ट्री में, दैट इज ग्रोइंग अवेयरनेस। लोग भी अब जागरूक होते जा रहे हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरफ लोग जो है अब जाने लगे हैं, साथ साथ लोग अब समझ पा रहे हैं कि यार अर्ली स्टेज में अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज को हमने डिटेक्ट कर लिया, सो इट्स गुड फॉर अस। शायद इसी वजह से लोग स्मार्ट वॉचेस या फिटनेस ट्रैकर या जो भी वेरिएबल टेक्नोलॉजीज होती हैं उनको वियर करना पसंद करते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम अगर बॉडी में है तो अर्ली स्टेज पे उन्हें वो साइन मिल जाए और आगे चलकर वो परेशान ना हो जब वो बीमारी बहुत बढ़ चुकी हो। तो ये सब वो चीजें हैं जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री इंडिया में इतना तेजी से ग्रो कर पा रही है, फिर आप कह सकते हो वो स्ट्रॉन्ग पिलर्स। अब इसी के साथ हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद हम करंट ट्रेंड्स को या फिर कहें करंट टेक्नोलॉजी को समझेंगे जो मेडटेक इंडस्ट्री में है हमारे पास, बट फिलहाल वक्त है इन गानों का। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील।

0: वेलिज्यूम मीर के साथ कि आपको गाने पसंद आए, अपने शो को आगे लेकर चल रहे हैं। दोस्तों मैं हूं आरजे सागर, शो का नाम है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। उम्मीद कर रहा हूं ये शो आपको अच्छा लग रहा है और गानों को भी आप पसंद कर रहे हैं। नाउ विद दिस नोट हम अपने शो को आगे लेकर चलेंगे। आज की इंडस्ट्री है मेडटेक इंडस्ट्री, यानी कि मेडिकल टेक्नोलॉजी, और इसमें अब हम बात करेंगे करंट टेक्नोलॉजीज की। ये आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है अगर आप करंट ट्रेंड्स को समझना चाहते हैं इस एक इंडस्ट्री की, जस्ट इन केस अगर आप अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। पहला है AI एंड मशीन लर्निंग, जो आमतौर पर हर एक इंडस्ट्री के साथ अब हम एसोसिएट कर रहे हैं और हर जगह पर हमें इसमें डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। इसमें प्रिडिक्ट कर पाएंगे, उसके हिसाब से हम एनालाइज कर पाएंगे, जिससे डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लस एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान जो है वो पेशेंट के हिसाब से बनाया जा सकता है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है 3D प्रिंटिंग। जितने भी मेडिकल डिवाइसेज हैं, इम्प्लांट्स हैं, इवन ह्यूमन टिश्यूज हैं, उनके ऊपर भी काम किया जा रहा है, जिससे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस बढ़ जाते हैं और कॉस्ट को भी रिड्यूस करने का पूरा एफर्ट वहां पे जो है वो किया जा रहा है, ताकि लोग उसको एक्सेस कर पाए। मतलब लिटरली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बॉडी का कोई ना कोई ऐसा पार्ट खो देते हैं किसी ऐसी अनफॉर्चुनेट चीज में, एक्सीडेंट में, तो उसके बाद वो लाइफ टाइम उसी चीज के साथ नहीं रहना चाहते हैं। उन्हें चाहिए कि यार कोई रिप्लेसमेंट दे दो, लेकिन एक्यूरेसी की कमी हुआ करती थी। बट लकीली अभी हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं 3D प्रिंटिंग की वजह से कि काफी एक्यूरेट, मतलब आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल होगा कि यार ये सच में रियल है या फेक है, मतलब कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करोगे। इम्प्लांट्स ऐसे ऐसे आ गए हैं, सर्जिकल जो चीजें आ गई हैं उन्होंने काफी हेल्प करी है लोगों को। कुल मिलाकर लोग जो फ्रीली कॉन्फिडेंटली जीना चाहते हैं वो करने में काफी हेल्प करती है 3D प्रिंटिंग। उसके बाद थर्ड वियरेबल डिवाइस, जिसकी हमने बात करी थी, जो हमारे वाइटल साइंस को मॉनिटर करता है, हमारी फिटनेस को ट्रैक करता है और ओवरऑल जो हमारी हेल्थ है उसका डाटा हमें प्रोवाइड करता है। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको काफी मदद मिलती है ये आइडेंटिफाई करने में कि किस दिशा में काम करना है और एग्जैक्टली क्या काम करना है। उसके बाद नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आएगी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म्स। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो आपकी हेल्प करते हैं टॉप नॉच डॉक्टर्स से कंसल्ट कराने में। इवन दो आप अगर एक लिमिटेड बजट लेकर चल रहे हो तो उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हो कि कौन से डॉक्टर हैं, उनके रिव्यूज क्या हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या पढ़ाई की है, कितना एक्सपीरियंस है, सब कुछ वहां पर मिल जाता है। फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कहाँ पर जाना है, किस डॉक्टर के साथ आपको कंसल्ट करना है, जिससे आपकी फिजिकल विजिट जो है वो बच जाती है और आप टाइम भी अपना काफी सेव कर लेते हो। आपको किसी पर्टिकुलर डे या वीकेंड का वेट नहीं करना है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी है दैट इज रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्जिकल रोबोट्स, क्योंकि एक नया ट्रेंड बन चुका है और इससे काफी मदद मिलती है एक्यूरेटली ऑपरेट करने में, साथ साथ रिकवरी काफी जल्दी हो जाती है। एंड इसी के साथ ऑटोमेटेड सिस्टम जो है वो काफी हेल्प करते हैं प्रिसाइज ऑपरेशन करने में या मेडिकल प्रोसीजर्स जो है उनको काफी सेफ और एक्यूरेट बनाने में। देन उसके बाद लास्ट टेक्नोलॉजी है बिग डेटा एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। अब इसमें देखिए मैनेज किया जाता है और एनालाइज किया जाता है हेल्थ डेटा को, जिससे एक डिसीजन मेकिंग में मदद मिलती है, सरकार को भी काफी मदद मिलती है, साथ साथ मेडिकल एक्सपर्ट्स को भी काफी मदद मिलती है, और अगर किसी को भी इस एक पर्टिकुलर फील्ड में कुछ डेवलप करना है, कुछ नया स्टार्ट करना है, तो उनको काफी मदद मिलती है, एक डेटा बेस उनके हाथ में है। सो ये है वो तमाम टेक्नोलॉजीज जो अभी ट्रेंडिंग है और जिनके ऊपर अभी काम किया जा रहा है। तो अगर आपको अपना कुछ स्टार्ट करना है तो आप इन फील्ड्स में, इन टेक्नोलॉजीज में देख सकते हो। आई होप इट वर्क्स। नाउ विद दिस नोट लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, अब उसके बाद शो में आगे बात करेंगे, बताएंगे आपको कौन सी कंपनी है और क्या उसकी जर्नी रही है, पर फिलहाल आप मजा लीजिए इन गानों का। स्टे ट्यून, फील गुड, फील
1: लाइफ। ना इज्जत की चिंता ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, यही पहचान है भक्तजन।
2: गुरुदेव यही बात यदि संगीत धारा में बहकर कहें तो आनंद आ जाए।
1: हाँ, ना इज्जत की चिंता।

मुद्रा बन के हम सन्यासी ब्राह्मण चलते रहना, मौका है वीर बना लो हाथ नमनते रहना।

दिन पीछे खोलो पिया देखो भगवान की, ये बोलो भगवान की, ये बोलो।

चिंता दी फसल है महाराज पधारे, चिंता चरस चिदम और चेले साथ साथ है सारे, टिकटे लेकर भी गाड़ी में खड़े शरीफ बेचारे, और ये देखो भगवान के चम

उम्मीद है कि आपको ये गाने पसंद आए। नाउ विद दिस नोट अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, शो का नाम है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आज जो कंपनी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो कंपनी डील करती है मेडटेक इंडस्ट्री में। अब मेडटेक इंडस्ट्री को हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं यहाँ पर। अभी तक मल्टीपल चीजें हमने आपको बता दी, एंड आई होप उससे आपको एक सच में रियल इंसाइट मिला है। अब इसके बाद आगे अगर बात करें तो नीड क्या है इसकी इंडिया में। देखिए, सबसे पहली चीज एक्सेसिबिलिटी। बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है हमारे देश की आज भी जो रूरल एरियाज में रहती है। रूरल एरियाज मतलब लिमिटेड एक्सेस, चाहे वो किसी अच्छे टाउन के या अच्छे शहर के कितने ही करीब क्यों ना हो या कितना ही दूर क्यों ना हो, स्टिल देर आर लिमिटेशंस, देर आर सम रिस्ट्रिक्शंस, स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके लिए इन चीजों को एक्सेसिबल बनाना बहुत जरूरी है ताकि हर एक इंसान तक इनका फायदा पहुंच सके। अगर किसी को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो अपनी चीजों को फिक्स कर सके बाय यूजिंग ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज टेक्नोलॉजीज। देन टेलीमेडिसिन उसमें एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है, एंड मेडटेक के जो बाकी सॉल्यूशंस हैं लाइक पोर्टेबल डिवाइस हो गए, ये सब उस गैप को फिल करते हैं। इसलिए जरूरी है इंडिया में मेडटेक के ऊपर काम करना। सेकेंड, अफोर्डेबिलिटी। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी चीजें एक्सेसिबल हो गई हैं, मल्टीपल ऑप्शंस आ गए हैं जिससे वो ज्यादा अफोर्डेबल हो गई है। अगर मैं बात करूं एक ब्रॉडर व्यू में, तो अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज को ट्रीट करना है या डायग्नोस करना है तो कम टाइम में अच्छे से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ, ज्यादा प्रिसीजन के साथ हम वो कर सकते हैं, बिकॉज हमने टेक्नोलॉजी में इतना काम किया है, इतना इन्वेस्ट हमने ऑलरेडी किया है उस एक फील्ड में, जिसकी वजह से काफी लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों की ओवरऑल हेल्थ अच्छी होगी, जिसको जहां पर नीड है वो उसको ठीक कर सकता है, फिक्स कर सकते हैं। देन उसके बाद थर्ड, क्वालिटी ऑफ केयर। अब एडवांस डायग्नोस्टिक टूल्स आ गए हैं, वेयरेबल डिवाइस आ गए हैं, एआई ड्रिवन सॉल्यूशंस आ गए हैं, इससे ओवरऑल हेल्थ केयर की जो क्वालिटी है वो काफी इंप्रूव हुई है। जैसे कि अर्ली स्टेज डिटेक्शन, बेटर मॉनिटरिंग, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट, मतलब अब अच्छे से हम उसको देख सकते हैं, अच्छे से उसका हम एनालिसिस कर सकते हैं और उसके बिहाफ पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि एग्जैक्टली हाउ टू प्रोसीड, आगे चलना कैसे है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको कंसिडर करना चाहिए कि ये हमारी नीड है, हमारे देश की नीड है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है पैंडेमिक रिस्पॉन्स। COVID-19 के बाद से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हुई, उस टाइम पर भी, उसके बाद भी हुई, जहां पर मेडटेक ने एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया। उस क्राइसिस के टाइम पे भी, जहां पर डॉक्टर्स के साथ वर्चुअली अपॉइंटमेंट लेकर डिस्कस करते थे, एंड उसके बाद भी, क्योंकि वो एक चीज हमारी लाइफ का पार्ट बन गई, स्पेशली वर्क फ्रॉम होम बहुत ट्रेंडिंग एक चीज बनी, बहुत बड़ी एक चीज निकल के सामने आई। देन उसके बाद सब कुछ हमने देखा कि डिजिटल की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अपार्ट फ्रॉम दिस, रिमोट मॉनिटरिंग टूल्स हमें मिल गए, एंड टेलीमेडिसिन का आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल गया, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स मिल गए, कुल मिलाकर पेशेंट्स को ट्रीट करने में काफी सहूलियत हो गई। पेशेंट्स के पास भी ज्यादा ऑप्शंस हैं, डॉक्टर्स के पास भी ज्यादा ऑप्शंस हैं, इट्स अ विन विन सिचुएशन। हुआ क्या, सिंपली टेक्नोलॉजी को वहां पर अलाइन किया गया और उससे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को नई शेप मिली। सो दैट्स हाउ हम कह सकते हैं कि इसकी नीड है ये हमारे पास। इम्पैक्ट भी इसका देखने को मिला, मतलब काफी हमने एक्सेस को इम्प्रूव होते हुए देखा कि इम्प्रूव्ड एक्सेस है अब हेल्थ केयर का, हमने देखा कि बेटर हेल्थ आउटकम्स हैं, हमने देखा कि पेशेंट्स जो हैं वो ज्यादा एम्पावर हो गए हैं पहले से, उनके पास ऑप्शंस ज्यादा आ गए हैं, हमने देखा कि एफिशिएंसी काफी इम्प्रूव हो गई है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की, हमने बहुत सारी चीजें देखी है। तो ऐसे मेडटेक जो एक पूरी इंडस्ट्री है, उसने हमारी लाइव की जो ओवरऑल वेलबींग है उसको काफी इम्प्रूव किया। अब लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद फाइनली बात करेंगे कंपनी की, क्या नाम है कंपनी का, फाउंडर कौन है, फाउंडर का बैकग्राउंड क्या है, सब कुछ आपको बताएंगे।

0: वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ आपको म्यूजिकल वाइब पसंद आई। फिलहाल इसी नोट पर अपने शो को आगे बढ़ाएंगे। सो फाइनली हमने इंडस्ट्री की बात कर ली, आपको तमाम चीजें बता दी इंडस्ट्री के बारे में। अब बात करते हैं आज की कंपनी की। आज की हमारी कंपनी है इकिन केयर। इकिन केयर एक हैदराबाद बेस्ड हेल्थ टेक स्टार्टअप है। मेडटेक यू की बात हो रही है। ये फोकस करता है ऑन कॉर्पोरेट हेल्थ केयर एंड एम्प्लॉय वेलनेस। अब बहुत नीश बेस्ड एक पर्टिकुलर चीज है ये, लेकिन समझना होगा इट्स नॉट अ हॉस्पिटल, इट्स नॉट अ क्लिनिक। ये एक फुल स्टैक डिजिटल हेल्थ बेनिफिट्स प्लेटफॉर्म है कंपनीज के लिए। B2B में डील करता है, हालांकि फायदा एम्प्लॉयज को होता है, फायदा एक आम नागरिक को ही हो रहा है। ठीक है, व्हाट दे डू इन सिंपल वर्ड्स इज हेल्थ चेकअप, डॉक्टर कंसल्टेशंस, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से होता है। आप मेडिसिन की डिलीवरी करते हैं, मेंटल हेल्थ सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एनालिटिक्स, ठीक है, ये यहाँ पर किया जाता है। ये सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट किया गया। दे सर्व 1000+ ऑर्गेनाइजेशंस, मिलियंस ऑफ एम्प्लॉयज विद अ नेटवर्क ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। कंपनी स्टार्ट कैसे हुई? ये स्टार्ट हुई एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में, नॉट जस्ट फ्रॉम अ रैंडम आइडिया। इट केम फ्रॉम अ पर्सनल फ्रस्ट्रेशन। तो इस कंपनी के जो फाउंडर हैं किरण कलाकुंतला, वो US में थे, ठीक है, उनके जो पेरेंट्स हैं वो इंडिया में थे। प्रॉब्लम वहां पर वो थी कि वो अपने पेरेंट्स की हेल्थ को ट्रैक नहीं कर पा रहे थे प्रॉपरली। कोई सेंट्रलाइज्ड मेडिकल रिकॉर्ड का सिस्टम नहीं था वहां पर, ठीक है, कोई क्लैरिफाई नहीं दी जा रही थी। इवन ड्यूरिंग सीरियस हेल्थ सिचुएशंस कोई क्लैरिफिकेशन उनको नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि अब दूर है भाई, बाहर है, अब्रॉड में है, पेरेंट्स अगर यहाँ पर ठीक नहीं है, सो इट फ्रस्ट्रेट्स यू, राइट? ये फ्रस्ट्रेशन एक सवाल में तब्दील हुई, व्हाई इज हेल्थ केयर सो डिसकनेक्टेड, स्पेशली इन आवर कंट्री, इन इंडिया। यहां से ये कंपनी स्टार्ट हुई इकिन केयर। तो ये सिंपल सा एक कोर आइडिया था कि हेल्थ केयर को प्रिवेंटिव बनाना चाहिए, नॉट रिएक्टिव। क्योंकि इंडिया में अमूमन एक धारणा होती है कि लोग डॉक्टर्स के पास तभी जाते हैं जब कोई चीज खराब होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तभी हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं। एक नॉर्मल चेकअप के लिए हम लोग नहीं जाते हैं, एक रेगुलर चेकअप के लिए, प्रिवेंशन के लिए। कोई ट्रैकिंग नहीं होती, कोई अर्ली डिटेक्शन नहीं होता, क्योंकि जागरूकता की भी कमी है, प्लस उस तरीके से यहाँ पर कोई सिस्टम बनाया ही नहीं गया। तो यहां पर इकिन केयर जो एक कंपनी हमारी, इसने हेल्थ डाटा को डिजिटाइज किया, एनालाइज करना शुरू किया और पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस देने शुरू किए। तो ये शिफ्ट हुआ फ्रॉम ट्रीटमेंट टू प्रिवेंशन। ये इंपॉर्टेंट है समझना हमारे लिए कि भाई ट्रीटमेंट तो ठीक है सब लोग करा ही रहे हैं, लेकिन ट्रीटमेंट तक बहुत सारा डैमेज हमें पहुंच चुका होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में पनप चुकी होती है और वो अलग स्टेज होती है। तो यहां पर सिंपल फोकस किया गया कि क्यों ना इसको प्रिवेंट किया जाए, वो एक चीज है। अगेन मैं बोलूंगा B2B में डील कर रहा है, कॉर्पोरेटली काम कर रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट से फायदा एक आम इंसान का हो रहा है, अपनी सेहत को लेकर के लोग जागरूक हो रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक समझ पाए। अब फिलहाल लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।
1: ये हुई ना बात।

0: 吗？
1: 啊哈，村长，哎，咖喱可大。
0: 啊哈，村长，啊，疼的好吗？
1: 啊哈，村长，哎，咖喱可大。
0: कुछ प्यारी प्यारी बातें हमारी आ जाते जाते तू भी सुन जा
1: सुन जा आ ठंडी हवा
0: आहा थम जा ऐ काली घटा
1: अरे प्यारी प्यारी बातें हमारी आ जाते जाते तू भी सुन जा
0: आ ठंडी हवा
1: आहा

उम्मीद कर रहा हूँ आपको म्यूजिकल वाइब पसंद आई। फिलहाल इसी नोट पर अपने शो को आगे बढ़ेंगे और बिना किसी देरी के अपने शो में बात करते हैं हमारे फाउंडर्स के नाम की, उनके बैकग्राउंड की, क्योंकि कंपनी का नाम है यकीन केयर। थॉट प्रोसेस आपको समझ आया, आइडिया आपको समझ में आया, क्या करते हैं आपको समझ में आया, इंडस्ट्री को आपको समझाया हमने, तो ये तमाम चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर बात की जाएगी फाउंडर्स की। कोर फाउंडिंग टीम में 3 लोग हैं। फर्स्ट किरण कालाकुंतला, जिनको ये थॉट प्रोसेस था, जिनको ये आइडिया आया कि उनके पेरेंट्स ठीक नहीं है और उसको उन्हें सिंक करना है एक सिस्टमेटिकली, सो ही इज अ फाउंडर एंड सीईओ। दूसरा है श्रीकांत समुद्राला, को फाउंडर एंड सीटीओ। एंड थर्ड इज डॉक्टर नोएल कोटिन्हो, को फाउंडर बिजनेस एंड हेल्थ केयर एक्सपर्टीज ये लेकर के आते हैं। ठीक है, यहाँ पर एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूटर्स भी हैं लाइक सोमक रे, जो बाद में को फाउंडर बने कंपनी की ग्रोथ फेज में, तो वो हैं। इन 4 लोगों ने इस कंपनी के जो कोर आइडिया है उसको बरकरार रखा, उसको आगे पहुंचाया। बैकग्राउंड की बात करेंगे, किरण कालाकुंतला जो है उनकी एजुकेशन की थोड़ी सी बात की जाएगी यहाँ पर। ड्यूक यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी पढ़ाई की। वर्क एक्सपीरियंस की बात करेंगे, AT&T में काम किया हुआ है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी एमएनसी है, उसमें अच्छा खासा इन्होंने टेक्नोलॉजी को समझा है। वहां पर उन्होंने 30 से ज्यादा टेक प्रोडक्ट्स बनाए ग्लोबली जिन्होंने लोगों की मदद करी। ओके, 100 million+ US के बिजनेस जो है वो इन्होंने मैनेज किया है प्रोडक्ट्स में। इनसाइट्स की अगर बात करेंगे, ही इज नॉट अ हेल्थ केयर गाय, टू बी ऑनेस्ट, दिस इज प्रोडक्ट प्लस टेक माइंडसेट, जिसकी वजह से ये प्लेटफॉर्म बन पाया। तो देखने आपकी हेल्थ केयर होना भी जरूरी नहीं था, वहां पर टेक जील और वहां पर एक गैप नजर आया और एक प्रोडक्ट को कैसे वहां पर लोगों के लिए हेल्पफुल बनाया जाए वो उनको समझ में आया। दैट्स हाउ ही स्टार्टेड दिस थिंग। ठीक है, नॉट सर्विस फर्स्ट, दिस कंपनी इज डेटा फर्स्ट हेल्थ केयर। दूसरा नाम की यहाँ पर बात करना चाहेंगे, श्रीकांत समुद्राला, IIT मद्रास से उन्होंने अपनी पढ़ाई की है, बार्कलेज, HSBC, इन बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्होंने काम किया है, लार्ज स्केल टेक सिस्टम्स इन्होंने बिल्ड किए हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी की जो बैकबोन है उसको ये समझते हैं, उसको आप कह सकते हैं कि पूरा आप मैनेज करते हैं, बिकॉज दिस कंपनी इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। एंड आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली कंपनीज जो है वो टेक के ऊपर ही रिलाई करती है, और अगर टेक ही वीक है, आपका टेक ही एक्सेसिबल नहीं है, तो इट डजंट मेक सेंस एट ऑल, राइट? तो यहां पर श्रीकांत जो है उनका यही काम है कि वो टेक को मैनेज करते हैं, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। थर्ड इज डॉक्टर नोएल कोटिन्हो, हेल्थ केयर का अनुभव है इनका, ठीक है, प्लस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अच्छा खासा काम किया है, 15 साल से ज्यादा का इनका अनुभव रह चुका है। ठीक है, दिस कंप्लीट्स द ट्रायंगल, टेक प्रोडक्ट हेल्थ केयर। तो टेक के बारे में हमने बताया श्रीकांत काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट के ऊपर हमने आपको बताया किरण जो है वो अपना एक्सपीरियंस लेकर के आ रहे हैं, हेल्थ केयर में यहाँ पर डॉक्टर नोएल जो है वो आते हैं। ऐसे करके कंपनी जो है पूरी करती है, क्योंकि ये ही 3 चीजें हैं जो इस कंपनी को ड्राइव करती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक अभी तक आपको समझ आया। फिलहाल लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो यहां पर चल रहा है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं इकिन केयर हमारी कंपनी की, जो मेडटेक में डील करती है। अभी तक हमने कंपनी के बारे में आपको बताया, ओवरव्यू आपको दिया, थॉट प्रोसेस क्या रहा कंपनी के पीछे वो आपको बताया, फाउंडर्स, उनके बैकग्राउंड, कैसे ये तीनों जो हैं मिलकर के इस कंपनी को यहाँ तक लेकर के आए हैं, क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है वो हमने यहाँ पर बात करी। लेट्स टॉक अबाउट द USPs, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। लेट्स कट द नॉइज। ठीक है, पहला यहाँ पर आता है सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है। दूसरा यहाँ पर आता है AI प्लस एनालिटिक्स। यहाँ पर डाटा को स्टोर नहीं किया जाता है, एक्चुअली वहाँ पर रिस्क को प्रिडिक्ट किया जाता है, वहाँ पर चीज़ों को देखा जाता है, एनालाइज किया जाता है, एक ही प्लेटफॉर्म पर तमाम चीज़ें आपको मिल रही है। थर्ड इज कॉर्पोरेट फर्स्ट अप्रोच। स्टेबल रेवेन्यू मॉडल है, जाहिर सी बात है जब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई कंपनी आप ओपन कर रहे हैं, उसको चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो उसके लिए इनके पास एक स्टेबल ये इनकम है, एक स्टेबल सोर्स है रेवेन्यू का, जहाँ पर कॉर्पोरेट्स उनके जो हैं क्लाइंट्स हैं और कॉर्पोरेट से उनको बिजनेस मिलता है, जो कि लार्ज अमाउंट में ऑपरेट करती हैं चीज़ें, है ना। जिसका नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिवेंटिव फोकस। ये एक रियल डिफरेंशिएटर है इस कंपनी की, सबसे बड़ी USP है। आपको समझना होगा कि कंपनी जो है ये कह ही नहीं रही है कि आप बीमारी होगी चलो हम आपको कवरेज देते हैं, हम आपका ठीक करते हैं। कंपनी कह रही है कि आपको बीमारी होने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि बीमारी हो सकती है, थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत है आपके लाइफस्टाइल को लेकर, आपके ब्लड टेस्ट या जो भी आपकी रिपोर्ट्स आएंगी उनको लेकर। दैट्स हाउ दिस कंपनी इज ग्रोइंग। ओके, मोस्ट प्लेयर्स जो इस इंडस्ट्री में डील करते हैं वो इलनेस को ट्रीट करते हैं, इकिन केयर जो है उसको प्रिवेंट करने के ऊपर काम करती है, जागरूकता फैलाती है। और वाजिब भी है कि एक पर्सनल एक्सपीरियंस से आता है, माता पिता ठीक नहीं थे, उसके बाद जाकर के ये चीज़ें इन्हें हिट करी जब, तो उन्हें लगा कि लेट्स फिक्स दिस प्रॉब्लम ऑन अ बिगर स्केल, एंड दैट्स हाउ ये कंपनी जो है अपनी एक जगह बना पा रही है। तो ये है जी इस कंपनी की USP, जो सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि इंटीग्रेटेड प्लस प्रिवेंटिव प्लस डेटा ड्रिवन हेल्थ केयर। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बावजूद, इतने सारे प्लेयर्स होने के बावजूद भी एक गैप देखा गया और उसको फिक्स किया गया, एंड ये हमेशा होता है, गैप हमेशा रहेगा, याद रखिएगा। कुछ भी ऐसे अलग से नहीं आता चांद पे से, हमें यहीं पर देख के देखना होता है कि क्या नया दिया जा सकता है। दैट्स हाउ सब लोग ग्रो कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ी स्पेशलिटी होती है फाउंडर की या एक एंटरप्रेन्योर की, कि वो इस तरह की चीज़ें देख पाते हैं। अब लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। आशा करता हूँ यहाँ तक जितनी भी बातें आपको बताइए पसंद आई है। सो स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

फील वर्ल्ड फील लाइव। मैं हूं आरजे सागर, शो है पर चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आज हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो कंपनी है इकिन केयर, मेडटेक में डील करती है। अब बात करेंगे कंपनी के की ड्राइवर्स की। इस कंपनी के ग्रोथ के लिए जो की ड्राइवर्स काम कर रहे हैं, पहला उसमें है राइजिंग लाइफस्टाइल डिजीज, डायबिटीज, बीपी, स्ट्रेस भारत में बढ़ रहे हैं और ये बात हम सब लोग जानते हैं बखूबी। सेकंड है कॉर्पोरेट अवेयरनेस। कंपनीज अब ज्यादा जागरूक हो गई हैं कि उन्हें अपने एम्प्लॉयज की हेल्थ का ध्यान रखना होगा, और इनफैक्ट लोग भी अब उन कंपनीज को प्रेफर करने लगे हैं जॉब के लिए कि जहां पर हमारी हेल्थ को प्रायोरिटाइज किया जाता है। उसमें कंपनी का भी फायदा है, एम्प्लॉय का भी फायदा है। कंपनी का भी फायदा है कि प्रोडक्टिविटी अच्छी आएगी, एम्प्लॉयज का भी फायदा है कि हम ठीक रहेंगे। थर्ड, कॉस्ट रिडक्शन। प्रिवेंटिव केयर इक्वल्स टू लोअर इंश्योरेंस कॉस्ट। बहुत जरूरी है बात, इलाज का खर्चा बहुत भारी होता है, बहुत महंगा पड़ता है, प्रिवेंटिव केयर जरूरी है इसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है टेक इंटीग्रेशन, AI प्लस डेटा प्लस टेलीमेडिसिन। स्केलेबल मॉडल बनता है डेफिनेटली, ठीक है, इन तीनों चीजों से, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी आपको मिल जाती है, एडवांसमेंट आपको मिल जाती है, तो उससे आपको अर्ली डिटेक्शन करने में आसानी भी होती है, प्लस आपको बहुत ज्यादा कहीं परेशान होकर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने डेटा के आधार पर भी बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। देन नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है इनका, 40,000 से ज्यादा प्रोवाइडर्स हैं इनके पास, तो एक बहुत स्ट्रांग इकोसिस्टम इस कंपनी ने अपना बनाया है। सो दैट्स हाउ दिस कंपनी इज ग्रोइंग, दीज आर द की ड्राइवर्स ऑफ दिस कंपनी। फिलहाल इसी नोट पर वक्त है अपने शो को यहाँ पर कंक्लूड करने का। आज हमने आपको एक और केस स्टडी बताई इकिन केयर, इस कंपनी का नाम है। हमने यहाँ पर जाना कि कैसे एग्जिस्टिंग मार्केट होते हुए, एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के होते हुए भी इस कंपनी ने ग्रो किया। अब आपको आज का शो कैसा लगा मुझे बताइए 8010781078 पे। फिलहाल इसी नोट पर दोस्तों चलते हैं अपने शो को यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो, लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए। दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

जब तक वासना है, कामना है, क्या तभी तक साधना है? स्वभावतः रोग है तो औषधि है, स्वास्थ्य आया औषधि व्यर्थ हुई। स्वास्थ्य में भी कोई औषधि लिए चले जाए तो घातक है। जो रोग को मिटाती है वही रोग को फिर पैदा करेगी। मार्ग की जरूरत है, मंजिल दूर है, तब तक मंजिल आ जाए फिर भी तो जो चलता चला जाए तो जो चलना मंजिल के पास लाता था वही फिर दूर ले जाएगा। और प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है, बीमारी तो छूट जाती है, औषधि पकड़ जाती है। क्योंकि मन का तर्क कहता है जिसने यहां तक पहुंचाया उसे कैसे छोड़ दें, जो इतने दूर ले आया।

उसे कैसे छोड़ गए, जिसके सहारे इतना कुछ पाया, कहीं उसके छोड़ने से वो खो न जाए। तो अनेक यात्री मंजिल के पास पहुंचकर भी भटक जाते और बहुत सी नावें किनारे के पास आकर टकराती हैं और डूब जाती। मझधार में बहुत कम लोग डूबते, किनारे पे बहुत लोग डूबते। यात्रा पूरी उतनी दुर्गम नहीं है जितनी पहुंच जाने के बाद चलने की जो लंबी आदत है उसको छोड़ना दुर्गम हो जाता है। चित्त में अशांति है तो तुम ध्यान करते हो, धीरे धीरे अशांति विदा होगी, शांति निर्मित हो जाएगी। फिर ध्यान को मत पकड़ के बैठ जाना, नहीं तो ध्यान ही अशांति पैदा करने का कारण बनेगा। फिर ध्यान भी जाना चाहिए। अंधेरे में भटकते हो, किसी कल्याण मित्र का हाथ पकड़ा, फिर रोशनी आ जाए, सुबह हो जाए, तो अब हाथ को पकड़े ही मत रह जाना। हाथ का पकड़ना भी आना चाहिए, छोड़ना भी आना चाहिए। साधन का उपयोग करना है, साधन की गुलामी नहीं अख्तियार कर लेनी। राह पे चलना जरूर है, पर राह सिर्फ राह है, इसे जानते रहना है। बहुत विधियां हैं, जो काम आ जाए उसका उपयोग कर लो, लेकिन काम पूरा होते ही छोड़ देना, क्षण भर की देरी भी खतरनाक हो सकती है। क्योंकि जो खाली जगह छूट जाती है तुम्हारे भीतर, कहीं ऐसा न हो कि विधि व्यवस्था साधना उस खाली जगह में अड्डा जमा ले। तो ये तो ऐसे हुआ कि तुम्हारे सिंहासन पर दुश्मन ने कब्जा किया था, तुमने मित्रों का सांस लिया, उन्होंने दुश्मन को तो हटा दिया लेकिन खुद सिंहासन पर विराजमान हो गए। तुम जहां थे वहीं रहे, शायद पहले से भी बुरी हालत में हो गए। दुश्मन हो तो सिंहासन छीन लेना आसान भी, मित्रों से कैसे छीनोगे? अपने हैं, मित्र हैं, इनके द्वारा ही तो सिंहासन मिला है, इनसे कैसे छीनोगे? इसलिए सदगुरु की परिभाषा समझो। सदगुरु की परिभाषा यह है कि जो एक क्षण भी जरूरत से ज्यादा तुम्हारे हाथ को न पकड़े रहे। तुम तो पकड़ना चाहोगे, तुम तो बड़े उलझाव में हो। जब पकड़ने की जरूरत होती तब तुम पकड़ने से डरते हो, जब जरूरत है कि तुम हाथ पकड़ लो तब तुम हजार उपाय करते हो न पकड़ने के, तुम्हारा अहंकार बाधा बनता है। तुम भागते हो, तुम बचते हो, तुम छिपाव करते हो। जब जरूरत थी पकड़ लेने की, झुक जाने की, समर्पित हो जाने की, तब तुम अकड़े खड़े रहते हो, बामुश्किल तुम झुकते हो, बड़ी कठिनाई से तुम हाथ पकड़ते हो। जब जरूरत थी तब पकड़ते में तुम बाधा डालते हो, फिर जब घड़ी आएगी छोड़ने की तब तुम छोड़ने में बाधा डालोगे। तब तुम छोड़ोगे नहीं, तब तुम जिद बांध के बैठ जाओगे, तब तुम कहोगे ये छोड़ने वाला हाथ नहीं है, इसी ने पहुंचाया, ये चरण अब हम कभी ना छोड़ेंगे। सदगुरु वही है, जब तुम पकड़ना नहीं चाहते पकड़ा दे, और जब तुम छोड़ना नहीं चाहते तब छोड़ा दे। साधना का कोई अर्थ नहीं है। फिर कांटे की तरह है साधना, एक कांटे को निकाल लिया, दूसरे को भी साथ ही फेंक दिया। तुम कोई सदा सदा के लिए साधक मत बन जाना, मार्ग की बात है, उपाय है, साधन है, साधन ही है। साध जैसे ही करीब आने लगे वैसे ही साधन से अपने हाथ छोड़ाना शुरू कर देना। वाहन पर सवार होते हो, मंजिल करीब आ जाती है, उतर जाते हो। प्रकृति का नियम यही है एक, कि अति का होगा ही विध्वंस। एक अति है वासना कि खो गए, भटक गए संसार में, व्यर्थ में, बाजार में। फिर एक दूसरी अति है कि बचाने में लग गए अपने को संसार से, व्यर्थ से, बाजार से। ये दोनों अतियां हैं।

इन दोनों में कहीं भी समत्व नहीं है। जरूरी है साधना, क्योंकि एक अति पर चले गए तो दूसरी अति पर जाना जरूरी हो गया, लेकिन जैसे ही एक अति कट जाए दूसरी अति भी तत्क्षण छोड़ देना, अन्यथा घड़ी के पेंडुलम की तरह घूमते रहोगे, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं जाते रहोगे। रुक जाना है कहीं बीच में। देखा, जब घड़ी का पेंडुलम बीच में रुक जाता है घड़ी रुक जाती। घड़ी यानी समय, जहां तुम संतुलित हुए अति गई वही समय के बाहर हुए। जब तक तुम डोलते रहते हो एक कोने से दूसरे कोने, तब तक घड़ी भी टिक टिक चलती रहती, तब तक समय चलता रहता, तब तक संसार चलता रहता। तुम्हारा मन का पेंडुलम ही सारे संसार को चलाया जाता है। तुमने कभी किसी नट को देखा रस्सी पर चलते? पूरे समय बाएं से दाएं, दाएं से बाएं होता रहता है। जब बाएं झुकता है तो एक घड़ी आ जाती है कि अगर और थोड़ा झुका तो गिरेगा, तत्क्षण दाएं झुक जाता है, ताकि बाएं की अति से जो भूल हुई जा रही थी वो दाएं झुकने से पूरी हो जाए। लेकिन तब फिर दाएं में ऐसी घड़ी आ जाती है कि अब जरा और झुका कि गिरा, फिर तत्क्षण बाएं झुक जाता है, ताकि जो अति हो रही थी उसका संतुलन हो जाए। ऐसे झुकता है दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, और इसी भांति किसी तरह अपने को रस्सी पर बनाए रखता है। लेकिन जब नीचे उतर आया फिर थोड़ी दाएं बाएं झुकता रहेगा, फिर तो बैठ जाएगा, फिर तो झुकेगा ही क्यों, फिर तो खड़ा हो जाएगा। भूमि मिल गई, अब कोई रस्सी पर थोड़ी चल रहा है। संसार में चलना तनी हुई रस्सी पे चलने जैसा है। प्रतिक्षण तुम्हें झुकना ही पड़ेगा। अभी प्रेम, अभी घृणा, अभी सहानुभूति, अभी क्रोध, ये दाएं बाएं। मेरे पास प्रेमी आते हैं, वो पूछते हैं कैसे ये घटना घटे कि हम जिससे प्रेम करते हैं उस पर क्रोध ना करें। मैं कहता हूं ये ना हो सकेगा, इसके लिए तो संसार की रस्सी से उतरना पड़ेगा। ये तो संसार की रस्सी पर तुम प्रेम करोगे तो क्रोध करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रेम में ज्यादा झुके गिरने का डर हो जाता। क्रोध की तरफ मुड़े संभल गए, क्रोध में भी ज्यादा झुकोगे तो डर हो जाएगा, तो फिर पत्नी के लिए फूल खरीद लाए, आइसक्रीम ले आए, फिर थोड़ा प्रेम किया, फिर खतरा पैदा हो जाता है। तो जिससे तुम प्रेम करोगे उससे ही घृणा भी करते रहोगे, और जिससे तुम्हारे मन का लगाव है उससे ही तुम लाग भी रखोगे, उससे ही दुश्मनी भी चलती रहेगी। पश्चिम में एक बहुत अनूठी किताब कुछ वर्षों पहले प्रकाशित हुई, उस किताब का नाम है द इंटीमेट इनिमी। वो पति पत्नी के संबंधों के संबंध में किताब है, इंटीमेट इनिमी। लेकिन ये तो सूझ इसको अभी अभी आई। उर्दू में शब्द है, हिंदी में भी उपयोग होता है, खसम। खसम का मतलब होता है पति, और खसम का मतलब शत्रु भी होता है। मूल अरबी में तो शत्रु होता है, कैसे शत्रु से पति हो गया बड़े आश्चर्य की बात है, कोई जोड़ नहीं दिखाई पड़ता। मूल शत्रु है फिर पति कैसे हो गया? जरूर लोग पकड़ गए होंगे बात, सूत्र समझ में आ गया होगा, ख्याल में आ गया होगा कि जिससे प्रेम है उससे दुश्मनी भी है। जहां प्रेम है वहां घृणा है, जहां लगाव है वहां विराग भी, जहां जहां राग है वहां वहां वैराग्य आता ही रहेगा। तुमने कभी ख्याल किया कितनी बार में घर से भागने का मन हो जाता, छोड़ो पत्नी बच्चे, मगर स्टेशन भी न पहुंच पाओगे कि लौट आओगे। इसको कोई स्थायी बात मत समझ लेना, ये कोई स्थायी भाव नहीं है, ये तो कई बार आता है। कितनी बार आदमी मरना नहीं चाहता। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसा आदमी खोजना कठिन है जिसने जिंदगी में कम से कम 10 बार आत्मघात का विचार न किया हो। ये जरूरी है, जिंदगी अति हो जाती है, मरने का भाव करके संभाल लेते, जीवन बोझिल हो जाता, भारी हो जाता। मरने की कल्पना से ही राहत मिल जाती, मरता कौन? राहत मिल गई फिर जिंदगी में लग जाते, ये तो जिंदा रहने का ही ढंग है।
तो कोई अगर मरने वगैरह की बातें करे तो बहुत चिंतित मत होना, कहना ठीक है मरो। मैं एक घर में रहता था कुछ दिनों तक, नया नया मेहमान था उस परिवार में, कुछ उस परिवार का रीति रिवाज मुझे पता न था। एक दिन मैंने रात को कोई 11:30 बजे पति पत्नी में झगड़ा सुना, तो मैं चुप ही रहा, मेरे बोलने का कोई कारण नहीं बीच में। लेकिन बात यहां तक बढ़ गई कि पति ने कहा कि मैं अभी जाके मर जाऊंगा, तो थोड़ा मैं चिंतित हुआ कि अब मेहमान भी हूं तो भी क्या हुआ। फिर भी मैंने कहा कि अभी जाने दो, तब देखूंगा। वो गई भी, जब उनको मैंने घर के बाहर भी निकलते देख लिया तो मैं भागा। मैंने उनकी पत्नी से कहा कुछ करना पड़ेगा, उसने कहा फिक्र न करो, अभी 5-7 मिनट में वापस आते। वो 5-7 मिनट में वापस भी आ गए। सुबह मैंने उनसे पूछा कि कहां तक गए थे, उन्होंने कहा पता नहीं क्या मामला, कई दफा ऐसा हो जाता है, गुस्से में चला जाता हूं, रेल की पटरी पास ही है, बस वहां तक पहुंचा कि सब ठीक हो जाता है, फिर वापस लौट आता हूं। जीने का हिस्सा है। ऐसे हम अपने को धोखा दे लेते कि चलो मरे जाते, अब तो बात खत्म हुई। मरने के ख्याल से ही जीवन का बोझ क्षण भर को नीचे उतर गया, फिर उठा के रख लेंगे सिर पर, कहीं कोई इतने जल्दी मरा जाता है। तुमसे मैं कहता हूं जो मर भी जाते हैं, कुछ लोग जल्दबाजी कर लेते हैं मर जाते हैं, अगर वो तुम्हें मिल जाए तो वो पछताते मिलेंगे, वो कहेंगे जरा जल्दी कर दी, क्षण भर और ठहर जाते। कुछ लोग तेजी में गुजर जाते, जल्दी कर लेते, क्षण भर में घट जाए तो घट जाए, जरा विलंब हो जाए तो तुम वापस लौट आओगे। ये मन का ढंग है कि जीवन आशा का उल्लास, कि जीवन आशा का उपहास, कि जीवन आशा में उद्गार, कि जीवन आशाहीन पुकार, दिशा दिवा निसी की सीमा पर बैठ, निकालूं भी तो क्या परिणाम, व्यस्तता आता है हर प्रात, बिलखती जाती है हर शाम। सुबह हंसती हुई मालूम होती है, सांझ रोती हुई मालूम होती है। द्वंद नहीं है, लेकिन सुबह हंसती हुई मालूम हुई इसलिए सांझ रोती हुई मालूम होती है। सुबह मुस्कुराती आती है, वही मुस्कुराहट सांझ आंसू बन जाती है। ये जीवन की सहज व्यवस्था है। आशा निराशा, उजाला अंधेरा, मित्रता शत्रुता, ऐसे हम नट की तरह रस्सी पर सधे रहते। वासना साधना, भोग योग, ऐसे हम रस्सी पर सधे रहते। जानना तो तुम उस दिन भूमि मिली जिस दिन न भोग रह जाए न योग रह जाए, न वासना रह जाए न साधना रह जाए, न प्रेम रह जाए न घृणा रह जाए, न क्रोध रह जाए न अक्रोध रह जाए, सारे द्वंद खो जाए तो तुम उतर आए। वही है मुक्ति की भूमि, वही है मुक्ति का आकाश। अब तुम रस्सी पर नहीं हो, अब संभालने की कोई जरूरत ही नहीं, अब गिरने का कोई खतरा ही नहीं है, संभालेगा कोई क्यों। संभालते तो हम तब हैं जब गिरने का खतरा होता है। स्वर्ग और नर्क जब तुम दोनों से नीचे उतर आए तब है मोक्ष की भूमि। स्वर्ग और नर्क के बीच खिंची है रस्सी, उसी रस्सी पे चल रहा संसार। साधना निश्चित ही समाप्त हो जाती है वासना के साथ। साधना और वासना जुड़वा बहने, सुनकर तुम्हें हैरानी होगी, कोई साधु ये बात तुमसे ना कहेगा, इसलिए साधु मुझसे नाराज। साधना वासना जुड़वा बहने, उनकी शक्लें बिल्कुल एक जैसी है, वे साथ ही साथ पैदा हुई हैं और साथ ही साथ मर जाती है। साधना की जरूरत को कोई बड़ा सौभाग्य मत समझ लेना, कोई दवाई की बोतल को सिर पर लेके शोभा यात्रा मत निकाल देना, वो केवल रोग की खबर है। तुम्हारे घर में चिकित्सक रोज रोज आता है, इससे तुम ऐसा मत समझ लेना कि तुम बड़े महिमाशाली और सौभाग्यशाली हो। एक अत्यंत हिंदू बुद्धि के व्यक्ति मुझे मिलने आए थे, कहने लगे भारत भूमि बड़ी सौभाग्यशाली है। मैंने कहा कारण,
कहने लगे देखो हिंदुओं के 24 अवतार, जैनों के 24 तीर्थंकर, बुद्धों के 24 बुद्ध सभी यहाँ हुए। मैंने कहा ये तो दुर्भाग्य मालूम होता है, इतने तीर्थंकर, इतने अवतार, इतने बुद्ध पैदा होते हैं, इतने चिकित्सक आते हैं, बीमार की हालत बड़ी बुरी, साफ है कि बड़ा दुर्भाग्य होगा। इतने बार चिकित्सक आते हैं और चिकित्सकों की जरूरत बनी ही रहती, इसे तुम सौभाग्य का मुकुट मत समझो। वो थोड़े चौंके, उन्हें कभी इसका विचार भी ना आया होगा। वो कहने लगे कि बात में तो थोड़ा अर्थ मालूम होता है, अगर देश सच में ही धार्मिक हो तो अवतारों की क्या जरूरत है। मैंने उनसे कहा अपनी गीता ही उलट कर देखो, कृष्ण कहते हैं जब अंधेरा होगा और धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और साधु पीड़ित किए जाएंगे तब मैं आऊंगा। साफ है कि कृष्ण वहीं आएंगे जहां अधर्म होगा, और अगर यहां आए तो अधर्म होना चाहिए। इसको तुम धार्मिक देश मत कहना, और मुल्कों में नहीं आए, जरूर हमसे बेहतर हालत में होंगे। चिकित्सक की जरूरत रोगी को है, अवतार की जरूरत अधार्मिक को है, दिए की जरूरत अंधेरे में, सुबह होते ही हम दिया बुझा देते हैं, क्या जरूरत। इसलिए तो दिवाली हम अमावस की रात में मनाते हैं, जब गहन अंधकार होता है तो दियों के अवतार पंक्तिबद्ध फैला देते। सबसे अंधेरी रात वर्ष की जो है उस वक्त हम सबसे ज्यादा दिए जलाते। दिन में कोई दिवाली मनाएगा उसे हम पागल कहेंगे। अगर मैं ध्यान करूं तो मैं पागल हूं, अगर तुम ध्यान ना करो तो पागल हो। मुझसे लोग आ जाते हैं पूछने का आप ध्यान कब करते हैं, मैंने कहा मैं कोई पागल हूं, मेरा दिमाग खराब हुआ है। वो कहते थे फिर हमें क्यों समझाते हो, तुम्हें समझाता हूं कि अगर तुम ना करोगे तो तुम पागल हो। बात सीधी है उल्टी लगती है, जरा भी उल्टी नहीं। पहुंच गए, मंजिल समाप्त हुई, चलना क्या है, पा लिया, खोज बंद हुई, खोजना क्या है। साधना का उपयोग करना, यही उस शब्द का मतलब है। साधना का अर्थ साधन, साध्य नहीं। जब तुम सिद्ध हो जाओगे साध्य मिल जाएगा, साधना भी छूट जाएगी। इसे याद रखना, मोह मत बनाना साधना से। रामकृष्ण ने बहुत दिनों तक भक्ति की साधना की, भक्ति की साधना तो की, लेकिन मन में कहीं एक पीड़ा खलती रही, और वो पीड़ा ये थी कि अभी अद्वैत का अनुभव नहीं हुआ। आंख बंद करते हैं महिमामयी मां की मूर्ति खड़ी हो जाती, लेकिन एकांत, परम एकांत जिसको महावीर ने कैवल्य कहा, उसका कोई अनुभव नहीं हुआ। दूसरा तो मौजूद रहता ही, परमात्मा सही, लेकिन दूसरा तो दूसरा ही। और जहां तक दो है वहां तक संसार है, जहां तक द्वंद है, मैं हूं तू है, वहां तक संसार है। तो रामकृष्ण बड़े पीड़ित थे, फिर उन्हें एक सन्यासी मिल गया, अद्वैत का साधक सिद्ध, तोतापुरी उस सन्यासी का नाम था। रामकृष्ण ने पूछा मैं क्या करूं, अब कैसे मैं इस द्वंद के पार जाऊं। तोतापुरी ने कहा बहुत कठिन नहीं, एक तलवार उठा के मां के दो टुकड़े कर दो। रामकृष्ण तो कब गए, रोने लगे, मां के और टुकड़े, और ये आदमी कैसी बात कर रहा है, धार्मिक होके। परम धर्म इसी भाषा में बोलता है, परम धर्म तलवार की भाषा में बोलता है। जीसस ने कहा है मैं तलवार लाया हूं, मैं शांति लेकर नहीं आया हूं, तलवार लेकर आया हूं, तोड़ दूंगा सब, टूटने पर ही तो शांति होगी। तोतापुरी ने कहा इसमें आसन क्या है। रामकृष्ण ने कहा तलवार कहां से लाऊं वहां। तोतापुरी हंसने लगा, उसने कहा जब मां को ले आए कहां से लाए, कल्पना का ही जाल है, बड़ी मधुर है कल्पना, बड़ी प्रीतिकर, पर तुमने ही सोचा, माना, रिझाया, बुलाया, आह्वान किया, कल्पना को सजाया हजार हजार रंगों में, वही कल्पना साकार हो गई। तुमने ही उसमें प्राण डाले, तुमने ही अपनी ज्योति उसमें डाली, तुमने ही उसे ईंधन दिया, अब ऐसे ही एक तलवार भी बना लो, काट दो। रामकृष्ण आंख बंद करते कब जाते,
जैसे ही मां सामने खड़ी होती हिम्मत ही न उठती तलवार, और मां परमात्मा को कोई काटता तलवार से, आंख खोल देते घबरा के कि नहीं ये ना हो सकेगा। तो तोतापुरी ने कहा ना हो सकेगा तो बात ही छोड़ दो, फिर केवल लिखी मैं चला, मेरे पास समय खराब करने को नहीं, करना हो तो ये आखिरी मौका है, और ये बचकानी आदत छोड़ो। ये क्या मचा रखा है रोना आंसू बहाना, उठा के एक तलवार हिम्मत से दो टुकड़े तो कर। रामकृष्ण ने कहा मेरी कुछ सहायता करो, लगती है बात तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन बड़े भाव से सजाया है, बड़े भाव से ये मंदिर बनाया है, जीवन भर इसी में गंवाया है, कि मुझसे होता नहीं। तोतापुरी ने कहा तो फिर मैं तेरी सहायता करूंगा। वो एक कांच का टुकड़ा उठा लाया और उसने कहा कि जब तेरे भीतर मां की प्रतिमा बनेगी तो मैं तेरे माथे पर कांच से काट दूंगा, जब मैं काटूंगा तुझे पीड़ा हो, खून की धार बहने लगे, तब तू भी एक हिम्मत करके भीतर भी मां को उठा के तलवार काट देना, बस फिर मैं ना रुकूंगा, करना हो कर ले। अब ये जाने लगा तो बेचारे रामकृष्ण को करना पड़ा। इस आदमी ने उठा के उनके माथे पर कांच के टुकड़े से लकीर काट दी, खून बहने लगा। जैसे उसने लकीर काटी, रामकृष्ण ने भी हिम्मत की और तलवार उठा के भीतर कल्पना को खंडित कर दिया। कल्पना के खंडित होते कैवल्य उपलब्ध हो गया, लेकिन बड़ी अड़चन हुई, बड़े दिन लगे। साधन से भी आदमी की आसक्ति बन जाती, तुम अगर प्रतिमा बना लेते हो मन में तो उससे छोड़ना मुश्किल हो जाए, तुमने अगर ध्यान किया ध्यान छोड़ना मुश्किल हो जाएगा, प्रार्थना की प्रार्थना छोड़नी मुश्किल हो जाएगी, और ध्यान रखना छोड़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये उपचार थे, इन्हें किसी कारण से पकड़ा था, इनके पकड़ने की शर्त ही खो गई। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई नया मकान बनाता है तो एक ढांचा खड़ा करता है, ढांचे के सहारे मकान बना लेता है, फिर मकान बन जाता तो ढांचे को गिरा देता है। अब तुम्हारा कहीं ढांचे से मोह हो जाए और तुम ढांचे को न गिराओ तो तुम्हारा भवन रहने योग्य न हो पाएगा, ढांचा रहने न देगा। जब भवन बन गया तो ढांचा गिरा देना, जब सीढ़ी चढ़ गए तो सीढ़ी छोड़ देनी। इसलिए पहले से ही अगर ध्यान रहे इस बात का कि साधना को उपयोग तो कर लेना है लेकिन साधना के हाथ में मालिकियत नहीं दे देनी, तो शुभ होता है। दूसरा प्रश्न, संसार को बाजार को छोड़कर अपने को पालो, यह आपने कहा, कृपया बताएं कि प्रेम संसार के बाजार में है या अपने भीतर, और क्या प्रेम का क्षेत्र भीतर और बाहर दोनों तरफ नहीं, समझना पड़े। काम तो बिल्कुल बाहर है, कामना बाहर की तरफ भागती हुई ऊर्जा का नाम है, जिसे भीतर की याद भी नहीं रही, जिसे याद भी नहीं रही कि भीतर जैसा भी कुछ है। कामना बाहर जाती हुई बहिर्मुखी ऊर्जा है, साधना प्रार्थना भक्ति कोई नाम दो, भीतर जाती ऊर्जा है, जिसे याद भी न रहा कि बाहर है, जिसे ख्याल भी न रहा कि बाहर जैसी भी कोई चीज है। कामना बाहर, प्रार्थना भीतर, दोनों अतीय, प्रेम दोनों के मध्य में, दोनों के बीच में, जैसे कोई अपनी दहली पे खड़ा हो, न बाहर जा रहा है न भीतर जा रहा है, छिटक गया हो, जैसे कोई दोनों तरफ देख रहा हो, बीच में खड़ा हो। प्रेम मध्य बिंदु है प्रार्थना और कामना के बीच में, काम हार गया है, प्रार्थना अभी पैदा नहीं हुई, कामना व्यर्थ दिखाई पड़ने लगी, सार्थक का अभी उदय नहीं हुआ, यात्रा जैसे थम गई। प्रेम एक ठिठकी अवस्था है, बाहर जाने जैसा नहीं लगता, हार गए वहां, राख ही राख पाई, मुंह का स्वाद सिर्फ बिगड़ा और कुछ भी ना हुआ।
और भीतर का अभी कुछ पता नहीं। एक बात पक्की हो गई, बाहर व्यर्थ हो गया और भीतर के द्वार अभी खुले नहीं। बीच में ठिटक के खड़ा हो गई जो ऊर्जा है, वही प्रेम है। अगर तुमने जल्दी ना की प्रेम को प्रार्थना बनाने की, तो फिर कामना बन जाएगा। प्रेम के क्षण जब भी आए तो दो ही संभावनाएं, ऊर्जा ज्यादा देर तक ठिटकी ना रहेगी, क्योंकि ठिटका होना इस जगत की व्यवस्था नहीं। कोई ऊर्जा ठहरी नहीं रह सकती, या तो जाएगी बाहर या जाएगी भीतर, जाना पड़ेगा। ऊर्जा यानी गति, गत्यात्मकता। तो एक क्षण को ठहर सकती है, उस ठहरे क्षण का उपयोग कर लो तो प्रेम भक्ति बन जाती है, प्रार्थना बन जाता है। अगर उपयोग न करो तो प्रेम प्रेम फिर कामना बन जाता है, फिर वासना बन जाता है। इसलिए प्रेमी की बड़ी पीड़ा है, और पीड़ा यही है कि बहुत बार ठिटक आ जाती है और फिर ऊर्जा बाहर चली जाती है। प्रेम के बहुमूल्य क्षण का उपयोग करना बहुत थोड़े लोग जानते हैं। जो प्रेम के बहुमूल्य क्षण का उपयोग कर लेते हैं, उनके भीतर प्रार्थना का उदय हो जाता है। अब इसे ख्याल लेना, काम अर्थात बाहर, प्रार्थना अर्थात भीतर, प्रेम यानी दोनों के मध्य में, और चौथी अवस्था है दोनों के पार। चौथी अवस्था यानी परमात्मा। इसलिए जीसस ने कहा है कि प्रेम जैसा है परमात्मा। ऐसा नहीं कहा कि ठीक प्रेम ही बस परमात्मा है, नहीं तो परमात्मा की बात की भी उठाने की जरूरत न रहे। प्रेम जैसा है एक स्वभाव, एक समानता प्रेम और परमात्मा में है। प्रेम दोनों के मध्य में है, परमात्मा दोनों के पार है। प्रेम बाहर और भीतर के बीच में है, परमात्मा बाहर और भीतर के ऊपर है। इस जीवन के हमारे जितने अनुभव हैं, उनमें प्रेम सर्वाधिक सूचक है परमात्मा दशा का। प्रेम ठिटकता है, परमात्मा ठहरा हुआ है। प्रेम क्षण भर को परमात्मा बनता है, परमात्मा सदा को प्रेम है। प्रेम दो दौड़ों के बीच में एक थोड़ा सा पड़ाव है, थोड़ी सी राहत, थोड़ा सा विश्राम, विराम चिन्ह। परमात्मा पूर्ण विराम है दोनों के पार। परमात्मा की अवस्था में ना तो कुछ बाहर है, फिर ना कुछ भीतर है। बाहर और भीतर दोनों परमात्मा में। परमात्मा के बाहर कुछ भी नहीं है, इसलिए परमात्मा के भीतर कुछ है कहने का कोई अर्थ नहीं। परमात्मा ही है, बस परमात्मा है। बाहर भीतर का कोई अर्थ नहीं रह जाता। उसके बाहर कुछ नहीं है तो भीतर कैसे कुछ होगा, ये द्वंद्व गिर जाता है। प्रेम में भी ये द्वंद्व क्षण भर को ठहरता है, इसलिए प्रेम में थोड़ी सी झलक परमात्मा की है। बस इस जगत में परमात्मा की झलक देने वाली घड़ी प्रेम की घड़ी। इसलिए तुम चकित होगे अगर मैं ये कहूं कि प्रार्थना भी परमात्मा के उतने निकट नहीं है जितना प्रेम, क्योंकि प्रार्थना फिर एक अति हो गई। बाहर से छूटे तो भीतर को पकड़ लिया, बाहर से भागे तो भीतर को पकड़ लिया। जरूरी है, भीतर को पकड़ना पड़ेगा बाहर से भागने के लिए। एक अति से बचने के लिए दूसरी अति पकड़नी पड़ेगी, और अभी दोनों के बीच में तुम ठहर ना सकोगे। दोनों के बीच में ठहरने का तो उपाय दोनों के पार हो जाना है, लेकिन जब तुम पार हो जाओगे तब तुम पाओगे, अरे प्रेम का जो क्षण भर के लिए विराम आया था, परमात्मा वैसा ही है, शाश्वत होकर, सनातन होकर। प्रेम में जिसकी बूंद मिली थी, परमात्मा उसी का सागर है। वासना में भी तुम हो, प्रार्थना में भी तुम हो। वासना में दृष्टि बाहर की तरफ जा रही है, प्रार्थना में दृष्टि भीतर की तरफ जा रही। प्रेम के क्षण में तुम नहीं होते, पर क्षण बड़ा छोटा है, शायद तुम पकड़ भी ना पाओ।
इतना छोटा है, आणविक है, तुम्हारी पकड़ से भी चूक जा सकता है। तो या तो तुम वासना को प्रेम कहते रहते हो, कामना को प्रेम कहते रहते हो जो प्रेम नहीं, या फिर अगर बदले तो प्रार्थना को भक्ति को प्रेम कहने लगते हो। लेकिन प्रेम दोनों के बीच का बड़ा छोटा सा विराम है। ऐसा ही समझो एक श्वास भीतर जाती फिर श्वास बाहर आती। तुमने ख्याल किया भीतर जाने और बाहर आने के बीच में क्षण भर को श्वास कहीं भी नहीं जाती, पर क्षण बड़ा छोटा है। ख्याल करना उस पर, श्वास भीतर गई, छोटा सा विराम है, तब ना तो भीतर जा रही न बाहर जा रही, फिर बाहर गई, फिर छोटा सा विराम है, न तो अब बाहर जा रही न भीतर जा रही। इस छोटे से विराम को जिसने पकड़ लिया वही प्रेम के विराम को भी पकड़ने में सफल हो पाएगा। विज्ञान भैरव तंत्र में इस विधि को बड़ा मूल्य दिया गया है। जब श्वास न बाहर जाती न भीतर, जब सब ठहर गया होता है, उसमें ही डूब जाओ, वहीं से तुम द्वार पालोगे परमात्मा का। प्रेम भी ऐसी ही घड़ी है, कामना बाहर जाती है, प्रार्थना भीतर जाती है। प्रेम ऐसी घड़ी है जब तुम न बाहर जाते न भीतर जाते, और मजा यही है कि जब तुम न बाहर जाते न भीतर जाते तो तुम हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम केवल जाने में हो सकते हो, ठहरने में नहीं हो सकते। जब तुम्हारी श्वास ठहर जाती है तब तुम नहीं होते, तुम मिट गए होते हो। अहंकार रह ही नहीं सकता वह, अहंकार के लिए गति चाहिए, अहंकार के लिए सक्रियता चाहिए, अहंकार के लिए कर्म चाहिए। कुछ हो तो अहंकार बच सकता है, कुछ भी ना हो रहा हो तो अहंकार कैसे बचेगा। अहंकार उपद्रव है, इसलिए अहंकारी शांत नहीं बैठ सकता। मेरे पास अहंकारी आ जाते वो कहते हैं ध्यान करना है, शांत बैठना है, लेकिन बैठ नहीं सकते शांत। अहंकारी शांत नहीं बैठ सकता क्योंकि उससे लगता है ये तो समय व्यर्थ गया, इतनी देर में तो कुछ अहंकार की पूंजी कमा लेते, कोई पद पा लेते, कहीं आगे बढ़ जाते, किसी को धोखा दे लेते, कुछ कर लेते, कुछ होता, ये तो बेकार गया। अहंकार के लिए ध्यान से ज्यादा व्यर्थ कोई चीज मालूम नहीं होती। कुछ व्यर्थ भी कर लेते तो भी कुछ किया तो, जुआ खेल लेते, ताश खेल लेते, किसी से बकवास कर आते, कुछ किया तो, थोड़ा साम्राज्य किसी तरह फैलाया तो, लेकिन ध्यान कुछ भी ना किया, खाली बैठ गए। अहंकार के लिए ध्यान एकदम व्यर्थ बात मालूम होती, इससे ज्यादा व्यर्थ कोई बात नहीं। पश्चिम में उन्होंने मजाक बना रखा है कि पूरब के लोग आंखें बंद करके अपनी नाभि को देखते रहते हैं, पता नहीं पागल क्या कर रहे हैं, कुछ करो। ध्यान है होने की अवस्था, अहंकार है करने की अवस्था। दो श्वासों के बीच में जब कुछ भी नहीं होता तब तुम भी नहीं होते। काम और भक्ति के बीच में जब विराम पड़ता है तब भी तुम नहीं होते। ये काल संध्या काल है, रात जब तुम सोने जाते हो, जागरण जा चुका, नींद आई नहीं, क्षण भर को फिर विराम आता है। जब तक तुम न तो कह सकते कि जागे हो, न कह सकते हो सोए हो, आधे आधे मध्य में खड़े, दहरी पर खड़े, बाहर जाना बंद है, बाजार नहीं है, भीतर अभी गए नहीं, बीच में खड़े। फिर संध्या काल आया, उसी संध्या काल में अगर डूब जाओ तो जो पाने योग्य है वो पा लिया जाता, जो होने योग्य है वो आदमी हो जाता है। जीवन में इन संध्या कालों को ही वास्तविक द्वार कहा, इसलिए हमने प्रार्थना को भी संध्या नाम दिया है। लोग कहते हैं संध्या कर रहे हैं, संध्या करने का अर्थ भी नहीं समझते। संध्या करने का अर्थ है किन्हीं दो अतियों के बीच में मध्य को खोज रहे, किन्हीं दो गतियों के बीच में विराम को खोज रहे। सूरज ढल गया, रात नहीं हुई,
प्रकाश जा चुका, अंधकार उतरने उतरने को है, बस जरा सी देर है, क्षण भर में चूक जाओगे। प्रेम का क्षण बहुत बारीक क्षण है, तुम श्वास से शुरू करो अगर प्रेम को पकड़ना हो। श्वास का अभ्यास करो, जहां श्वास ठहर जाती है वहीं अपनी आंखों को गड़ाओ और तुम बहुत चकित होगे। अगर तुम उस विराम को पकड़ने में सफल हो गए, श्वास ज्यादा देर तक ठहरी रहेगी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कई क्षण निकल जाएंगे, श्वास ठहरी रहेगी, कई मिनट भी निकल सकते हैं, कई घंटे भी निकल सकते हैं और श्वास ठहरी रहे। अगर तुम्हारा ठीक ठीक हाथ पड़ जाए विराम पर, अगर तुम्हारा संयोग सध जाए विराम से, तो तुम एक ऐसे पारलौकिक दशा में लीन हो जाओगे कि खबर ही न रहेगी कि श्वास लेनी, सब ठहर जाएगा। उस ठहरी दशा को ही हम समाधि सतोरी का क्षण कहते। जब ऐसी दशा तुम्हें स्वाभाविक हो जाए कि जब तुम्हारी मर्जी हो आंख बंद की और उतर गए, सीढ़ियां साफ हो जाएं, द्वार खुला रह जाए, तुम सिद्ध हो गए। फिर तुम बाहर जाओ तो भी तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम भीतर जाओ तो भी भीतर नहीं जा सकते, क्योंकि तुम खो गए। तुम ही ना बचे तो बाहर भीतर भी गया। अब तो जो बचा वही परमात्मा है। कुछ ये जाना कि मिलती थी ना राह, उस प्यारे का मार्ग ना मिलता था। कुछ ये जाना कि मिलती थी ना राह, बंद की आंखें तो रास्ता खुल गया। आंख का बंद हो जाना अर्थ क्या है? आंख तो तुम बहुत बार बंद करते हो, रास्ता कहां मिलता है? आंख तो तुम अभी बंद कर सकते हो, रास्ता कहां मिलता है? तो जरूर इस आंख से कुछ मतलब ना होगा। आंख तभी बंद होती है तुम्हारी जब कोई कामना नहीं रहती। प्रार्थना भी एक तरह की कामना है, वहां भी मांग जारी है। परमात्मा के मंदिरों में बैठे लोगों के प्रार्थना के बाद फैले हुए हाथ भी वासना के ही हाथ हैं। परमात्मा के सामने झुके हुए सिर भी वासना के ही झुके हुए सिर, कुछ मांग जारी है। अब बाहर का धन नहीं मांगते, भीतर का धन मांगते, मांग जारी है। जहां तक मांग जारी है वहां तक आंख खुली है। जहां तक तुम कुछ सोच रहे हो मिल जाए, वहां तक आंख खुली है। जहां तुमने सोचना छोड़ा कुछ मिलने को है, कुछ मिलने का सवाल ना रहा, तुम हो गए जैसे हो, बस उसमें डूब रहे, आंख बंद हो गई। फिर आंख खुली भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंख बंद हो गई। तुमने बुद्ध पुरुषों की मूर्तियां देखी, आंख न तो खुली है और न बंद है, अध खुली, अध खुली प्रतीकात्मक है। उसका अर्थ है न बाहर न भीतर, जरा सी खुली है, नीचे की सफेद पुतली दिखाई पड़ती। इसलिए योग में व्यवस्था है कि ध्यानी जब ध्यान करने बैठे तो इस तरह बैठे कि सिर्फ नाक का अग्रभाग दिखाई पड़ता रहे, बस। इसका मतलब हुआ आंख बस आधी खुली हो, आधी बंद हो, प्रतीकात्मक है। प्रयोजन केवल इतना है कि न तुम भीतर जाओ न तुम बाहर जाओ, बीच में संध्या काल में ठहर जाओ। प्रेम संध्या काल है। तुम कहते हो तुमने प्रेम जाना, प्रेम बहुत कम लोग जान पाते, क्योंकि जिन्होंने प्रेम को जान लिया उन्हें फिर परमात्मा को जानने में बाधा क्या रही? जिन्होंने प्रेम को जान लिया फिर कोई कारण समझ में नहीं आता कि वो परमात्मा को जानने से क्यों वंचित रह गए। ये हो नहीं सकता। जिनके हाथ में कुछ हीरे आ गए उनके हाथ में पूरी खदान ही आ गई। हीरे ही ना आए होंगे, कंकड़ पत्थरों को समझ लिया होगा हीरे, इसलिए खदान नहीं मिली। रामानुज के पास एक आदमी आया और उसने कहा कि मुझे परमात्मा से मिलना है। रामानुज ने उसे गौर से देखा और कहा कि तूने कभी किसी को प्रेम किया?
उस आदमी ने कहा इन झंझटों में मैं कभी पड़ा ही नहीं। छोड़ें ये बातें, मुझे तो प्रेम से क्या लेना देना, परमात्मा की खोज। लेकिन रामानुज ने कहा तू थोड़ा सोच, कभी किसी से किया हो प्रेम, किसी से भी किया हो, कोई याददाश्त तुझे आती हो? उसने कहा आप भी कहां की बात कर रहे हैं, मैं परमात्मा की बात करता हूं, आप दूसरा ही विषय छेड़ रहे हैं। मैं साधक पुरुष हूं, विरागी हूं, प्रेम वगैरह की झंझट में मैं कभी नहीं पड़ा। मगर रामानुज भी अजीब, वो फिर पूछे कि फिर भी तू सोच, क्योंकि सारी बात इसी पे निर्भर है। अगर तूने प्रेम का क्षण जाना हो तो फिर परमात्मा की शाश्वतता को भी जान सकेगा। अगर प्रेम की बूंद ही नहीं चखी तूने तो सागर को तू कैसे चखेगा, सागर में तू कैसे उतरेगा? लहर को तो पहचान, फिर सागर को पहचान लेंगे। उस आदमी की समझ में ना आया, वो शायद नाराज ही होकर चला गया। जिनको तुम विरागी कहते हो उनको समझ में कैसे आएगा? जिनको तुम महात्मा कहते हो वो तो प्रेम के दुश्मन बन के बैठे, उनका परमात्मा प्रेम के विपरीत है। मैं जिस परमात्मा की बात कर रहा हूं, प्रेम उसका द्वार है। तुम्हारे महात्मा जिस परमात्मा की बात कर रहे हैं वो परमात्मा है ही नहीं, वो सिर्फ प्रेम की शत्रुता है, वो केवल संसार के विपरीत दूसरी अति है। मैं जिस परमात्मा की बात कर रहा हूं वो अति नहीं है, वो बाहर और भीतर दोनों का अतिक्रमण है, वो परम संतुलन की अवस्था है, पूर्ण विराम है। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं कि आप भी परमात्मा की बात करते हैं, हमारे गुरु हैं वो भी परमात्मा की बात करते हैं, सब एक ही है। मैं उनको कहता हूं इतना आसान नहीं, सब एक ही है कहना इतना आसान नहीं, थोड़ा गौर से समझने की कोशिश करना। शब्द तो वही, मैं भी परमात्मा शब्द का उपयोग करता हूं, तुम्हारे गुरु भी करते होंगे, लेकिन तुम्हें देख के मैं कह सकता हूं कि तुम्हारे गुरु का परमात्मा और ही होगा। प्रेम से भयभीत, प्रेम के विपरीत, प्रेम का दुश्मन। तो तुम्हारे महात्माओं का परमात्मा उनकी इजाद है, असली नहीं। असली परमात्मा तो प्रेम के खेल को खेले चला जाता है, असली परमात्मा तो प्रेम के नए नए रूप रचे जाता है, असली परमात्मा तो कितने रंग लेता है, कितने रूप लेता है, कितने रंगों कितने रूपों में प्रेम का रास रचता है। संसार के विपरीत नहीं हो सकता परमात्मा, संसार के पार हो सकता है, विपरीत नहीं। जो विपरीत है वो तो जब संसार खत्म हो जाएगा वो भी खत्म हो जाएगा, जो पार है वही अतियों के पार बचेगा। परमात्मा साधना नहीं है, सिद्धावस्था है। परमात्मा कोई विधि नहीं, जैसा कि पतंजलि ने माना है कि परमात्मा विधि है, कि उसके आलंबन को लेकर उसके प्रति समर्पण करके आदमी परम अवस्था को पहुंच जाता है। पतंजलि का परमात्मा विधि है, साधना का हिस्सा है, उसका उपयोग केवल इतना है कि तुम उसके सहारे समर्पण कर दो। मगर ऐसा परमात्मा तो जब तुम सिद्ध हो जाओगे छूट जाएगा। जब तुम सिद्ध अवस्था को उपलब्ध होगे तो ऐसे परमात्मा की क्या जरूरत रह जाएगी, ये तो मार्ग का ही हिस्सा था, ये खो जाएगा। परमात्मा मार्ग नहीं, मंजिल है। परमात्मा दाएं बाएं नहीं। परमात्मा की अगर थोड़ी बहुत झलक तुम्हें मिल सकती है तो मार्ग के ठीक मध्य में मिल सकती है। इसलिए बुद्ध ने अपने मार्ग को मध्यम निकाय कहा, मध्य में, ठीक बीच में। मगर बीच से भी सिर्फ झलक मिलती है, लेकिन बीच से अतिक्रमण जुड़ा है। उस बीच के बिंदु को तुम खोज लो तो पार जाने की सीढ़ी मिल सकती है। ध्यान रखना, प्रेम से लोग इसलिए वंचित रह जाते हैं कि प्रेम की शर्त ही पूरी करनी कठिन पड़ती। प्रेम की शर्त है क्षण भर को मिटना, क्षण भर को ही सही तिरोहित हो जाना। बेदार राहे इश्क किसी से न तय हुई, सहरा में कैस कोह में फरियाद रह गया। कोई प्रेमी
कभी प्रेम का मार्ग पूरा नहीं कर पाया। मजनू जंगल में खो गया, फरियाद पहाड़ों में। प्रेमी कभी पहुंच नहीं पाता, खो जाता है, पहुंचने योग्य कोई बचता ही नहीं। प्रेमी मार्ग में ही गल जाता है और खो जाता है। लेकिन इसी खो जाने में पहुंचना है, जहां तुम खो जाते हो वहीं परमात्मा हो जाता है, जहां तुम मिटते हो वहीं वो घनीभूत होता है। तुम सिंहासन खाली करो तो ही उसकी संभावना है कि वो तुम्हारे सिंहासन पर विराज सके। तुम अगर बैठे रहे सिंहासन पर, अवकाश कहां, स्थान कहां? परमात्मा को बुलाते हो, तैयारी कहां है तुम्हारी? कहां बिठाओगे, कहां उसे विराजमान करोगे? अहंकार तो रोए रोए में भरा है, मैं का भाव तो श्वास श्वास में समाया है। जगह कहां बची है तुम्हारे भीतर? जगह खाली करो। प्रेम का अनुभव उन्हीं को हो पाता है जो अपने को डुबाने मिटाने को राजी है। जो डूबते हैं, ये नदी कुछ ऐसी है कि वे ही केवल पहुंचते। जो डूबे वे बचे, जो बचे वे डूबे। अगर किनारे पर पहुंचना हो तो मझधार में डूब जाना ही उपाय है। ठीक है ये पंक्तियां, बेदार राह इस किसी से न तय हुई, ये प्रेम का रास्ता कौन कब पूरा कर पाया? इसका ये कारण नहीं कि रास्ता लंबा है, इसका ये कारण नहीं कि रास्ता बहुत बड़ा है इसलिए लोग पूरा नहीं कर पाए। इसका कारण कुल इतना ही है कि ये रास्ता ऐसा है कि इसे पूरा करने वाला बीच में खो ही जाए तो ही पूरा होता है। पूरा होने का एक ही अर्थ है कि बीच में ही खो जाए। अगर पहुंच जाए दूसरे किनारे तो रास्ता खो ही गया, पूरा हुआ ही नहीं। जो पूरा नहीं कर पाते, जो स्वयं इसको पूरा करने में पूरे हो जाते, वे ही केवल पहुंचते। सहरा में कैश, कोह में फरियाद रह गया। सभी प्रेमी कहीं न कहीं खो गए, कोई रेगिस्तान में, कोई पहाड़ों में, कोई प्रार्थनाओं में, कोई साधनाओं में, कोई मंदिरों में, कोई मस्जिदों में। सभी प्रेमी कहीं न कहीं खो गए। जहां खोए वहीं घड़ी उस परम सौभाग्य की, परम आशीष की, परम प्रसाद की। तीसरा प्रश्न एक उलझन है, यदि ठीक समझें तो उसे स्पष्ट करने की कृपा करें। भगवान बुद्ध और आप दोनों कहते हैं ध्यान से उपलब्ध आनंद को बांटो, ध्यान को बांटो, और दूसरी ओर ध्यान के अर्जन को गुप्त रखने कर छिपाकर रखने की बात भी कही जाती है। निश्चित ही दोनों बातें कही जाती हैं, क्योंकि दोनों बातें सही है, उनमें विरोध नहीं। विरोध दिखता हो तो केवल आभास है। ध्यान मिले तो बांटो, लेकिन ध्यान जब तक न मिला हो तब तक संभालो और छिपाओ। होगा तब तो बांटोगे, जल्दी बांटने की मत करना। अक्सर नहीं होता तो भी बांटने की आकांक्षा पैदा हो जाती। उपदेश देने का बड़ा रस है, किसी को समझाने में ज्ञानी होने का मजा आ जाता है, किसी को बताने में, चाहे तुम्हें पता हो या ना हो, थोड़े क्षण को आभास होता है कि तुम्हें पता है। इसलिए तो दुनिया में सलाह है इतनी दी जाती है, लेता कोई नहीं। कितने उपदेश दिए जाते हैं, कौन लेता है? उपदेशक पीछे घूमते हैं तुम्हारे, पकड़ पकड़ के समझाते हैं। उपदेशकों से बच के निकलना मुश्किल है, उन्होंने सब राह रास्ते रोक रखे। जहां से जाओ वहीं वो मौजूद है। मुक्त हस्त ज्ञान बांटते, मुफ्त देने को तैयार है। मुफ्ती देने को तैयार नहीं, साथ में कुछ प्रसाद भी देने को तैयार है। लो भर, फिर भी कोई लेने वाला दिखाई नहीं पड़ता। ध्यान रखना, बांटना कहीं अहंकार से ना निकलता हो,
करुणा से निकले तब बात और, पर करुणा तो तब होगी जब ध्यान सघनीभूत होगा, जब ध्यान एक मेघ बन जाएगा,

इससे धोखा पैदा होगा, इससे कोई और धोखे में ना पड़ेगा, तुम ही धोखे में पड़ोगे। और खतरा है कि कहीं तुम दूसरों के जीवन को कोई नुकसान न पहुंचा दो, क्योंकि बड़ी बारीक बड़ी नाजुक बात है। इसे तो जब तुम ठीक से जान ही लो तभी किसी को जनाना, जब तुम्हारे पैर इस भूमि पर मजबूत जम जाएं, जब तुम्हारी जड़ें इस भूमि में पूरी फैल जाएं, तभी तुम किसी को समझाना। तो बुद्ध ठीक कहते हैं, बांटो, पर हो तब बांटोगे ना। सूफी फकीर भी ठीक कहते हैं कि संभालो, क्योंकि संभालोगे तभी तो होगा ना। संभालना पड़ेगा बहुत दिन, वर्ष वर्ष, जन्म जन्म, जब तुम्हारे भीतर घना हो जाएगा तो बरसेगा। जरूरत है पहले संभालने की, पहले तुम्हारे पास हो, तुम्हारा दिया जलता हो तो तुम किसी और का दिया जलाने जाना, अपना दिया जलता ही नहीं, वहां बाती बुझी पड़ी है और तुम दूसरों के दिए जलाने निकल पड़ते हो। इस भ्रांति में मत पड़ना, बड़े छिपा के रखना जो भीतर आ रहा है। जिस दिन होगा उस दिन तो खबर मिलनी शुरू हो जाएगी। जब फूल खिलता है तो हवाओं में गंध उठ जाती, जब तुम्हारे पास होगा तो तुम छिपा के भी छिपा ना पाओगे। जिनको भी तलाश है, जिनको भी प्यास है, जिनको भी जुस्तजू है, खोज है, वे दूर से खींचे चले आएंगे, पहाड़ और समुन्द्र भी उनके लिए बाधा ना बनेंगे। जिन्हें प्यास नहीं, जिन्हें खोज नहीं, वे पास बैठे भी वंचित रह जाएंगे। तुम चिंता मत करना, पहले तो तुम अपने को भर लो ऐसा लबालब कि तुम्हारे ऊपर से बहने लगे। फिर जिनको प्यास है वो खोजते चले आएंगे, वे सदा ही खोज रहे हैं। और तब तुम मुक्त हस्त बांटना, बांटोगे ही, बांटना ही पड़ेगा।

0: नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। ओम शांति। याद होगा कि ओम शांति का ये एस्पेक्ट क्या है। कहीं ना कहीं हर बार हम ये अपने आप को याद दिलाते हैं कि मैं वो शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आगे बढ़ते हैं, रिश्तों को खंगाल रहे हैं। हमने पेरेंट चाइल्ड जो एस्पेक्ट है उसके कई आयाम देखे इस पूरी श्रृंखला में। हम पहुंचे थे इन-लॉज तक। इन-लॉज एक ऐसा नाम जो शिवानी जी ने कहा था कि बहुत ऑफिशियल लगता है, लेकिन उसे भी एक सुंदर स्वरूप दिया जा सकता है। आगे बात को बढ़ाते हैं और हर बार की तरह हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, अगर हम पिछली कड़ी की बात करें तो इन-लॉज और डॉटर इन-लॉ, सन इन लॉ का जो एस्पेक्ट था उस पर हम बात कर रहे थे कि किस तरह से कितने सारे रॉन्ग बिलीफ लेकर हम इस प्यारे से खूबसूरत से रिश्ते को हमेशा एक नेगेटिविटी के साथ जोड़ते हैं और अल्टीमेटली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमने सफ़र ही करना है। एंड देन यू हैव गिवन अस द मंत्रा कि सफ़र नहीं को एक्सेप्ट नहीं करना, लोगों को एक्सेप्ट करना है। इसको थोड़ा और डीप में जाते हैं कि व्हेन वी आर इन द सिचुएशन, एक तरफ मेरी ज़िंदगी है, मैं हूँ, काम पे जाना है, सब कुछ है, दूसरी तरफ मुझसे उम्मीदें हैं इन लॉज की, तो वो मैं एक्सेप्ट कैसे करूँ, कैसे मैं उनको अपनी बात समझा पाऊँ और कैसे मैं उनको एक्सेप्ट कर पाऊँ, ना कि सिचुएशंस को और सफरिंग्स को।
1: एक्सेप्टेंस संकल्पों में है, यू नो वी नीड टू जस्ट ट्राई दिस आउट वंस। हमें कई बार लोगों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेट्स से इन लॉज से है या उन्हें डॉटर इन लॉ से है, कि कोई आदत नहीं पसंद है, या वो ऐसे ही बोलते हैं, या वो ऐसे ही ताने देते हैं, या वो हमारे से बात ही नहीं करती है। ईदर वेज 1, 2, 3 वी हैव अ लिस्ट कि मुझे ये बातें इनके बारे में पसंद नहीं है। अब हमारे पास दो चॉइस है, सोचते रहे, सोचते जाएं ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे क्यों हैं, ये चेंज क्यों नहीं हो सकते, ये कब चेंज होंगे, नेगेटिव।
0: और सोचते

0: भी नहीं है, हम बोल रहे होते हैं सारे लोगों से, फोन पे बात यही कर रहे होते हैं, जो लोग मिलते हैं अपने दोस्तों से, अपने माँ बाप से, बहन से, सबसे यही बात है.
1: एंड इट्स वेरी आयरोनिकल कि हम एक तरफ से बोल रहे होते हैं लेकिन मैं तो उसको बहुत प्यार देती हूँ, लेकिन वो ऐसी है ऐसी है ऐसी है, यू नो उसके सारे अवगुण की पूरी लिस्ट रेडी हो जाती है. तो हम जितना ये डिस्कशन मोड में भी आते हैं, जितने लोगों से हम बात करते हैं इसके बारे में और डिस्कस करते हैं नेगेटिविटी को, तो हम एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं. तो सफरिंग दूसरा हमें नहीं दे रहा, हम खुद ही इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, और जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो सबसे पहले हमें मिलती है, दूसरा हमें नहीं देता है. जितना उसके बारे में हम इस तरह से बोलते हैं सोचते हैं, आई एम क्रिएटिंग ऑल दैट, एंड वो अक्यूमुलेट हो रही है मेरे अंदर. और जब दूसरा कोई छोटी सी भी गलती करता है, दैट्स अ ट्रिगर, यू नो, बस छोटी सी की
0: हम ज्वालामुखी के दहाने पे बैठे होते हैं, वो फट पड़ता है
1: क्योंकि वो ज्वालामुखी लेकिन हमने खुद क्रिएट किया था. और फिर शायद हमें बुरा लगेगा बाद में कि हमने ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, हम इतना एफर्ट तो करते हैं इस रिलेशनशिप के ऊपर, फिर मैंने आज कैसे टोक दिया या मैंने क्यों ऐसे बोल दिया. उसका रूट ये है कि हमने इतना सारा क्यों सोचा उनके बारे में, ये सारा जो बिल्डअप कर दिया था वो कहीं ना कहीं तो बर्स्ट होकर बाहर निकल आता है. तो जैसे ही कोई उसको ट्रिगर मिलता है, या वो खुद बहू है या इन-लॉज है या किसी और ने कुछ बोल दिया, तो वो सारा बर्स्ट होकर बाहर आ जाता है. एक दिन के लिए सिर्फ, लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं, एक दिन के लिए सिर्फ ट्राई करके देखें कि यस, इनके अंदर ये संस्कार है. लेट इट बी द टफेस्ट संस्कार, लेट इट बी द संस्कार यू डोंट लाइक एट ऑल, आपको वो बिल्कुल पसंद नहीं है उसके अंदर, लेकिन इनके अंदर ये संस्कार है. दो चॉइस, सोचते रहे, बोलते रहे, वर्णन करते रहे, परेशान होते रहे. सेकेंड चॉइस, इनके अंदर ये संस्कार है, फुल स्टॉप. एंड आई हैव टू एक्सेप्ट इट.
0: ओह, आई हैव टू, तो
1: दैट्स ओके, यू नो, इनिशियली बिकॉज मे बी इट्स टू चैलेंजिंग फॉर अस के आई लाइक द संस्कार, यू नो, दैट इज सेइंग के नहीं, प्रैक्टिकली मेरे लिए पॉसिबल नहीं है शायद, बट इनिशियली मे बी इट विल हैव टू बी, आई हैव टू एक्सेप्ट इट. वॉट डू आई चूज फॉर माई सेल्फ, पेन एंड टर्मोइल या कंफर्ट? हम एक्सेप्ट करके ज़्यादातर हम सोचते हैं कि अगर हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया तो जैसे कि हम उनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं
0: और वो मुझ पे हावी हो जाएंगे. एक संस्कार नहीं, उसके बाद और कितनी सारी और बातें मुझ पे थोपने लग जाएंगे. अभी से ही मैं मना कर दूं, शुरू में ही नहीं लूं, नहीं तो देव देखो.
1: लेकिन एक्सेप्ट करना मतलब अपने ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान करना. जैसे हम ट्राई करके देखें, बिकॉज वी ऑल एक्सपेरिमेंट दिस, कई बार हम किसी की कोई बात को लेकर कई दिनों तक परेशान रह सकते हैं, क्यों ऐसा बोला, क्यों ऐसा बोला, बार बार ऐसा बोलते हैं, बार बार ताने देते हैं, एंड देन वन डे यू रियलाइज के सो मच ऑफ एनर्जी वेस्टेज, सो मच ऑफ टाइम वेस्टेज. ओके, दे आर लाइक दैट, बट उनके अंदर बहुत सारी और भी क्वालिटीज हैं, बट दिस पार्ट आई डोंट लाइक, बट देन इट्स देयर, फुल स्टॉप. द मिनट यू विल से फुल स्टॉप इंटरनली, जस्ट ट्राई इट आउट, इट रियली पुट्स अ फुल स्टॉप. यू नो, इसकी माइंड की जो पावर है ना, हम बहुत ज़्यादा उसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं. उसके अंदर इतना पोटेंशियल है, हम जैसे चाहे मोल्ड कर सकते हैं अपने आप को, अपनी स्थिति को, एंड दैट्स वाई रिलेशनशिप्स में अगर हम 20 साल से भी किसी के लिए बिटर सोच रहे हैं, आज एक थॉट लगेगी सिर्फ उसको ख़त्म करने में. हमें लगता है पता नहीं पूरी उम्र ना लग जाए उसको ठीक करने में. इट्स जस्ट वन थॉट, इट्स जस्ट वन थॉट.
0: एंड आई थिंक सिस्टर शिवानी, उससे पहले ये एक्सेप्ट करना भी बहुत जरूरी है कि दिस इज अ रिलेशनशिप विच विल बी विद मी लाइफ लॉन्ग, यू नो, इवन इफ आई एम विद देम और नॉट. हम ये भी नहीं एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हम उसको बोझ मान के हम ये सोचते हैं कि अगर हम अलग हो जाएंगे तब तो हम दूर हो जाएंगे उनसे, तब हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट देन वो नेगेटिविटी तो कंटिन्यूड रहती ही है. एंड आई हैवन सीन एनी डॉटर इन लॉ मूविंग अवे फ्रॉम द इन लॉज एंड नॉट थिंकिंग अबाउट,
1: राइट, बिकॉज वो एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है ना. एंड वो सिर्फ इन लॉज से ही नहीं, फिर हमें हस्बैंड से भी मिलेगी, तो वो सारी एनर्जी हमारी तरफ ट्रैवल होगी, तो फिर माइंड कंफर्टेबल कैसे रहेगा. अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया तो हमारे तरफ से उनके लिए कोई एनर्जी ट्रैवल नहीं करेगी, तो ऑटोमेटिकली अगर वहाँ से कुछ आ भी रहा है धीरे धीरे फिनिश हो जाएगा, क्योंकि हो जो हम भेज रहे थे उसी का रिफ्लेक्शन वापस आ रहा था. इट विल स्टॉप. दिस इज अ कार्मिक कनेक्शन लाइक एवरी रिलेशनशिप. अब उसको एक डेट बनाना या उसको एक ब्यूटीफुल कनेक्शन बनाना, ये मेरी चॉइस है. तो अगर कोई बातें हैं भी घर में, हमें एक दूसरे की बिल्कुल पसंद नहीं है, सबसे पहली चीज़ तो एक्सेप्ट के यूनिक इंडिविजुअल है, यूनिक इंडिविजुअल है, एक अलग आत्मा है, अलग फैमिली से आए हैं, अलग सेटअप से है. आज हमारी अपनी बेटी के साथ कितने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जबकि वो बचपन से हमारे फैमिली के सेटअप में है, फिर भी आज एक बेटी कहती है कि मुझे आपकी ये वे ऑफ थिंकिंग पसंद नहीं. वो तो एक नया अलग सेटअप से आए हैं. So why can't I understand? Hmm. Ki, you know, she is going to come with her different set of thoughts, different set of beliefs. तो वो acceptance तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और जितना हम internally accept कर लेंगे, आप पाएंगे कि वो बहुत easily set हो जाएंगे. लेकिन जितना negative energy travel करेगी, वो हमारे
0: और ऊपर से चाहे जितने भी अच्छे बने रहे, चाहे जितना भी सर ढक के रहे, या जितनी भी हम पैर छू ले, these are the aspects which actually all of us do. लेकिन अंदर से वो continuous. Again, I can understand कि अंदर का conflict जो है. अंदर की नेगेटिविटी,
1: बाहर आपको बहुत ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा प्लीज करने के लिए. अंदर से अगर एक्सेप्टेंस हो कि जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, एंड फिर अगर आप वो एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी क्रिएट कर देंगे, और फिर अगर आप कुछ शेयर भी करेंगे ना कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं, आपने उसको शेयर करने से पहले आपने बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी ऑलरेडी ट्रांसमिट कर दी है. द अदर पर्सन इज विलिंग टू लिसन. अभी क्या होता है, अभी भी हम डिस्कस करते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करें, लेकिन हमने ऑलरेडी इतनी नेगेटिव एनर्जी ट्रांसमिट करती है कि वो व्यक्ति ऑलरेडी थोड़ा सा विथड्रॉन है एंड डजंट वांट टू लिसन टू मी.
0: एंड इनफैक्ट उनके अपने संस्कार भी तो है, अपना पूरा रॉन्ग बिलीफ के साथ जो चल रहा है. दिस इज अ ग्रेट एक्सपेरिमेंट, यू नो, एक दिन के लिए.
1: एक दिन के लिए करना है, एक दिन के लिए भी नहीं तो एक घंटे के लिए करके देखें. अगर किसी को एक दिन भी बहुत भारी लग रहा है, सिर्फ एक घंटा ट्राई करें कि मुझे उस बारे में नहीं सोच के, आई विल जस्ट से फुल स्टॉप, आई एक्सेप्ट.
0: आई थिंक उसमें सिचुएशन चेंज हो या ना हो, आई थिंक यू
1: सिचुएशन, बट देन दैट्स व्हाट इट्स ऑल अबाउट. सी, रिलेशनशिप इज नॉट विद द अदर पर्सन, रिलेशनशिप इज फर्स्ट विद योरसेल्फ. हर्ट दूसरे से नहीं मिल रहा है, सफरिंग दूसरे से नहीं मिल रही है, इसी तरह फीलिंग गुड भी दूसरे से नहीं मिलने वाला है. आई हैव टू क्रिएट इट, बट देन व्हेन आई एम फीलिंग गुड, it automatically travels and the whole environment of the house will change.
0: I can really feel it, you know, that it can happen.
1: And ye bhi nahi soche ki wo karein pehle.
0: See, whoever is awakened, you know,
1: jo pehle ek thought sirf create kar le ki ha theek hai, pehle agar ho sakta hai past mein koi arguments bhi hui ho, koi upar niche baat bhi ek dusre se kahi ho, the mind has the power to forget. Hum kehte nahi hum kabhi nahi bhul payenge ki unhone hamare sath kya kiya. Mind has the power. Just say it.
0: हम भूलना नहीं चाहते.
1: हम भूलना नहीं चाहते.
0: याद दिलाते
1: हर चीज तो वो एक thought की है. हम भूलना नहीं चाहते. हम forgive करना नहीं चाहते. जिस दिन हमारे अंदर वो desire आ जाएगी कि I want to forgive and forget, one thought. Anyone can try this right now. कि one thought कि अभी तक जो हुआ, full stop. And this you're not doing for the other person. That's the topmost thing. क्योंकि हम सोचते हैं हम औरों के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसका बेनिफिट तो मुझे होने वाला है और मेरी इमीडिएट फैमिली को होने वाला है. तो why not do it for everybody? Why do I want to create a life of pain when I can create a life of happiness?
0: That's actually, you know, that's, let's try it out. कि एक घंटा या एक दिन कोशिश ये करें कि अपने लिए एक एफर्ट करके देखें कि जो जैसा है उसे एक्सेप्ट करें. फगिव करने से पहले फगेट करना जरूरी है. माफ तो बाद में करेंगे, पहले भूलना बहुत जरूरी है. सिस्टर शिवानी, यहाँ से एक और मोड़ की तरफ बढ़ते हैं कि वर्किंग वुमेन है, वर्किंग बहू है, बच्चा माँ बाप के पास, इन लॉज के पास छोड़ रहे हैं, फेट है भी नहीं भी, थोड़ा सा कुछ हो जाए, इट्स अ मेजर मेजर प्रॉब्लम. आपके पास छोड़ के जा रहे हैं, आपको ध्यान रखना ही है. दोनों तरफ की प्रॉब्लम्स है. मेरे पास छोड़ जाती है, मैं मुझसे संभलती नहीं है, बच्चा मेरी अब उम्र हो गई है, लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, यू नो. तो मैं नौकरी करूं या बच्चे संभालूं, तो नौकरी भी तो आपके लिए कर रही हूं, यू नो. लॉट ऑफ दीज थॉट्स, दीज कमेंट्स कीप ऑन कमिंग. व्हाट हैज टू बी डन, यू नो, जब बच्चा छोड़ा जा रहा है, अपने आप जो औलाद को उनके पास छोड़ के जा रहे हैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, क्या पूरा थॉट रखें?
1: आई थिंक जब आप छोड़ कर जाते हैं, वन, create the thought. It's actually reality. You should not have to create it. कि यू आर लीविंग योर चाइल्ड इन द सेफेस्ट हैंड्स इन द वर्ल्ड. इससे ज़्यादा सुरक्षित वो बच्चा कहीं और नहीं हो सकता था. इससे ज़्यादा बेस्ट उसका ध्यान कहीं और नहीं रखा जाएगा. बिकॉज ग्रैंड पेरेंट्स आर पेरेंट्स, यू नो, देर इज़ नो डिफरेंस. हाँ, अगेन वो चीज़ है कि मेरा वे ऑफ ब्रिंगिंग अप डिफरेंट है, इनका वे ऑफ ब्रिंगिंग अप डिफरेंट है. बट देन अगेन एक्सेप्ट कि इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी डिफरेंट. कोई दो लोग का तरीका हमेशा डिफरेंट होगा. लेकिन हम छोड़ भी देते हैं, लेकिन साथ साथ ग्रम्बल भी करते हैं कि ये तो इस तरह से करते हैं, या ये मेरे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, या ये खिलाते हैं जबकि बच्चों को ये खिलाना चाहिए, ये इस तरह के कपड़े पहन. मतलब हर छोटी छोटी बात में कितना ज़्यादा नोक छोक चलती रहती है. एंड एक्चुअली अगर देखा जाए तो द डॉटर इन लॉ शुड बी सो ग्रेटफुल. यू नो, यू शुड हैव, you should really be so grateful to your in-laws ke they are looking after your children, because it's as good as you're not there but you're there. Kyunki ek maa ka jo pyar bacche ko milna chahiye wo use grandparents se mil sakta hai aur milta hi hai. To isse zyada hum kya expect kare unse? Aur wo jo khila rahe hain ya jo pehna rahe hain ya jo bhi kar rahe hain apni taraf se right kar rahe hain. राइट कर रहे हैं
0: हमेशा पेरेंट्स जो है, अगर हम
1: हमेशा
0: अपने आप को
1: राइट करेंगे. आज दिन तक हमें कई बातें वो भी तो नहीं अच्छी लगी जो हमारे पेरेंट्स हमें कह रहे थे करने के लिए, लेकिन हमने ये समझा कि वो अपनी तरफ से राइट ही कर रहे हैं. तो सबसे पहले उनके प्रति ये नेगेटिव थॉट नहीं क्रिएट करना चाहिए कि ये रॉन्ग कर रहे हैं या मेरे बच्चे को बिगाड़ रहे हैं. दे आर डूइंग देयर बेस्ट. एंड फिर अगर आप वो पॉजिटिव एनर्जी उनके लिए क्रिएट करते हैं, एंड देन यू कैन ऑलवेज डिस्कस या आप जो भी परिवर्तन लाना चाहें, दे विल बी मोर देन रेडी.
0: इट हैज टू बी विद अ पॉजिटिविटी.
1: यू नो, सारी मूल बात उस इंटेंशन पर आ जाती है कि अंदर की भाव और भावना कैसी है. जहां वहां नेगेटिविटी है, बाहर आप कितना भी एफर्ट कर लो, रिजल्ट नहीं मिलेगा.
0: थॉट हैज टू बी एक्चुअली पॉजिटिव. उस व्यक्ति के पास आते हैं जो कहा जाता है कि सबसे ज्यादा परेशानी में भी आता है पूरे रिश्ते में, और उसको ही बैलेंस क्रिएट करना चाहिए. एंड दैट इज द हस्बैंड. एक तरफ वाइफ है, एक तरफ मदर है. मतलब बेचारे फादर इन लॉ तो बाद में आते हैं, जैसे मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, उनके बीच के दो पलड़ों में वो कई बार पिस जाता है कहा जाता है, कई बार उसको बैलेंस क्रिएट कर पाता है. व्हाट हैज टू बी हिज थॉट प्रोसेस, यू नो,
1: अगेन
0: व्हाट हैपेंस विद हिम आल्सो.
1: आई थिंक अगेन बिलीफ है, लेकिन एक हो जाता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर उस आत्मा पर पड़ता है जो ये दो तरफ से, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है और एनर्जी जो ट्रैवल कर रही है उन दोनों के बीच, वो कहीं ना कहीं शायद उसके थ्रू होते हुए गुजरती है, क्योंकि टारगेट वो है. यू नो, एक तो दोनों तरफ से खिंचाव है,
0: दोनों तरफ से रिलेशनशिप बिकॉज उसके कारण है,
1: क्योंकि एक रिलेशनशिप है जो हमारा फाउंडेशन था अब तक के जीवन का, और एक रिलेशनशिप है जो हमारे आगे का जो जीवन है उसका फाउंडेशन है. तो कहीं ना कहीं दोनों रिलेशनशिप्स इतने इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन दोनों के बीच में कहीं हम पहले पुल्ड हो जाते हैं, हम में एक बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाते. इसमें भी प्रिटेंशन बहुत ज़्यादा आ जाती है, इस रिलेशनशिप में भी, कि यहाँ पे भी टाइम देना है, यहाँ पे भी टाइम देना है. बट इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स मोर अबाउट इंटरनली हाउ आई एम फीलिंग. इफ़ आई रियलाइज दैट, यू नो, आई डोंट नीड टू डिसाइड कि कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. देर इज़ नेवर अ कॉम्पिटिशन. इन्हें हमेशा हम रिलेशनशिप्स में कंपटीशन क्यों क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए.
0: एक और लड़के के साथ प्रॉब्लम जो आती है कि दोनों ही अपनी अपनी कंप्लेंट्स लेकर उसके पास पहुँचते.
1: हाँ, दैट्स व्हाट. सो वो सारा प्रेशर अक्यूमुलेट होता है ना. तो वन इज, आई थिंक व्हाट द बॉय कैन डू इज लेट देम सॉर्ट इट आउट अमंग्स देमसेल्व्स. उन दोनों को करने दें. एंड दूसरा व्हाट ही कैन डू इज, क्योंकि वो एक कॉमन लिंक है दोनों के बीच में, और वो शायद अपनी पत्नी को और माँ को, दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानता है और दोनों की विशेषताओं को बहुत अच्छी तरह से जानता है. तो वो हमेशा, अगर द मदर कम्स टू हिम विद कंप्लेंट, लिसन टू द कंप्लेंट बट शेयर ऑल द गुड क्वालिटीज अबाउट योर वाइफ, एंड टू द वाइफ शेयर ऑल योर गुड क्वालिटीज अबाउट द मदर. बिकॉज इट्स एक्चुअली जैसे कि आपने उन दोनों का संबंध जोड़ना है. यू नो, यू आर द ब्रिज. तो दोनों को जानते हैं, तो आप दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाइए बार बार. और हर रोज जब भी वो उनकी कोई कमी बताते हैं तो आप कमी को समझ लीजिए, लेकिन उनका पर्सपेक्टिव बताने की कोशिश कीजिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट विद दैट पॉजिटिव एनर्जी, नॉट विद नहीं आप तो रॉन्ग हो या आप हमेशा क्रिटिसाइज कर रहे हो. द मोड विल नॉट बी ऑफ क्रिटिसाइजिंग, बट इट विल बी ऑफ एक्सेप्टेंस एंड शेयरिंग, एंड फिर एंड मूव आउट ऑफ द स्पेस, लेट देम क्रिएट द रिलेशनशिप टुगेदर. हम कई बार ये द बॉय ट्राइज कि दोनों को थोड़ा सा
0: हाँ सामने ही आने दो, क्योंकि क्यों,
1: यू नो आई डोंट नो बट दैट्स अ वेरी हेल्दी साइन कि दोनों को दूर रखते हैं. ठीक है, इनसे जाके अलग बात कर ली, इनसे जाके अलग बात कर ली, ये नहीं कोशिश करते कि वो दोनों जुड़ जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है अगर नज़दीक आते हैं तो फिर कॉन्फ्लिक्ट है. नो, इट विल नॉट बी अ कॉन्फ्लिक्ट, इट कुड बी अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप. सो मेक दैट एफर्ट ऑफ देम कमिंग क्लोजर. एंड अगेन, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं, देन यू मेडिटेट फर्स्ट. सी, मेडिटेशन इज समथिंग दैट्स गोइंग टू हेल्प एवरीवन.
0: इन फैक्ट इट्स नॉट जस्ट अ रिलेशनशिप व्हिच हैपेंस, यू नो, इट हैज टू
1: बी, ये एक रिलेशनशिप है जो डेवलप
0: किया जाएगा.
1: ये एक डेवलप होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और इसको जितना राइट फाउंडेशन पर हम डेवलप करेंगे विद द थॉट के हाँ कि ये एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है, इट विल डेवलप. और फॉर द बॉय, ओनली केयर दैट ही नीड्स टू टेक इज कि दोनों में से किसी एक साइड की तरफ ज्यादा नहीं स्वे हो जाना. यू नो, इट जनरली हैपन्स, वो वाला एस्पेक्ट सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है ऑफ क्रिएटिंग द बैलेंस. हम डेफिनेटली दोनों में से एक की तरफ ज्यादा झुकाव हो जाता है या ज्यादा इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं. तो मेडिटेशन हमारी ये परखने की शक्ति को बढ़ाता है,
0: इंटेलेक्ट को बढ़ाता है,
1: राइट और रॉन्ग डिसीशन लेना, क्योंकि ये इतना क्रिटिकल एस्पेक्ट है कि जब आप एक की बात सुनते हैं तो आप उसी की बात बिलीव करने शुरू कर देते हैं, क्योंकि परखने की शक्ति नहीं है. फिर आप दूसरी तरफ जाते हैं तो उनकी बात सुन लेते हैं, वहाँ भी कन्फ्यूज हो जाते हैं. तो जितना हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी ये परखने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी और निर्णय लेने की शक्ति. And balance, you know, the सबसे बड़ा benefit राजयोग meditation से मिलता है of being able to create this balance in life. तो वो balance एक बहुत natural होता जाएगा, आपको effort नहीं लगेगा.
0: एक और aspect जो जब लड़की एक वो घर छोड़ कर आई है जैसे वो इतने साल अपना मान के ही चल रही थी, और यहाँ आते ही एक नया परिवार, एक नया रिश्ता, वो लोग नहीं छूटते जितना भी हम कहें, जितने भी
1: छोड़ना ही नहीं है.
0: अच्छा, वो नहीं भी छूटते, लेकिन उनका भी उतना ही टेंशन मेंटेन्ड रहती है कि वहाँ मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा होगा. द प्रेशर ऑफ द पेरेंट्स, द गर्ल्स पेरेंट्स, यू नो, ऑन द गर्ल, ऑन द बॉय एंड ऑन इवन द इन लॉज, इज लाइक बिकॉज दे आर अफ्रेड. ये सारा जो है ये कहीं ना कहीं बहुत टेंशन और एक प्रेशर क्रिएट किए रखता है माँ बाप पे भी कि पता नहीं क्या किया है हमने, क्या होगा उसके साथ. वहाँ पे हम ज़्यादा इंटरफेयर भी नहीं कर सकते, और मुझे लगता है उसकी आड़ में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो भी जाता है.
1: एक्चुअली
0: कहीं ना कहीं वो एक बहुत प्रेशर में रहते हैं.
1: जैसे हमने देखा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में भी, वो एक आत्मा है जिसकी अपनी जर्नी है. हम गाइड कर सकते हैं लेकिन जर्नी उनको अपनी लेनी है, इवन व्हेन द चाइल्ड वॉज विद यू. और अब तो एक डिफरेंट एस्पेक्ट ही हो गया है. कई बार हम बेटी की बात सारी सुनकर उसको एडवाइस देना शुरू कर देते हैं, विच इज़ ओके, लेकिन कई बार ऐसे देखा जाता कि वो राइट नहीं होती है एडवाइस, क्योंकि हम दूसरे एस्पेक्ट को नहीं देख रहे हैं बिल्कुल. हम उसके साथ सिंपथाइज इतना ज़्यादा कर देते कि कहीं उसको राइट रास्ते पर लेके जाने के बजाय और ही कहीं उनसे विड्रॉ कर देते हैं. तो समहाउ आई पर्सनली वुड फील कि वी शुड नॉट डिस्कस द प्रॉब्लम्स, बिकॉज प्रॉब्लम्स तो हैं definitely.
0: तो माँ के साथ नहीं करूंगी तो किसके साथ करूंगी? You know, this is a question, it's a belief with which the girl lives.
1: ये भी क्योंकि जितना हम discuss करते हैं, actually solution सिर्फ हमारे पास है. Nobody else can give me the solution, क्योंकि वो उस परिस्थिति में नहीं है. और हर एक का कार्मिक कनेक्शन अपना अपना है. तो यो मेरा कार्मिक कनेक्शन है और मुझे उसको जिस तरह से स्मूथ बनाना है वो पावर मेरे पास है. बहुत ज़्यादा कोई उसमें बहुत हमें गाइड नहीं कर सकते हैं. कोई हमें एडवाइस भी दे दे फिर भी करना तो हमें ही पड़ेगा. तो क्यों ना हम खुद से उसको करें. जितना हम कम डिस्कस करते हैं उतना हम इजीली सॉर्ट आउट कर पाते हैं। कई बार जो भी हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है नए घर में आके, हम जब उसको डिस्कस करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है और उसमें फिर हमें सबकी एडवाइस इतनी सारी मिलती है कि अब और कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि इसको अब कैसे हैंडल करना है। एज फार एज पॉसिबल, इफ़ यू कैन डू इट, ट्राई एंड हैंडल इट ऑन योर ओन। आप उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें एंड यू पुट इन योर बेस्ट एफर्ट। कोई एक आधी बात पर आपको एडवाइस चाहिए हो वो लेना अलग है, लेकिन हर बात आज ऐसा हो गया, आज ये कर दिया, आज आपको पता है मुझे ये बोल दिया, आप एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। आप वो कर रहे हैं, वो इन लॉज भी कल अपने बच्चों के साथ आपको डिस्कस करेंगे एंड यू आर जस्ट मूविंग अवे। जो हमें लगता है कि हम पेरेंट्स से डिस्कस करके वी आर एक्चुअली मूविंग अवे, अगर हम क्रिटिसाइजिंग मोड में कर रहे हैं। देखो, एडवाइस लेना और किसी को क्रिटिसाइज करना, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। इफ वी रियली लुक बैक एट आर लाइफ एंड वी इवैल्यूएट एवरी रिलेशनशिप, हम देखेंगे कि जहाँ भी दूरी आई है उसको हमने खुद से क्रिएट किया हुआ है। हम डेफिनेटली ब्लेम दूसरे पर डाल देते हैं, लेकिन उस दूरी को हमने ही क्रिएट किया है बाई डूइंग ऑल दीज स्मॉल थिंग्स, डिस्कसिंग, रिपीटिंग, बार बार उसके बारे में सोचना, औरों के साथ वर्णन करना। फिर बाह्य रीति से हम एफर्ट करते हैं कि इस रिलेशनशिप को ठीक करना, एंड देन वी रियलाइज इट डजंट वर्क एंड अंदर इतनी बिटरनेस है, थोड़ा सा बाहर ट्राई करते हैं, वर्क नहीं होता तो बहुत जल्दी से गिव अप कर देते हैं कि ये नहीं हो सकता, इससे अच्छा तो बात नहीं करो, अलग अलग रहो। एंड दिस इज वन रिलेशनशिप जहां हम बहुत जल्दी अपने आप को ये ऑप्शन दे देते हैं,
0: अलग हो जाओ फटाफट, यू नो दैट्स अगेन यस, बिकॉज़ वी डोंट वांट टू वर्क ऑन इट, वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि इट विल नॉट वर्क।
1: तो वो बहुत जल्दी, क्योंकि वो एक ऑप्शन है हमारे पास, तो हम बहुत जल्दी उसको अलग कर देते हैं। अगर हमें ये ध्यान रहे कि इस रिलेशनशिप में अगर अच्छी बॉन्डिंग होगी, उसका डायरेक्ट रिजल्ट उस गर्ल की अपने हस्बैंड के साथ के रिलेशनशिप पे होगी, दैट रिलेशनशिप विल ऑटोमेटिकली बी स्ट्रॉन्गर, इट्स अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ दैट, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, दे हैव टू टेक केयर ऑफ।
0: इनफैक्ट यस, वी हैव एक्चुअली टच्ड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ विद इन लॉज एंड यू नो डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ। अ स्मॉल एस्पेक्ट स्टिल रिमेन्स इज जब बच्चा, जब जैसे अब एक मदर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ है और उनका बच्चा, डॉटर इन लॉ का बच्चा ग्रैंड पेरेंट्स बन गए। यहाँ अगर वो वर्किंग वुमेन है, बहुत बार देखा गया है इन लॉस का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है, दादा दादी की इतनी बात मानता है, मेरे पास नहीं आता, ये जो अगेन ओनरशिप की बात है, एक पहले लड़के तक ओनरशिप थी कि मेरा हस्बैंड है, मेरा बेटा है, अब ग्रैंड पेरेंट पे भी आ गए। अगेन दिस ओनरशिप प्रॉब्लम इज एक्चुअली अ मेजर प्रॉब्लम इन टुडेज।
1: और कई बार ऐसा हो जाता है जो हम देखते हैं कि द मदर ऑफ दैट लिटिल चाइल्ड, वो अपने इन लॉस के बारे में अपने बच्चों को यू नो नेगेटिव बातें, विच इट्स ट्रू, शी फील्स इट्स ट्रू कि हाँ वो ये इस तरह से गलत है, लेकिन वो एक बच्चे के जीवन की एक बहुत रॉन्ग फाउंडेशन हम खड़े कर रहे हैं। हम बच्चे को अपनी तरफ खींचने के प्रोसेस में उनसे दूर करने की कोशिश करते हैं, और उनसे दूर करने का तरीका है उनकी बुराई करना या उनकी यू नो क्रिटिसाइज करना उनको, लेकिन ये हम बच्चे के लिए एक रॉन्ग अनहेल्दी फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं। इन एंटिटी है, एक इंडिविजुअल है, एक अलग आत्मा है, जिसका हम सब आत्माओं के साथ एक कार्मिक कनेक्शन है। वो एक प्रॉपर्टी नहीं है जो या तो मेरी हो सकती है या आपकी हो सकती है। दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग थॉट व्हेन वी फील कि या तो आप मेरे ज़्यादा क्लोज हो सकते हैं या आप उनके ज़्यादा क्लोज हो सकते हैं। नहीं, आई कैन शेयर एन इक्वली ब्यूटिफुल रिलेशनशिप विद एवरीबडी। I don't have to always be, you know, this also happens with the husband. कि या तो आप parents की side पे ज़्यादा है या wife की side पे ज़्यादा है, not necessary. Why can't it be equally nice with everybody? हमारे 10 friends होते हैं. Sometimes aren't we just equally close to all of them? This is just like that.
0: In fact, again, we have to remember, mother has to remember that grandparent के साथ भी तो एक कार्मिक कनेक्शन है ही, उसको कैसे खराब कर सकते हैं?
1: खराब, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करती है बच्चे के रूट्स को, तो इट इज़ अ रिलेशनशिप जिसको इनकरेज करना चाहिए कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बने, क्योंकि बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस ग्रैंड पेरेंट्स का बच्चों पर पड़ता है।
0: सो सिस्टर शिवानी, आज हम इन दो कड़ियों में हमने उस रिश्ते को समेटा है जो, और एक नए रूप से देखने की कोशिश की है, जिसके लिए अभी तक एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये था कि एक्सेप्ट करके बैठे थे कि ये रिश्ता ऐसा ही है, लेकिन अगर हम सचमुच जो बात हमने की है, जो आज एक और एस्पेक्ट आया है कि सफरिंग को एक्सेप्ट ना करके लोगों को एक्सेप्ट कर ले, और जिस तरह के एक्सपेरिमेंटल मोड में आप हमें लेके गई हैं कि एक एक दिन का एक्सपेरिमेंट करा जाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, मैं हूं आपकी कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला। कहते हैं कि शिव में विश्व है और विश्व में शिव है, और हट जाए तो शिव बनेगा, ढल जाए तो इंसान शिव बनेगा, और शिव में लग जाए तो शिव विश्व बनेगा। विश्व के कण कण में शिव का वास है, इसलिए शिव में हर जीव का वास है। तो जब दोस्तों हर जीव में ही शिव का वास है और शिव में ही हर जीव का वास है, तो हमें हर जीव में ही शिव के दर्शन करने चाहिए। इसका अर्थ है कि आप हरेक इंसान में, सामने आपके सामने जो भी है, उसमें ईश्वर का दर्शन करें। उसमें आप अपने इष्ट का दर्शन, आप विश्वास रखें कि इसमें भी वही ईश्वर है जो मेरे अंदर है, जिसकी मैं आराधना करता हूँ। मेरे सामने जो कुत्ता खड़ा है, उसमें भी वही ईश्वर है, वही आत्मा है जो मेरे अंदर है। ऐसा सोचकर सभी जीवों के प्रति दया भाव रखिए। दुत्कारिए मत, कुछ नहीं दीजिए, पर दुत्कारिए मत ना किसी जीव को, ना किसी गरीब इंसान को। अगर कुछ देना चाहते हैं, समर्थ हैं, तो दीजिए, मदद कीजिए, वरना आप ना उपहास उड़ाएं और ना ही उसका अपमान करें। ऐसा करने से आप पाप के भागी होंगे, आपके खाते में पापों की श्रृंखला बढ़ जाएगी, तो आप अपने खाते को बिगाड़िए मत। तो दोस्तों, इस सब का ज्ञान कैसे होगा, ये सिखाता है हमको शिव पुराण। शिव पुराण के सुनने मात्र से ही ये सब ज्ञान हो जाएगा, पढ़ने मात्र से ही ये सब ज्ञान हो जाएगा, आपके अंदर ज्ञान का पौधा अंकुरित हो जाएगा। अब ये शिव पुराण सुनवाने के लिए, आपके इसी ज्ञान वर्धन के लिए, हम अपने स्टूडियो में डॉक्टर लीना सिन्हा जी को हमेशा ही आमंत्रित करते हैं, और आज भी डॉक्टर लीना सिन्हा जी हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: लीना जी, पिछले एपिसोड में आपने हमारे श्रोताओं को बताया कि जब शिव ने विष्णु भगवान के पास देवताओं को भेज दिया कि वही निराकरण करेंगे, आप उनके पास जाओ, तो विष्णु भगवान ने गणों को बुला, रुद्र गणों को, यज्ञों को, देवताओं को बुलाकर, उसमें से जो रुद्र थे वो योद्धा, उनको आदेश दिया कि जाकर त्रिपुर नगरों का विनाश कर दो। लेकिन उन्होंने साथ साथ देवताओं को ये भी समझाया कि हम उनको नहीं मार सकते, क्योंकि वो सारे के सारे जो असुर हैं वो शिव भक्त हैं, और जो शिव भक्त हैं, जो शिव का स्मरण कर रहे हैं, उनको तो कोई मार ही नहीं सकता। इसलिए कुछ ऐसा करना होगा कि उनको शिव भक्ति से हटाना होगा, तभी उनका विनाश संभव है, वरना उनका विनाश नहीं हो पाएगा। अब लीना जी, आगे क्या होता है, क्या उनकी उनको भक्ति के पथ से हटाया जाता है ताकि उनका विनाश हो सके, या उनको पाप के रास्ते पर अग्रसर किया जाता है, उनमें काम क्रोध मोह लोभ इस प्रकार और भी जो अन्य पाप हैं उनकी ओर अग्रसर किया जाता है, छल कपट साम दाम दंड भेद जो भी देवता अपनाते हैं उनके द्वारा, क्योंकि उनका विनाश तो सम करना ही है, और विनाश संभव तब तक नहीं है जब तक वो शिव भक्त हैं। तो अब इसके बाद क्या होता है, क्या करते हैं देवता, क्या प्रयास करते हैं, वो हम सुनना चाहते हैं
1: मंजू जी। ये रुद्र संहिता के युद्ध खंड का तीसरा अध्याय है, और इस तीसरे अध्याय में देवगणों को विष्णु भगवान समझाना चाहते हैं, वो कार्य करना चाहते हैं देवताओं का, लेकिन समस्या यही है कि त्रिपुरासुर जो है वो शिव भक्त हैं, त्रिपुर नगरी शिव भक्ति से परिपूर्ण है, वो तप्रोत है, तो कैसे वो वध करें त्रिपुरासुर का। तो जब देवगण बड़े दुखी हो जाते हैं, कष्ट में पड़ जाते हैं, तो विष्णु भगवान कहते हैं कि हे देवा, सकला यूयम गच्छत स्वगृहान ध्रुवम, देव कार्यम करिष्यामि यथाम अति न संशय, तान रुद्राद विमुखान नूनम करिष्यामि सुयत्नतः स्वभक्ति रहिता ज्ञात्वा तान करिष्यामि भस्मसात। वो कहते हैं कि
2: हे देवताओं, आप सब अपने घरों को जाइए, मैं निसंदेह अपनी बुद्धि से देव कार्य करूंगा। मैं प्रयत्न से उन्हें रुद्र की भक्ति से विमुख करूंगा। अपनी भक्ति से विमुख जानकर शिव जी उन्हें भस्म कर देंगे। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनि, उनकी आज्ञा को स्वीकार कर कुछ आश्वस्त होकर वे देवता ब्रह्मा द्वारा अनुमोदन पाकर अपने अपने घर चले गए। उसके बाद विष्णु जी ने देवताओं के हित के लिए जो उत्तम उपाय किया और जो सब पापों का नाश करने वाला है उसे आप सुनिए। तो चतुर्थ अध्याय प्रारंभ होता है, रुद्र संहिता के युद्ध खंड का चतुर्थ अध्याय। सनत कुमार उवाच, असृजच्च महातेजा पुरुषम स्वात्म संभवम एकम माया मयम तेषाम धर्म विघ्नार्थ मच्युत मुंडिनम म्लान वस्त्रम च गुम्फि पात्र समन्वितम दधानम पुंजिका हस्ते चालयंतम पदे पदे वस्त्रयुक्तम तथा हस्तम शीयमानम मुखे सदा धर्मेति व्याहरंतम हि वाचा विक्लव या मुनिम। कहते हैं कि उसके बाद महातेजस्वी विष्णु भगवान ने अपने शरीर से उत्पन्न एक माया युक्त पुरुष को उनके धर्म कार्यों में विघ्न करने के लिए उत्पन्न किया। मुंडित सिर वाला, मैले वस्त्र धारण किया हुआ, कंधे में बिना बिने हुए झोले को तथा हाथ में झाड़ू लिया हुआ, पद पद पर उसे हिलाता हुआ, हाथ में वस्त्र लिया हुआ, जिसका मुख सूख रहा है, उस मुनि से व्याकुल वाणी से धर्म ऐसा कहता हुआ वह उस विष्णु को नमस्कार करके उनके सामने खड़ा हो गया। मुंडित सिर वाला था और मैले वस्त्र वाला था और उसके हाथ में जो झोला था वो बिना हुआ झोला था और हाथ में झाड़ू भी था। तो हाथ जोड़कर हरि से वह कहने लगा, शत्रुओं के नाशक पूज्य अच्युत, मैं क्या करूं, आज्ञा दीजिए। हे देव, मेरे क्या क्या नाम होंगे, हे प्रभु, मेरा स्थान कहाँ होगा, उसे भी बतलाइए। इस प्रकार भगवान विष्णु उसके शुभ वचनों को सुनकर प्रसन्न चित्त होकर इस प्रकार कहने लगे। वो भी भगवान विष्णु के ही अंश थे। तो भगवान विष्णु ने तो माया रची थी कि उन लोगों को, त्रिपुरासुर को कैसे भक्ति रहित किया जाए। तो उस माया के कारण उन्हें उन्होंने मुंडित सन्यासी को प्रकट किया। अब विष्णु भगवान जी कहते हैं, वो क्या कहते हैं, विष्णु भगवान कहते हैं, यदर्थम निर्मितो असि त्वम निबोध कथयामिते मदंगज महाप्राज्ञ मदरूपस्त्वम न संशय ममांगांच समुत्पन्नो मत कार्यम कर्तुम अर्हसि मदीयस्त्वम सदा पूज्यो भविष्यसि न संशय अरिहन्नाम तेस्यात्तु हियान्यानि च शुभानि च स्थानम वक्ष्यामिते पश्चात् श्रुणु प्रस्तुतम आदरात। भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम मेरे अंग से उत्पन्न हो, मेरे अंग से उत्पन्न महाप्राज्ञ, तुम निसंदेह मेरे रूप हो, जिसलिए मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है उसे तुम समझो। मैं कह रहा हूँ, मेरे अंग से उत्पन्न तुम मेरा कार्य कर सकते हो, तुम मेरे भी पूज्य होगे, इसमें संदेह नहीं है। भगवान इस रूप में है, जैसे माता धूमावती के रूप में है, माता बगलामुखी के रूप में है, और धूमावती माता ने क्या किया है, भगवान शिव को का ही भक्षण कर लिया। कब किया, जब क्रोध में थी तो उन्होंने भगवान से कहा कि मुझे भूख लगी है, और भगवान तब समाधि में लीन थे, दो बार तीन बार कहीं जब नहीं माने तो उन्होंने शिव को उठाया, शिव को ही खा लिया। तो माता के बहुत सारे रूप है, तो विष्णु भगवान के भी बहुत सारे रूप हैं। तो विष्णु भगवान ने मुंडित सन्यासी के रूप में उत्पन्न किया, मैले कुचैले वस्त्र वाला भी था वो सन्यासी, लेकिन वो बोल रहे हैं कि तुम महाप्राज्ञ हो, बहुत बुद्धिमान हो, प्रज्ञा है तुम्हारे अंदर, और तुम मेरे लिए भी पूज्य होगे अगर तुम मेरे अनुसार काम करोगे। तो तुम्हारा अरिहन तथा और भी अनेक अच्छे नाम होंगे, अरिहंत बुद्ध,
3: हाँ
2: मतलब शत्रु,
3: मतलब को मारने
2: तुम शत्रु को मारने वाले होगे, तथा और भी अनेक अच्छे नाम होंगे, स्थान बाद में बतलाऊंगी, इस समय जो मैं कह रहा हूँ उसे आदर से सुनो। हे मायावी, तुम 16,000 श्लोकों का एक शास्त्र बनाओ जो श्रुति स्मृति और वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध हो। वह शास्त्र अपभ्रंश भाषा में लिखा गया हो, उसका विषय कर्मवाद हो, उसे प्रयत्न से लिखो, उसका प्रचार आगे चलकर होगा। मैं तुम्हें उस शास्त्र निर्माण की शक्ति देता हूँ। अनेक प्रकार की माया भी तुम्हारे अधीन हो जाएगी। परमात्मा हरि के वचनों को सुनकर उस मायावी ने जनार्दन से कहा, मुंडी ने कहा, हे देव, हे प्रभु, मुझे जो करना है उसका शीघ्र आदेश दीजिए। आपकी आज्ञा से संपूर्ण कर्म सफल होगा। उन्होंने कर्म परक शास्त्र लिखने की आज्ञा दी भगवान विष्णु ने, क्योंकि वेद क्या है, ज्ञान के स्रोत हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम शास्त्र विरुद्ध मत वाला शास्त्र लिखो और जिसमें कर्म की प्रधानता हो, भक्ति की प्रधानता नहीं हो, कर्म की प्रधानता हो, ऐसा शास्त्र तुम लिखो 16,000 श्लोकों से युक्त जो हो, और अपभ्रंश भाषा में हो, संस्कृत में नहीं हो, अपभ्रंश माने संस्कृत से थोड़ा सा हट करके हो, उससे गिरा हुआ। संस्कृत को तो सुसंस्कृत कहा गया, परिष्कृत भाषा कहा गया, विद्वानों की भाषा कहा गया है, तो वो विद्वानों की भाषा नहीं हो, अपभ्रंश भाषा हो, ऐसा तुम करो।
4: अब देखिए, कहते हैं कि सनत कुमार जी ने कहा, ऐसा कहकर विष्णु जी उसे माया शास्त्र पढ़ाने लगे।
5: अच्छा,
4: कहते हैं विष्णु भगवान तो माया भी तो है ही, परम माया भी है और देवताओं का कार्य भी करते हैं। तो विष्णु भगवान ने कहा, इत्युक्त्वा पाठयामास शास्त्रम मायामयम तथा इहैव स्वर्ग नरक प्रत्ययो नान्यथा पुनः। तमुवाच पुनर्विष्णु स्मृत्वा शिव पदाम्बुजम मोहनीया इमे दैत्या सर्वे त्रिपुरवासिना कार्यास्ते दीक्षिता नूनम पाठनीया प्रयत्नतः मदाज्ञया न दोष ते भविष्यति महामते। वो कहते हैं कि मेरी आज्ञा से तुमको कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि तुम गलत काम तो करोगे, गलत काम क्या भक्ति से दूर करोगे सबको,
5: तो आज्ञा मेरी होगी क्यों,
4: लेकिन आज्ञा मेरी है। ऐसा कहकर विष्णु जी उसे माया शास्त्र पढ़ाने लगे। स्वर्ग नरक सब यही है और कहीं उसकी प्रतीति नहीं होती। शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके विष्णु ने फिर उनसे कहा कि त्रिपुरवासी इन दैत्यों को तुम मोहित कर दो, प्रयत्न पूर्वक पढ़ाकर तुम इन्हें दीक्षित करो। हे महामती, मेरी आज्ञा से तुम्हें दोष नहीं लगेगा। श्रौत स्मार्त धर्मों का प्रकाश तो निसंदेह होगा ही। हे मुनि, तुम अपनी इस विद्या से उन्हें प्रभावित करो। हे मुंडी, तुम त्रिपुरवासियों का नाश करने के लिए जाओ, तामस धर्म का प्रचार कर उन तीनों पुरों का नाश करो। हे विभू, उसके बाद तुम अपने धर्म के साथ तब तक मरुस्थली में रहना जब तक कलयुग ना आ जाए। अब देखिए, कलयुग लाने के लिए भगवान विष्णु ने बहुत सारे उपाय किए, क्योंकि कलयुग तो आएगा ही तभी जब धर्म का नाश होगा।
5: हाँ।
4: तो वो कहते हैं कि प्रवृत्ते तो युगे तस्मिन वियो धर्म प्रकाश्यताम शिष्यश्च प्रतिशिष्यश्च वर्तनीय त्वया पुनः मदाज्ञया भवत धर्मो विस्तारम यास्यति ध्रुवम मद अनुज्ञा पुरो नित्यम गतिम प्राप्यसि माम किम एवम आज्ञा तदा दत्ता विष्णुना प्रभु विष्णुना शासना देव देवस्य हृदा त्वान्तर दधे हरे। कहते हैं कि तुम जब ऐसा करोगे तो क्या होगा, श्रौत स्मार्त धर्मों का प्रकाश तो निसंदेह होगा, लेकिन तुम अपनी इस विद्या से उन्हें प्रभावित करो। हे मुंडी, तुम त्रिपुर वासियों का नाश करने के लिए जाओ, तामस धर्म का प्रचार करके तीनों पुरों का नाश करो। हे विभु, तुम उसके बाद मरुस्थली में रहना, कलयुग ना आ जाए जब तब तक, कलयुग के आने पर फिर शिष्य प्रशिष्यों द्वारा अपने धर्म का प्रचार करना। जब कलयुग आ जाएगा तो शिष्य प्रशिष्य आदि करके तुम अपने धर्मों का प्रचार करना, अपने धर्म का। मेरी आज्ञा से तुम्हारा धर्म निश्चित रूप से फैलेगा। मेरी आज्ञा का पालन करने पर तुम मेरी गति को प्राप्त करोगे। सर्व समस्त विष्णु महादेव जी की इच्छा से इस प्रकार हृदय से आज्ञा देकर अंतर्धान हो गए। उसके बाद उस मुंडी ने विष्णु की आज्ञा अनुसार तदनुरूप चतुर शिष्यों को तैयार करके उस मायामय शास्त्र को उन्हें स्वयं पढ़ाया। जैसा यह था वैसे ही वे चार शिष्य भी थे। वे परमात्मा हरि को प्रणाम करके वहां बैठ गए। हरि ने भी हे मुनि, शिव जी की आज्ञा का पालन करने के लिए उन चार शिष्यों से प्रेम से कहा, मेरी आज्ञा से जैसे तुम्हारे गुरु हैं वैसे ही तुम भी हो जाओगे। तुम धन्य हो, तुम्हें निसंदेह सदगति मिलेगी। वे चार चार मुंडी पाखंड धर्म का आश्रय लेकर हाथ में भिक्षा पात्र और मुख के ऊपर पट्टी बांधे हुए मलिन वस्त्र को धारण करते हुए मौन व्रत धारी प्रसन्न होकर धर्म ही परम लाभ है ऐसा कहते हुए वस्त्र निर्मित झाड़ू को हाथ में लिए जीव हिंसा के भय से धीरे धीरे चलते हुए वे सब भगवान को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करते हुए हे मुनि अपने गुरु के सामने बैठ गए। भगवान ने उन शिष्यों का हाथ पकड़कर उन्हें गुरु को सौंप दिया और प्रेम से उनके नामों का उच्चारण किया। जैसे तुम हो वैसे ही ये भी निसंदेह मेरे ही हैं। तुम सब में प्रथम हो इसलिए तुम्हारा नाम पूज्य है। अब भगवान विष्णु की लीला है ये सब कि क्या क्या वो कर रहे हैं देखते हैं। कहते हैं ऋषिर यति ही तथा कीर्य उपाध्याय इति स्वयं इमान्यपि तु नामानि प्रसिद्धानि भवन्तु वः ममापि च भवद्भिश्च नाम ग्राह्यं शुभं पुनः अरिहन्निति तन्नाम ध्येयं पाप प्रणाशनम् भवद्भिश्चैव कर्तव्यं कार्यं लोकसुखावहं लोकानुकूलं चरतां भविष्यति उत्तमा गति। तो कहते हैं कि आप लोग मेरे भी शुभ नाम को ग्रहण कर सकोगे। सब भगवान विष्णु के ही तो हैं। तो अरिहन मेरा यह नाम पाप नाशक है अरिहन। तो आप लोग भी संसार को दुख सुख देने वाला कार्य कीजिए लोक के अनुकूल चलने पर आप भी उत्तम गति को प्राप्त करेंगे ऐसा विष्णु भगवान ने उन लोगों को कहा। अब सनत कुमार जी ने कहा। अब सनत कुमार जी क्या कहते हैं कहते हैं ततः प्रणम्य तम माई शिष्य युक्त स्वयं तदा जगाम त्रिपुरम सद्य शिवेच्छा कारिणम मुदा प्रविश्य तत्पुरम तूर्णम विष्णुना नोदितो वशी महामाया विना तेन ऋषिर मायाम तदा करोत नगरोपवने कृत्वा शिष्यैर्युक्त स्थितिम तदा मायाम प्रवर्त्यामास माइनाम अपि मोहिनीम। अब कहते हैं कि तब वह माया भी शिष्यों को साथ लेकर प्रसन्न होकर शिव जी की इच्छा अनुसार कार्य करने वाले त्रिपुर के पास शीघ्र गया। विष्णु द्वारा प्रेरित उस जितेंद्रिय महामायावी ने ऋषि रूप धारण कर माया फैलाई। शिष्यों सहित नगर के उपवन में जाकर वहां टिक कर उसने मायावी पुरुषों को भी मोहित करने वाली अपनी माया फैलाई। हे मुनि शिवार्चन होने के कारण उस नगर में सहसा उनकी माया नहीं चली जिससे यति कुछ उदासीन से हो गए। फिर उसने विष्णु का स्मरण किया और हृदय से उनकी स्तुति की। हृदय से दुखी होकर वह उत्साहहीन होने लगा। उसके स्मरण करते ही विष्णु जी ने शिव जी का स्मरण किया। उनकी आज्ञा पाकर उन्होंने नारद को याद किया। विष्णु जी के याद करते ही नारद जी वहां पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम कर स्तुति की और उनके सामने बैठ गए। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विष्णु ने नारद जी से कहा आप तो सदा लोकोपकार तथा देव कार्य करने में तत्पर रहते हैं। हे तात शिव जी की आज्ञा से मैं कह रहा हूँ तुम शीघ्र त्रिपुर चले जाओ। वहाँ शिष्यों के साथ एक ऋषि वहाँ के निवासियों को मोहित करने के लिए गया है। अब नारद जी क्या है नारद जी की तो यहाँ की बात उधर उधर की बात इधर करना उनका स्वभाव है और चारों लोकों में भ्रमण सभी लोकों में ये भ्रमण करते हैं। तो नारद जी को भगवान विष्णु ने याद किया और नारद जी वहाँ पहुँच गए। अब सनत कुमार जी कहते हैं अब सनत कुमार जी क्या कह रहे हैं वो कहते हैं कि इत्याकर्ण्य वचस्तस्य नारदो मुनिसत्तम गतस्तत्र द्रुतम यत्र स ऋषिर माइनाम वरः नारदो अपि तथा माई नियोगान माइन प्रभो प्रविश्य तत्पुरम तेन माइन सह दीक्षितः। कहते हैं कि उनकी इस बात को सुनकर मुनिवर नारद वहां गए जहां वह मायावी ऋषि गया था। मायावी विष्णु भगवान की आज्ञा से नारद जी भी उस नगर में जाकर उस मायावी ऋषि से दीक्षित हुए। तब नारद जी त्रिपुर नगर के स्वामी के पास जाकर कुशल प्रश्न पूछने के बाद उन्होंने राजा से सब कहा। क्या कहा नारद जी ने कहते हैं नारद जी कि कश्चित समागतः छात्र यतिर धर्म परायण सर्व विद्या प्रकृष्टो ही वेद विद्या परान्वितः दृष्ट्वा च बहवो धर्मा नैतेन सदृशा पुनः वयम सुदीक्षिताश्चात्र दृष्ट्वा धर्म सनातनम् तवेक्षा यदि वर्ते तद्धर्मे दैत्य सत्तम तद्धर्मस्य महाराज ग्राह्या दीक्षा त्वया पुनः। कहते हैं नारद जी कि आपके नगर में कोई धर्म परायण सभी विद्याओं का ज्ञाता तथा परावेद विद्या में निपुण आया है। हमने बहुत से धर्म देखे परंतु ऐसे नहीं। इसके सनातन धर्म को देखकर हम भी दीक्षित हो गए हैं। हे दैत्यराज उस धर्म में तुम्हारी भी इच्छा हो तो तुम भी दीक्षा ले लो। ये नारद जी किससे कह रहे हैं? त्रिपुरासुर से। सनत कुमार जी ने कहा, महत्वपूर्ण उसकी बात को सुनकर हृदय में आश्चर्य चकित होकर वह दैत्यराज वहां मोहित होकर गया। जब नारद ने दीक्षा ले ली है तो हम भी दीक्षा ले लें, ऐसा सोचकर वह स्वयं वहां गया। उस ऋषि के रूप को देखकर उसकी माया से वह मोहित हो गया। उस महात्मा को नमस्कार करके उसने कहा, क्या कहा त्रिपुराधीश ने? अब देखिए यहाँ से उसका पतन शुरू हो गया। त्रिपुराधीप उवाच, दीक्षां देया त्वया मह्यं निर्मलाशय भो ऋषे अहम शिष्यो भविष्यामि सत्यम सत्यम न संशय। इत्येव तु वचः श्रुत्वा दैत्यराजस्य निर्मलं प्रत्युवाच सुयत्नेन ऋषिः स च सनातनः। मदीया करणीया स्याद् अद्य आज्ञा दैत्य सत्तम तदा देया मया दीक्षा नान्यथा कोटि यत्न था। वो कहते हैं कि हे शुद्ध हृदय वाले ऋषि, त्रिपुराधीश ने कहा कि हे शुद्ध हृदय वाले ऋषि, आप हमको दीक्षा दीजिए, मैं सचमुच आपका शिष्य होना चाहता हूँ। इस प्रकार दैत्यराज के निर्मल वचनों को सुनकर सनातन ऋषि ने कहा, हे दैत्यराज, यदि मेरी आज्ञा का पालन करना है तभी मैं दीक्षा दूंगा, अन्यथा करोड़ प्रयत्न करने पर भी मैं दीक्षा नहीं दूंगा। ऐसी बात सुनकर राजा माया से घिर गया और उसने शीघ्र हाथ जोड़कर यति से कहा। अब दैत्य ने कहा क्या कहा? यथाज्ञां दास्यसि त्वं हि तथैव च न चान्यथा त्वद् आज्ञां नो लंघ्य से सत्यम सत्यम न संशय। कि जैसी आप आज्ञा देंगे मैं वैसा ही करूंगा, मैं सचमुच आपकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करूंगा। अब सनत कुमार जी ने कहा, त्रिपुराधीश के इन वचनों को सुनकर मुख पर से वस्त्र हटाकर ऋषिवर ने कहा, हे दैत्यराज, सभी धर्मों में उत्तम दीक्षा को ग्रहण करो, दीक्षा की विधि से इसे ग्रहण कर कृतार्थ हो जाओ। सनत कुमार जी ने कहा, इतना कहकर उस मायावी ने शीघ्र ही उस दैत्यराज को अपने धर्म से युक्त दीक्षा विधि विधान के साथ दी। उस दैत्यराज के दीक्षित होने पर हे मुनि, स्वाभाविक रूप से सभी त्रिपुरवासी दीक्षित हो गए। हे मुनि, उसके बाद महामायावी मुनि के शिष्य उपशिष्यों से वह संपूर्ण नगर व्याप्त हो गया। तो यहाँ त्रिपुर दीक्षा विधान नामक चौथा अध्याय समाप्त होता है।
6: तो सबको दीक्षा दे दी वहाँ पर।
4: हाँ, जब राजा ही दीक्षित हो गया तो प्रजा तो दीक्षित होगी।
6: हाँ हाँ, बहुत सुंदर प्रसंग रहा और बहुत ही ये प्रभु की माया थी।
4: हाँ,
6: भगवान नारायण की माया जब काम करती है तो तब ऐसे ही फिर बुद्धि भ्रष्ट वो कर ही देते हैं, जैसा वो चाहते हैं वैसा ही होता है। तो लीना जी, एपिसोड समाप्त करने का तो समय हो चला है, तो इसके साथ साथ श्रोतागण भी बैठे होंगे, प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो आप जो ये कविता एक छोटी सी सुनाकर सबको भक्ति में कर दीजिए।
4: कहते हैं, सूरज की ज्योति में, चंद्रमा की शीतलता में, सागर की गहराई में, पर्वत की ऊंचाई में, कौन है समाये? हृदयाधिपति शिव समाधिस्थ शिव, हृदयाधिपति शिव समाधिस्थ शिव।
6: आप हर पंक्तियों में जब भी आप कविता करती हैं उसमें सार कह देते हैं, सार गर्भित जो है कविता होती है वो, और हमारे श्रोता सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अरे एक एक पंक्ति एक एक शब्द का अर्थ जो है बहुत बड़ा है, व्यापक है, उसके बारे में उसको सोचना पड़ता है। तो और बहुत ही आनंद आता है जब चिंतन करते हैं उन पंक्तियों का, उन अर्थों का, तो चिंतन करने में भी बहुत आनंद आता है। और जैसे आप ज्ञानवर्धन करनी है हमारे श्रोताओं का, तो हमारे श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद है।
4: धन्यवाद मन।
6: तो श्रोतागणों, दोस्तों, क्योंकि आप इतने ज्ञानवर्धक प्रसंग लीना जी से सुन रहे हैं, शिव पुराण में से सुन रहे हैं, आप खुद भी लाभ उठाइए और अपने मित्रों को, परिवारजनों को, आप जहाँ भी बैठते हैं, आपके संपर्क में जो भी आते हैं, सबको इस ज्ञान से लाभान्वित कीजिए। आपको उतना ही पुण्य मिलेगा और जितना कि स्वयं तो ले ही रहे हैं, आप सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सबके हिस्से का भी जो पुण्य है वो आपको ही मिलेगा और सबको लाभ तो मिलेगा ही, सबको सब आनंद में होंगे। इस सबके दुख दूर करने का जो पुण्य मिलता है वो भी आपको ही मिलेगा। तो दोस्तों, क्योंकि यह एपिसोड समाप्त करने का समय हो चला है, अब मैं आगे इसको नहीं बढ़ा सकूंगी। अगले एपिसोड में हम पुनः यहीं पर मिलेंगे, मानव रचना रेडियो स्टेशन 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइव।
7: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर नमस्कार, मैं हूं प्रियंका आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मबोध। और हर बार की तरह हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। चलिए इनसे इनका हालचाल जानते हैं। गुड मॉर्निंग।
8: ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
9: ओम शांति। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे।
7: आप भी अपनी शुभकामनाओं के लिए हमें मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट करें। नंबर है 8010781078। हर हफ्ते हम चले आते हैं गीता के ज्ञान को लेकर के, जहां हम बहुत सारी बातें आप लोगों से करते हैं। गीता के ज्ञान में इतना सब कुछ है ना कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कई लोग जिन्हें हम देखते हैं वो ये कहते हैं कि गीता के ज्ञान ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो चलिए अब अपनी जिंदगी को बदलते हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, इतने बिजी हैं कि क्या बताएं, उनसे कुछ पूछो तो यही कि यार हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम कैसे कुछ नया करें। तो रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हमने शुरू किया गीता का ज्ञान प्रोग्राम है आत्मबोध, और इसमें आपको गीता के ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और इन सब के जानकारी के लिए हमारे साथ बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी होती हैं। दूसरे अध्याय पर है हम लोग, जिसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में काफी सारी डिटेल में बातें बताई बीके प्रिया जी और ज्योति जी ने, लेकिन इसमें एक और है लेसन जिसका नाम है आप आत्मा हैं। आत्मा के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम ज्योति जी और प्रिया जी से जानते हैं और बढ़ते हैं ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी, ये जो है इसमें लिखा है आप आत्मा हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह से, मतलब किस तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है, आप अपने तरीके से समझाएं सभी लिसनर्स को।
9: जैसा कि दूसरा अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, और अर्जुन क्योंकि विषाद में है तो सबसे पहले खुद का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को भूल जाते हैं। और श्रीमद् भगवद् गीता का जो दूसरा अध्याय है वो पूरा ही अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पर ही फोकस कर रहा है कि हम कौन है और हम क्या बन करके चल रहे हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा भी कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूये अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हरन्ते हन्यामाने शरीरे। अर्थात है कि यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है, बल्कि यह अजन्मी नित्य सनातन और पुरातन है। मन शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अमर अमर अविनाशी है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है, और प्रथम अध्याय में भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। और उसका जो स्वधर्म है, उसका स्वधर्म क्या है, वो श्री कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात हम सब आत्माओं को बता रहे हैं कि किसी भी, अगर हम स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात आत्मिक धर्म में टिक जाएं, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं।

0: बाहर की जगत की बात बाद में करें, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमारी ही इंद्रियां, हमारी आंख जो चीज देखती है, जो चीज पसंद करती है, बस मन वही भाग रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो हमारे कान जिन बातों को सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो कहीं प्रवचन होंगे या कोई आपकी गली के अंदर भी आप देखें कि कोई कहीं कथा हो रही है, तो लोग पूछेंगे कि क्या वहां से इन्विटेशन आया है, बुलाया गया है, तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते हैं। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे पहुंचे चले जाते हैं
1: बिन बुलाए मेहमान।
0: जबकि हर कोई चाहता नहीं है कि कोई वो चीजें सुने। तो माना कहीं ना कहीं हमारी कान की इंद्रियों को रस मिलने लगा है उस नेगेटिव बातों में, तो हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं और मन भी उसी में रमने लगा है। तो यहाँ पर इस अध्याय में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। आत्मा इस शरीर में राजा है और आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन के ये तीन तो शक्तियां हैं, लेकिन आत्मा अपने स्वधर्म कौन कौन से गुण है उसके, मूलभूत गुण अगर कहें, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे डे बाय डे में आत्मा तमोगुणी बन गई है। तो सतोगुणी क्यों कहा गया, क्योंकि आत्मा के सात गुण है। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में ले तो कहा जाता है के पी स्क्वायर एल एच बी पी, अर्थात के फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, पी फॉर प्योरिटी, जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर पी फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, पी फॉर पीस, एल फॉर लव, एच फॉर हैप्पीनेस, बी फॉर ब्लिस और लास्ट पी पावर। तो ये सात गुण आत्मा में निहित है। इन जब सातों गुणों को आत्मा महसूस करती है, उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा सतोगुणी कहलाती है। अब हम सब देखें अगर तो मनुष्य के मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्या, कहीं ना कहीं इसी धुरी में जाकर के टिक जाते हैं। आज इस ज्ञान की भी अज्ञानता हो गई है। ज्ञान को हम सब सोचते हैं शायद किताबी ज्ञान, लेकिन अपने प्रकृति का ज्ञान, खुद का ज्ञान होना, माना वही संपूर्ण ज्ञान है, खुद के बारे में जानना। आज हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता है,
1: खुद के मन में क्या है
0: वो नहीं पता है, नहीं ना पता। उससे हम दूर हैं। तो मन की अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान। प्योरिटी अर्थात पवित्रता, जो पवित्रता हमारे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना ना आए, उसको कहा गया प्योरिटी। और शांति, शांति की अगर बात करते हैं तो शांति जो है वो क्या चीज है, शांति के लिए लोग सोचते हैं शायद चुप बैठ जाना, है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक राज्य के अंदर ऐलान किया गया कि चित्र बनाना है शांति के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें से दो चित्र डिसाइड किए गए, दो चित्र चुनाव करके आए। एक चित्र था जिसके अंदर बहुत सारी प्रकृति थी, ग्रीनरी थी, और एक चित्र था, अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं शांति के रूप में, अगर आपको कहा जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
1: मैं अगर बोलूं तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, यही होता है
0: जी। बिल्कुल, उन्होंने भी एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति, नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो ऑफिस से कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं, क्या वो नेचर वाला या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
1: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है और वो शांति से अपने बच्चों को खिला रही
0: है। तो यही चीज जो है वहाँ पे उसी चित्र को ही वहाँ पर भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया, और उस चित्र में

0: से यही तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तब भी हम स्टेबल रहें, उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है। जबकि प्रेम कहते हैं ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, माना हर एक आत्मा से, हर एक प्रकृति की जीवों से, पंछियों से, हम पेड़ पौधों से समान भाव से प्यार करें, उसको कहा गया प्रेम। फिर आती है बात सुख की, तो जीवन में जब शांति आती है, प्रेम आता है, तो सुख की अनुभूति होने लग जाती है। और फिर लास्ट आनंद है, और आनंद का कोई विपरीत अर्थ शब्द नहीं है, आनंद अपने आप में ही बहुत परफेक्शन के साथ है, उसको ब्लिस कहा गया, और इसका कोई विलोम शब्द नहीं, क्योंकि पवित्रता का फिर भी अपवित्रता है, शांति का अशांति है, प्रेम का क्रोध है, लेकिन आनंद माना जो परमानंद की अनुभूति कराए। और लास्ट है, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में परफेक्ट हो जाती है। और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं। ये मैं और मेरा, मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम अपनी परफेक्शन में आ जाएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे।
1: बिल्कुल। और ये जितनी भी सात चीजें आपने बताई हैं, इसको कहीं बाहर से कमाना नहीं है या किसी से अर्जित नहीं करना है, ये सारी अपने अंदर है, बस इसको जानना है, इसको समझना है, बाकी भगवान ने ये इन बिल्ड हमारे लिए रखी है। बिल्कुल सही कहा, हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते। और वही आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर आप खुद को जान लेते हैं, बस वही एक आत्मा का पाठ है, वही जो है पूरा परफेक्ट है आप खुद में। बहुत सही बात बोली। गीता के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और अध्याय दो है, नाम है ज्ञान योग, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक आत्मा है के बारे में। ज्योति जी ने बहुत खूबसूरती से बताया, और अब हम प्रिया जी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में आगे क्या है। प्रिया जी बताइए।
2: आगे जैसा कि हम देखते हैं कि अर्जुन को वो बार बार याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा कि तुम्हें युद्ध करना ही है, जिसके लिए वो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थात पार्थ, अर्थात जो उनका स्टूडेंट अर्थात अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम चाहे मरकर के स्वर्ग पहुंचो या फिर जीवित रहकर युद्ध करके इस पूरी सृष्टि पर जीत प्राप्त कर सुख को भोगो, तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट यही है कि तुम युद्ध करो। तो क्योंकि सिंपल कुछ किए बिना जाना और कुछ करके जाना, उसमें बहुत फर्क होता है। तो यहाँ उनको वो बार बार याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध करना है, और युद्ध करने में हम कॉन्शियस ये नहीं हुए कि कौन जीतेगा या हारेगा, हमें कॉन्शियस होना है कि हमारी फाइट अच्छे से हो। तो फिर बात यहाँ आती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि क्या हमें फिजिकल फाइट के लिए परमात्मा प्रेर रहा है, हमें वो गाइडलाइंस दे रहा है कि शुड वी गेट द वेपन्स, कि हमें हथियार उठाने हैं। पर यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे गुणों के हथियारों की बात करता है कि जहाँ मेरा मेंटल फाइट है, जहाँ द्वंद है, जहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, जहाँ डिलेमा स्टार्ट होते हैं, वहाँ मैं अपने फोकस करूं इंटरनल शक्तियों पर, जैसा कि ज्योति जी ने बताया कि ये सब चीजें मेरे पास, मुझे परमात्मा से आपने कहा इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो उस पर अगर मैं फोकस करता हूं तो मेरी ये फाइट मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है
1: जी।
2: और फाइट मुझे करनी ही है, बिना फाइट किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इसी योग को जो आपने कहा ज्ञान योग, अध्याय का नाम है, तो यहाँ पर परमात्मा हमको संपूर्ण ज्ञान का परिभाषा, डेफिनेशन, वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। मीन्स अगर मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, तो मैं अगर पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान भी अर्जित कर लेता हूँ तो भी मैं इनकम्प्लीट हूँ। और दैट्स वाई देखा ये गया है कि जब हम हायर लेवल पर किसी बुलंदी पर किसी को देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है। और वो क्या रह गया है कि खुद को जाना और खुद के बाद खुदा को पाना। ये चीज जो हमारी जिंदगी में रह जाती है उसी के लिए हमारे को परमात्मा या कृष्ण रूप में हमारे को बता रहे हैं। उसके बाद वो हमारे को याद दिलाते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि संस्कार, जैसे कि ज्योति जी ने कहा, तो मन जो है वो कई तरह के थॉट्स को क्रिएट करने की एक फैक्ट्री है। बस इस फैक्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो कर रहा है, यानी थॉट्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा माल आर का माल है, मीन्स रिजेक्टेड है। तो जिसमें बुद्धि हमको हेल्प करती है कि क्या रिजेक्टेड है, क्या सही है, क्या गलत है। जैसे मन नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी, वेस्ट, टॉक्सिक, एलिवेटेड, राइट थॉट्स, बहुत तरह के थॉट्स करता है और हमारे को बुद्धि गाइड करती है कि एलिवेटेड मीन्स ऐसे थॉट्स जिसमें हम सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है। जबकि उसी के बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहां हम सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान की बातें सोचते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, यानी वो व्यक्ति कितना ही टॉक्सिक थॉट्स में भरा हुआ होगा तो इसीलिए उसे टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आता है संस्कार। संस्कार एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है, जैसे कि प्लेन्स में भी एक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सब कुछ, उसी प्रकार से आत्मा में अपने आप एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे हैं सबका हिसाब करने पर, नहीं, ये इंटरनली ही हम सोल्स के साथ ही फीड है, बिल्ट है, कि जो हमारा बुद्धि है, अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है, वो धर्मराज का फॉर्म है। और जो हमारे संस्कार्स हैं, जो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट है, वो चित्रगुप्त है। और चित्रगुप्त को अगर हम उल्टा कर देते हैं दोनों शब्दों को तो वो बनता है गुप्त चित्र, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गुप्त रीति हर चीज सेकंड बाय सेकंड रिकॉर्ड हो रही है
1: जी।
2: और जब एंड ऑफ द डे, यानी जब मृत्यु आती है, तो व्यक्ति को ऊपर जाके नहीं, उस लास्ट मोमेंट्स में ही बुद्धि और संस्कार का, जो यहाँ पर धर्मराज और जो मैंने कहा चित्रगुप्त का फॉर्म है, वही वहां अंदर ही अंदर सब कुछ डिसाइड होता है और फिर उसको नेक्स्ट बर्थ जो है मिलता है। और कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति इसीलिए डेफ, डम्ब और ब्लाइंड हो जाता है, उसको बाहर के दुनिया से कट जाता है। उसके बाद उन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे आप कर्म करते हो तो कर्म करना है तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करना है। और उन्होंने विशेष ये कहा कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संलुप्ते दुतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं, तो उस ग्लास की समुद्र के आगे खड़े होने पर कोई वैल्यू नहीं रहती।
1: बिल्कुल।
2: तो उसी प्रकार से परमात्मा को अगर मैंने पा लिया है तो वो शास्त्रों का वहां पर वैल्यू उस ग्लास के लेवल पे ही होता है कि जब शास्त्रों का ज्ञाता सागर मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर परमात्मा अर्जुन को ये याद दिलाते हैं, जैसे कहा कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में आना, कुरुक्षेत्र जैसे बताया कि कर्म क्षेत्र, आप चाहे किचन में हैं या बेड पे सो रहे हैं, देन टू आप कुछ तो कर ही रहे हैं। अगर आप सिर्फ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो भले वो एक्शंस नहीं है, कर्म नहीं है, पर वहीं कर्म को कराने का एक हिस्सा जरूर है। तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं। तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है। इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्माते संगोऽस्त्व अकर्मणे। अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है, एफर्ट्स, वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि हम डर चुके होते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम फुल्ली उसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से भी, शेकिंग रहने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। और फिर लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कर्म जो करना है वो एकदम ऐसे, जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कहा कि ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को कहा कि कर्म कैसे, मतलब उन्होंने पूछा कि कर्म कैसे करें, तो उन्होंने कहा कल जब आना तो कटहल लाना, चाकू लाना और तेल लेके आना। व्यक्ति नहीं समझ पाया कि क्यों, तो फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचा तो बोला कि अब तुम कटहल को काटो। तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है, वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता, अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं कि कर्म हमको अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोल दें, लगा लें, तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
1: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई समझाने के लिए, बहुत मजा भी आया और काफी कुछ हमें समझ में आया। और साथ ही हम तो प्रिया जी और ज्योति जी से जुड़े ही हैं, साथ ही आपसे भी जुड़े हैं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं ज्योति जी या प्रिया जी से, हमारा नंबर है 8010781078। गीता का ज्ञान चल रहा है, अध्याय 2 है जिसका नाम है ज्ञान योग। हम एक आत्मा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और काफी सारी नॉलेज, काफी अच्छी बातें हमें ज्योति जी और प्रिया जी से जानने को मिल रही है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस वक्त अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातें हैं, वो हम ज्योति जी से जानते हैं।
0: कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम तैव कवता मनीषिणे जनम बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात इसका भावार्थ कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनके बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर, माना कर्मों से अतीत होकर, कर्म की चिंता ना करके, निर्विकार ही परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ यह है कि कर्मों के फल की आसक्ति स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। इसमें दूसरा जो श्लोक कहा गया उसमें स्थित प्रगस्य का शब्द का यूज किया गया है। तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, परमात्मा से कहते हैं कि हे केशव, ये बताओ कि स्थिर प्रग, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण है, किसको कहेंगे हम जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो एकरस स्थिति वाले हैं, जिनकी कर्मातीत अवस्था पहुंच गई है जिनकी, तो उनकी क्या क्या विचारधारा होगी। तो वहां श्री भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, सभी कामनाओं का त्याग कर, जो व्यक्ति त्याग कर देता है और आत्मा से, माना आत्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञा है। तो वहां पे माना, क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं है, जहां कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं तो वहाँ ना तो, और मनुष्य जो स्थित प्रग होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी पदार्थ की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत, अर्थात मन में लगाएं आइस फैक्ट्री, मुख में लगाएं शुगर फैक्ट्री अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा, माना संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती हैं, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो, और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है उसका किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम शरीर से जुड़े हुए होते हैं तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति, देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है तो हमारी खुद की स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका आप ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से ली, आपने पहनी भी, लेकिन वो आपको कम्फर्ट नहीं हो रही है तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी है। इसी विधि से जब हम कोई चीज आकर्षण में तो आकर्षित हो जाते हैं, देह को देख रही है चीजें उसमें आकर्षित, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है तो वो हमारे दुख का कारण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मन की स्थिति, एक बार एक व्यापारी थे और उनको, हीरो के व्यापारी थे, तो उनके एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप जो है एक बहुत अमूल्य हीरा खो गया है। तो वो बैठे थे अपने सभी कई साथ में साथी बैठे थे, वो दो मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है। उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए, अगर शायद हम वहां हों प्रैक्टिकली सोच के देखें तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला देंगे, हम फटाफट किया अरे इतना अमूल्य हीरा खो गया कहाँ खो गया। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहां पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी व्यापारी से भी जब पूछा तो वहां पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं हिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थिर प्रज्ञ स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं, वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है। आज कई चीजों का भय लोगों को सता रहा है, अंधकार का भय है, चीजों को खोने का भय है, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों से व्यक्ति भयभीत है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। और फिर क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी मन को स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो अपने आप में थोड़े समय के लिए आया हुआ कहा जाता है पागलपन है जो बहुत कुछ विनाश कर देता है। तो यहाँ पर कहा भी गया, एक बार एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी थे और उनका एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र थे, उस शास्त्रार्थ के अंदर उनकी ही पत्नी निर्णायक के रूप में बैठी थी मंडन मिश्र की, और उस चीज में बहुत देर से शास्त्रार्थ चल रहा था और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि जीता कौन है। तो कुछ समय के लिए उनकी पत्नी को वहां से उठ के जाना पड़ा और उन्होंने उनके गले में, दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी, और फूलों की माला डाली तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूं तब तक ये फूल, ये जो मालाएं हैं ये मेरी जगह लेकर के कार्य करेंगे। तो जब वो आई काफी देर के बाद और पूरी शास्त्रार्थ कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज, फिर उन्होंने निर्णय भी दिया, उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य विजयी हैं। तो सबने पूछा उसकी, आपने तो इस बीच में आप थे भी नहीं तो आपने कैसे निर्णय ले लिया, तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं उनको क्रोध आया है और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध कभी भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो उन्होंने जिस चीज की बात कही कि उन्होंने जैसा निर्णय दिया कि जो व्यक्ति कोई भी चीज का ज्ञान रखता है मन की स्थिरता रखता है तो उसके अंदर किसी भी राग भय या क्रोध से वो मुक्त होता है, उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे। इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे, जब मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा जिस कार्य को करना चाहूं उस समय ही मैं एक्टिव मोड में हूं, अदरवाइज मैं अपनी शांत स्थिति में अपनी संपूर्ण स्थिति में अपने अंदर आनंद का अनुभव करें। और यही चीजें आप देखते जाएंगे जो जो लोग ज्ञान को समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां देखी भी हैं लेकिन बहुत बखूबी उनको निभाया है तो वो धीरे धीरे बहुत काम डाउन हो जाते हैं और उनकी स्थिति एकदम शांत हो जाती है। और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए और स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए अर्थात अपने मन को स्थिर रखने के लिए इन सारी चीजों से हमें पहले जरूरत है खुद खुद को रियलाइज करने की।
1: जी, और वही ना, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो उससे पहले जो आप हैं
0: जी
1: आपको बदलना पड़ेगा
0: जी।
1: आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी आप उस आगे बढ़ते हुए ज्ञान को समझ पाएंगे, आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली हैं और अध्याय दूसरा है ज्ञान योग है, इसमें बहुत सारे श्लोक और उसके जो भावार्थ प्रिया जी और ज्योति जी ने बताए हैं ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हम तक पहुंचाए। और ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, अब आप जल्दी से इसके आगे के बारे में बताएं।
0: जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि जब हम किसी एक चीज को बार बार फोकस्ड करते हैं तो उसी आधार पे हमारी बुद्धि वैसे ही चलने लगती है। तो अगला जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नावम इवाम्भस्सी। माना अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नाव तैरती है और नाव के प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है अगर बहुत तेज वायु चल रही है, तो इसी प्रकार जब विचारशील व्यक्ति होता है तो उसकी इंद्रियों पर, मतलब जो इंद्रियां हैं, अगर वो किसी एक चीज पर फोकस्ड हो गई है, बार बार उसी चीज को देख रही है, वही इंद्री एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसको कहा जाएगा कि वो स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि यहाँ इस पूरे ही इसमें आत्मा का और स्थिति की ही बात की जा रही है। माना कहने का अभिप्राय अगर हम इसको देखें, सिंपल वे में देखें, तो जो राजा की पोजीशन है वो राजा की पोजीशन एक है कि आपने पहन लिया, मुकुट पहन लिया, ड्रेस पहन ली और वो सारी चीजें आप रेडी होकर के सिंहासन पर बैठ गए, वो राजा नहीं है। राजा माना जिसके अंदर वो राजापन की क्वालिटीज हों, जो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वो पोशाक ही पहननी है, जरूरी नहीं है हमें सर पर ताज ही लेना है, लेकिन वो राजा वाली जो डिसीजन वाली क्वालिटीज हैं, वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज वही राजा जो आत्मा इस शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी हैं, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली। इसीलिए आज हम जो वो राज्य जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं। और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस्ड करें। कहा जाता है, इसमें बहुत अच्छी एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज 3 बजे से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, पूरी रात वो जागते रहते हैं, 3 बजे से उनकी नींद का समय शुरू होता है। और जो ज्ञानी होगा, आत्म संयमी होगा, वो उसके जागने का समय है। यहाँ रात्रि की बात उस 3 बजे के समय से कही गई है, 3:30 के टाइम से कही गई, 4 बजे जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है। तो अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अपनी आत्मा अपनी आत्म स्वरूप में टिकना है और अपनी स्थिति को भरपूर बनाना, उसके लिए सबसे अच्छा समय दिया गया अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है और हम डिसीजन देख सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं। हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट होकर के उस पीस को फील कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम हम सोने में गंवा देते हैं। इसीलिए आज हम आत्म संयमी के बजाय हम कहीं ना कहीं दैहिक वृत्तियों में फंसते जा रहे हैं। और ये पूरा ही पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें अपने तन के जो तन का भान है उसको हमें भूलना है और आत्मिक स्थिति में आत्मा को राजा की सीट पर बैठाकर डिसीजंस लेने हैं। तो वो व्यक्ति ही अपने गुणों को जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा।
1: जी, बहुत खूब कहा ज्योति जी ने। और इसी के साथ अब जो हमारा अध्याय है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो सेकंड अध्याय है वो खत्म हो गया है और अब हम बढ़ेंगे थर्ड अध्याय की तरफ, जिसका नाम है कर्म योग। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म के बारे में बात होगी और ये सारी हम बातें करने के लिए अगले हफ्ते आएंगे। तो अभी फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, हम जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बाकी प्रोग्राम्स को एंजॉय करें और बने रहिए रेडियो मानव प्रश्न 107.8 FM पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.7 वाट पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं बहुत सारे आध्यात्मिक प्रसंगों की, कथाओं की। बहुत सारा ज्ञान हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ठीक की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागिनी खदासी जी, चिरणाशित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागिनी खदासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: हरे कृष्ण
0: जी। श्रोताओं, बहुत सारे प्रसंगों के बारे में, कथाओं के बारे में रागिनी खदासी जी हमें बता रही हैं। महाभारत में जो समाहित है, महाभारत ये बहुत ही महान ग्रंथ के बारे में हम आजकल इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं। और पिछले एपिसोड में हमने कर्ण की जन्म कथा को जाना था रागिनी खदासी जी से, तो आज के कार्यक्रम में रागिनी खदासी जी आप कौन सी कथा हमारे श्रोताओं को सुनाने वाली हैं?
1: जी, ब्राह्मण की अरनी लाने के लिए पांडवों का मृग के पीछे जाना और भीमसेन आदि चारों भाइयों का एक सरोवर में निर्जीव होकर गिरना।
0: जी,
1: तो द्रौपदी के हरे जाने पर अत्यंत दुखी होकर राजा युधिष्ठिर कामक वन को छोड़कर भाइयों से ही द्वैत वन में ही आ गए। वहाँ सुस्वादु फल मूल आदि की प्रचुरता थी। वहाँ वे मिताहारी होकर फलाहार करते हुए द्रौपदी के सहित रहने लगे। उस वन में एक ब्राह्मण के अरणी सहित मंथन काष्ठ से एक हिरण सिंह खुजलाने लगा। देवयोग से वे काष्ठ उसके सिंह में फंस गया। मृग कुछ बड़े डील डॉल का था, वह उसे लिए उछलता कूदता दूसरे आश्रम में पहुंच गया। उसे देखकर वह ब्राह्मण अग्निहोत्र रक्षा के लिए घबराकर जल्दी से पांडवों के पास आया। उसने भाइयों के साथ बैठे हुए महाराज युधिष्ठिर के पास आके कहा, राजन, मेरे अरणी के सहित अपना मंथन काष्ठ पेड़ पर टांग दिया था। उसमें एक मृग, मतलब जो यज्ञ के लिए जो लकड़ी चाहिए होता है वही।

0: उन्होंने टांग दिया था पेड़ पे, तो
1: जी
0: उसमें एक मृग अपने सिंग खुजलाने लगा और वो इसके सिंग में फंस गया। उस विशाल मृग चौकड़ी भरता हुआ लेकर भाग गया। तो आप उसके खुरों पे चिन्ह देखते हुए उसे पकड़िए और वह मंथन कास्टल ले आइए, जिससे मेरे अग्निहोत्र का लोप ना हो। महाराज युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ, वे भाइयों सहित धनुष लेकर मृग के पीछे चले। सब भाइयों ने उसे बीधने का बहुत प्रयत्न किया किंतु वे सफल ना हुए। उसे ना देखकर वे हतोत्साह हो गए और बहुत दुख हुआ। घूमते घूमते वे गहन वन में एक वटवृक्ष के पास पहुंचे, भूख प्यास से शिथिल होकर उसकी शीतल छाया में बैठ गए। धर्मराज ने नकुल से कहा, भैया तुम्हारे ये सब भाई प्यासे और थके हुए हैं, यहाँ पास ही कहीं जल या जलाशय के पास उत्पन्न होने वाले वृक्षों हो तो देखो। नकुल ने जो आज्ञा कहकर वृक्ष पर चढ़ गए और इधर उधर देख कर कहने लगे, राजन मुझे जल के पास लगने वाले बहुत से वृक्ष दिखाई दे रहे हैं और सारसों का शब्द भी सुनाई देता है कि वहाँ अवश्य ही पानी होगा, तो सौम्य तुम शीघ्र ही जाओ और तरकसों में पानी भर लाओ। नकुल ने बहुत अच्छा कहा। वहाँ सारसों से घिरा हुआ एक बड़ा निर्मल जल देखकर वे जो ही पानी पीने के लिए झुके, उन्हें ये आकाशवाणी सुनाई दी, तात नकुल साहस न करो, पहले ही से मेरा एक नियम है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो उसके बाद जल पीना और ले जाना। किंतु नकुल को बहुत प्यास लगी हुई थी, उन्होंने उसकी वाणी की कोई परवाह नहीं की, किंतु जो ही वे शीतल जल पिया उसके पीते हुए भूमि पर गिर गए। नकुल को देर हुई देख कुंती नंदन युधिष्ठिर ने वीर सहदेव से कहा, सहदेव तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता भाई को बहुत देर हो गई, अब तुम जाकर उन्हें लेवा लाओ और जल भी लेते हो। उन्होंने भाई नकुल को मृत अवस्था में पृथ्वी पर पड़े देखा, उन्हें भाई के लिए बड़ा शोक हुआ किंतु इधर प्यास भी पीड़ित कर रही थी, वे पानी की ओर चले। आकाशवाणी ने फिर कहा, मेरे पहले प्रश्नों का उत्तर दो ना फिर जल पीना और ले जाना। किंतु जैसे ही उन्होंने शीतल जल पिया उसके पीते हुए भी भूमि पर गिर गए। धर्मराज ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ने जाके देखा कि वहाँ उन्होंने देखा कि दोनों भाई मरे पड़े हैं। अर्जुन ने कहा, जरा प्रकट होके रोको। फिर से वापस वही आकाशवाणी आई कि तुम नहीं जल ले जा सकते। तो अर्जुन ने कहा, प्रकट होके रोको, मेरे बाणों से बेध होकर ऐसा कहने का साहस नहीं कर सकोगे। कौशल दिखाते हुए सारी दिशाओं को अभिमंत्रित बाणों से व्याप्त कर दिया। तब यक्ष ने कहा, वह एक यक्ष था जिसकी आकाशवाणी हो रही थी, अर्जुन इस तथा उद्योग से क्या होना है, तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर जल पी सकते हो, यदि बिना उत्तर दिए पियोगे तो पीते ही मर जाओगे। युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, भीम ने उसके प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल पिया और पीते हुए भूमि पर गिर गए। महाराज युधिष्ठिर जाने को खड़े हो गए, जलाशय के तट पे पहुंचकर उन्होंने देखा उनके चारों भाई मरे हुए पड़े हैं। इन वीरों को किसने मारा है, उनके अंगों में कोई शस्त्र प्रहार का तो चिन्ह नहीं है, यहाँ किसी के चरण चिन्ह भी नहीं दिखाई देते। जिसने मेरे भाइयों को मारा है मैं समझता हूँ वह कोई महान प्राणी होगा, क्योंकि मर जाने पर भी मेरे इन भाइयों के शरीर में कोई विकार नहीं जान पड़ता और इनके चेहरे का रंग भी खिला हुआ है। अब ये सोचकर वे जल में उतरने को तैयार हुए, उसी समय आकाशवाणी सुनाई दी, मैं बगुला हूँ, मैंने ही तुम्हारे भाइयों को मारा है, यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हें भी इन्हीं के साथ तुम सोओगे। युधिष्ठिर ने कहा, ये काम पक्षी का तो हो नहीं सकता, अतः मैं आपसे पूछता हूँ कि आप रुद्र वसु या मरुत आदि प्रधान देवताओं में से कौन है। यक्ष ने कहा, मैं खोरा जलचल पक्षी ही नहीं हूँ, मैं यक्ष हूँ, तुम्हारे ये महान तेजस्वी भाई मैंने ही मारे हैं। यक्ष की अमंगलमय कठोर वाणी सुनकर राजा युधिष्ठिर उसके पास खड़े हो गए। उन्होंने देखा एक विकट नेत्रों वाला विशालकाय यक्ष वृक्ष के ऊपर बैठा है। राजन तुम्हारे इन भाइयों को मैंने बार बार रोका था, फिर भी इन्होंने मूर्खता से जल ले जाना चाहा, इसीलिए मैंने इन्हें मार डाला। अब आप प्रश्न कीजिए, युधिष्ठिर जी ने कहा। यक्ष ने पूछा, सूर्य को कौन उदित करता, उसके चारों ओर कौन चलते हैं, उसे अस्त कौन करता है और वह किसमें प्रतिष्ठित है। युधिष्ठिर जी ने कहा, ब्रह्म सूर्य को उदित करता है, देवता उसके चारों ओर चलते हैं, धर्म उससे अस्त करता है और वे सत्य में प्रतिष्ठित है। ब्राह्मणों में देवत्व क्या है, प्रश्न यक्ष ने पूछा। उनमें सत्पुरुषों का सब धर्म क्या है, मनुष्यता क्या है और असत्पुरुषों का सा आचरण क्या है। वेदों का स्वाध्याय ही ब्राह्मणों में देवत्व है, तो वेद सारे चारों वेदों का स्वाध्याय करते रहते हैं, वही ब्राह्मण है।

0: सब सत्पुरुषों का सा धर्म है। मरना मानुषी भाव है और निंदा करना सत्पुरुषों का सा आचरण है। यक्ष से पूछा क्षत्रियों में देवत्व क्या है, उनमें सत्पुरुषों का सा धर्म क्या है, मनुष्यता क्या है और उनके असत्पुरुषों का सा आचरण क्या है। विश्व जी बोले बाण विद्या क्षत्रियों का देवत्व है, यज्ञ उनका सत्पुरुषों का सदा धर्म है, भय मानवीय भाव है, अधीनों की रक्षा न करना सत्पुरुषों का आचरण है। पृथ्वी से भी भारी क्या है, यक्ष ने पूछा, आकाश से भी ऊंचा क्या है, वायु से भी तेज चलने वाला क्या है और तिनकों से भी अधिक संख्या में क्या है। युधिष्ठिर जी बोले माता पृथ्वी से भी भारी है, पिता आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से भी तेज चलने वाला है और चिंता तिनकों से भी बढ़कर है। यक्ष ने पूछा सो जाने पर पलक कौन नहीं मूंदता, उत्पन्न होने पर चेष्टा कौन नहीं करता, हृदय किसमें नहीं है और वेग से कौन बढ़ता है। मछली सोने पर भी पलक नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होने पर चेष्टा नहीं करता, पत्थर में हृदय नहीं है और नदी वेग से भरती है। यक्ष ने पूछा विदेश में जाने वाले का मित्र कौन है, घर में रहने वाले का मित्र कौन है, रोगी का मित्र कौन है और मृत्यु के समीप पहुंचे हुए पुरुष का मित्र कौन है। पूरा साथ विश्व जी बोले साथ के यात्री विदेश में जाने वाले के मित्र है, स्त्री घर में रहने वाले की मित्र है, वैद रोगी का मित्र है और दान मरने वाले पुरुष का मित्र है। यक्ष ने पूछा अकेला कौन विचरता है, एक बार उत्पन्न होके पुनः कौन उत्पन्न होता है, शीत की औषधि क्या है और महान क्षेत्र क्या है। सूर्य अकेला ही विचरता है, चंद्रमा एक बार जन्म लेके पुनः जन्म लेता है, अग्नि शीत की औषधि है और पृथ्वी बड़ा भारी आवपन है। यक्ष ने पूछा धर्म का मुख्य स्थान क्या है, यश का मुख्य स्थान क्या है, स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है और सुख का मुख्य स्थान क्या है। धर्म का मुख्य स्थान दक्षता है, यश का मुख्य स्थान दान है, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है और सुख का मुख्य स्थान शील है।
1: जी श्रोताओं, बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है और सभी प्रश्नों का बहुत ही उचित जो है उत्तर दे रहे हैं युधिष्ठिर यक्ष को। तो अब इन प्रश्नों का उत्तर जो है युधिष्ठिर दे रहे हैं। तो जी रागलेखा दासी जी, आगे आप अपनी कथा सुनाएं।
0: यक्ष ने पूछा मनुष्य का आत्मा क्या है, उसका देवकृत सखा कौन है जी? और जीवन का सहारा क्या है और उसका परम आश्रय क्या है। पुत्र मनुष्य का आत्मा है और स्त्री उसकी देवकृत सखा है, मेघ उपजीवन है, अदान परम आश्रय है। यक्ष ने पूछा किस वस्तु के त्यागने से मनुष्य प्रिय होता है, किसके त्यागने पर शोक नहीं करता, किसे त्यागने पर वह अर्थवान होता है और किसे त्याग कर सुखी होता है। मान को त्यागने से मनुष्य प्रिय होता है, क्रोध को त्यागने पर शोक नहीं करता, काम को त्यागने पर वह अर्थवान होता है और लोभ को त्याग कर सुखी होता है। यक्ष ने कहा ब्राह्मण को किस लिए दान दिया जाता है, नट और नर्तकों को क्यों दान देते हैं, सेवकों का दान देने का क्या प्रयोजन है और राजा को क्यों दान दिया जाता है। ब्राह्मण को धर्म के लिए दान दिया जाता है, नट नर्तकों को यश के लिए दान दिया जाता है, नाम देते हैं, सेवकों को उनके भरण पोषण के लिए दान दिया जाता है, राजा को भय के कारण दान देते हैं, भय भी तो राजा को कर दे देते हैं। यक्ष ने पूछा पुरुष किस प्रकार मरा हुआ कहा जाता है, राष्ट्र किस प्रकार मरा हुआ कहलाता है, श्राद्ध किस प्रकार मृत हो सकता है और यज्ञ कैसे मृत हो जाता है। युधिष्ठिर जी बोले दरिद्र पुरुष मरा हुआ है, बिना राजा के राज्य मरा हुआ है, क्षत्रिय ब्राह्मणों के बिना श्राद्ध मृत हो जाता है और बिना दक्षिणा के यज्ञ मरा हुआ है। यक्ष ने पूछा मनुष्य का दुर्जय शत्रु कौन है, अनंत व्याधि क्या है, साधु कौन माना जाता है और असाधु किसे कहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा क्रोध दुर्जय शत्रु है, लोभ अनंत व्याधि है और जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला हो वह साधु है और निर्दय पुरुष असाधु है। यक्ष ने पूछा स्नान किसे कहते हैं और दान किसका नाम है, मानसिक मलों को छोड़ना ही स्नान है और प्राणियों की रक्षा करना ही दान है। यक्ष ने कहा भरत श्रेष्ठ अक्षय नरक किस पुरुष को प्राप्त होता है, जो पुरुष भिक्षा मांगने वाले किसी अकिंचन ब्राह्मण को स्वयं बुलाकर फिर उसे दही देता वह अक्षय नरक प्राप्त करता है। जो पुरुष वेद धर्म शास्त्र ब्राह्मण देवता पितृ धर्मों की मिथ्या बुद्धि रखता है यक्ष नरक को प्राप्त करता है। जो लोभवश दान और भोग से सहित जो लोभवश दान और भोग से रहित है और पीछे से कह देता है मेरे पास है ही नहीं, यक्ष नरक को प्राप्त करता है। यक्ष ने पूछा सुखी कौन है, आश्चर्य क्या है, मार्ग क्या है, वार्ता क्या है, मेरे इन चार प्रश्नों का उत्तर दो। ऋषि जी ने कहा जो पुरुष इस पुरुष पे ऋण नहीं है और जो प्रदेश में नहीं है, वह दिन के पांचवे या छठे भाग में भी अपने घर के भीतर चाहे साग पत्ता ही खा ले वो सुखी है। जो प्राणी अंदाज के घर जा रहे हैं किंतु जो बचे हुए हैं वे सर्वदा जीते रहने की इच्छा करते हैं, इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य होगा। उन्होंने पूछा था ना सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तर्क की कोई स्थिति नहीं है। यक्ष ने कहा तुमने मेरे सब प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक दे दिए, तुम पुरुष की व्याख्या कर दो और ये बताओ कि सबसे बड़ा धनी कौन है। विष्णु जी बोले जिसकी दृष्टि में प्रिय अप्रिय सुख दुख भूत भविष्य ये जोड़े के समान है वही सबसे बड़ा धनी पुरुष है। यक्ष ने कहा राजन जो सबसे धनी पुरुष है उसके तुमने ठीक ठीक व्याख्या कर दी, इसलिए अपने भाइयों में से किसी एक को तुम चाहो उसे जीवित कर सकते हो।
1: अच्छा।
0: युधिष्ठिर बोले चौड़ी छाती वाला महाबाहु नकुल है वही जीवित हो जाए। यक्ष ने कहा जिसमें 10,000 हाथियों का समान बल है उस भीम को छोड़ के तुम नकुल को क्यों दिलाना चाहते हो, अर्जुन को भी छोड़कर तुम नकुल को दिला देने की इच्छा क्यों है।
1: अच्छा।
0: यह राजा युधिष्ठिर ने कहा मेरे पिता की कुंती और माधवी दो भार्याएं थी पत्नियां थी, वे दोनों पुत्रवती बनी रहे ऐसा मेरा विचार है, मेरे लिए जैसी कुंती है वैसे ही माधवी माता है, उन दोनों में से कोई अंतर नहीं है, मैं दोनों माताओं को समान भाव से रखना चाहता हूँ, इसलिए नकुल को जीवित हूँ। तुमने अर्थ और काम की क्षमता का विशेष आदर किया है इसलिए तुम्हारे सब भाई जीवित हो जाए। यक्ष ने कहा प्रसन्न हो गए यक्ष सारे भाई जीवित। तब यक्ष के कहते ही सब पांडव खड़े हो गए और एक क्षण में उनकी सब भूख प्यास जाती रही। यक्ष ने कहा भरत शेष मैं तुम्हारा पिता धर्मराज हूँ, तुम्हें देखने के लिए यहाँ आया हूँ, तुम मुझे सदा ही प्रिय हो, तुमने भूख प्यास शोक मोह जरा मृत्यु इन छह दोषों को जीत लिया है, तुम्हारा मंगल हो, मैं धर्म हूँ और तुम्हारा व्यवहार जानने की इच्छा से आया था, तो काम्य वन में एक स्थान है धर्म कुंड वार्तालाप किया था, तुम्हारी संतुष्टि के कारण मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अविष्ट वर मांग लो, जो मेरे भक्त हैं उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। युधिष्ठिर ने कहा भगवान पहला वर तो मैं ये मांगता हूँ कि जिस ब्राह्मण के अग्नि सहित मंथन काष्ठ को मृग लेकर भागा उसका अग्निहोत्र का लोप न हो। यक्ष ने कहा राजन उस ब्राह्मण के अग्नि सहित मंथन काष्ठ को तुम्हारे परीक्षा के लिए मैं ही मृग रूप में लेकर भागा था, ये मैं तुम्हें देता हूँ, तुम कोई दूसरा वर मांग लो। युधिष्ठिर बोले हम 12 वर्ष के वन में रहे अब 13 वर्ष आ लगा है, तो ऐसा वरदान दीजिए कि हमें कोई पहचान ना सके। ये सुनकर धर्म ने कहा मैंने तुम्हें ये वर दिया यद्यपि तुम पृथ्वी पर अपने इसी रूप में विचरोगे तो भी तुम्हें कोई पहचान नहीं सकेगा और तुमसे जो जो जैसा जैसा चाहेगा वैसा वैसा ही रूप धारण कर सकेगा, इसके सिवाय तुम एक तीसरा वर मांग लो, अजन तुम मेरे पुत्र हो और विदु ने भी मेरे ही अंश से जन्म लिया है, अतः मेरी दृष्टि में तुम दोनों ही समान है। विष्णु जी ने कहा मेरे लिए क्या दुर्लभ है, तो भी आप मुझे जो वर देंगे उसे मैं फिर आंखों पर लूंगी, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं लोभ मोह और क्रोध को जीत सकूं और सत्य में सर्वदा मेरे मन में की प्रवृत्ति रहे। धर्मराज ने कहा पांडुपुत्र इन गुणों से तो तुम स्वभाव से ही संपन्न हो, आगे भी तुम्हारे कथन अनुसार तुमसे ये सब धर्म बने रहेंगे। ऐसा कहकर भगवान धर्म अंतर ध्यान हो गए और सब पांडव साथ साथ आश्रम में लौट आए, वहाँ आकर उन्होंने उस पतश्री ब्राह्मण को उसकी अरनी दे दी।
1: जी बहुत ही खूबसूरत प्रसंग हमने जाना आज रागलेखा दासी जी से। और युधिष्ठिर के सभी भाई जो हैं वो मर गए थे और उसके बाद युधिष्ठिर जब अंत में वहाँ पहुँचे तो यक्ष ने बहुत सारे उनसे प्रश्न पूछे और उन्होंने सभी का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और ये आज बहुत ही प्यारा प्रसंग हमने जाना महाभारत के अंतर्गत। तो इसी तरह और भी प्रसंग हैं जो हम रागलेखा दासी जी से जानते रहेंगे। नहीं रागलेखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए।
0: हरे कृष्ण।
1: तो श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड फील लाइव।
2: गुड मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8

FM सुन रहे हैं आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फरीदाबाद वासियों, बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ अपने साथ और आपके पास। जी हाँ, देखिए सुबह सुबह का टाइम है, शो की करते हैं शुरुआत। और आपको बता दूँ, आज देखिए ये जो प्रोग्राम है ये 2 घंटे का है, क्योंकि अब से ना मैं आपके पास 2 घंटे के लिए आती हूँ और बहुत सारी करती हूँ बातें, यानी कि सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे। जी हाँ, हर दिन आपके साथ रहती हूँ। और इसी के साथ साथ और बहुत सारी होती हैं बातें, चाहे बात करें हेल्थ की, चाहे बात करें फिटनेस की, योगा की, मेडिटेशन की। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि देखिए हम बात तो ज़रूर करते हैं यहाँ पर क्विज की भी, और बात होती है स्पोर्ट्स की भी। तो जी हाँ, बहुत सारी बातें लेकर के आपके पास आ जाती हूँ। मॉर्निंग की करते हैं खूबसूरत सी शुरुआत, और आज क्या है कुछ खास वो बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए, ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मैनेवरेज नाउ 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग फरीदाबाद वासियों, बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ आपके पास. और बातें हमारी चल रही हैं तो अभी फिलहाल सेगमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का, वो है दिल धड़कने दो. और इस सेगमेंट में बात होती है आपकी हेल्थ और फिटनेस की. जी हाँ, तो हेल्थ और फिटनेस की होंगी बहुत सारी बातें, आपको बस इसी तरह से जुड़े रहना है और ढेर सारे मैसेज करते रहने हैं. जी हाँ, कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आप देखिए यहाँ पर गुड मॉर्निंग भी लिख रहे हैं और प्रोग्राम की देखिए जो अच्छा आपको लगता है ये भी मुझे बता रहे हैं, तो दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद. और इसी के साथ साथ देखिए मैं आपको बताती हूँ हेल्थ से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें, क्योंकि हमारा सेगमेंट है दिल धड़कने दो. और दिल धड़कने दो में अभी फिलहाल बात हो रही है इस गर्मी के मौसम की. जी हाँ, देखिए गर्मी का ये जो मौसम है ना, ये अपने साथ कई सारी बीमारियां लेकर के आता है. ऐसे में अपने आप को, खुद को ठीक रखना जरूरी है. अब देखिए इन दिनों क्या होता है ना, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, एनर्जी कम रहती है और पेट की गड़बड़ी आम हो जाती है. ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं पूरे सीज़न बिना डॉक्टर के आप इसे बिता दें पूरा सीज़न और आपकी इम्यूनिटी भी दमदार बनी रहे, तो सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना होगा. हर सुबह खाली पेट आपको जो है कुछ फ्रूट्स का या कुछ फल का सेवन जो है वो करना है. आप देखिए क्या होता है ना कि जब आप कुछ अच्छा खाते हैं तो आपकी सेहत बनी रहती है, इम्यूनिटी बनी रहती है, और इम्यूनिटी बनी रहनी ज़रूरी है. तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आपको खानी चाहिए जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छी है, और आपको बता दूँ कि वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नॉर्मली आप मार्केट में जाएंगे तो लोकल फ्रूट है, आपको आसानी से सीजनल फ्रूट आपको मिल जाएंगे. और ऐसा भी नहीं कि आप बाद में कहें कि साक्षी ये तो फ्रूट है ही नहीं, ये तो इतने महंगे हैं. महंगे भी नहीं है और सेहत के लिए भी अच्छे हैं, इसीलिए आप तक ये सारी जानकारी लेकर के आती हूँ. चलिए बताऊँगी इसके बारे में कौन से ये फ्रूट्स हैं, लेकिन फिलहाल ले दी हुई छोटा सा ब्रेक. आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मारव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 7.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। फिलहाल सेगमेंट दिल धड़कने दो में हम कर रहे हैं ढेर सारी बातें।

जी हाँ, सेगमेंट दिल धड़कने दो, जो कि आपके लिए लेकर के आती हूँ, जिसमें हम करते हैं आपकी सेहत से जुड़ी बातें, हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी बातें। जी हाँ, अब बात मैं कर रही हूँ कुछ ऐसे सीजनल फूड्स की, जिससे आप खाली पेट लेते हैं तो आप जो है भाई इस गर्मी के मौसम में आपकी सेहत बनी रहेगी। तो अगर आप सुबह सुबह सुबह खाली पेट अगर लेते हैं पपीता, तो भाई सुबह की शुरुआत आपकी काफ़ी अच्छी होगी। समझ लीजिए कि आपका पाचन जो तंत्र है, यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा और इस गर्मी के मौसम के लिए बिल्कुल सही रहेगा। जी हाँ, देखिए पपीते में पाया जाने वाला जो पेपेन एंजाइम होता है, ये ना सिर्फ खाना पचाने में मदद करता है, बल्कि अगर आपको एसिडिटी है या फिर कॉन्स्टिपेशन है या फिर कोई भी, अगर देखिए आपको रिलेटेड कोई ब्लोटिंग इश्यूज हो रहे हैं, तो ये सब में राहत दिलाता है। अब बस इसे खाना कैसे है, आपको सुबह एक कटोरी ताज़ा पपीता जो है खाली पेट खा लेना है और बस देखिए कमाल का जादू जो है ये फिर होने लगेगा। इसी के साथ साथ अगर आप गर्मियों में ये जो गर्मियों का राजा फल है ये खाते हैं, तब भी आपको बहुत फायदा होने वाला है। अच्छा, यहाँ मैं बात आम की नहीं कर रही हूँ, राजा फल इसलिए इसको कह रही हूँ क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि फलों का राजा तो वैसे आम है, नो डाउट आम है, लेकिन भाई जिसमें सबसे ज़्यादा पानी आपको मिलता है वो है वाटरमेलन। जी हाँ, यानी कि तरबूज, जिसमें करीबन कुछ 92% तक पानी मिलता है हमारी बॉडी को, और जो शरीर को हाइड्रेटेड रखता है और गर्मियों में उसे बचाता है, इसके खतरे से हमें बचाता है। लेकिन अगर आप रोज तरबूज खाएंगे तो आपकी बॉडी का जो बैलेंस है, जो टेम्परेचर है, वो बैलेंस में बिल्कुल रहेगा। और इसे बस क्या करना है, सुबह खाली पेट एक कटोरी आपको तरबूज जो है वो खाना है। लेकिन याद रखें, खाली पेट दूध या पानी आप तुरंत बिल्कुल भी ना लें जब आप तरबूज खाते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, क्योंकि पानी की तो देखिए जरूरत भी नहीं होती, तो दूध भी मत लीजिएगा। आपको क्या करना है, बस तरबूज खाना है और बस हो गया। अब इसमें आपको 92% तक पानी जो है ये मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ साथ बात करें अब देखिए फलों के राजा की, जो मैं कह रही थी, और वो है आम। आम जो है इसे फलों का राजा तो कहा ही जाता है, जो गर्मियों में इसका स्वाद जो है देखिए हर एक को पसंद आता है, हर कोई आम खाना पसंद करता है, और ये कई सारे गुणों से भरपूर भी है। विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर प्रचुर मात्रा में इसमें पाए जाते हैं, जो ना सिर्फ इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं बल्कि हमारी बॉडी को एनर्जी देने का भी काम करते हैं। जी हाँ, तो देखिए अगर आपको भी चाहिए ना एनर्जी, आम खाना शुरू कर दीजिए। बस आपको क्या करना है, पका हुआ आम जो है वो लेना है। बस आपको क्या करना है, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसे सीमित मात्रा में खाना है, क्योंकि ये शुगर जो है इसमें थोड़ी हाई होती है, इसलिए आपको कम ही खाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और देखिए आम में थोड़ी सी गर्मी भी होती है, तो आपकी बॉडी पे जो है देखिए, आपको हो सकता है कि कई लोगों को ये समस्या रहती है कि अगर आम ज़्यादा खा लेते हैं तो उनको जो है थोड़े दाने हो जाते हैं या फिर उनको जो है पेट खराब होने की समस्या रहती है। तो बहुत ज़्यादा मत खाइए, कम इसकी जो क्वांटिटी है ना उसमें खाइए, तो आपको नुकसान नहीं होगा, नहीं पहुंचेगा, आपकी बॉडी बिल्कुल दुरुस्त रहेगी। चलिए कुछ और फ्रूट्स के बारे में भी आपको बताऊंगी जो कि खाली पेट आपको ले लेने चाहिए। कौन से हैं फिलहाल बताती हूँ कुछ ही देर में, आप कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए ओनली ऑन रेडियो मानव रेस्टोरेंट 7.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फरीदाबाद वासियों, बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ। फिलहाल चल रहा है हमारा सेगमेंट दिल धड़कने दो। जी हाँ, दिल धड़कने दो मैं आपसे बातें करती हूँ आपकी हेल्थ और फिटनेस की। जी हाँ, और यहाँ पर आपको बता दूँ कुछ फ्रूट्स के बारे में आपको बता रही हूँ। ये जो लोकल सीजनल फ्रूट्स मिलते हैं ना, कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, और गर्मी में तो ज़रूरी भी है कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो मज़बूत बनी रहे, क्योंकि तो ये बहुत सारी बीमारियाँ ना अपने चपेट में ले लेती है। और अगर आप भी चाहते हैं ना कि ये जो बीमारी है आपको अपने पेट में बिल्कुल भी ना ले, तो उसके लिए आपको अपना ख्याल तो रखना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि खाली पेट अगर आप कुछ फ्रूट्स लेते हैं तो आपकी सेहत बनी रहेगी, जैसे कि पपीता, तरबूज, साथ ही साथ बात करें यहाँ पर आम की, तो ये भी अच्छा है। लेकिन अब बात आती है दूसरे फ्रूट की, जो हमारा जो है अगला फ्रूट है वो है मेलन। जी हाँ, खरबूजा। खरबूजा भी तरबूज की तरह ही शरीर को ठंडक रखता है, ठंडे में रखता है आपके शरीर को, साथ ही पानी की कमी से बचाने में भी काफ़ी मदद करता है। इसमें पोटाशियम है, फाइबर है, विटामिन सी है, और इसमें जो है आपकी बॉडी को देखिए जो एनर्जी देने वाले कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपकी ना सिर्फ बॉडी के लिए हेल्पफुल है बल्कि आपकी त्वचा को भी चमकदार बनाते हैं। कुछ ऐसे पोषक तत्व भी हैं। अब इसे खाना कैसे? सुबह नाश्ते से पहले आप एक कटोरी खरबूजा ज़रूर खाएं। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप सारे फ्रूट्स को एक साथ ना खाएं, एक दिन आपने जो है खरबूजा खाया, एक दिन तरबूज खाया, एक दिन आम खाया सुबह ब्रेकफास्ट में, एक दिन आपने जो है पपीता खाया, तो इस तरीके से आप इंक्लूड कर सकते हैं। अब अगले फ्रूट की बात आती है और वो है हम सभी का फेवरेट सेब। जी हाँ, देखिए सेब जो है इसको अक्सर सर्दियों का फल माना जाता है, लेकिन गर्मियों में भी इसका असर जो है वो शानदार है। इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो गर्मी के मौसम में होने वाली थकान और कमजोरी से बचाता है। और वैसे भी कहते हैं ना, an apple a day keeps doctor away, इसीलिए अगर आपको डॉक्टर से रहना है दूर, अपनी रखनी है इम्यूनिटी मजबूत, तो खाइए ढेर सारा सेब, ढेर सारा एप्पल, ताकि आपकी सेहत बनी रहे। सुबह खाली पेट आप एक ताज़ा सेब ज़रूर खाइए, छिलके समेत खाइए ताकि फाइबर मिले। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो छिलका पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए छिलके के साथ खाने के लिए, तो उससे फाइबर आपको मिलेगा। नहीं तो मर्जी वैसे आपकी है, खा रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ साथ बस कुछ बातों का आपको ख्याल रखना है, जैसे कि फलों को आपको खाली पेट खाने से देखिए उनके पोषक तत्व जो है वो जल्दी और बेहतर तरीके से हमारी बॉडी में अब्जॉर्व होते हैं। तो इसी के साथ आपको पहले कुछ नहीं खाना है, आपको खाली पेट खाना है। इसी के साथ साथ एक ही फल रोज आपको खाना है, आपको जो है बारी बारी हर दिन आप जो है अपना फल जो है वो बदलते रहिए, सारे मिक्स मत कीजिए, एक एक करके खाइए। फलों को आप काट कर देर तक बिल्कुल भी ना रखें, ये बहुत ज़रूरी है। ताज़े फल ही डाइट में आप शामिल कीजिए, जो आप हाथ के हाथ उसको काट के खाएं। फल खाने से के तुरंत बाद आपको पानी भी नहीं पीना है, कम से कम 30 मिनट के गैप के बाद ही आपको पीना है पानी, इससे पहले आपको पानी नहीं पीना है। चलिए, ये तो रही हमारी हेल्थ और फिटनेस की बहुत सारी बातें, और इसी के साथ देखिए आप होंगे और भी बहुत सारी बातें, अपने प्रोग्राम तो लेकर आ ही जाती हूँ, लेकिन अब करते हैं आगे बातें। स्ट्रेच प्लीज़ हमारा सेगमेंट है, और इस सब सेगमेंट में मैं करती हूँ आपके साथ मेडिटेशन, योगा की बातें। जी हाँ, अब देखिए हमने अपनी सेहत का ख्याल तो रख लिया, हमने ये तो पता कर लिया ना कि किस तरह से आप अपनी फिटनेस को बनाए रखेंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपकी फिजिकल बॉडी जो है अच्छी है, बनी हुई है, और आप अच्छे से अपनी फिजिकल बॉडी पर काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी ये भी है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ पर भी काम करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कुछ बातों का ख्याल रखना और योगा करना, मेडिटेशन करना। उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं या कौन कौन से ऐसे योगा आसन है जो आपके लिए अच्छे हैं, बताऊँगी कुछ ही देर में। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। जी हाँ, बातें हमारी चल रही हैं बहुत सारी। अब देखिए, बात करते हैं हमारे अगले सेगमेंट की जो है स्ट्रेच प्लीज। चलिए, इस सेगमेंट में बातें हमारी चलती हैं आपको योगा के बारे में। आपको बताती हूँ, देखिए योगा जो है ये एक शब्द नहीं है, एक जिंदगी का तरीका है। ये सिर्फ बॉडी को ट्विस्ट या स्ट्रेच करना इसमें नहीं होता है, ये अपने मन को, अपनी सांसों को और अपनी सोल को एक रिदम में लाना होता है। जब हम योगा करते हैं हम सिर्फ हेल्दी नहीं बनते हैं, बल्कि हम खुद को और ज्यादा अपने करीब लाते हैं, स्ट्रेस से दूर जाते हैं और सुकून के पास चले जाते हैं। योगा का मतलब है जुड़ना, जी हाँ, अपने आप से, अपनी एनर्जी से और इस पूरे यूनिवर्स से, चाहे वो सूर्य नमस्कार हो या फिर अनुलोम विलोम। हर पोस्चर के पीछे एक पर्पस होता है, फिट बॉडी, काम माइंड और पीसफुल सोल। तो बस रोज आप कुछ मिनट अपने निकालिए अपनी जिंदगी के, आप कुछ पूरे दिन के एक आपको कुछ मिनट निकालने हैं और आपका जो है, देखिए ये ध्यान जो है आपको केंद्रित करना है और उसके बाद आपको शुरू करना है अपना योग। क्योंकि योग से अगर आप जुड़ जाते हैं तो बस आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं और आप देखेंगे, देखिए आपकी ज़िंदगी जो है ना बिल्कुल एक नया मोड़ ले लेगी, एक बैलेंस जो है आ जाएगा, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ इससे बन जाएगी। तो चलिए, योग जो है ये इम्पॉर्टेंट है, योगा इम्पॉर्टेंट है, पोस्चर कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, योगा आसन कितना ज़रूरी है, कौन कौन से योगा आसन करने चाहिए, सारी बातें आपके साथ ज़रूर करूँगी। लेकिन फिलहाल अभी लेती हूँ छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मैनवरेश्वरम 107.8 एफएम सुन रहे हैं। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फरीदाबाद वासियों, बहुत सारी बातों के साथ मैं आ जाती हूं यहां पर आपके पास। और प्रोग्राम रिचार्ज मॉर्निंग में टाइम चल रहा है हमारे खूबसूरत से सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज का, जिसमें बात करती हूँ योगा के बारे में। जी हाँ, देखिए योगा जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और योगा जो है एक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। अब बात करते हैं हम एक ऐसे योगिक प्रैक्टिस की जिसने ना सिर्फ इंडिया को बल्कि वर्ल्ड हेल्थ मैप पर अपने आप को प्लेस किया है। एक ऐसी योगिक ये प्रैक्टिस है। जी हाँ, ये देखिए ऐसा ज़रूरी है कि आप इसे ज़रूर करें, इससे जो है आपकी एनर्जी जो है ये बरकरार रहती है। और आज मैं बात कर रही हूँ सूर्य नमस्कार यानी कि सन सैल्यूटेशन की। सूर्य नमस्कार एक पूरा बॉडी वर्कआउट है, बिना किसी मशीन के इसे किया जाता है। जी हाँ, किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। 12 स्टेप्स में ये जो योगिक प्रैक्टिस है यानी कि सूर्य नमस्कार जो है ये डिवाइडेड है, और साथ ही ये आसन जो है ये ना सिर्फ आपकी बॉडी को स्ट्रेच करता है बल्कि आपके माइंड ब्रेन साथ ही आपके ब्रेथ को और सोल को भी एक बैलेंस में लाता है। जी हाँ, तो चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे अब किस तरह से इसे किया जाता है, यानी कि इसके कौन कौन से जो है, देखिए इसमें अलग अलग क्योंकि ये डिवाइडेड है, 12 अलग अलग पोजेस में ये डिवाइडेड है। तो अब बात करते हैं क्योंकि स्टेप्स जो है इसके 12 स्टेप है। पहला स्टेप है प्राणायाम यानी कि प्रेयर पोज। सीधे खड़े हो जाएं आप पहले और दोनों हाथों को जोड़ लें, अपने दोनों हाथ जो आपके चेस्ट के बिल्कुल सामने होने चाहिए। ये आता है पहला स्टेप जो है प्राणायाम आसन। और इसके बाद आता है अगला यानी कि स्टेप जो है वो है हस्ताउत्सानासन, यानी कि सांस लेते हुए दोनों हाथ जो है ऊपर आपको उठाने हैं और पीछे थोड़ा सा आपको बेंड करना है। आपकी जो कमर है वो हल्की सी बेंड होगी। अब आपको अपने हाथों को रेज करना है और पीछे की तरफ आपको बेंड करना है। ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप आता है देखिए आपका जो है पादहस्तासन। अब इसमें होता है हैंड टू फुट पोज, यानी कि सांस आपको छोड़नी है, आगे झुकना है और हाथ पैरों के पास लेके जानी है। इससे आपकी बॉडी जो है एक अच्छे पोस्चर मेंटेन करती है, और धीरे धीरे, मैं ये मानती हूँ कि एकदम से आप जो है बहुत ज़्यादा बेंड नहीं कर पाएंगे, तो धीरे धीरे जिनकी कमर में दर्द रहता है या जिनको कोई भी ऐसी दिक्कत है कमर से जुड़ी हुई, या फिर आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी में अभी ये दिक्कत आ रही है, तो शुरुआत में ये दिक्कत रहती है, लेकिन जब आप धीरे धीरे इसे करने लगेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। अब इसके बाद आता है अगला स्टेप जो कि है चौथा स्टेप, और वो है अश्वसंचालनासन। जी हाँ, इसको करने के लिए आपको अपने राइट लेग आपको पीछे लेके जाना है, लेफ्ट लेग आपको फोल्ड करना है और चेस्ट जो है आपको ऊपर रखनी है। और ये है हमारा चौथा पोज। और पांचवा पोज आ जाता है प्लैंक पोज यानी कि डंडा आसन। दोनों पैर पीछे आपको ले जाने हैं, सीधा बॉडी प्लैंक जो है ये बन जाए, इस तरीके से आपको ये पोज करना है। जिसके बाद सीधा सीधा आते हैं हम अगले हमारे स्टेप पे जो है आपका अष्टांग नमस्कार। जी हाँ, इसमें क्या करना है आपको, चेस्ट चिन और दोनों घुटने जमीन पर आपके 8 पॉइंट टच करते हैं। ये है हमारा अगला आसन। इसके बाद आ जाता है कोबरा पोज यानी कि भुजंगासन। इसके बारे में चलिए आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ, सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ रोजाना। और साथ ही अभी फिलहाल हमारी बात चल रही है सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज में योगासन की, और आपको बता रही हूँ 12 स्टेप जो कि आते हैं सूर्य नमस्कार में। बात कर रहे हैं 7वें स्टेप की, जो है भुजंगासन यानी कि कोबरा पोज। सांस लेते हुए आपको चेस्ट ऊपर उठानी है, और पहले आपको लेट जाना है, उसके बाद जमीन पे, उसके बाद आपको जो है आपको चेस्ट ऊपर लेके जानी है, और हाथ के सपोर्ट से आपको इस तरह से करना है। तो कोबरा पोज जो है ये मेंटेन होता है। इसके बाद आता है माउंटेन पोज, यानी कि आपका जो है वो आता है पर्वतासन, यानी कि हिप्स ऊपर हील नीचे, इन्वर्टेड वी शेप आपको इससे बनानी होती है। जिसके बाद अश्वसंचालासन एक बार फिर से हम करते हैं 9वें स्टेप में। लेग आपको लेफ्ट लेग, पहले जो है आपने देखा होगा कि हमने राइट लेग से किया था, अब लेफ्ट लेग की बारी, आगे लेके जाना है, और उसके बाद आपका जो राइट लेग है वो पीछे होगा, लेफ्ट आगे होगा। और सेम जैसे कि हमने 4th स्टेप में किया था कि आपको ये फोल्ड करना है, चेस्ट ऊपर की तरफ आपको रखनी है, और ये हमारा हो गया जो नेक्स्ट स्टेप है, यानी कि जो अश्वसंचालासन है इसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद एक बार फिर से आ जाता है यहाँ पर, देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक आसन, और वो है पादहस्तासन। दोनों पैर साथ आपको लेके आने हैं, और उसके बाद झुक जाना है। ये आपके पेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ये आपकी फुल बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। 11वें स्टेप में हम आते हैं हत्सा उत्सानासन पे, और सांस लेते हुए आपको फिर से दोबारा से खड़े होना है, और हाथ को ऊपर लेके जाने हैं। जिसके बाद आपके जो फर्स्ट स्टेप है वो एक बार फिर से आता है, यानी कि जो प्राणायाम आसन है वो फिर से आता है, फिर से आपको हाथ जोड़ने हैं, और यहाँ पर आप बिल्कुल शांत रहेंगे, और साथ ही ग्रेटफुल भाव के साथ आपको जो है ये जो पूरा सूर्य नमस्कार है इसे ख़त्म करना है। ये सिर्फ एक, देखिए एक पूरा, एक पूरा जो स्टेप से बनता है ना, ये पूरा ये 12 स्टेप के साथ एक सूर्य नमस्कार बनता है, और इसी में अगर आप सिर्फ ये एक आसन कर लेते हैं ना, मानो जैसे आपने पूरे योगासन जो है अपने कर लिए हैं, और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा जो है वो ज़रूर मिलेगा। इसके कुछ बहुत ही बेहतरीन अगर मैं आपको बेनिफिट्स बताऊँ, तो ये बॉडी का एक कम्प्लीट वर्कआउट है। लेग्स, आर्म्स, बैक, चेस्ट सब जो है इंगेज होता है। इससे आपकी जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है, पोस्चर, और साथ ही कोर स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होती है। सांस के फ्लो के साथ मूवमेंट होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है हमारे लंग्स के लिए, और हमारे ब्रीदिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और ये आपके वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। और जिनको बॉडी टोन करनी है ना अपनी, यानी कि टोनिंग आपको करनी है, आपकी स्किन टोन अच्छी होनी चाहिए, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। माइंड को ये शांति और क्लैरिटी देता है, स्ट्रेस से दूर करता है, और एनर्जी देता है भरपूर मात्रा में। आपके डाइजेशन को बूस्ट करता है, स्ट्रेंथ को आपको बढ़ाता है, और इम्यूनिटी देता है। इनफैक्ट सबसे बड़ी बात यह है कि रोज़ाना अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपका दिन पॉजिटिव रहता है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब इसी के साथ यहाँ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद हम करेंगे और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि अब टाइम जो है ये हो चला है अगले सेगमेंट का। कौन सा है ये अगला सेगमेंट बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल कमाल के गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।
1: सिमारो विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ हर दिन, यानी कि डेली आपके साथ 2 घंटे यहाँ रहती हूँ, बहुत सारी करती हूँ बातें। फिलहाल बातें हमारी चल रही हैं क्योंकि अब हमारे अगले सेगमेंट का टाइम है। सेगमेंट का नाम है पावर प्ले विद साक्षी। जी हाँ, पावर प्ले विद आरजे साक्षी में हम करते हैं बहुत सारी बातें स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई, बहुत सारी स्पोर्ट्स अपडेट आपके पास लेकर के जरूर आती हूँ। अच्छा, अब एक आपको बताने वाली हूँ, बहुत ही खास जानकारी आप तक पहुँचाने वाली हूँ। जी हाँ, बात मैं कर रही हूँ एक बहुत ही कमाल के मूवमेंट के बारे में, और ये एक नहीं बल्कि 2 है। सबसे पहले आता है खेलो इंडिया, और इसी के साथ साथ दूसरा है फिट इंडिया मूवमेंट। देखिए, नए भारत का ये स्पोर्टी अंदाज है, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं बल्कि एक विजन है जिससे हमारा देश एक फिट, एक्टिव और स्पोर्ट्स ओरिएंटेड सोसाइटी की तरफ बढ़ रहा है। बात करें खेलो इंडिया प्रोग्राम की, ये लॉन्च हुआ था योर 2018 में, इनिशिएट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। आजकल सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, स्पोर्ट्स भी एक प्रॉमिसिंग करियर बन चुका है, पर कई टैलेंटेड बच्चे सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज, कोचिंग या अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है। इसी गैप को ब्रिज करने के लिए सरकार ने खेलो इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया। जी हाँ, खेलो इंडिया का मेन गोल है ग्रास रूट्स लेवल पर स्पोर्ट्स टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, ट्रेन करना और स्पोर्ट उनको जो है खेलने के लिए सपोर्ट करना। अब होता यह है कि स्कूल लेवल से लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक ये स्कीम इंश्योर करती है कि हर एक यंग एथलीट को एक प्लेटफॉर्म मिले जहां वो अपना टैलेंट दिखा सके। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि एनुअल स्पोर्ट्स डे भी किए जाते हैं, तो एनुअल खेलो इंडिया गेम्स स्कूल और यूनिवर्सिटी लेवल का नेशनल गेम्स इनको कहा गया है। इनका ये गेम्स होते हैं जहां देश भर के टैलेंटेड प्लेयर्स कम्पीट करने आते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की जाए तो सिलेक्टेड एथलीट्स को कुछ 5 लाख रुपए पर ईयर तक दिए जाते हैं एज अ स्कॉलरशिप उनको मिलते हैं, और या फिर हो सकता है कि 8 साल तक उनको ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन और इक्विपमेंट्स के लिए भी दिया जाता है। जिन बच्चों में टैलेंट है वो देखिए, टैलेंट जो है कभी छुपता नहीं है, और सरकार इसीलिए ये मूवमेंट को लेके आई है ताकि जो बच्चे टैलेंटेड है वो पीछे ना रहे, हमारा देश आगे बढ़ता रहे। बात करें देखिए यहाँ पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो छोटी सिटीज और टाउन में मॉडर्न स्टेडियम और ट्रेनिंग सेंटर डेवलप किए जा रहे हैं और ज्यादा। इनफैक्ट सर्टिफाइड कोचेस, टैलेंटेड जो स्काउटिंग है और साथ ही परफॉर्मेंस एनालिसिस जैसे फीचर्स से एथलीट्स का होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाता है। ये मूवमेंट सिर्फ मेडल जीतने तक लिमिटेड नहीं है, ये एक माइंडसेट क्रिएट करता है जिसमें हर बच्चा स्पोर्ट्स को सीरियसली जरूर लेता है। तो अगर आप में भी है ये बात तो आप भी जुड़ जाइए इस मूवमेंट के साथ। चलिए, फिलहाल आज हमने जाना है कि ये जो खेलो इंडिया मूवमेंट है ये क्या है, लेकिन इसके साथ साथ एक और मूवमेंट जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो है फिट इंडिया मूवमेंट। इसमें क्या है, ये कब लॉन्च हुआ और इसे किस तरह से जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, और क्यों देना चाहिए और क्यों जरूरी है इसके साथ जुड़ना, चलिए बात करेंगे इस पे। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बातें हमारी चल रही हैं और आपको बता रही हूँ एक बहुत ही खास जानकारी आप तक पहुँचा रही हूँ। अच्छा, हम बात करें हमारे सेगमेंट पावर प्ले विद आरजे साक्षी के, इस सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में। अब जी हाँ, खेलो इंडिया मूवमेंट के बारे में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से सरकार जो है, यानी कि हमारी गवर्नमेंट जो है, वो हेल्प कर रही है स्टूडेंट्स की, ना सिर्फ स्कूल लेवल के बल्कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल तक के, कि उनका जो हिडन टैलेंट है वो हिडन ना रहे बल्कि देश के लिए वो देखिए आगे बढ़ते रहे, कोई भी चीज़ की कमी ना हो इस गैप को पूरा करने के लिए, कि उनको सही कोचिंग मिले, सही इक्विपमेंट मिले, सही जगह खेलने के लिए, ताकि वो जो है अपने टैलेंट को और ज़्यादा उभार सके और ज़्यादा जो है वो अच्छे से सीख सके। इसीलिए खेलो जो है मूवमेंट जो है वो लेकर आई। इसी के साथ साथ एक और मूवमेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, और वो है

ये पीएम मोदी ने खुद कहा था कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। फिट इंडिया का मकसद है हर भारतीय को हेल्थ और वेलनेस के प्रति अवेयर बनाना, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर कोई ऑफिस गोइंग या कोई रिटायर अगर हो चुके हैं। क्योंकि अक्सर होता है ना कि भाई हम ये सोचते हैं कि खेल कूद वाली बात है तो सिर्फ बच्चों को ही करना चाहिए, हम बच्चों को आगे कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। चाहे आप ऑफिस जाते हैं, चाहे आप घर में हैं, चाहे जो आप हाउसवाइफ हैं, होम मेकर हैं या फिर आप रिटायर हो चुके हैं, हर किसी को फिटनेस जो है ये ज़रूरी है उन्हीं के लिए। और ये नेसेसिटी हमारी कोई, ये जो है लग्जरी नहीं है, ये हमारी ज़रूरत जो है अब बन चुकी है। अब बात करें इस मूवमेंट के गोल की तो देखिए, फिजिकल फिटनेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, रोजाना एक्सरसाइज, योगा, साइकिलिंग और वॉकिंग जैसी डेली हैबिट्स को इंकरेज करना, मेंटल वेलनेस के प्रति थोड़ा सा और सजग होना यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेशन और हेल्दी रूटीन प्रमोट किए जाते हैं इसी मूवमेंट के अंदर। इनफैक्ट स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिस और मिनिस्ट्रीज सभी को फिट इंडिया सर्टिफाइड जो है बनाया जा रहा है, जहां रेगुलर फिटनेस एक्टिविटीज कंपलसरी कर दी गई हैं। फिट इंडिया मोबाइल ऐप और फिटनेस स्कोर ट्रैकर जैसे टूल्स भी जो है वो लोगों को डिजिटली एक्टिव बनाए रखते हैं। आज हर स्कूल में फिटनेस वीक्स और हर ऑफिस में वेलनेस ब्रेक और साथ ही हर मोहल्ले में मॉर्निंग वॉक क्लब शुरू हो गए हैं। फिट इंडिया अब एक मूवमेंट से ज्यादा एक लाइफस्टाइल जो है ये बन चुका है। जब हर गली में फुटबॉल घूमेगा, जब हर बच्चा योगा करेगा, जब हर स्कूल में एक खिलाड़ी पैदा होगा, तभी तो इंडिया ट्रूली बनेगा फिट भी और हिट भी। चलिए, इसी के साथ ये तो बात रही हमारे आज के सेगमेंट में। देखिए, स्पोर्ट्स की हम बात करते हैं और ये दोनों ही चीज़ें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानना, इस मूवमेंट के बारे में पता होना, स्पोर्ट्स के बारे में। और क्योंकि देखिए, यही जो स्पोर्ट्स है ना, पहले कहा जाता था खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन आजकल ये दोनों ही ज़रूरी है। यानी कि अगर आप खेल कूद करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, अपने फोकस उस पर भी रखते हैं, तो दोनों ही चीज़ें हमारे लिए अच्छे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जो अगर अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं तो यही एक करियर ऑप्शन है, बल्कि अब करियर ऑप्शन आपका स्पोर्ट्स में भी है। और इसीलिए सरकार जो है ऐसे कुछ मूवमेंट्स लेकर के आ रही है आपके पास, ताकि आप फिट भी रहे और हिट भी। चलिए, इसी के साथ लेती हूँ अब एक छोटा सा ब्रेक। आगे और भी होंगी बहुत सारी बातें, एक बहुत ही खास सेगमेंट जो कि आपके लिए लेकर के आ जाती हूँ, और सेगमेंट का नाम है कौन बनेगा सेहतमंद। तो चलिए जल्दी से अपने मोबाइल फोन्स रखिए तैयार, क्योंकि मैं पूछने वाली हूँ आपसे सवाल। कुछ सवालों के जवाब आप देंगे और उसके बाद आपको बताने वाली हूँ कि क्या ट्रिक है इसमें, यानी कि कैसे सवाल होने वाले हैं और इससे क्या फायदा आपको मिलने वाला है। बात करेंगे इस पे, फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। जी हाँ, बातें हमारी चल रही हैं और अभी बात करें हमारे अगले सेगमेंट की, जो कि है बहुत ही ज्यादा कमाल का। जी हाँ, बात कर रही हूँ हमारे अगले सेगमेंट कौन बनेगा सेहतमंद की। और इस सेगमेंट में आपसे पूछती हूँ कुछ सवाल और आपको दे रही है कुछ जवाब। और जी हाँ, जिसके सवालों के जवाब सही रहे और पूरे महीने आप कंसिस्टेंट होके जवाब देते हैं और सही जवाब देते हैं, तो देखिए मैं आपको बुलाने वाली हूँ रेडियो मानव रचना और आपको मौका मिलेगा यहाँ रह के मेरे साथ लाइव बातचीत करने का और सभी आरजे से मिलने का भी। चलिए इसी के साथ साथ यहाँ पर आज का क्या है पहला सवाल ये आपसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले भाई रेडी होने का भी वक्त देना होगा, बिल्कुल देना होगा, क्योंकि आपके मैसेजेस आ जाते हैं कि साक्षी पहले बता दो। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अब शुरू होने वाला है हमारे सेगमेंट का पहला सवाल आने वाला है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। Feel good, feel live.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। और देखिए, अब मैं आपके साथ रहती हूँ 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना, और होती हैं हमारी बहुत सारी बातें। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि मैं ना अब ये सेगमेंट्स लेकर आती हूँ आपके लिए। जी हाँ, हमारे पहले सेगमेंट में हम बात करते हैं दिल धड़कने दो, ये हमारा पहला सेगमेंट है जिसमें हम बात करते हैं हेल्थ और फिटनेस की। और उसके बाद आता है स्ट्रेच प्लीज सेगमेंट, जिसमें हम बात करते हैं योगा की, मेडिटेशन की। और फिर आ जाता है पावर प्ले विद आरजे साक्षी, जिसमें हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की। और इसी के साथ साथ आ जाता है हमारा आखिरी, जो कि है कौन बनेगा सेहतमंद। और इसमें हम बात करते हैं इंटरेस्टिंग क्विज, आपसे सवाल जो है वो आपसे पूछती हूँ मैं, और जवाब आपको देने होते हैं फटाफट। और जो देगा सही जवाब हर महीने कंसिस्टेंट होके और बिल्कुल सही जवाब देगा, उसको मिलेगा मौका यहाँ मेरे साथ लाइव बातचीत करने का, रेडियो मानव रचना आने का, और साथ ही सभी आरजे से मिलने का भी। इसी के साथ साथ फिलहाल बातें हमारी चल रही हैं, पहला सवाल आपसे पूछती हूँ, और बड़ा ही वैसे तो आसान सा सवाल है, लेकिन जरा ध्यान से सुनिएगा आप और इसका जवाब जो है वो दीजिएगा, क्योंकि सवालों के जवाब ना बहुत ही आसान है और आप आसानी से दे भी देंगे। पहेली है बड़ी आसान सी, और पहेली है रंग नहीं स्वाद नहीं फिर भी सबसे जरूरी मैं, ना रहूं तो प्यास तड़पाती है, शरीर का 70% हिस्सा हूं मैं, बताओ कौन हूं मैं। चलिए, ये है आपकी पहेली और इसका देना है आपको जवाब, और जल्दी से झटपट से दीजिए जवाब, क्योंकि आपके जवाबों का इंतजार मुझे है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं, बड़ी आसान सी आज मैंने पहेली पूछी है, आपको फटाफट से जवाब देना है। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078। इसी के साथ एक बार फिर से पहेली मैं दोहरा देती हूँ, रंग नहीं स्वाद नहीं फिर भी सबसे जरूरी मैं, ना रहूं तो प्यास तड़पाती है, शरीर का 70% हिस्सा हूं मैं, बताओ कौन हूं मैं। तो जल्दी से झटपट से इसका जवाब देंगे आप, और उसके बाद आपको बताने वाली हूं क्यों है ये इतना जरूरी। चलिए बात करेंगे इस पे, फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में करते हैं हम बहुत सारी बातें. फिलहाल बात करें हमारे सेगमेंट कौन बनेगा सेहतमंद में. एक बहुत ही खास पहेली मैंने आपसे पूछी है, बड़ी आसान सी पहेली. मतलब इस पहेली में ना जवाब है. अच्छा मैं आपको बता दूँ कि एक बार पहेली मैं दोहरा देती हूँ और उसके बाद आप देखिए जल्दी जल्दी जो जवाब आया ना, जिसका सबसे पहले जवाब आया वो भी आपको जरूर बताऊंगी. पहेली है, रंग नहीं स्वाद नहीं फिर भी सबसे जरूरी मैं. ना रहूं तो प्यास तड़पाती है, शरीर का 70% हिस्सा हूं मैं. बताओ कौन हूं मैं. तो देखिए इसका जो जवाब है ना इसी पहेली के अंदर है. भाई देखिए प्यास जो है ये बहुत ज्यादा हमें लगती है गर्मी के इस मौसम में. और आपको भी ये पहेली सुन के तो लगी गई होगी. जी हाँ, बॉडी का यानी कि हमारे शरीर का 70% पानी जो है ना यही हमारी बॉडी में होता है. जवाब है पानी जो कि है इसका सही जवाब. और जिस जिसने मुझे जवाब दिए हैं, देखिए पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि आप मुझे फटाफट से जवाब भेजते हैं. अब देखिए किसी ने कुछ लिखा है तो किसी ने कुछ लिखा है. किसी ने लिख के दिया है कि हमारी बॉडी में 70% खून होता है, तो किसी ने लिख के दिया है कि पानी होता है. तो वही जिस जिसने पानी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है. और साथ ही साथ जो सबसे पहला जवाब जिसने मुझे दिया है वो और कोई नहीं हमारी लिसनर है. जी हाँ, जिनका नाम है मोनिका जी. मोनिका जी आपका जवाब बिल्कुल सही है, सटीक है और बहुत तेजी से आपने दिया है जवाब. देखिए बहुत जल्दी जल्दी आपको अपनी उंगलियां जो है ये चलानी होगी ताकि आप फटाफट से मेरा सवालों का जो है मेरे जवाब आप दे सके, पहेली का जवाब दे सके. तो चलिए कौन बनेगा सेहतमंद में जो हमने पहला सवाल पूछा उसका जवाब दिया हमारी लिसनर मोनिका जी ने. चलिए एक और आपसे पहेली पूछने वाली हूँ. और आपको बता दूँ देखिए पानी की हम बात करें, पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी सेहत के लिए. और आपको बता दूँ हाइड्रेटेड रहना ज़रूरी है इस गर्मी के मौसम में. इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और ऐसे में अगर आप सेहतमंद रहेंगे ना तो देखिए आप ही को फ़ायदा है इससे. और पानी पीते रहना है. और ज़रूरी नहीं है कि देखिए आप ना सिर्फ लिक्विड डाइट जो है ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि पानी पीते रहे. सिर्फ पानी पानी आपको पीना है, आप नारियल पानी भी पी सकते हैं, आप जूस कोई पी सकते हैं. लिक्विड डाइट इंपॉर्टेंट होती है अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए. लेकिन जो पानी काम करता है ना वो और कोई नहीं करता. ऐसा होता है ना कि हमें जब प्यास लगती है तो हमारी जो प्यास है सिर्फ और सिर्फ पानी ही बुझा सकते हैं. आप कितना भी कोई सॉफ्ट ड्रिंक ले लीजिए, आप कोई भी जूस ले लीजिए, लेकिन जो पानी से हमें सुकून मिलता है ना वो कहीं नहीं मिलता है. पानी की ज़रूरत सभी को होती है, पानी ज़रूरी भी है. चलिए इसी के साथ अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए. जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर रहती हूँ आपके पास 9 बजे तक रोजाना, यानी कि अब हफ्ते के 7 दिन आपके साथ रहती हूँ मैं 7 से 9 बजे तक। बहुत सारी हो रही हमारी बातें। सेगमेंट कौन बनेगा सेहतमंद में, मैं आपसे पूछ रही हूँ कुछ पहेलियों के जवाब। और देखिए आप सही सही जवाब तो दे रहे हैं। अब अगली पहेली का वक्त हो गया है और यहाँ पर अगली हमारी पहेली है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सुबह सुबह आ जाऊं तो दिन भर ऊर्जा लाऊं, फिटनेस से मेरा नाता, बताओ क्या हूं मैं कहलाता। ये है ये पहेली और फटाफट से आपको इसका जवाब जो है वो देना है। और आपको बता दूं मैं एक बार फिर से पहेली दोहरा देती हूं ताकि आपको ये ना लगे कि साक्षी ने पहेली तो बताई लेकिन क्या बताई, हमें याद क्यों नहीं आ रही है। क्योंकि एकदम से हम भूल जाते हैं ना, कभी एकदम से हम याद करते हैं अरे क्या था क्या था, फिर एकदम से भूल जाते हैं। चलिए एक बार फिर से दोहरा देती हूं आपके लिए। सुबह सुबह आ जाऊं तो दिन भर ऊर्जा लाऊं, सुबह सुबह आ जाऊं तो दिन भर ऊर्जा लाऊं, फिटनेस से है मेरा नाता, बताओ क्या हूं मैं कहलाता। अब आपको इस पहेली का देना है जवाब। मैं कर रही हूँ आपके जवाबों का इंतजार, फटाफट से दीजिए जवाब और अभी फिलहाल कहीं मत जाइए। और नंबर एक बार बता देती हूँ आपको फिर से, 8010781078 इस नंबर पे आपको देने हैं जवाब। जो सबसे पहले सटीक जवाब देते हैं देखते हैं कौन है वो लोग। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रेस्ट्रा 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना आपके साथ रहती हूं। और आपको बता दूं, आपके लिए कमाल के प्यारे प्यारे सेगमेंट्स भी लेकर के आती हूं और उसमें हम करते हैं बहुत सारी बातें। फिलहाल सेगमेंट चल रहा है हमारा कौन बनेगा सेहतमंद, जिसमें हम बात कर रहे हैं एक पहेली जो है मैंने आपसे पूछी है, इसका जवाब जिसने सही दिया, सटीक दिया और रोजाना जो जवाब देगा एक महीने तक रेगुलर रहकर कंसिस्टेंट रहकर, उसको मौका मिलेगा हमारे रेडियो स्टेशन यानी कि रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम आने का और लाइव बातचीत करने का और हमारे सभी आरजे से भी मिलने का। तो चलिए आप दीजिए पहेली का जवाब। एक बार फिर से पहेली जो है मैं दोहरा देती हूँ। सुबह सुबह आ जाऊं तो दिन भर ऊर्जा लाऊं, फिटनेस से है मेरा नाता, बताओ क्या हूं मैं कहलाता। जी हाँ, इसका जवाब आपको देना था और इसका सबसे पहले जो जवाब दिया है हमारे लिसनर बबलू जी ने जवाब दिया है। जी हाँ, बहुत सारे जवाब यहाँ पर मेरे पास आए हैं लेकिन जो सबसे पहले सटीक सही जवाब आया है वो आया है हमारे लिसनर बबलू जी का, जिन्होंने लिखा है कि ये जो है इसका नाम है व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज। बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है और ज़रूरी है एक्सरसाइज करना। ये हमेशा मैं आपसे कहती हूँ, एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए। ये इनफैक्ट आपकी एक अच्छी हैबिट है, अगर आप इसे रोज़ाना करते हैं आपकी लाइफस्टाइल जो है ये बदल जाती है। चलिए इसी के साथ यहाँ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आपका ही मजा आइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मैनव रेस्ट 107.8 एफएम। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। जी हाँ, रोजाना सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ, यानी कि हफ्ते के 7 दिन आपके साथ रहती हूँ और इसी के साथ बातें आपसे करती हूँ बहुत सारी। अच्छा, अभी ना मैंने आपको पहली पूछी और कई सारे जवाब भी आपके आए हैं और आपको इस तरह से पार्टिसिपेट करना, देखिए यही इम्पोर्टेंट है कि हम जहाँ भी हम कुछ कर रहे हैं ना, मतलब एक पार्टिसिपेशन तो होना ही चाहिए और साथ ही इससे हमें खुद भी कॉन्फिडेंस मिलता है। तो चलिए, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज बहुत सारी हमने बातें करी हैं, अलग अलग सेगमेंट्स में हमने बहुत सारी जानकारी जो है मैंने आपको दी है और आपने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की है। चलिए, इसी के साथ वक्त हो जाता है आपसे इजाज़त लेने का, क्योंकि अब आने वाली है RJ दीक्षा जो करेंगी आपसे बहुत सारी बातें। तो चलिए, अब मुझे दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी आपसे कल। तब तक के लिए कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM आपके अपने शहर फरीदाबाद का पहला रेडियो स्टेशन, में हूं दीक्षा आपके साथ। और प्रोग्राम जो हम आपके लिए लेकर आते हैं हर हफ्ते, उसका नाम है सुरक्षा संवाद। एक ऐसा प्रोग्राम जो फरीदाबाद पुलिस के साथ अधिकारियों के साथ बातचीत के द्वारा आप तक लाया जाता है, ताकि आपको मिल सके सटीक जानकारी और आप रह सके अपने शहर में सुरक्षित। सुरक्षा संवाद में आज हम एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं, या फिर कुछ ऐसे सुरक्षा संवाद करने वाले हैं जो महिलाओं से जुड़े हैं। वैसे तो महिला दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 8 मार्च को, और बातें होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, बड़े बड़े अवार्ड फंक्शंस होते हैं, और बहुत सारी महिलाओं की जो योग्यता है या उनकी काबिलियत है उसको सराहा जाता है। यह अपने आप में बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन आधी आबादी यानी महिलाएं इस देश में नहीं, इस दुनिया में कहीं ना कहीं विक्टिम्स ऑफ वॉर भी कहलाई गई हैं। दुनिया में कहीं पर भी इतिहास गवाह है युद्ध हुआ है तो महिलाओं पर सबसे पहले अपराध हुए हैं। आज जमाना बदल गया है, युद्ध आज भी है, चाहे न्यूक्लियर की धमकी दी जाती हो या फिर आर्म्स एंड एम्युनिशंस के साथ ज्यादा एडवांस तरीके से युद्ध किए जाते हो, लेकिन फिर भी महिलाओं की कुछ स्थिति ऐसी है जिस पर चर्चा करना, जिस पर बात करना बेहद जरूरी है। हम युद्ध की बात नहीं करें, हम बात करें हैं उन शहरों की जो दुनिया में आगे बढ़ते हुए शहर हैं, जहां पर टेक्नोलॉजी भरपूर है, जहां पर यातायात बहुत अच्छा है और जहां पर सारी सुविधाएं हैं। बस एक चीज की प्रॉब्लम है, खास तौर पर से अगर मैं भारत में दिल्ली NCR की बात करूं, महिला सुरक्षा को लेकर अभी भी कुछ सवालिया निशान लगे होते हैं। अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB 2022 की रिपोर्ट की तरफ गौर करा जाए तो 4,45,256 केसेस आए हैं, और अगर एवरेज देखा जाए तो 51 कंप्लेंट्स पर आवर के हिसाब से निकलती हैं। समझ रहे हैं, हर घंटे हमारे देश में 51 कंप्लेंट्स जो होती हैं वो सिर्फ महिलाओं के अपराध के लिए होती हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं तो रेप, किडनैपिंग या फिर डोमेस्टिक वायलेंस और असॉल्ट के केसेस मुख्यतः शामिल होते हैं। अब ये जो आंकड़ा है ये दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ऐसी जगहों को हाईलाइट करता है, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं से जुड़े हुए अपराध ज्यादा नोट किए गए हैं या फिर ज्यादा रिपोर्ट किए गए हैं। आज महिला सुरक्षा को लेकर हम बातचीत करने वाले हैं हमारी खास मेहमान से, इंस्पेक्टर माया, जो कि वुमेन सेल NIT की SHO हैं, और सुरक्षा संवाद में आज हमारी खास मेहमान है, जिनसे हम बहुत सारे सवाल जानने वाले हैं और बहुत सारे जवाब इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर ही लेकर आई हैं, क्योंकि ये वो शख्स हैं जो दिन भर या फिर मैं कहूँ दिन रात 24 घंटे महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्य कर रही हैं, और अनगिनत केसेस ये अपनी आंखों से देखती हैं रिपोर्ट होते हुए और उनको सॉल्व भी करती हैं। तो माया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो माया जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम बातचीत को आगे बढ़ाएं, आप एक SHO हैं NIT फरीदाबाद के महिला थाना में, और ये एक ऐसा थाना है जहां पर मैंने देखा अक्सर भीड़ लगी रहती है, क्योंकि मैं भी जानती हूं इस जगह के बारे में, तो वहां पर हमेशा गाड़ियां खड़ी रहती हैं, वहां पर हमेशा लोग आते रहते हैं, एक रश वाला महिला थाना माना जाता है। तो एक SHO की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या ड्यूटी होती है, क्या रोल होता है, पहले तो वो बताएं।
1: जी, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि महिला थाना NIT जो है वो हर वक्त भीड़ से मतलब भरा ही रहता है, क्योंकि महिला थाना NIT पूरे NIT जोन का एक ही महिला थाना है, और इसमें काफ़ी गांव मतलब यहां से लेकर धोस तक के एरिया के गांव इसमें आते हैं। तो जो भी महिलाएं आती है वो सबसे पहले अपनी रिपोर्टिंग जो करती है वो महिला थाना में ही करना चाहती हैं।
0: जी
1: देखिए, इसमें प्रबंधक अफसर मतलब मेरा इसमें सबसे बड़ी ड्यूटी ये रहती है कि मैं जो मेरे सबॉर्डिनेट हैं उनके लिए भी एक ही एडवाइस है कि कोई भी महिला किसी भी टाइम आती है तो उसकी बात को अच्छे से सुना जाए, उसको न्याय दिया जाए, उसके साथ चाहे कैसी भी घटना है, चाहे मारपीट की है, चाहे बलात्कार की है, और चाहे किसी फोन के द्वारा कोई मैसेज या धमकी भरे इस तरह ब्लैकमेलिंग की है, तो मेरा सबसे पहला तो यही वो रहता है कि कोई भी महिला यहाँ से बिना न्याय मिले जाए ना, और उसको यहाँ से जिस आशा को लेकर वो आई है वो उस पर हम पूरी तरह खड़े उतरे, और क्योंकि अगर हमारा इस तरह से भूमिका नहीं रहेगी तो महिलाओं में जो डर है वो बना ही रहेगा, जिसको खत्म करने के लिए ये महिला थाने जो है खोले गए थे।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि महिला थाना खोलने का भी एक
0: मतलब
1: पर्पज रहा है कि पहले महिलाएं जो पीड़ित महिलाएं होती थी वो जेंट्स को, जो क्योंकि अधिकतर जो थानों में है वो जेंट्स ही होते हैं, आयु जो होते हैं, तो जो भी विक्टिम जाती थी वो खुल के अपनी बात नहीं बता पाती थी। अब महिला थाने खुलने के बाद महिलाएं अपनी बात को अच्छी प्रकार से वहाँ रख सकती हैं, और मैं बिल्कुल अपने जो मेरे आयु हैं वो बिल्कुल उनकी बातों को सुनते हैं, मैं भी उनकी जो पीड़ित है उनकी बातों को सुनती हूँ और फिर उनको जो भी नियमानुसार जो कार्रवाई अमल में लाई जाती है वो हम तुरंत तरीके से लाते हैं।
0: जी जी माया जी, बहुत सारी बातें हम आपसे जानना चाहते हैं, लेकिन फरीदाबाद का जब नाम आता है तो महिला सुरक्षा को लेकर प्रश्न तो उठता ही है, क्योंकि दिल्ली NCR ऐसी जगह है जहां पर दिल्ली में निर्भया कांड हुआ, जिसके बाद हर इंसान की जो कहते हैं रूह तक कांप गई कि ऐसा अपराध भी हो सकता है। 2012 के बाद, ये 2012 की बात है, जिसके बाद बहुत सारी वेब सीरीज भी बनी इस तरीके की वुमेन सेफ्टी को लेकर, लोगों में जागरूकता भी आई। बट हाल ही में कुछ ऐसे केसेस हुए हैं दिल्ली NCR में ही, जहां पर नोएडा में एक बहू को जला दिया जाता है और उसकी वीडियो तक वायरल हो जाती है और फिर उसके बाद केस जो है वो आगे चलता है। इसके अलावा फरीदाबाद की अगर मैं बात करूं तो एक केस अभी थोड़े टाइम पहले आया था जहां पर बहू को घर के सामने ही गड्ढा खोद के उसकी डेड बॉडी को गाड़ दिया और उसकी मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। ये केस भी फरीदाबाद का है। दूसरा एक हाईलाइट हुआ केस जहां पर लड़की को किडनैप कर लिया गया, चलती गाड़ी में उठा के ले गए। अब इनकी सच्चाई क्या है, किस तरीके के केसेस होते हैं, तो वुमेन सेफ्टी को लेकर फरीदाबाद में अभी परिस्थिति क्या है?
1: देखिए, फरीदाबाद में वुमेन सेफ्टी को लेकर हमें समय समय पर हमारे जो उच्च अधिकारी हैं वो दिशा निर्देश भी देते रहते हैं
0: जी।
1: और वो दिशा निर्देश यही है कि जो भी विक्टिम है सबसे पहले उसको सुना जाए, उसकी सच्चाई को सामने लाया जाए और फिर जो आरोपी है उसको बिल्कुल भी बख्शा ना जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। देखिए, जैसे आपने अभी बताया कि फरीदाबाद का एक केस था कि जिसमें एक महिला मतलब रात में घर से निकली और उसको फिर दो व्यक्तियों के द्वारा मतलब लिफ्ट दी गई, तो मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि वो केस बिल्कुल सच्चा था और लेकिन उसमें अपराधियों को तुरंत पकड़ा भी गया। तो ये पुलिस की ही एक बड़ा प्रयास और पुलिस की कड़ी मेहनत से ये सारी सफलताएं मिलती हैं। तो फरीदाबाद पुलिस जब भी इस तरह का कोई क्राइम होता है तो ऐसा नहीं है कि वही थाना

0: देश में राजधानी के साथ सटे हुए वो शहर जो देश की इकोनॉमी में बड़ा योगदान देते हैं, वहां पर लेडीज को आज भी या तो गर्मियों की दोपहर हो तो निकलते हुए, क्योंकि सुनसान रोड होती है तो डर लगता है, हालांकि आबादी बहुत है फिर भी कहीं ना कहीं डर लगता है। सो ऐसा क्यों होता है?
1: देखिए, इस बात का जवाब मैं इस तरह देना चाहूंगी कि एक तो फरीदाबाद में जो पॉपुलेशन है वो मतलब सिर्फ एक फरीदाबाद लोकेलिटी की ही नहीं है, मतलब बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, मतलब हर जिले से, हर स्टेट से लोग यहाँ आकर बसे हुए हैं। और जबकि पुलिस के द्वारा ये बार बार अभियान चलाया भी गया है कि जो भी अपने किराएदारों को रखे हुए हैं तो उसकी वेरिफिकेशन करवाएं, लेकिन ये कुछ एक जो इस तरह की घटनाएं होती हैं इसमें सबसे बड़ा मतलब कमी हम पब्लिक की मानते हैं कि वो अपने घर में रखे हुए किसी भी मतलब किसी को भी रखते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को नहीं देते,
0: किराए पर रखते हैं
1: तो उसकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी पुलिस को नहीं देते। और एक ऐसा ही व्यक्ति मतलब क्राइम करके फिर भाग जाता है और ये फिर जब खबर आती है या पुलिस तक खबर पहुंचती है फिर हम उसमें लगते हैं, लेकिन फिर वो एक डर का माहौल तो बिल्कुल बनेगा क्योंकि आए दिन जैसे ऐसी घटनाओं को प्रकाशित किया जाता है न्यूज़पेपर के द्वारा, लेकिन पुलिस अपना पूरा प्रयास करती है इसको कि इस तरह का कोई भी घटना घटित ना हो। और फरीदाबाद पुलिस के द्वारा मतलब कॉलोनियों में भी और स्कूल कॉलेजेस में भी इस तरह के आयोजन किए जाते हैं जिसमें बताया जाता है कि आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, 112 नंबर सभी को बताया जा रहा है, उसकी जानकारी दी जा रही है, लेकिन थोड़ा सा मतलब पब्लिक की स्ट्रेंथ को लेकर और एक पुलिस की जो संख्या है उसको लेकर थोड़ा सा ये एक गैप है कि क्योंकि पुलिस हर जगह हर समय मौजूद नहीं हो सकती।
0: तो अवेयरनेस अपने आप में आम जनता को
1: बिल्कुल वो पुलिस के द्वारा चलाया जाता है समय समय पर।
0: बहुत सारी हमारे यहाँ कॉलोनीज हैं, मैं नाम अगर लूँ तो संजय कॉलोनी है, एसडीएम नगर जिसको कहते हैं, डबुआ है, पाली है, ये सारे एरियाज वहाँ है जहाँ पर छोटे छोटे घर बने हुए हैं
1: बिल्कुल,
0: और एक एक घर में 5-5 किराएदार रह रहे हैं, यानी एक एक कमरा जो है वो दिया गया है। ज्यादा इसमें मजदूर वर्ग होता है या फिर अलग अलग जगह से आए हुए वो लेबर हैं जो इधर उधर काम करने जाते हैं, और इनके लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया होता, जो आप कहना चाह रही हैं कि हमने कहीं पर भी कोई दर्ज नहीं कराया हुआ है कि इनका नाम क्या है, इनका आधार कार्ड या वेरिफिकेशन नहीं है, सो वो कैसे कराएं क्योंकि लोग अभी भी नहीं कराते। और हम कॉलोनीज को छोड़ दें तो मैंने बड़े बड़े घरों में देखा है वहां कोई ऐसे वेरिफिकेशन नहीं कराता है।
1: देखिए, ये पुलिस के द्वारा एक पखवाड़ा भी चलाया जाता है कि जो भी मतलब जिनके घर में भी किराएदार रहते हैं, अभी पीछे जो हुआ जैसे कि ये एक पखवाड़ा चला था पीछे कि जितने भी मतलब बाहर से आए हुए लोग रह रहे हैं तो क्या आपने उसकी वेरिफिकेशन करवाई है, लेकिन एक बहुत बड़ा मतलब नंबर निकल के आया सामने कि
0: नहीं कराई हुई थी।
1: और ये बिल्कुल ठीक बात है कि संजय कॉलोनी जो है वहाँ पर मैं खुद बताना चाहूँगी कि मेरे पास पूरी रात फ़ोन बजते रहते हैं कि मेरा पति पीट रहा है या मेरी बेटी आज घर नहीं आई है, तो संजय कॉलोनी का जो नाम है वो सबसे ऊपर बिल्कुल ठीक लिया है
0: एनआईटी एरिया में।
1: हाँ हाँ, तो संजय कॉलोनी में इस तरह का ये घटनाएं होती रहती हैं और वो शायद इसलिए होती हैं क्योंकि वो लोग अवेयर ही नहीं हैं, और उनको अगर हम पुलिस अवेयर भी करना चाहते हैं तो भी वो नहीं होना चाहते, तो ये एक उनकी सोच पर भी निर्भर करता है। लेकिन जब भी वो पुलिस के पास आते हैं तो पुलिस उनके साथ खड़ी है, उनकी सहायता के लिए हमेशा खड़ी है।
0: जी जी, ये तो बात हो गई किराएदारों की। और जैसा कि अभी हाल ही में हमने थोड़े टाइम पहले देखा भी था, अल्फला यूनिवर्सिटी में जो केसेस निकले वहां पर भी जो किराएदार थे, जो प्रोफेसर्स थे या डॉक्टर्स थे, उनके भी कहीं पर भी कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई थी। सो ऐसे मैटर से बचने के लिए भी मुझे लगता है कि जरूर कराना चाहिए, ऐसे केसेस ज्यादा दिक्कत दे सकते हैं आगे जाकर।
1: बिल्कुल, ये देखिए, ये जो दिशा निर्देश है ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से ही है सभी मकान मालिकों, सभी स्कूल कॉलेज को कि भाई अपने यहाँ पर जो भी कार्यरत है उनकी वेरिफिकेशन आप करवाए, और कंपनी के लिए भी ये एक मतलब दिशा निर्देश जरूर दिया जाता है, लेकिन लोग अपनी जिम्मेवारी निभाने शायद पीछे हटते हैं। लेकिन अभी पीछे पुलिस ने अल्फला यूनिवर्सिटी में ये जो मतलब हादसा हुआ तो इसके बाद पुलिस ने खुद घर मतलब डोर टू डोर जाकर लोगों की वेरिफिकेशन की है और मतलब सबको अवेयर भी किया है, तो ये पुलिस मतलब समय समय पर करती रहती है इस तरह के प्रयास। लेकिन हमारी तो एक मतलब पब्लिक से भी, आम पब्लिक से भी हम यही गुहार करते हैं कि आप हमारे साथ खड़े रहकर इस काम में हमारी मदद करें।
0: जी बिल्कुल,
2: तो बहुत सारी बातें आज हम कर रहे हैं इंस्पेक्टर माया से, जो कि SHO हैं वुमेन सेल NIT फरीदाबाद की, और बहुत सारी बातें हम इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक SHO की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एक आम महिला किस तरीके से खुद को सशक्त महसूस कर सकती है। बातें करेंगे।

0: वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपके अपने शहर का पहला रेडियो स्टेशन। और हम बात करें हैं कार्यक्रम सुरक्षा संवाद में आज SHO वुमेन्स सेल फरीदाबाद NIT इंस्पेक्टर माया जी से, जिनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर महिलाएं इस शहर में कितना सुरक्षित महसूस करती हैं। और महिला दिवस तो हम मनाते हैं, लेकिन क्या महिलाओं की वो बेसिक सुरक्षा जो उनके घर, उनके रास्ते या उनके ऑफिस, हर जगह पर उन्हें महसूस होनी चाहिए, क्या उन्हें मुहैया कराई जा रही है? और अगर नहीं तो फिर वो अपना हक कैसे ले सकती हैं? बहुत सारी बातें जारी हैं हमारी।
1: अब बात करते हैं कुछ ऐसे कंप्लेंट्स की जो अक्सर आती हैं आपके पास। हमने जो देखा है या जो आंकड़ों में देखा है, ज़्यादातर रेप के केसेस हैं या डोमेस्टिक वायलेंस है या किडनैपिंग के मामले हैं। और किस तरीके के मामले सबसे ज़्यादा आप डे टू डे रूटीन में देखती हैं?
2: देखिए, ये रेप केसेस जो है महिला थाने में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा ये होता है कि कुछ बच्चे जो 2 या 3 साल तक साथ रहते हैं, फिर वो शादी के लिए लड़का मना कर देता है, तो इस तरह का रिपोर्टिंग ज़्यादा है। लिव इन वाला हम उसको बोल सकते हैं, लेकिन कानून के उसमें ये अपराध है। तो हम उसको बिना, मतलब लड़की की सुन के बिना देरी के उसको दर्ज करते हैं, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं, और अगर लगता है कि लड़की बिल्कुल सच बोल रही है तो हम अपराधी को तुरंत गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर देते हैं। लेकिन अगर लड़का फिर भी अपनी मतलब बचाव पक्ष में कोई भी साक्ष्य सबूत रखता है तो हम उसके साथ भी ऐसा कोई अन्याय नहीं करते कि उसकी ना सुनी जाए। लेकिन मैं मतलब बोलना चाहूंगी कि जो लड़कियां हैं वो 4-4 साल अगर साथ रहती हैं तो उनको फर्स्ट डे ही, बिल्कुल अगर उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो वो फर्स्ट डे ही आकर मतलब उसकी आवाज उठाएं। और महिला थाने में डोमेस्टिक वायलेंस जो आज के दिन बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आती हैं, क्योंकि उसका एक रीजन है कि लोग शायद आज भी महिलाओं को कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि वो दबके ही रहें तो ज्यादा अच्छा है। तो क्योंकि जब हम काउंसलिंग करते हैं तो हमारे सामने ये विचारों का मतलब एकदम से उनका आमना सामना हम करवाते हैं, तो पुरुष जो है उनका विचार ये निकल के आता है कि मैं इससे नौकरी नहीं करवाना चाहता, और ये फिर भी जाती है। तो इस बात को भी लेकर डोमेस्टिक वायलेंस जो है एक बड़ा रूप ले लेता है
1: जी।
2: और फिर महिला को हार थक के हमारे पास आना पड़ता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और महिला थाने में पॉक्सो केस जो है, बच्चों से संबंधित केस, वो भी बहुत ज्यादा आजकल, क्योंकि उसमें ये होता है कि बच्चों के साथ बैड टच बहुत ज्यादा बहुत कॉमन हो गया है। और ये सिर्फ हम अवेयरनेस से ही इसको दूर कर सकते हैं, या हम माँ बाप को भी अवेयर करते हैं, बच्चों को भी अवेयर करते हैं, तो ये हमारा प्रयास जारी रहता है
1: जी। जैसे नोन लोग जो हैं, आपके जान पहचान के लोग हैं, अगर वो भी कुछ ऐसा कर रहे हैं तो बच्चों को पता होना चाहिए और पेरेंट्स को पता होना चाहिए।
2: ये देखिए, हम नुक्कड़ नाटक के द्वारा भी स्कूलों में इस तरह से बच्चों को समझाने का प्रयास करते हैं, और एक खुले शब्दों में भी मतलब थोड़ा सा जैसे देख लेते हैं कि बच्चा किस तरह से समझेगा। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि हम बच्चों को समझाएं कि आपके साथ बैड टच कब कब होता है और बैड टच होता क्या है। तो बच्चों को ये समझाने का प्रयास किया जाता रहा है पुलिस के द्वारा भी, और टीचर को भी हम काफी मतलब काउंसलिंग करके समझाते हैं
1: जी,
2: और पेरेंट्स को भी
1: जी। जी माया जी, पिछले कुछ समय में बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है कि बदलाव आया है। पहले कंप्लेंट्स बहुत कम नोटिस होती थी, शायद सोशल मीडिया की वजह से या अवेयरनेस की वजह से। अब क्या सिनेरियो है, कंप्लेंट ज्यादा आती है, अवेयरनेस ज्यादा है महिलाओं में?
2: मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि अब महिलाएं जो है अपनी कंप्लेंट करने से बिल्कुल भी डरती नहीं है। उसका एक रीजन ये है कि क्योंकि उनको पता है कि उनके जिले में जो है महिला थाना है, और महिला थाना उनके लिए ही खुला है, क्योंकि मतलब बार बार जैसे दुर्गा शक्ति है, 112 की गाड़ियां हैं, तो और स्कूलों में ज्यादातर महिला थाना ही जाकर अवेयरनेस प्रोग्राम करता है, तो उसके कारण ये बिल्कुल ठीक है कि कंप्लेंट अब ज्यादा आने लग गई है, चाहे वो फोन के द्वारा है, चाहे मेल के द्वारा है, और चाहे 112 पे, चाहे सीधे तौर पर थाने में आकर दी गई हो
1: जी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इतनी कंप्लेंट्स आती हैं, ऑन एन एवरेज एक दिन में कितनी कंप्लेंट्स आती होंगी आपके पास?
2: देखिए, अगर मैं अपने थाने का पिछले महीने का जनवरी का मैं बताऊं तो 70 कंप्लेंट जो है मेरे पास डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड मुझे मिली है, और उन पे फिर वुमेन सेल जो है हमारा वो काम करता है, उन वहाँ पर एक अलग सेल बनाई हुई है थाने में, तो उसके उनके द्वारा वहाँ पर काम किया जाता है,
1: काउंसलिंग करना
2: बिल्कुल
1: जी जी। तो 70 कंप्लेंट सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस की,
2: सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस।
1: और आपका जो स्टाफ है वो कितना है, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि लोगों को लगता है कि पुलिस खाली बैठी हुई है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि पुलिस वाले जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, और ये एक आम धारणा बनी हुई है।
2: देखिए जो पब्लिक, जो जनता, जो इंसान महिला थाने में या किसी भी थाने में आता है, तो अगर वो वहाँ पर 3 या 2 घंटे भी रह जाता है तो उसकी समझ में आ जाता है कि पुलिस बहुत काम कर रही है। क्योंकि महिला सेल में मैं बता देती हूँ कि एक ASI सोनिका जो पोस्टेड है और उसके हमने उसकी मदद के लिए 2 लेडी कॉन्स्टेबल वहाँ बिठा रखी हैं। तो देखिए 70 कंप्लेंट पे मतलब 1 दिन में 10 लोगों को हम बुलाते हैं तो वो 50 की भीड़ आती है, लेकिन उसको सुन रही होती है एक हमारी आईओ, और फिर उसके बाद मैं सुनती हूँ। तो मतलब 10 को सुनना और फिर उससे अलग भी केसेस हमें सुनने होते हैं। तो महिला थाने में 25-26 का स्टाफ है, लेकिन उसमें जो आईओ है वो 8 या 9 ही काम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती है, लेकिन शायद हमें मतलब इस तरह से काम करने में कोई परेशानी नहीं आती है क्योंकि हम अपना मैनेज करके रखते हैं इस, लेकिन बस ये ही हम ध्यान रखते हैं कि कोई भी बिना सुने चला ना जाए।
1: बिल्कुल। अब ये कैसे आप पता लगाती हैं, क्योंकि बहुत सारी फेक कंप्लेंट्स भी आती हैं आज के टाइम पे, हमने बहुत कुछ देखा है इंटरनेट पे और बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं, हाईलाइट हो जाते हैं मीडिया में जो फेक होते हैं। ज़्यादातर डिवोर्स केसेस में हमने ये देखा है, बहुत सारे ऐसे हमने देखे हैं जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस के ज़रिए महिलाएं जो हैं आजकल थोड़ा पुरुषों पर भी इल्ज़ाम लगाती हैं जो जेन्युइन नहीं होते हैं। वो कैसे आप पता लगाती, क्योंकि इनमें समय बहुत वेस्ट होता है अगर कंप्लेंट फॉल्स हो तो।
2: बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल ठीक बात है कि कुछ कंप्लेंट बिल्कुल ही निराधार मतलब बिल्कुल झूठ पे ही आधारित होती है। उसका पता हम ऐसे लगाते हैं कि हमारे पास जब फर्स्ट टाइम कंप्लेंट आती है तो हमें पढ़ते ही पता चल जाता है। और हमारा सबूतों पे और साक्ष्यों पे मेन हमारा फोकस होता है कि आप अपने पक्ष में क्या सबूत दे सकती हैं। और हम अपने तौर पर भी पड़ोसियों से या फिर रिश्तेदारों से और गुप्त सूत्रों से भी हम पता लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि वहीं बैठे बैठे हम डिसीजन ले लेते हैं। तो जो भी काउंसलिंग के दौरान लड़का या लड़की या कोई भी फैमिली मेंबर या कोई थर्ड पर्सन मतलब उनके पक्ष में कोई गवाह या कोई सबूत आता है तो हम उसको फाइल पे लेते हैं। और ऐसा एक तो देखिए पुलिस का जो IQ लेवल है वो बहुत हाई लेवल का होता है, ये मैं बिल्कुल, क्योंकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि पुलिस के पास कोई ऐसी डिग्री है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस भी होता है, 25-25 साल की नौकरी है। तो वो दिन प्रतिदिन हमारा यही काम है और मेन फोकस हमारा होता है सबूतों पे और गवाहों पे, तो हम डिसीजन ले पाते हैं।
1: जी, यानी हर केस के लिए इन्वेस्टिगेशन जरूरी है।
2: बिल्कुल।
1: और उसके बाद जो है वो कदम उठाते हैं,
2: क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करके ही सच और झूठ का पता लगाया जा सकता है। और पुलिस का एक ही मेन मतलब हमारी सोच होती है कि कोई निर्दोष अंदर जाए ना और दोषी छूटे ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो बहुत सारी बातों का जिक्र और भी चलता रहेगा। आपके अगर प्रश्न है या आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लग रही है तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। नंबर बहुत आसान है, 8010781078, या फिर हमारे इंटरनेट रेडियो ऐप रेडियो मानव रचना को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कीजिए। और ये सारा पॉडकास्ट जो है वो आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिसे इस जानकारी की बहुत ज़रूरत हो, क्योंकि पुलिस जब आपके साथ सहयोग में होती है तो डेफिनेटली आपको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, आप एक सशक्त महिला भी बन जाती हैं। तो ये जानकारी ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। मैं हूं दीक्षा आपके साथ, प्रोग्राम का नाम सुरक्षा संवाद।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम आपके अपने शहर का पहला रेडियो स्टेशन। मैं हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है सुरक्षा संवाद, जिसे हम लेकर आए हैं फरीदाबाद पुलिस के साथ सहयोग से। और आज हम बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा के बारे में कि महिला फरीदाबाद में अगर अपने घर से बाहर निकल रही है तो कितना सुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि हाल ही में हुए कुछ ऐसे केसेस हैं जो पिछले कुछ समय से हाईलाइट हुए हैं, लेकिन उसमें गलती किसकी थी, क्या गलती परिवार की थी, क्या गलती उस महिला की या फिर उस बेटी की थी, या फिर गलती है सड़क पर चलने वाले उस पुरुष की जो हर महिला को अपनी जायदाद समझ लेता है। बातें करें बहुत सारी। माया जी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, जो कि SHO हैं महिला सेल NIT फरीदाबाद में। माया जी, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी कि महिलाएं जो होती हैं, बहुत आपके पास बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स आती होंगी जहां पर अपराध होने के कई सालों बाद लड़कियां या महिलाएं आती हैं कंप्लेंट लेकर। डोमेस्टिक वायलेंस शादी के अगले दिन से ही शुरू हो जाता है कईयों के साथ, या फिर इतना ज़्यादा उन्हें ट्रॉमाटाइज किया जाता है, लेकिन वो उठ के आती हैं जब बात बहुत आगे बढ़ जाती है, तब तक वो सहनशीलता से सहती रहती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में केसेस देखे हैं, लिव इन में भी ऐसे, जैसे आपने बताया कि बहुत बार ऐसा कुछ होता है। सो एक लेडी को, एक या फिर एक टीनेजर है, बच्ची ही है, उसे कब आपको अप्रोच करना है, कौन कौन सी परिस्थिति में, चाहे वो रेप का केस हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो पॉक्सो में आ रहा है, बैड टच गुड टच की हम बात करें, कब आपके पास आना है?
1: देखिए, जब भी किसी महिला या बच्चे के साथ या लड़की के साथ जब भी फर्स्ट टाइम कोई मतलब अपराध हो रहा है, चाहे उसको धमकाया जा रहा है, चाहे उसको दबाया जा रहा है, या उसके साथ मारपीट है, तो मुझे लगता है कि उनको फर्स्ट डे ही उस चीज के लिए आवाज उठानी चाहिए। अगर वो फर्स्ट डे ही आवाज उठाएगी तो उसका मतलब जो है उसके साथ इतना बड़ा अपराध होने से भी बचेगा, और पुलिस जो है अपनी कार्रवाई को मतलब एक सबूतों के साथ बहुत अच्छे से मतलब उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तो फर्स्ट डे ही किसी के साथ कुछ भी बुरा होता है तो पहले ही दिन आवाज उठाएं और अपनी मदद मांगे।
0: जी जी, यानी अगर घर में आपके साथ कोई बदतमीजी हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में अगर कुछ आ रहा है, कोई आप पर हाथ उठा रहा है, तो ये आपके लिए एक रेड फ्लैग है, इसको समझिए और कंप्लेंट जो है वो दर्ज कराइए। माया जी, आपने लिव इन के बारे में अभी बात करी थी, और लिव इन के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, लिव इन रिलेशनशिप्स मेट्रो सिटीज में डे बाय डे कॉमन होते जा रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: कॉलेज के बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स लिव इन रिलेशनशिप में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में होते हैं, चार चार पांच पांच साल रहते हैं और फिर वो रिश्ता खत्म हो जाता है। फिर अचानक से कहीं पे कोई उनमें, बहुत सारे अखबार में हम केसेस पढ़ते हैं जहां पर मर्डर्स हो जाते हैं, रेप्स हो जाते हैं। सो ये कैसी सिचुएशन हो जाती है, क्या इसके लिव इन के नेगेटिव्स क्या सामने आते हैं आपके सामने?
1: देखिए, जितना इन्वेस्टिगेट मैंने किया है, क्योंकि मैं पर्सनली हर केस को देखती हूँ, तो हर लड़की को मैं सुनती हूँ, तो कुछ एक में तो बहुत ज़्यादा ये बिल्कुल ठीक लड़कियाँ रोती हैं कि मतलब मैं 4 महीने से इसके साथ थी या 2 साल से इसके साथ थी, लेकिन मैं अब बात नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे इसकी हैबिट का, इसके बैकग्राउंड का, इसकी आदतों का पता लग गया है कि ये गलत लड़का है, और अब मैं जब इससे पीछे हटना चाहती हूँ तो ये मुझे मेरी वीडियो दिखाता है, क्योंकि आजकल एक ये बड़ा चलन में है कि हर लड़का मतलब अपने फ़ोन में लड़कियों की फ़ोटो मतलब रिलेशन बनाते समय तक की वीडियो जो है वो रख लेते हैं, और फिर जब लड़की मतलब बैक होना चाहती है तो वो उसको दिखा के ब्लैकमेल करते हैं। तो मतलब हम 100% इसको झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ एक में सबूत मिलते हैं तो हम बिल्कुल लड़की का साथ देते हैं और जो लड़के को पकड़ के बिल्कुल उसको सजा दिलवाते हैं। लेकिन कुछ एक में क्या होता है कि लड़का शादी करना चाहता है, लड़की बिल्कुल ये कि नहीं मैं नहीं करना चाहती हूँ, और फिर वो रिपोर्टिंग करती है, तो हम ऐसे केस में बिल्कुल मुकदमा दर्ज हम जरूर करते हैं लड़की के बयान पर, लेकिन जो सच्चाई होती है उसके आधार पर ही, हम अगर झूठा है तो झूठा है, फिर हम लड़की के खिलाफ भी कार्रवाई कर देते हैं।
0: जी,
1: 182 बिल्कुल,
0: यानी अगर कोई लड़की फॉल्स केस करी है तो उसके अगेंस्ट
1: उसके बिल्कुल हम अगेंस्ट 182 की कार्रवाई करते हैं, 217 BNS की।
0: और इसमें क्या प्रावधान होते हैं?
1: इसमें 6 महीने तक की सजा होती है, और अगर कोर्ट चाहे तो उस पर एक फाइन भी रख सकती है।
0: जी, यानी जो लड़कियां फॉल्स केसेस जो करती हैं लड़कों पर, उनको भी सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि आप पर भी उल्टी कार्रवाई हो सकती है, और फिर लड़के का नुकसान हो या ना हो, आपका नुकसान बड़ा हो सकता है। सो फोटो शेयर करने वाली एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसको हम साइबर फ्रॉड के अंडर भी रखते हैं। बहुत सारे ऐसे हमने केसेस भी सुने हैं जहां पर लड़कियों को उनकी फिल्म, उनकी वीडियो के जरिए जो ब्लैकमेल किया जा रहा है, ऑनलाइन डाल दी जाती हैं पिक्चर्स, वायरल हो जाती हैं और फिर लड़की कोई गलत कदम उठा लेती है। तो साइबर के तरीके से कैसे उनको, लड़कियों को, लेडीज को जो है फंसाया जाता है?
1: देखिए, अभी जितने भी केस हैं, मतलब ये साइबर, मैं इसको कम मानूंगी, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, उसमें हम उसको दर्ज करते हैं और उसमें इंस्पेक्टर लेवल का ही जो अधिकारी होता है वो इन्वेस्टिगेट करता है। तो मैंने खुद से ऐसे केसेस, 12 केसेस अभी मैंने किए हैं और अभी हाल ही में मतलब 2-3 केस ऐसे हैं। तो ज़्यादातर क्या होता है कि ये लोग जो है किसी वेबसाइट पे मतलब दोस्ती करते हैं, तो वेबसाइट पे दोस्ती करना मतलब वो खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि एक अनजान, वहाँ पर अनजान लोगों का ग्रुप है, कौन है क्या है, वो बस कुछ तारीफ करके लड़कियों को अपने झांसे में लेते हैं
0: सोशल मीडिया
1: से। तो इंस्टाग्राम जो है इसका सबसे बड़ा मतलब एक सामने आता है, चैनल सामने आता है कि इस पे सबसे ज्यादा, और फिर लड़कियों के फोटो को एडिट करके उनको डराया धमकाया जाता है, तो लड़कियां बताती नहीं है डर के मारे। उसमें स्कूल के भी बच्चे हैं और कुछ, एक मतलब एक बैंक मैनेजर का भी केस मेरे सामने आया, तो मतलब बड़ा अचंभा होता है कि एक बैंक मैनेजर होने के बावजूद भी मतलब आप इस तरह के क्राइम को सहते आ रहे हैं और एक साल बाद आप आवाज उठा रही हैं।
0: मैं चाहूंगी आप थोड़ी केसेस भी इलैबोरेट करें, क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको, वो इनसे सतर्क हो जाए।
1: देखिए, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है, मतलब जिसको हम साइबर फ्रॉड भी कह सकते हैं, क्योंकि सबको साइबर फ्रॉड का ज़्यादा मतलब एकदम से क्लिक होता है दिमाग में, लेकिन जब भी किसी लड़की की फोटो अगर कोई भी एडिट करके किसी भी साइट पर डालता है, चाहे फेसबुक पे है चाहे कहीं, तो उस पे आप बिल्कुल भी डरे ना, क्योंकि वो आपकी, उसमें आपकी गलती नहीं है, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत दें और उसका जो मुकदमा दर्ज होगा वो आईटी एक्ट में होगा और आपकी पूरी मदद की जाएगी। लेकिन अगर लड़की जब तक बताएगी नहीं तो पुलिस उसमें कुछ कर नहीं सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ एक तो मतलब जानकार ही उनको बदनाम करने की नीयत से ऐसा करते हैं, अलग सिम ले लेंगे या फ्रॉड नंबर से उसको करेंगे और फिर वो एक लिंक भेजते हैं, लिंक जो लड़की है या बच्चा है कोई भी है वो उसको क्लिक कर देता है, तो उसका पूरा फोन हैक हो जाता है और वो ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है वहां से, फिर पैसे मांगने का भी एक सिस्टम शुरू हो जाता है। अभी हाल ही में मेरे पास मतलब आते रहते हैं केसेस, तो अभी एक बच्चे का केस ऐसे आया था कि वो पिछले एक साल से इसी तरह से इंस्टाग्राम पे वो जुड़ी और वहाँ पर उससे जो लड़का है, जो क्रिमिनल है, वो ना उसने लड़की ने लड़के को देखा है, बस वो इंस्टाग्राम से ही बातचीत होती है, चैटिंग कर करके, लेकिन वो लड़की से उसकी न्यूड वीडियो भी मंगवा लेता है कि तुम अगर नहीं भेजोगी तो तुम्हारी ये फोटो जो है, जबकि वो एडिट की हुई फोटो थी, अगर उस बच्चे को इतना अवेयर होती वो तो शायद ना भेजती, फिर उससे पैसे भी लिए गए हैं। तो इस तरह के क्राइम जो है वो आते रहते हैं। और जो मैंने बैंक मैनेजर का बताया, तो मतलब वो तो मैरिड थी और 2 बच्चों की माँ भी थी, तो लेकिन उनको फिर बाद में बड़ा पछतावा हुआ कि काश मैं पहले ही ये रिपोर्टिंग कर देती। तो इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि जब भी घटना हो तो पहले ही दिन आप आवाज उठाएं। उसमें कई बच्चे या लड़कियां इसलिए नहीं आते हैं कि पुलिस हमें ही गलत बोलेगी। तो मैं बताना चाहूंगी, मैं बोलना चाहूंगी इस चैनल के माध्यम से कि पुलिस बिल्कुल भी उनको गलत नहीं मानती है, ना ही उनको गलत ठहराती है, बल्कि हम उनको समझाते हैं और यही समझाते हैं कि आप विक्टिम हैं, कि आपको अवेयरनेस नहीं थी, आप जागरूक नहीं थे, आपको पता नहीं था कि ऐसा भी क्राइम होता है, लेकिन अब जब हो गया है तो आप यहाँ आए हो, तो आप बिल्कुल भी मतलब इसमें दोषी नहीं हो, आप विक्टिम हो और हम आपके साथ खड़े हैं। और हम उनको बताते हैं कि आप अपने साथ वाले बच्चों को या लड़कियों को या घर में जितने भी सदस्य हैं उन सबको ये चीजें बताएं, छुपाएं ना,
0: जानकारी दें कि कोई भी पिक्चर अगर आपकी एडिटेड है, AI जनरेटेड है और वो ऑब्सीन है, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। आप तुरंत 112 पे कॉल करें या अपने नजदीकी महिला थाने में जाएं, वहां पर जाकर आप कंप्लेंट करें। महिला थाना अगर आपको नहीं पता है तो आप नॉर्मल पुलिस स्टेशन में जाएं, पुलिस चौकी में जाएं, पर जाकर उनकी हेल्प जरूर लें, क्योंकि इस तरीके के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी महिला को शिकार बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। उनका ये बिजनेस होता है, उनका ये बिजनेस मॉडल होता है, जिससे बचने के लिए आपको अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आपकी उम्र 14 साल हो, 24 हो, 34 हो या फिर 50 हो, आपको अपने आप को सेफ और सिक्योर रखने के लिए अवेयर होना जरूरी है। बहुत सारी बातें और भी होती रहेंगी, बहुत सारी जानकारियां और भी शेयर करते रहेंगे आपके साथ, लेकिन अभी वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। मैं हूं दीक्षा, आपके साथ सुन रहे हैं आप सुरक्षा संवाद, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 पर।